ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पंछियों का कलरव गूंजने के साथ ही ठंडी बयार मन को स्फूर्ति से भर रही है। सुबह का वातावरण जादुई होता है और आसमान में नारंगी और सुनहरे रंगों का मिश्रण अनुपम छटा बिखेर रहा है। सुबह की शांति और ओस से भीगी हुई घास ध्यान जैसी अनुभूति प्रदान कर रही है और संदेश दे रही है सकारात्मक ऊर्जा का। श्रोताओं, हम भी आ चुके हैं नव चेतना नव ऊर्जा के साथ आपके लिए लेकर मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी श्रोता अपनी दिनचर्या के साथ ही रेडियो सेट को ऑन कर चुके हैं।

0: और आपको इंतजार होगा समाचारों का। तो चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, प्रातः के 6 बजने वाले हैं, सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंगहम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकैना को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे

0: दौर में अमेरिका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आपने ट्यून इन किया है 747 किलोहर्ट्ज पर। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी। श्रोताओं, समय है कृषि चर्चा का। आज की कृषि चर्चा में आइए सुनते हैं डॉक्टर रुद्र प्रताप नारायण सिंह से की गई भेंट वार्ता मूंगफली उत्पादन की उन्नत तकनीक विषय पर। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खरीफ के मौसम में जहां मूंगफली उत्पादन की योजना है तो इसकी उन्नत तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र रायबरेली से अध्यक्ष डॉक्टर RPN सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि खरीफ में जहां तिलहन उत्पादन में मूंगफली पैदा करना चाहते हैं किसान भाई बहन, तो क्या सलाह है?
3: नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि मूंगफली में आप जानते हैं कि खरीफ में तिलहनी फसलों में इसका बहुत ही प्रमुख स्थान आता है, और इसलिए भी आता है कि ये असिंचित और सिंचित अवस्था दोनों अवस्था में इसकी खेती कर लेते हैं। और सबसे फायदेमंद ये है कि इसमें तत्व के रूप में देखा जाए तो 10-12% कार्बोहाइड्रेट, इसमें 40-50% तक फैट पाया जाता है, वसा का जो प्रतिशत है। और इसमें अगर कुछ हमारे किसान भाई प्रजातियों का चयन करने में अगर शुरू में सावधानी लें, इसकी खेती की जा सकती है और पैदावार अच्छी ले जा सकती है।
2: तो शुरुआत करें कि खेत का चुनाव और खेत की तैयारी में क्या कुछ खास है?
3: मूंगफली की जो खेती है वो ज्यादातर बलुई दोमट और दोमट भूमि में बहुत ही अच्छी होती है। जहाँ सिंचाई के साधन हो, पर्याप्त हो, जल भराव न हो, वहाँ पर खेती इसकी बहुत ही आसानी से बहुत अच्छे तरीके से की,
2: यानी जल निकास का प्रबंध अच्छा हो
3: जी,
2: और बलुई दोमट हो तो सबसे अच्छा,
3: बहुत बढ़िया है।
2: और खेत की तैयारी में?
3: खेत की तैयारी में पहले तो आप मिट्टी पलट हट से इसकी जुताई कर लेते हैं खेत की, और उसके बाद कल्टीवेटर चला के और पाटा चला के इसको पूरा समतल कर लें, क्योंकि समतल करना बहुत ही जरूरी होता है बाद के लिए, कि सिंचाई जब करते हैं तो उसमें पानी की बराबर की मात्रा फैलती है।
2: उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी हैं जो अच्छी पैदावार देंगी खरीफ में? डॉक्टर साहब,
3: खरीफ में पैदावार देने के लिए जिसे पुरानी अगर प्रजातियों को हम लोग लेके चलें, तो पुरानी प्रजातियों में चित्रा है, कौशल है, प्रकाश है, ये चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय की हम लोग के यहाँ की प्रजाति है, जो मैनपुरी में इसका रिसर्च सेंटर था उससे
2: निकली हुई है।
3: पैदावार बहुत अच्छी है। जैसे अब कुछ गुण है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। चित्रा प्रजाति जो हमारे यहाँ है, इस प्रजाति में थोड़ा सफेद कलर होते हैं जो दाने में छिलके के वो कलर होते हैं। और दूसरा कौशल प्रजाति बहुत अच्छी चली। कौशल में दोनों गुण है, सिंचित और असिंचित दोनों समय में खेती इसकी कर सकते हैं, दोनों तरीके से। थोड़ा बहुत उत्पादन में अंतर आता है, और ये भी 8-10 क्विंटल उपज प्रति एकड़ आपको मिल जाता है, बहुत अच्छा और बड़े दाने में है, जिसकी बहुत मांग होती है। प्रकाश उसी के साथ अगर देखा जाए तो प्रकाश प्रजाति थोड़ी बड़े दाने की प्रजाति होती है, वो भी बहुत अच्छी है। इसी तरह से अंबर है, और बाहर की अगर प्रजाति कहें तो TG 37A है,

0: जीजे जी 31 है, जीजे जी 9 है, और एक प्रजाति जो 2008 की है, अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है, गिरनार 2, ये भी प्रजाति बहुत अच्छी है।
1: अब डॉक्टर साहब, बुआई का उपयुक्त समय क्या है और बुआई में कौन कौन सी खास बातें हैं जो ध्यान में रखनी है मूंगफली उत्पादन?
0: देखिए, मूंगफली उत्पादन अब 15 जून से अगर देखा जाए तो इसका बुआई का समय शुरू हो चुका रहेगा। 15 जून से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक इसको ले सकते हैं
1: जी।
0: और जो मैंने पहले भी बताया कि जहां सिंचाई की सुविधा हो वहां पर खेती इसकी अवश्य करें, जल भराव क्षेत्र एकदम ना होना चाहिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि इसका जो तापक्रम है, जो मौसम का तापक्रम भी ध्यान देने की जरूरत है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा न हो तब इसकी बुआई का उचित समय माना जाता है। थोड़ा ज्यादा है तो उस समय कुछ देर टाला जा सकता है।
1: हाँ, बीज दर प्रति एकड़ कितना लगेगी डॉक्टर साहब?
0: बीज दर इसके दाने पर है, अगर बड़े दाने की जो प्रजाति है उसकी जो दाने की बीज की मात्रा है उसकी है 36-38 किलो। जैसे प्रकाश है, मैंने पहले बताया कि प्रकाश की प्रजाति थोड़ी बड़े दाने की है, कौशल थोड़ी कम है, तो कौशल और प्रकाश को अगर लिया जाए तो 36-38 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसको बीज दर के रूप में प्रयोग करते हैं। और जो प्रजातियां हमारी मध्यम और छोटे दाने की जो प्रजातियां हैं उसमें अगर देखा जाए तो 26-30 किलो प्रति एकड़ के दर से इसका प्रयोग कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे मूंगफली उत्पादन की उन्नत तकनीक के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मेरा मोबाइल नंबर 94-157-44-645, 9415744645, 94-157-44-645।
1: डॉक्टर आरपीएन सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए, मूंगफली उत्पादन की उन्नत तकनीक क्या है इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मूंगफली उत्पादन की उन्नत तकनीक, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रुद्र प्रताप नारायण सिंह से की गई भेंट वार्ता। भेंट करता थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। और अब आइए सुनते हैं आज का सुविचार। विषय है कर्मण्यता, वाचन स्वर सुषमा गुप्ता का है।
3: मनस्विनी विदुला ने युद्ध में पराजित होकर रणभूमि से भागे हुए अपने भयभीत पुत्र से कहा, हे वत्स, जीवन रण में पराजित होकर दीन दुखी और हताश मन से छुपकर बैठ जाने वाले व्यक्ति को कापुरुष कहते हैं। ऐसे लोग न केवल अपना मान सम्मान खोते हैं, अपने बंधु बांधवों को कभी समाप्त न होने वाला दुख देते हैं, बल्कि शत्रुओं के परमानंद का कारण बनते हैं। अकर्मण्य और कायर लोग थोड़ा कुछ पाकर भी उसी प्रकार संतुष्ट हो जाते हैं जैसे उथली नदियां थोड़ी वर्षा से ही लबालब भर जाती हैं, या फिर मूषिकांजलि अर्थात चूहिया की मुट्ठी कुछ कणों से ही सुपूरित हो उठती है। हे वत्स, इमली के कोयले की भांति प्रकाश और उष्णता सहित मुहूर्त मात्र के लिए जलकर भस्म होना श्रेयस्कर है, न कि तुष अर्थात धान की भूसी की भांति जलकर दीर्घ काल तक धुआं देकर सुलगते हुए रहना। इस संसार में अजा यानी बकरी की तरह दूसरों का भोजन बनकर या निरीह गर्दभ के समान भारवाहक बनकर जीना अच्छा नहीं है। जिस मनुष्य के महान और अद्भुत कार्यों की यशोगाथा संसार में नहीं गाई जाती वह न स्त्री कहने योग्य है और न ही पुरुष, वह तो केवल बढ़ी हुई गिनती मात्र है। अपने ज्ञान, तपस्या, पराक्रम अथवा अर्जित की हुई धन संपत्ति से या फिर अन्य किसी विशिष्ट कार्य से जो लोग अन्य मनुष्यों का उपकार करते हैं वे ही मनुष्य कहलाने योग्य हैं। केवल जन्म, यौवन, जरा और मरण के वशीभूत होकर जीना मनुष्यत्व की पहचान नहीं है। इसलिए उठो, जो उत्साह से शून्य हैं, जिनमें पराक्रम नहीं है, जो दूसरों की उन्नति देखकर अमर्ष से भर नहीं उठते, जो तुलना करके यह नहीं सोचते कि मेरी उपलब्धियां इससे अधिक होनी चाहिए, जिसके शत्रु सदा आनंदित रहते हों, ऐसे मनुष्य को जन्म देने वाली माता का स्त्रीत्व सार्थक नहीं हो सकता। वह सीमंतिनी कहला

0: जाने योग्य नहीं है। इसलिए उठ खड़े हो, आलस्य और निद्रा छोड़कर चैतन्य हो जाओ, सांसारिक कर्तव्यों में जुट जाओ, अपने मन को सुदृढ़ कर लो। यह कार्य प्रत्येक दशा में करना ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय करके अनवरत प्रयत्न में जुट जाओ। यही कर्मण्यता है, हार मानकर बैठ रहना ही अकर्मण्यता है।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का सुविचार, विषय था कर्मण्यता और वाचन स्वर सुषमा गुप्ता का। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। और अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

हर मंगल कार्य अपने दैनिक जीवन के कार्यों की शुरुआत यदि गणपति वंदन से करें तो जीवन में सफलता प्राप्त होती है। आइए प्रारंभ करते हैं आज की आराधना का।

प्रभु राम की कथा इतिहास नहीं जीवन की दिशा है, जो हर पीड़ा का समाधान है। आइए राम नाम का स्मरण करें।

माँ की शक्ति की महिमा अनंत है। माँ का आशीर्वाद ही जीवन का सबसे बड़ा संबल है। आइए माँ के चरणों को नमन करें और शक्ति, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें।

जिनकी भक्ति में शक्ति है और नाम में अनंत साहस है। कहते हैं जहाँ श्री राम का नाम है वहाँ जीवन में ऊर्जा, उत्साह और निर्भयता का संचार है। आइए प्रभु श्री राम की भक्ति का आह्वान करें।

ईश्वर सबका मंगल करें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए आराधना संपन्न करने की अनुमति। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ आकाशवाणी लखनऊ से 747 किलोहर्ट्ज़ पर।

ते हैं श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज सुनेंगे भाग 222 में राजा जनक के अपने कुटुंबियों और सभासदों के साथ चित्रकूट पधारने का प्रसंग।

राजा जनक के दूत चित्रकूट आ पहुंचे हैं। वशिष्ठ जी ने उनसे राजा जनक का कुशल क्षेम पूछा तो दूत आदर तथा संकोच से नतमस्तक होकर बोले, आपका आदर के साथ पूछना ही कुशल हो गया मुनिवर, नहीं तो कुशल क्षेम तो अयोध्यापति के साथ ही लुप्त हो गए थे। उनके जाने के साथ ही सारा जगत, विशेष रूप से कोशल और मिथिला अनाथ हो गए थे। भरत को राज्य और श्री राम को वनवास, ये सुनकर मिथिलापति का दुख और भी अधिक हो गया। जनक जी ने भरत जी की वास्तविकता जानने के लिए अपने गुप्तचर अयोध्या भेजे। लौटकर गुप्तचरों ने अपनी बुद्धि के अनुरूप स्थिति का वर्णन किया, जिसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच तथा स्नेहवश व्याकुल हो गए हैं। और अब जनक जी अपने सभासद तथा कुटुंबियों समेत चित्रकूट पधार रहे हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थे ए हरिहरन। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत संयोजक सतीश भाटिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून इन किया है 747 किलोहर्ट्ज़ और सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ वैशाली के साथ। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: श्रोताओं 6:55
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ह्यः गुजरातस्य सानन्दक्षेत्रे सीजी सेमी संस्थायाः अत्याधुनिकस्य ओसेट सेमीकण्डक्टर संयन्त्रस्य उद्घाटनं कृतम्। अत्रावसरे जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् अयं विकासः भारतस्य प्रगाढ इलेक्ट्रॉनिक्स क्रान्तेः आगामी चरणमस्ति, येन देशः पूर्वमेव विश्वस्य द्वितीयः बृहत्तमः दूरभाषनिर्मातृत्वेन समेधितः। सः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् सानन्दक्षेत्रं वैश्विक सेमीकण्डक्टर केन्द्रत्वेन समेधिष्यते।
3: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
2: तेन गदितं यत् सानन्दं प्रतिवर्षं 20 कोटि चिप्स निर्माणार्थं सज्जमस्ति। तेन 500 कोटि परिमितस्य लक्ष्य निर्धारणार्थं शुभाशयाः अपि प्रकटिताः। अत्रावसरे केन्द्रीय मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन घोषितं यत् 26,000-2,000 यावत् भारते 5 सेमीकण्डक्टर संयन्त्राणि पूर्णतः क्रियाशीलानि भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्यापि उद्घाटनं कृतम्। तदनन्तरं सः बालोत्तरा मण्डलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रान्तरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीय चरणस्य शिलान्यासोऽपि कृतः। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण 21तमायाः शताब्द्याः महत्तमः ऊर्जा संकटः समुत्पन्नः, किन्तु भारतेन समयोचित निर्णयैः कूटनीत्या च एषः कालः सम्मुखीकृतः।
3: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
2: श्री मोदी राजस्थान सर्वकारस्य विभिन्न विभागेषु नवनियुक्तेभ्यः 45,000 युवभ्यः नियुक्ति पत्राणि अपि प्रायच्छत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः सानन्दक्षेत्रे नूतन सीजी सेमी ओसेट इत्यस्य उद्घाटनं प्राविधिक आत्मनिर्भरतायां भारत

0: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। समय हुआ है सुबह के 7 बजे का और ये समय होता है स्वास्थ्य चर्चा सेगमेंट का। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं के लिए नीना सोनकर लेकर आती हैं सेहत और स्वाद से भरपूर और आपकी स्वास्थ्य संबंधी जो भी लाभदायक जानकारियां हैं उससे संबंधित जानकारियां। तो आज की स्वास्थ्य चर्चा में क्या महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हैं नीना सोनकर, आइए सुन लेते हैं आज का कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सब्जी की जो हमारी रसोई में तो अक्सर दिखती है लेकिन जिसके बारे में हम ज्यादा जानने की कोशिश शायद ही करते हैं। एक ऐसी सब्जी जो बच्चों को पसंद भी आती है और बुजुर्गों के लिए भी लाभकारी मानी जाती है, हम बात कर रहे हैं भिंडी की। भिंडी केवल स्वाद में ही नहीं बल्कि सेहत के लिहाज से भी एक मूल्य सब्जी है। ये सब्जी साल भर बाजार में उपलब्ध रहती है, जल्दी पक जाती है और इसमें मौजूद पोषक तत्व इसे बेहद खास बनाते हैं। भिंडी को आयुर्वेद में शीतल, पौष्टिक और सुपाच्य माना गया है, यानी ये शरीर को ठंडक देती है, जल्दी पचती है और आंतों के लिए बेहद फायदेमंद होती है। भिंडी में रेशा यानी फाइबर बहुत मात्रा में पाया जाता है जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। जो लोग अक्सर कब्ज, गैस या अपच जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं उनके लिए भिंडी का नियमित सेवन लाभकारी हो सकता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी, ए और के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे जरूरी विटामिन्स भी मौजूद हैं। साथ ही मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन और कैल्शियम जैसे खनिज भी इसमें पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। श्रोताओं शायद आपने देखा होगा कि जब भिंडी काटते हैं तो उसमें एक हल्की सी चिपचिपाहट होती है और बहुत से लोग इसी वजह से भिंडी से थोड़ा दूर ही रहते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यही चिपचिपाहट, यही नेचुरल जेल हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये घुलनशील फाइबर का ही रूप है जो हमारी आंतों को साफ करता है, पाचन क्रिया को सुचारू करता है और ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में भी सहायक होता है। कुछ लोग भिंडी को रात भर पानी में भिगो कर रखते हैं और सुबह उसका पानी पीते हैं। ये घरेलू नुस्खा विशेष रूप से डायबिटीज के रोगियों में जाना पहचाना है। हालांकि इसे किसी औषधि का विकल्प नहीं माना जा सकता है, लेकिन यदि किसी की जीवन शैली में इसे सही संतुलन के साथ शामिल किया जाए तो ये जरूर मदद कर सकता है। भिंडी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती प्रदान करते हैं। विटामिन सी त्वचा के लिए लाभकारी है, वहीं विटामिन ए आंखों की रोशनी बना

0: बनाए रखने में सहायक होता है। ये सब्जी दिल की सेहत के लिए भी अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को संतुलित करने में मदद करती है। अगर बात करें महिलाओं के स्वास्थ्य की तो भिंडी में पाया जाने वाला फोलेट गर्भवती महिलाओं के लिए उपयोगी माना जाता है। ये गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के विकास में सहायक होता है। साथ ही श्रोताओं, ये मासिक धर्म से जुड़ी कुछ समस्याओं में भी राहत देने में मदद करता है। यही नहीं, भिंडी ऊर्जा देने वाली सब्जी है। ये शरीर में थकान को दूर करती है और रोजमर्रा के कामों के लिए स्फूर्ति बनाए रखती है। श्रोताओं, भिंडी स्वाद में भी बहुत लचीली होती है। आप इसे सूखी सब्जी की तरह बना सकते हैं, भरवा भिंडी बना सकते हैं या टमाटर प्याज के साथ हल्की तरी में पकाकर बच्चों की पसंदीदा सब्जी भी बना सकते हैं। अगर आप इसे ज्यादा कुरकुरा पसंद करते हैं तो हल्का सा भूनकर भी खा सकते हैं। बस ध्यान रहे कि इसे ज्यादा तेल या मसाले में ना पकाएं, वरना इसके पोषक तत्व कम हो सकते हैं। कुछ घरों में भिंडी का उपयोग बालों के लिए भी किया जाता है। इसे उबालकर इसका गाढ़ा रस बालों में लगाने से बाल मुलायम और चमकदार बनते हैं। ये एक प्राकृतिक कंडीशनर की तरह काम करता है। ये बालों की रूसी कम करने और सिर की खुजली में भी राहत दे सकता है। गले में खराश हो या फिर सूखी खांसी तो भिंडी का हल्का गर्म पानी भी राहत पहुंचा सकता है, ऐसा आयुर्वेद में माना जाता है। भिंडी की एक और खूबी ये है कि ये आमदनी और पोषण दोनों में ग्रामीण भारत के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये किसान भाइयों के लिए एक अच्छी नकदी फसल है और इसकी खेती भी अपेक्षाकृत सरल मानी जाती है। ये बात बताती है कि भिंडी न केवल हमारे शरीर को बल्कि हमारे ग्रामीण और खेतों को भी संबल देती है। तो श्रोताओं, अगली बार जब आप सब्जी मंडी जाएं तो भिंडी को नजरअंदाज ना करें। ये छोटी सी दिखने वाली सब्जी न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि आपके स्वास्थ्य के कई पहलुओं को छूती है। पाचन, त्वचा, हड्डियां, आंखें और ऊर्जा, हर जगह इसकी भूमिका है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हमारे अपने देश की, हमारी अपनी जमीन की, हमारी अपनी मिट्टी की उपज है। सस्ती, सुलभ और बेहद पोषक। आज की स्वास्थ्य चर्चा में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसे ही चिर परिचित लेकिन गुणकारी चीज के साथ जो हमारी रसोई से भी जुड़ी हुई हो और हमारे स्वास्थ्य से भी। तब तक भिंडी को थाली में शामिल कीजिए, उसके स्वाद को अपनाएं और उसके पोषण को समझें, क्योंकि जो दिखने में सीधी होती है वही अक्सर भीतर से सबसे सशक्त होती है। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज की स्वास्थ्य चर्चा में भिंडी स्वाद भी सेहत भी विषय पर। जानकारी दे रही थी नीना सोनकर। और अब आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आज शाम 7:31 पर आप सुनेंगे आईसीसी विमेंस टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जाने वाले टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। आंखों देखा हाल आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मैच की समाप्ति तक। सुबह 9:15 पर सामयिक चर्चा में सुनिएगा विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के लागू होने के बाद ग्रामीण विकास, कृषि और स्थानीय अर्थव्यवस्था में होने वाले बदलाव पर अर्थशास्त्री एपी तिवारी से शैलेंद्र शर्मा की बातचीत। उर्दू कार्यक्रम के तहत सुबह 9:30 पर समाप्त फरमाइएगा डॉक्टर शरीफुद्दीन से मकाला अमीर मीनाई की गजल या शायरी। इसके अलावा कलामी शायर में आज के शायर होंगे सलाम फैजी। इसके साथ ही सुनिएगा मोहम्मद फर्रुख जमाल की तहरीर ड्रामा नवीसी का एक अहम शाहकार सैयद असगर वजाहत। पेशकश आकाशवाणी के गोरखपुर मरकज की होगी। दिन में 3:30 पर सुनना ना भूलें फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। आज इस कार्यक्रम में विषय होगा आंखों की सुरक्षा और देखभाल। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर संजय कुमार बिश्नोई, वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ। संचालन सुभाष खन्ना का होगा। दिन में 3:15 पर आप सुनेंगे डॉक्टर अनुज चौबे की संस्कृत वार्ता भारतीय ज्ञान परंपरायाम स्वप्न विज्ञानम। प्रस्तुतकर्ता होंगी डॉक्टर शिवा राकेश। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर

आप सुनेंगे मीता पंडित का राग ललित में गायन। दोपहर 12 बजे बालमंच कार्यक्रम में हमारे नन्हे साथी सुनेंगे ममता उपाध्याय की लिखी संगीत नाटिका हरे हरियाली चहुदिश खुशहाली। संगीत संयोजन अमिताभ श्रीवास्तव का है। आज इतवार है, मैं दिन में 1:15 पर सुनना ना भूलें साक्षिमा पांडे की लिखी लघु नाटिका एक सवाल तुम भी हो। संपादन एवं प्रस्तुति सहयोग रवि तिवारी, निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता होंगे अतिश कुमार श्रीवास्तव। दिन में 1:45 पर अक्षवट कार्यक्रम में सुनिएगा वन महोत्सव सप्ताह के अवसर पर अतुल दुबे से की गई भेंट वार्ता, घर की हरियाली जीवन की खुशहाली। भेंट करता होंगी डॉक्टर अलका चौधरी। खरीफ में समन्वित नाशजीवी प्रबंधन, ये विषय है डॉक्टर लल्लन सिंह यादव से की गई भेंट वार्ता का। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:00

लल्लन सिंह यादव से की गई भेंटवार्ता का विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर भेंटकर्ता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। शाम 5:45 पर नई उड़ान कार्यक्रम में ओबी आधारित जानकारी का विषय होगा नई सुबह के लोग बदलाव के बाजीगर युवा जिन्होंने तस्वीर बदल दी। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम में लोक भाषा कवि गोष्ठी का प्रसारण किया जाएगा। प्रतिभागी कवि होंगे मनोज कुमार अवस्थी सुखदेव, प्रदीप सारंग, संचालन डॉक्टर संत शरण तिवारी संत का होगा। शाम 6:50 पर खेती किसानी कार्यक्रम में सफलता की कहानी क्रम में सुनिएगा सब्जी उत्पादन विषय पर राम प्रवेश मौर्य से की गई भेंटवार्ता। भेंटकर्ता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। ये थे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम जिन्हें आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में कार्यक्रम विविधा के साथ।

नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, सुबह का समय है, सूरज की पहली किरण धरती को छू रही है, नदियां बह रही हैं और पंछी चहचहा रहे हैं। सब कुछ सुंदर, शांत, जीवन से भरा हुआ है। तभी धीरे धीरे एक आवाज सुनाई देती है, भीड़ की आवाज, हॉर्न की आवाज, कारखानों की आवाज, पेड़ों के कटने की आवाज और धरती की एक धीमी थकी हुई पुकार। मैं सबको पाल सकती हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे बचा पाओगे? हमारी धरती जो आज हम इंसानों के बोझ तले कराह रही है, तो आज की विविधा में बात ऐसे अभिशाप की जो चुपचाप बिना शोर मचाए हमारी दुनिया को खोखला कर रहा है। बढ़ती जनसंख्या, बात धरती का अभिशाप बढ़ती जनसंख्या की। जनसंख्या यानी लोगों की संख्या। जब ये संख्या सीमा से आगे बढ़ने लगे तो ये सिर्फ आंकड़ा नहीं रह जाती, ये रोटी, पानी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जंगल, जमीन और भविष्य से जुड़ा सवाल बन जाती है। एक समय था दोस्तों, जब धरती पर इंसान कम थे, जंगल अधिक थे, नदियां साफ स्वच्छ थीं, हवा हल्की थी, खेतों में हरियाली थी, इंसान प्रकृति के साथ रहता था। लेकिन समय बदला, विज्ञान के क्षेत्र में आविष्कार हुए, चिकित्सा बेहतर हुई, जीवन लंबा हुआ, मृत्यु दर कम हुई और देखते ही देखते दुनिया की आबादी अरबों में पहुंच गई। आज दुनिया की जनसंख्या लगभग 8 अरब से आगे निकल चुकी है और भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है। ये हमारी शक्ति है, लेकिन अगर सही दिशा ना मिले तो यही शक्ति बोझ बन सकती है। सोचिए, एक घर में 5 लोग हों तो खाना, जगह और खर्च संभल जाता है, लेकिन उसी घर में अचानक 50 लोग रहने लगे तो क्या होगा? रसोई छोटी पड़ जाएगी, पानी कम पड़ जाएगा, कमरे कम पड़ जाएंगे, शोर बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा और प्रेम होते हुए भी जीवन कठिन हो जाएगा। ठीक यही हाल धरती का भी है। बढ़ती जनसंख्या का असर पड़ता है रोटी पर। खेती के लिए जमीन तो सीमित है, नदियां सीमित हैं, लेकिन खाने वाले लगातार बढ़ रहे हैं। नतीजा, दुनिया में आज भी करोड़ों लोग भूखे पेट सोते हैं। बढ़ती आबादी के साथ पानी की मांग बढ़ती है। हम कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन नदी हर घर के हिसाब से तो नहीं बढ़ती। भूजल नीचे जाता है, तालाब सूखते हैं और शहरों में लोग पानी के टैंकरों के पीछे भागते दिखाई देते हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारणों में से एक है प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। ज्यादा घर, ज्यादा सड़कें, ज्यादा वाहन, ज्यादा कचरा, ज्यादा प्रदूषण। कहने का मतलब दोस्तों, चंद स्वार्थों के

लिए आज हम जंगल काटे जा रहे हैं। जानवरों और पंछियों के बसेरे उजड़ रहे हैं, प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है और तो और धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। जनसंख्या अधिक होने के कारण बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ी है, नौकरियां सीमित हैं और प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। पढ़े लिखे युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं। यही है धरती का अभिशाप जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी को जकड़ता जा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो स्कूलों में भीड़, अस्पतालों में लंबी लाइनें, डॉक्टर कम मरीज ज्यादा, एक एक सीट के लिए संघर्ष, एक एक सुविधा के लिए इंतजार, गरीब आदमी के लिए ये इंतजार कभी कभी जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी बन जाता है। जानते हैं धरती हर साल जितने संसाधन बना पाती है ना, हम इंसान उससे कहीं ज्यादा इस्तेमाल कर चुके हैं। वैज्ञानिक इसे कहते हैं अर्थ ओवरशूट डे, यानी वो दिन जब हम पूरे साल के लिए धरती के प्राकृतिक बजट को खर्च कर चुके होते हैं और बाकी महीने हम धरती से उधार लेकर जीते हैं। सवाल ये कि समाधान क्या है? समाधान है शिक्षा, खासकर बेटियों की शिक्षा। जहाँ बेटियाँ पढ़ती हैं तो परिवार जागता है। वे स्वास्थ्य, अधिकार, सही उम्र में विवाह और छोटे खुशहाल परिवार का महत्व समझती हैं। दूसरा, स्वास्थ्य सुविधाएं और परिवार नियोजन की सही जानकारी। बढ़ती जनसंख्या को केवल डर से नहीं, समझदारी से देखना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा। बहुत जरूरी है रोजगार और कौशल विकास। भारत की युवा आबादी हमारी सबसे बड़ी ताकत है, उन्हें सही प्रशिक्षण और अवसर मिले। साथ ही महत्वपूर्ण है दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पानी बचाना, पेड़ लगाना, प्लास्टिक कम उपयोग करना और ऊर्जा बचाना जरूरी है। जिम्मेदार नागरिक बने, सरकार के साथ समाज को भी आगे आना होगा। याद रहे दोस्तों, धरती हमारी माँ है, मशीन नहीं। उसकी भी सीमा है, बढ़ती जनसंख्या अभिशाप बन सकती है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और जिम्मेदारी से यही जनसंख्या वरदान भी बन सकती है। आइए ऐसा भविष्य बनाएं जहां हर बच्चा भूख नहीं अवसर पाए और हर परिवार छोटा हो लेकिन सपने बड़े हों। तो आज की विविधा में बस इतना ही, दीजिए अनुमति हमें। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:20 होने वाले हैं। एक छोटे से अंतराल के बाद आप सुनेंगे हमारे केंद्र से प्रादेशिक समाचार।
1: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो।

0: और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दो दिवसीय दौरे पर कल पहुंचे लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ की बैठक। प्रदेश सरकार ने राजस्व से जुड़े सार्वजनिक भूमि के मामलों के लिए लागू की नई व्यवस्था। लखनऊ और प्रयागराज में गठित 3 सदस्यीय विशेष पीठ करेगी वादों की सुनवाई। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 कल हुई संपन्न। 3 दिवसीय परीक्षा में शामिल हुए 88% अभ्यर्थी। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में लखनऊ के जन भवन में आयोजित हुई मैंगो बायर सेलर मीट। आम निर्यातकों और उत्पादकों के बीच हुए अनुबंध। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन दो दिवसीय दौरे पर कल पहली बार लखनऊ पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी मुख्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, भाजपा सांसदों और विधायकों के साथ भी बैठक की। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने लखनऊ एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान भी उपस्थित रहे। इसके बाद श्री नवीन ने एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश कार्यालय तक रोड शो किया। इस दौरान जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने स्वागत के लिए प्रदेशवासियों और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया।
3: उत्तर प्रदेश की धरती लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं। लखनऊ की धरती पे लोगों ने मुझे अभिमान दिया, मैं भारतीय जनता पार्टी और पूरे लखनऊ के लोगों का अभिनंदन कर धन्यवाद करता
2: हूं। श्री नवीन कल अपने लखनऊ प्रवास के दौरान हनुमान सेतु मंदिर गए। वहां उन्होंने हनुमान जी के दरबार में शीश नवाकर देश और प्रदेशवासियों के सुख शांति और समृद्धि की कामना की। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने दो दिवसीय लखनऊ दौरे में आज विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने सार्वजनिक महत्व की भूमि से जुड़े मामलों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत अब आरक्षित श्रेणी की भूमि, शासकीय भूमि, ग्राम सभा, नजूल, निष्क्रांत संपत्ति तथा शत्रु संपत्ति से संबंधित सभी वादों की सुनवाई 3 सदस्यीय विशेष पीठ द्वारा की जाएगी। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। एक रिपोर्ट।
4: राजस्व परिषद के अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है। नई व्यवस्था के अनुसार इन मामलों पर विशेष रूप से गठित 3 सदस्यीय पीठ सामूहिक रूप से विचार करेगी। परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि राजस्व परिषद ने लखनऊ और प्रयागराज दोनों न्यायालयों के लिए अलग अलग 3 सदस्यीय विशेष पीठों का गठन किया है। इन विशेष पीठों द्वारा प्रत्येक बुधवार को नियमित रूप से इन मामलों की सुनवाई की जाएगी। वहीं एक अन्य पहल के तहत राजस्व परिषद के न्यायालयों द्वारा किसी वाद में अभिलेख तलब किए जाने पर सामान्यतः मूल अभिलेखों के स्थान पर संबंधित अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रमाणित पूर्ण स्कैन प्रति के आधार पर ही न्यायिक कार्यवाही की जाएगी। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भाजपा भारत अपने दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयासों से

0: 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट से सफलतापूर्वक उबरने में कामयाब रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने हर स्तर पर समय रहते निर्णय के लिए उभरते संकट का सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति तैयार की और देश के संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कूटनीति और रणनीतिक उपायों से देश ने इस संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: पश्चिमी एशिया में युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा, हर देश त्रस्त है। इस युद्ध ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया। बड़े बड़े देश आज ईंधन की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन साथियों 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा कल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। लिखित परीक्षा 2 व 3 जुलाई को दो दो पाली और कल एक पाली में आयोजित हुई। आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 88.77% अभ्यर्थियों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा के दौरान आयोग में स्थापित AI इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की सघन निगरानी की गई। यह परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा के दौरान 44 फर्जी अभ्यर्थी भी पकड़े गए। परीक्षा के सफल संचालन के लिए आयोग ने जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश पुलिस और SDF के प्रति आभार व्यक्त किया है। 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 के दूसरे दिन कल लखनऊ के जनभवन में मैंगो बायर सेलर मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह सम्मिलित हुए। इस अवसर पर आम निर्यातकों और आम उत्पादकों के बीच अनुबंध भी हुए। महोत्सव में उद्यान मंत्री ने कहा कि योगी आदित्यनाथ में प्रदेश सरकार के नेतृत्व में किसानों की समृद्धि के लिए हर स्तर पर काम हो रहा है।
2: उद्यान विभाग के माध्यम से हम राज्य के किसानों की समृद्धि का जो सपना देखे हैं वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम साकार कर रहे हैं। दुनिया के बाजारों में हमारी औद्योगिक फसलें आज पहुंच गई हैं और जब से हमारे यहाँ जेवर एयरपोर्ट बनके तैयार हो गए हमारे राज्य के आम के किसानों का मनोबल बढ़ेगा, उनकी समृद्धि बढ़ेगी, ऐसा प्रयास हमारी सरकार का होगा।
0: महोत्सव के दूसरे दिन आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विज्ञान विभाग के अधिकारियों, कृषि वैज्ञानिकों और प्रदेश भर से आए प्रगतिशील आम उत्पादक किसानों के बीच एक तकनीकी सत्र का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक आयोजित करने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कल अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। 28 जून 2026 को जारी एक आधिकारिक सूचना के अनुसार यह बैठक ट्रस्ट के अध्यक्ष की स्वीकृति से कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी द्वारा बुलाई गई है। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा द्वारा दिए गए त्याग पत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। बैठक में भविष्य में राम मंदिर के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्था पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।

प्रदेश के कई जिलों में उमस भरी गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते जनजीवन प्रभावित है। इस बीच लखनऊ सहित राज्य के कुछ जिलों में हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत भी मिली है। कल कानपुर और टुंडला में हुई भारी बारिश से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान जताया है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर कल पहुंचे लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ की बैठक। प्रदेश सरकार ने राजस्व से जुड़े सार्वजनिक भूमि के मामलों के लिए लागू की नई व्यवस्था। लखनऊ और प्रयागराज में गठित 3 सदस्यीय विशेष पीठ करेगी वादों की सुनवाई। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTAT 2026 कल हुई संपन्न। 3 दिवसीय परीक्षा में शामिल हुए 88% अभ्यर्थी। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में लखनऊ के जनभवन में आयोजित हुई मैंगो बायर सेलर मीट। आम निर्यातकों और उत्पादकों के बीच हुए अनुबंध। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा।

0: लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: स्वागत है एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आप सुन रहे हैं अपने रेडियो सेट पर और ट्यून इन किया है 747 किलोहर्ट्ज़। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी। और अब समय है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। आज इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं मीता पंडित का राग ललित में ख्याल गायन।

0: अभी आप सुन रहे थे मीता पंडित का राग ललित में ख्याल गायन। हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ, जिसे संपन्न करने का वक्त हो चला है। तो दीजिए अनुमति वैशाली को कार्यक्रम नमस्ते लखनऊ से। नमस्कार आप सभी को श्रोताओं, बने रहिए 747 किलो हर्ट्स पर और सुनते रहिए आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। ये आकाशवाणी लखनऊ है, हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
2: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
3: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
1: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
2: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है।

0: और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
1: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए। वो दूसरी बात है, 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
2: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
3: मातृशक्ति ने

वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहे।

0: छह दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटे की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिक्स ने कहा है कि लगातार दो भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने होर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमरीका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों, तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे नेस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान। और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम

आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 8:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम अंकुर।

0: नमस्कार बाल साथियों, कहिए कैसे हैं आप। और यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। और आज है रविवार और आप बने रहिए आकाशवाणी बरेली से अंकुर कार्यक्रम के साथ। और हमारे साथ है शीशपाल। नमस्कार शीशपाल, कैसे हैं आप।
1: नमस्ते नाजमा जी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसी हैं। बड़ी चहक रही हैं आज तो।
0: बिल्कुल, आज रविवार है, बच्चों का कार्यक्रम है और चहकेंगे नहीं तो बच्चों के बागों का जो ये बाग है उसमें बाहर कैसे आएगी, है ना।
1: क्या बात है।
0: और बच्चों आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना बच्चों, वो है विनम्रता
1: जी,
0: सबसे बड़ा गुण। और ये गुण याद रखिए बाल दोस्तों, विद्या हमें सिखाती है विनम्रता। और बच्चों विनम्रता है हमें जो है हमें सम्मान दिलाती है
1: जी।
0: सम्मान से विश्वास मिलता है ना शीशा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और विश्वास से ही सफलता का मार्ग खुलता है। प्रिय बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत विद्वान, सफल और प्रसिद्ध होने के बाद भी इतने सरल और विनम्र क्यों होते हैं। इसका उत्तर है विनम्रता। बच्चों यही वो गुण है जो इंसान को महान बनाता है।
1: बच्चों आपने आम और अमरूद के फलों से लदे पेड़ तो देखे ही होंगे, वो हमेशा झुके रहते हैं, जबकि जिस पेड़ पर फल नहीं होते वो अकड़कर खड़ा रहता है।
0: बहुत अच्छी बात बताई आपने ये
1: जी। तो बच्चों इस बात से हमें क्या सीख मिलती है। हमें ये सीख मिलती है कि जिसके पास ज्ञान और गुण होते हैं वो विनम्र होते हैं, जो झुकना सीख जाता है वही ऊंचा उठ जाता है।
0: तो प्यारे बाल साथियों, विनम्रता का अर्थ ही यही है, नम्रता, शिष्टाचार, दूसरों का सम्मान करना और बिना गुरूर यानी के घमंड के सबके साथ अच्छे व्यवहार से रहना।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने,
0: विनम्रता है ना शिष्यपाल
1: जी।
0: और हमारे देश के देखिए अनेक महापुरुषों ने विनम्रता का महत्व अपने जीवन से सिद्ध किया है। जैसे महात्मा गांधी जी हो गए, इतने महान नेता होने के बावजूद स्वयं को जनता का सेवक मानते थे, है ना। और APJ अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति बने। पता है बच्चों, उनकी सादगी और विनम्रता ने ही उन्हें इतने ऊंचे मकाम पर पहुंचाया। इसी तरह देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी का सरल और विनम्र स्वभाव आप भी जो है लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है आपके।
1: बिल्कुल,
0: लिए
1: बिल्कुल, आज भी लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं
0: जी। बिल्कुल,
1: इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य के व्यक्तित्व की सबसे सुंदर पहचान उसका रूप, धन या पद नहीं बल्कि उसका विनम्र स्वभाव होता है। ये वही गुण है जो इंसान को सबके दिलों में सम्मान दिलाता है।
0: बच्चों और छात्र जीवन में इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। जो विद्यार्थी विद्यालय में अपने गुरुजनों का सम्मान करते हैं और अपने मित्रों के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं, छोटे बड़े सभी का आदर करते हैं और अपनी गलती होने पर जैसे कहते हैं मुझे क्षमा कीजिए, ये कहना सभी तो विनम्रता है। और इसके छोटे छोटे रूप हैं यही, और यही आदतें आगे चलकर आपके व्यक्तित्व को महान बनाती हैं। बच्चों याद रखिए, मीठे बोल, सरल व्यवहार, यही है जीवन का सच्चा श्रृंगार।
1: क्या बात है।
0: विनम्र बने और जो इंसान उसका होता सदा सम्मान
1: जी,
0: है ना।
1: बहुत सुंदर बात कही है आपने नाजमा जी।
0: और गाना सुनवा दिया जाए बच्चों को तो कैसा रहेगा।
1: बहुत अच्छा रहेगा।

0: मैंने कहा फूलों से, और वो खिलखिलाकर हंस दिए। वाकई में हम ये देख रहे थे कि आप भी कुछ हंस रहे थे
1: जी
0: शीशपाल
1: बिल्कुल, हंसना चाहिए,
0: भैया।
1: हंसना जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है,
0: जी
1: सभी को खूब खिलखिला के हंसना चाहिए, जोर जोर से
0: बिल्कुल।
1: हंसना चाहिए।
0: और शीशपाल भैया, अगर हम हिंदी की तरफ चलें थोड़ा सा, तो ये बताइए, आपको इतने सारे विषय होते थे आपके क्लास में, तो
1: जी
0: कौन सा सबसे अच्छा
1: सबसे
0: विषय
1: अच्छा
0: लगता?
1: तो मुझे हिंदी ही अच्छा लगता था, क्योंकि इसमें बहुत सारी कहानियां कविताएं भी पढ़ने को मिली,
0: अच्छा
1: जिनमें मतलब मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मुझे बहुत पसंद है। आज भी मुझे मौका मिलता है तो मैं हिंदी की कहानियां बहुत पढ़ता हूँ और कविताएं भी साथ ही, क्योंकि मुझे बहुत
0: और
1: अच्छी लगती हैं ये, और
0: जी
1: नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं और

0: मेरी हॉबीज में से है ये।
1: अरे वाह,
0: हाँ
1: तो शीशपाल भैया, अगर हम अपनी बात करें तो हमें विलोम शब्द और मुहावरे बड़े पसंद थे।
0: अच्छा
1: हाँ, और ऐसे रट लिया करते थे हम कि बस पूछिए मत, अगर एग्जाम में आया तो सबसे पहले वही करने बैठ
0: हाँ
1: जाते
0: मुहावरे की एक अलग ही बात है दीदी,
1: थे।
0: रहिए
1: जी
0: कि उसमें बात कुछ कह के और मतलब गागर में सागर होता है। आप
1: हाँ,
0: मुहावरे का प्रयोग अगर अपनी बातचीत में शामिल करते हैं तो एक अलग ही उसका प्रभाव
1: बहुत
0: पड़ता
1: बड़ी
0: है।
1: बातें, बहुत
0: हाँ
1: ज्यादा बातें हम दो
0: बहुत कम
1: शब्दों में
0: शब्दों
1: कह
0: में।
1: देते हैं।
0: हाँ
1: तो भाई हिंदी की बात चलिए, तो चलिए हिंदी की तरफ अपना रुख करते
0: जी
1: हैं और ये कविता सुनते हैं कि अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, सरस ताम्रस गर्व विद्या पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। जी हाँ बाल साथियों, हम बात कर रहे हैं आधुनिक हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार और निबंधकार जयशंकर प्रसाद जी के बारे में।
0: जी
1: बच्चों, उन्हें हिंदी साहित्य के छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से गिना जाता है। शीशपाल,
0: जी नाजमा जी, उन्होंने अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को नई नई ऊंचाइयां प्रदान की। हिंदी के इस महान कवि का जन्म 30 जनवरी 1889 को काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था और अपने बचपन से ही बड़ी कठिनाइयों का सामना किया, आगे चलकर महान कवि बने।
1: और बच्चों आपको बताएं आगे कि वो आधुनिक हिंदी साहित्य के युग निर्माता थे। उनकी रचनाएं आज भी साहित्य प्रेमियों को जो है बहुत भी उत्साहित करती हैं
0: जी
1: और विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए तो प्रेरणा का स्रोत है।
0: जी
1: विशेष रूप से कामायनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी जैसी कृतियां हिंदी साहित्य की अमूल धरोहर हैं।
0: जी
1: उनका साहित्य हमें राष्ट्र प्रेम, मानवीय मूल्यों, संस्कृति और जीवन दर्शन का संदेश देता है।
0: जी
1: नन्हे मुन्ने बाल साथियों, और अब हम बात कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन और हमारी जिम्मेदारी पर,
0: जी ये
1: क्योंकि
0: बहुत ही
1: जी
0: महत्वपूर्ण विषय है नाजमा जी।
1: जी कहते हैं ना कि वो धरती हमारी शान है, इसकी रक्षा करना हमारा मान है, पेड़ लगाएं, जल बचाएं, आइए मिलकर सुंदर कल बनाएं। बच्चों आजकल हमारे आपके सबके साथ हो क्या रहा है शीशफल,
0: जी
1: कि गर्मी इतनी ज्यादा पड़
0: अरे
1: रही
0: बहुत गर्मी हो रही
1: है।
0: थी, आज भी जब आ रहे थे बिल्कुल
1: जी
0: नहा के निकले पानी नहीं सूख पाए लेकिन पसीना आना शुरू हो गया।
1: पसीना रुक ही नहीं
0: हाँ
1: रहा और पसीना पोंछते हुए वहां पर ये बोल आ ही जा रहे हैं, हे ईश्वर कितनी गर्मी पड़ेगी, इतनी तो
0: जी
1: गर्मी कभी नहीं पड़ी। घर से बाहर निकलकर खड़े हो जाओ तो ठंडी हवा के झोंकों की जगह गर्म हवा महसूस हो
0: हाँ
1: रही
0: बिल्कुल ऐसा लग रहा है
1: है।
0: जैसे भट्टी के सामने खड़े हुए हैं, ऐसी गर्म हवाएं चल रही हैं। दोपहर में
1: बिल्कुल,
0: तो निकलना मुश्किल है बाहर।
1: अब बारिश के मौसम को ही ले लीजिए, कभी
0: जी
1: बारिश बहुत ज्यादा होती है तो कभी ओले पड़ने लगते हैं, कहीं पर बहुत ज्यादा होती है तो कहीं पर बहुत कम
0: जी
1: होती है,
0: जी जी
1: ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं। तो इन सब का एक बड़ा कारण ये है शीशपाल भैया कि जलवायु परिवर्तन।
0: बिल्कुल आपने बहुत अच्छा विषय आज लिया है जलवायु परिवर्तन का नाजमा जी। बच्चों जलवायु परिवर्तन का प्रभाव केवल मनुष्यों पर ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों पेड़ पौधों और समुद्री जीवों पर भी पड़ रहा है। कई जीव जंतुओं का प्राकृतिक आवास भी नष्ट हो रहा है, खेती प्रभावित हो रही है जिससे खाद्यान्न उत्पादन पर भी असर पड़ रहा है। बढ़ती गर्मी के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बहुत तेजी से
1: अब
0: बढ़
1: देख
0: रही हैं।
1: बिल्कुल शीशपाल भैया, बहुत अच्छी बात बताइए आपने कि देखिए जैसी जैसी गर्मी पड़ रही है तो सर में दर्द, लोगों को चक्कर आना,
0: बिल्कुल
1: बुखार आना, कितनी
0: जी
1: सारी समस्याएं बढ़ रही हैं। बाल साथियों समस्याएं हैं तो लेकिन उसका सॉल्यूशन भी है।
0: जरूर कि हर समस्या का कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर
1: हाँ
0: होता है।
1: बच्चों, यदि हम सब मिलकर प्रयास करें तो इस चुनौती का सामना किया जा सकता है।
0: जी
1: बच्चों की तो भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। शीशपाल भैया,
0: बिल्कुल
1: हम कुछ आसान कदम उठाकर बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, जैसे अपने घर में या आसपास पेड़ लगाना शुरू करें, बच्चों के साथ बड़े भी अपना सहयोग दें,
0: जी
1: घर से कुछ दूरी पर जो जगहें खाली हैं वहां पर भी पेड़ लगाएं और बड़े होने तक उसकी देखभाल करें,
0: बिल्कुल
1: पानी की एक एक बूंद
0: हाँ।
1: का
0: और अभी
1: महत्व समझें।
0: देखिए नाजमा जी, अभी
1: जी
0: हम वन महोत्सव भी मना रहे हैं, मतलब
1: बिल्कुल
0: ये मौका भी है दस्तूर भी है ना,
1: सही
0: तो इसमें जरूर पेड़ पौधे लगाएं। अभी आकाशवाणी की तरफ से भी पौधों का वितरण किया गया था,
1: जी
0: आकाशवाणी ने भी पौधे
1: जी
0: यहाँ लगाए कई जगहों पर और हम लोग भी अपने स्तर पर भी कई बार लगाते रहते हैं, तो बच्चों को भी सीखना चाहिए और पेड़ पेड़ पौधे लगाने चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए।
1: बिल्कुल, और जैसे कि अब बारिश हो रही है और हो तो बहुत अच्छी बात है इसमें, और इसमें जो है आवश्यक पानी बिल्कुल ना बनाए, और देखिए जल संचय भी कर सकते हैं,
0: बहुत जरूरी है। देखिए वाटर लेवल हमारा बहुत नीचे जा रहा है और आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देंगे, हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, पीढ़ी है, उसके लिए हम क्या छोड़कर जाएंगे, तो उसके लिए पानी, ऊर्जा, ये सब चीजों

0: का बचाव करना बहुत जरूरी है। आप इस्तेमाल कीजिए जितना आपकी जरूरत है, सिर्फ उसको वेस्ट ना कीजिए।
1: बिल्कुल, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि वाटर लेवल एकदम नीचे जा
0: हाँ
1: चुका है,
0: जी
1: क्योंकि हमने जहाँ पर हमने समरसेबल वगैरह लगे हुए देखे हैं ना,
0: जी
1: 5 साल पहले जो लगाए थे या 3 साल पहले जो लगाए थे, तो वहाँ का पानी अब जो है गंदा आ रहा है,
0: बिल्कुल,
1: यानी कि वाटर लेवल नीचे जा चुका
0: बहुत
1: है, तो
0: नीचे है
1: और बहुत नीचे जाने के बाद ही शुद्ध पानी
0: जी।
1: मिलेगा।
0: और बहुत से स्थानों पर आप देख रहे हैं पानी की बहुत सारी कमी हो रही
1: जी
0: है, तो ऐसी नौबत हर जगह ना आए या जहां हम लोग रह रहे हैं वैसे ना आए, तो इसके लिए हमको सोचना पड़ेगा और पानी का बचाव, एक एक बूंद हमको
1: ध्यान
0: बचानी
1: रखना।
0: पड़ेगी।
1: जी,
0: हाँ
1: और जैसे और भी बहुत सी बातें हैं, जैसे कि घर में कमरे से निकलते समय बिजली के पंखे हैं, बल्ब हैं, अन्य उपकरण हैं, काम होने के बाद उसे जल्दी से बंद
0: हाँ
1: कर दें,
0: जैसे
1: है
0: ही
1: ना।
0: आपका काम हो जाता है, जैसे बल्ब है, आपने जलाया, आपने अपना काम किया, उसके बाद तुरंत बंद कर दें। और कमरे से बाहर जा रहे हैं, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, तो उसको बाहर जा रहे हैं तो उस समय उसको ऑफ जरूर कर दें।
1: और
0: और साथ
1: बच्चे
0: ही कहीं हम लोग जैसे शॉपिंग करने जाते हैं, कहीं दुकान पे जाते हैं कुछ सामान खरीदने, तो क्या करते हैं हम लोग, एक पॉलिथीन मांग लेते हैं, भैया एक पॉलिथीन देना, इसमें सामान रख के ले जाना। लेकिन हमको ये नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक की थैली की जगह कपड़े या जूट के थैले का उपयोग करें, अपने घर से लेकर
1: हाँ
0: जाएं कपड़े का
1: बिल्कुल,
0: थैला
1: हाँ,
0: और उसमें अपना सामान लेकर आएं,
1: और कचरे
0: क्योंकि
1: को इधर उधर ना
0: हाँ
1: फेंके, उसे
0: जी
1: डस्टबिन में ही डाले,
0: जी
1: जहां संभव हो पैदल चले या फिर साइकिल से जाए।
0: हाँ
1: वैसे आप साइकिल चला लेते
0: मैं
1: हैं?
0: साइकिल चलाता हूँ, मुझे बहुत शौक है साइकिल चलाने
1: अच्छा,
0: का
1: गिरते तो नहीं
0: जी।
1: है?
0: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, एक बचपन में जब सीख रहे थे तो मैं
1: जी
0: कई बार गिरा था, लेकिन उसके
1: अच्छा।
0: बाद फिर नहीं जी।
1: और इसके अलावा हम नन्हे मुन्ने बाल दोस्तों को बता दें कि अपने घर, विद्यालय, गली मोहल्ले को जो है साफ सुथरा रखें। तो ये छोटी छोटी बातें बच्चे और बड़े अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि हम आपको बता दें कि आज बचाएं जल और वन, तभी तो कल होगा सुरक्षित जीवन,
0: बिल्कुल,
1: है
0: आपने
1: ना।
0: बहुत सुंदर बात कही, और साफ सफाई के बारे में जो बात कही वो बच्चों को बहुत सीखने की जरूरत है। छोटी छोटी बातें हम लोग को ध्यान रखनी चाहिए, जैसे अपने नाखून समय पे काटना,
1: हाँ,
0: अपना हाथ
1: शारीरिक
0: धोना
1: व्यायाम। जी
0: भोजन करने से पहले, और नियमित स्नान करना, ब्रश करना, ये चीजें
1: क्योंकि
0: बच्चों को
1: स्कूल खुल
0: बचपन
1: गए
0: से
1: हैं,
0: सिखाना।
1: बच्चे स्कूल जा रहे
0: हाँ
1: हैं,
0: तो ये
1: अपने
0: बहुत
1: जब
0: जरूरी है, क्योंकि
1: स्कूल से
0: इसे
1: आए तब भी हैंड वॉश कीजिएगा,
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: आपकी
0: बिना हैंड वॉश
1: बॉटल
0: किए
1: है
0: खाना
1: ना,
0: ना खाएं।
1: बॉटल है,
0: हाँ
1: उनका बैग है, शूज है, तो ये सब
0: बिल्कुल
1: अपनी जगह पर रखें।
0: हाँ, अपने समय पर उनकी सफाई करें, अपनी बोतल को धोएं, अपने बर्तन, अपने टिफिन बॉक्स को अच्छे से धोएं, और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल स्वस्थ भी रहेंगे।
1: और शीशपाल भैया, अब नन्हे मुन्ने बाल दोस्त फोन पर है, आइए सुनते हैं। हेलो अंकुर। हेलो, कौन नन्हे मुन्नी बाल दोस्त हमसे जुड़ चुकी हैं? अपना नाम बताइए और
2: मेरा नाम रिंशा फातिमा है। मेरी
1: अपने मम्मी पापा का नाम बताइए।
2: मम्मी का नाम शाइस्ता बेग है, मेरे पापा का नाम फरकान बेग है।
1: आहा भाई, क्या बात है। और आज आपका आकाशवाणी में फोन लग चुका है, तो ये बताइए कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं?
2: मेरे पास साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, कंप्यूटर है, और हिंदी है, ग्रामर है।
1: आहा हा भाई, क्या बात है, खूब अच्छे से पढ़ रही हैं सब,
2: जी
1: क्लास वर्क होमवर्क सब कंप्लीट रहता है आपका,
2: जी है।
1: बहुत अच्छी बात है। तो इन सब में सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है आपको?
2: मुझे इन सब में सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगता है साइंस।
1: और साइंस कौन पढ़ाता है आपको?
2: साइंस मुझे सूर्यवंशी मैम पढ़ाती हैं, वो मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, समझाती हैं, जो मुझे समझ में नहीं आता है वो मुझे समझाती हैं बहुत प्यार से, मेरे साथ
1: हाँ,
2: बहुत प्यार से रहती हैं।
1: और ये बताइए आप आगे चलकर क्या बनना चाहती हैं?
2: मैं टीचर बनना चाहती हूँ।
1: ओहो भाई, क्या बात है। देखिए, टीचर जब हमें पढ़ाते हैं और हमारे साथ कितनी मेहनत करते हैं, और उनके पढ़ाने से ही देखिए कितने सारे डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं ना, तो हमें टीचर की रेस्पेक्ट करना चाहिए। नन्हे मुन्ने बाल दोस्तों को क्या सुनाना चाहती हैं?
2: एक कविता सुनाना चाहती हूँ।
1: बिल्कुल सुनाइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: घूम लिए हम खूब बात में, कर लिए दुनिया की चर्चाएं, आओ बैठे झील किनारे, नए ढंग से पाठ पढ़ाए, तिनका तिनका चुनकर लाकर बया घोटला बुनती है।
1: इस कविता से हमें ये सीख मिलती है, जो मेहनत करते हैं वही आगे तक जाते हैं। भाई क्या बात है, आपने जो हमसे मीठी मीठी बातें की हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारी सी, बहुत क्यूट सी आवाज हम तक पहुंच रही है, क्या नाम है आपका? त्रिशिका।
2: यस,
1: आहा, बहुत अच्छा नाम है। आपको कौन कौन सी बुक्स अच्छी लगती हैं?
2: कलर।
1: अच्छा, तो फिर ये बताइए आपका फेवरेट कलर कौन सा है?
2: येलो,
1: येलो। और एप्पल कौन से कलर का होता है?
2: रेड।

0: और बनाना कौन से कलर का होता है?
1: येलो।
0: अच्छा ये बताइए, आपको खाने में क्या अच्छा लगता है?
1: दाल चावल।
0: मिल्क आपको अच्छा लगता है? मिल्क पीने से हम
1: हेल्दी हो जाते हैं।
0: हाँ हेल्दी हो जाते हैं, इसलिए बच्चों को मिल्क पीना चाहिए। कैट देखी है आपने? कैसे बोलती है?
1: म्याओ म्याओ।
0: और डॉगी देखा है? हमें डॉगी को और कैट को नहीं मानना चाहिए ना?
1: नहीं।
0: क्यों नहीं मानना चाहिए? क्योंकि उनको भी दर्द होता है, उनको भी चोट लगती है। बहुत सारे नन्हे मुन्ने बाल दोस्त आपको सुन रहे हैं, उनको क्या सुनाएंगी आप?
1: चिड़िया बारी पोयम
0: सुनाइए।
1: चिड़िया घर पर गया था, देखे वहाँ बालू और बंदर, वन मानु चार मुंडी बनते सब पूजे के अंदर, हाथी पर की मैंने सवारी, रंग की तस्वीर उतारी,
0: बड़ा मजा आया। आपने भी पोयम बड़ी जल्दी जल्दी सुना दी, इसमें भी बड़ा मजा आया। आकाशवाणी को आपने फोन किया और इतनी मीठी मीठी बातें की है, आकाशवाणी को फोन करने के लिए थैंक यू। भाई वाह, क्या कहने हैं। और हम देख रहे हैं, फोन हमारे सामने रखा हुआ है और इसमें हम देख रहे हैं कॉल आ रही है लगातार। हेलो, अंकुर से नन्हे मुन्ने बाल दोस्त बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में हम देखते हैं कौन नन्हे मुन्ने बाल दोस्त हमसे मुखातिब होने जा रहे हैं। हेलो।
2: हेलो।
0: बहुत अच्छी बहुत प्यारी सी आवाज हमें मिल रही है, कहाँ से बात कर रही हैं आप? सरोजनी नगर बरेली से। भाई तो अपने माता पिता का नाम बताइए।
2: मम्मी का नाम बबीता पांडे और पापा का नाम मनीष पांडे। मेरा नाम परिधि पांडे।
0: अच्छा, और कितने बहन भाई हैं आप?
2: दो, एक मेरे बड़े भाई है और उनका नाम है अनमोल पांडे।
0: अनमोल पांडे, भाई आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं।
2: हाँ।
0: अच्छा तो आप में मनमुटाव तो नहीं होता है किसी चीज को लेकर?
2: थोड़ा बहुत होता है।
0: थोड़ा बहुत होता है भाई, देखिए सभी बहन भाइयों में ऐसा होता है। हकीकत में ये मनमुटाव नहीं होता, ये प्यार होता है ना? भाई प्यार करते हैं तो इससे हमें नाराज नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, है ना? तो अगर कोई चीज आपसे मंगा रहे हैं कि परिधि आप हमें ये ला दीजिए, तो आप ला दीजिएगा। भाई का काम करना तो अच्छा होता है ना? जब आप भाई का काम करेंगी तो भाई आपको प्यार करेंगे। ये बताइए आप कौन सी क्लास की स्टूडेंट है?
2: मैं क्लास थर्ड की।
0: ओहो भाई क्या बात है, तो आपकी क्लास टीचर का नाम क्या है, क्या पढ़ाती हैं वो आपको?
2: ईवीएस
0: पढ़ाती हैं। तो ईवीएस अच्छा लगता है आपको?
2: यस।
0: हाँ तो ईवीएस बहुत अच्छा लगता है। ईवीएस में क्या क्या होता है, कोई एक चैप्टर बताइए, क्या क्या पढ़ा है आपने? व्हाट इज अ कुकिंग, तो क्या होता है कुकिंग बताइए जरा, क्या समझाया मैम ने आपकी?
2: खाना बनाना, अगर हम लोग खाना खाते हैं उससे पहले हैंड वॉश अच्छे से करना चाहिए, सब्जियां काटने से पहले उसे वॉश करना चाहिए अच्छे से, और उसको अच्छे से धुल लेना चाहिए, फिर कटिंग करना चाहिए। हरी सब्जियां पौष्टिक होती हैं।
0: और बहुत अच्छी बात बताइए आपकी मैम ने, हरी सब्जियां पौष्टिक होती हैं, उनमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, तो हमें हरी सब्जियां खाना चाहिए। हरी सब्जियां खाने से क्या होता है?
2: हम हस्त पुष्ट रहते हैं और हरी सब्जियां खाने से हमारी आईसाइट अच्छी होती है,
0: यानी कि जो हमारी नजर होती है वो कमजोर नहीं होती। बहुत अच्छी बात बता दी आपकी मैम ने। तो ये बताइए आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहती हैं?
2: मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ।
0: चलिए आप डॉक्टर जरूर बनिएगा, बहुत मेहनत से पढ़िएगा परिधि, ठीक है?
2: ओके दीदी।
0: हाँ भाई क्या बात है, तो अपनी फ्रेंड्स के नाम बताइए, आपकी क्लास में कौन कौन सी फ्रेंड्स हैं?
2: तारुल प्रज्ञा।
0: अच्छा तो कौन कौन से गेम होते हैं स्कूल में खेलती हैं आप?
2: खो-खो, फुटबॉल और पकड़-पकड़ाई।
0: हाँ भाई बहुत अच्छे, चलिए खेल खेलना चाहिए, आउटडोर गेम खेलना बहुत जरूरी है बच्चों। आउटडोर गेम खेलने से जो है तंदुरुस्ती रहती है, हम पावरफुल बनते हैं, हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है, हमारी बढ़वार भी बहुत अच्छे से बढ़ती है ना? तो आउटडोर गेम खेलना चाहिए।
2: दीदी हमें मोबाइल फोन ज्यादा देर नहीं चलाना चाहिए।
0: हाँ बहुत अच्छी बात बता रही, कहीं आप चलाती तो नहीं है?
2: ना दीदी।
0: हाँ नहीं चलाना चाहिए।

0: फोन से देखिए कितने नुकसान है, जो जरूरी बात है स्कूल के लिए पढ़ाई का काम है तो वो फोन पे कर सकती है मम्मी की हेल्प से। हम तो अंकुर कार्यक्रम के माध्यम से नन्हे मुन्ने बाल दोस्तों को कहना चाहते हैं कि फोन जो है बच्चों को ज्यादा नहीं चलाना चाहिए। फोन से आईसाइट वीक होती है और हमें मानसिक तनाव रहता है और भूख भी नहीं लगती है, बहुत सारी परेशानियां हमें उत्पन्न होने लगती हैं, तो इसलिए फोन से बचना चाहिए। आउटडोर गेम में ज्यादा इंटरेस्टेड रहें। चलिए नन्हे मुन्ने बाल दोस्त आपको सुन रहे हैं, क्या सुनाएंगी आप?
1: मैं एक पोएम सुनाने जा रही हूँ।
0: अरे वाह भाई, क्या बात है, सुनाइए अपनी मीठी सी प्यारी सी पोयम।
1: जिसकी सुरक्षा के मैंने सोना सा बरसाती है, फूल खिलाती उस कर्णों को मोती सा चमकाती है, जिसकी चंदा श्वेत चांदनी देता चांदी सी उज्जवल, जिसके तारे करते रहते हैं नम्मे झिलमिल झिलमिल, जिसकी नदियाँ कलकल करती बहती सदा रुकती न कभी, जिसकी पर्वत मालाएं सिर उठा कर झुकती न कभी, उसके हम सब प्यारे बच्चे हैं, उसको हम सब भाते हैं, उसको हम सब एक साथ अपना आशीष झुकाते हैं।
0: हाँ भाई, क्या बात है, बहुत अच्छी सी प्यारी सी पोयम आपने सुना दी है और नन्हे मुन्ने बाल दोस्तों ने भी आपकी बातें बड़े ध्यान से सुनी होंगी क्योंकि आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। चलिए आकाशवाणी को फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू दीदी, थैंक यू फ्रेंड्स।
0: नन्हे मुन्ने बाल दोस्तों, हम आपको बता दें एक और मेधावी छात्रा हमसे जुड़ने जा रही हैं, चलिए उनसे पूछते हैं वो कहाँ से बात कर रही हैं। तो क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम अद्विका चौधरी है।
0: अद्विका चौधरी,
2: हाँ।
0: अच्छा, और अपने पेरेंट्स का नाम बताइए।
2: मेरे फादर का नाम धनेंद्र कुमार सिंह है और मेरी मदर का नाम दीपिका राज है।
0: अच्छा, कौन से क्लास में आप पढ़ती हैं?
2: मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ।
0: अच्छा, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
2: मैं दिल्ली कैंट से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, दिल्ली कैंट से बात कर रही हैं, भाई बहुत अच्छी बात है। और ये बताइए कि आप कौन सी क्लास में हैं इस टाइम?
2: इस टाइम मैं 6th क्लास में हूँ।
0: अच्छा, तो पिछली वाली जो कक्षा आपने पास की है तो वो 5th क्लास की है ना?
2: हाँ।
0: अच्छा, कौन से बोर्ड से पढ़ाई की है आपने? कौन से बोर्ड से पढ़ाई की है आपने?
2: CBSE बोर्ड।
0: अच्छा, चलिए और ये बताइए कैसी परसेंटेज रही आपकी 5th क्लास में?
2: मेरी परसेंटेज 90% थी।
0: 90%? अरे वाह भाई, क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बड़ी खुशी हुई है जानकर। कैसी होनहार बालिका हमसे बात कर रही हैं। ये बताइए आप, अपने पढ़ाई का शेड्यूल आपका कैसा रहता था, समय सारणी?
2: मेरा जो पढ़ाई का शेड्यूल था, मतलब एक ही टाइम पे होता था, जो टाइम था मेरा पढ़ने का उसी टाइम पे होता था।
0: अच्छा, तो ये बताइए कितना समय देती थी आप पढ़ाई को?
2: मैं 3 या 4 घंटे देती थी पढ़ाई को।
0: अच्छा, तो इस बीच आप खेल भी खेलती थी?
2: हाँ, मतलब इस दौरान मैं स्केट चलाती थी, मेरे को आउटडोर गेम्स ज्यादा अच्छे लगते हैं।
0: अच्छा, कौन कौन से, जैसे आउटडोर गेम कौन कौन से?
2: मुझे स्केटिंग अच्छी लगती है और बास्केटबॉल अच्छा लगता है।
0: अच्छा, स्केटिंग, खूब स्केटिंग कर लेती हैं आप?
2: हाँ, मैं कर लेती हूँ, अच्छे से कर लेती हूँ।
0: अच्छा, डर तो नहीं लगता है आपको?
2: नहीं, डर बिल्कुल नहीं लगता है, तो पहले शुरू में लगता था।
0: अच्छा, स्केटिंग कैसे सीखी आपने, किससे सीखी?
2: मैं खुद से सीखी।
0: अच्छा, तो शुरू शुरू में तो थोड़ा बहुत हल्की फुल्की चोट लगी होगी, गिरी होंगी आप?
2: हाँ, कई बार गिरती थी, उठती थी, वापस से चलाती थी।
0: हाँ हाँ भाई, देखिए कोई भी चीज, देखिए हमसे जो है ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि हमारे अंदर हिम्मत होना चाहिए और सीखने का हौसला होना चाहिए, है ना? हम किसी भी चीज को जब आसानी से सीख लेते हैं तो वो हमें मुश्किल नहीं लगती और फिर वो आसान हो जाती है और फिर हम सीख भी जाते हैं, है ना?
2: हाँ,
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई है। तो ये बताइए आप आगे चलकर क्या बनना चाहती हैं?
2: मैं आगे चलकर हाई कोर्ट जज बनना चाहती हूँ।
0: अच्छा, आपकी इतनी अच्छी परसेंटेज आई है तो सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको किसने किया, मम्मी पापा ने या टीचर ने, किसने?
2: सपोर्ट मेरी फैमिली ने किया।
0: अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है। तो मम्मी क्या कहती थी पढ़ाई को लेकर के?
2: मम्मी बोलती थी कि पढ़ाई के साथ साथ तुम अपने स्पोर्ट पे भी ध्यान दिया करो।
0: अच्छा, तो मतलब आपने स्पोर्ट को भी ध्यान में रखा और पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दिया, है ना?
2: हाँ।
0: तो देखिए दोनों चीजों का बैलेंस आपने बहुत अच्छे से बनाया, तो देखिए पढ़ाई में भी कितनी अच्छी आपकी परसेंटेज आई है ना? तो मम्मी तो बहुत अच्छी होती है ना, और मम्मी हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताती हैं तो

0: उनका कहना मानना चाहिए। तो ये बताइए, आकाशवाणी से अंकुर कार्यक्रम तो आप दिल्ली में आसानी से सुन लेती होंगी ऐप के द्वारा। तो
1: हाँ, मैं आसानी से सुन लेती हूँ, मैं हमेशा सुनती हूँ।
0: चलिए, आकाशवाणी के अंकुर कार्यक्रम से आपने बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी आप?
1: सुनना पसंद करूंगी, रुक जाना नहीं तो कहीं हार के।
0: आहा हा भाई, क्या बात है। तो लीजिए, आपके रेडियो सेट पर आ रहा है ये प्यारा सा गीत।
1: थैंक यू।

0: और जो है ये गाना भी हम सुन रहे थे
1: बहुत सुंदर गीत सुनवाया।
0: और बच्चों अब हम आपको बताएंगे कि आप जानते हैं कि अंतर्गत बिजली की खोज की कहानी।
1: जी
0: बच्चों, आपने कभी सोचा है बिजली ना होती तो क्या होता? ना रात में रोशनी होती, ना पंखा चलता, ना मोबाइल चार्ज होता और ना ही टीवी, कंप्यूटर या इंटरनेट का उपयोग हो पाता ना। हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं
1: बिल्कुल
0: होता। आज बिजली हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसकी खोज की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है।
1: क्या कहानी है दीदी?
0: बताते हैं
1: जी।
0: बच्चों, पहले की बात बताएं तो बहुत पुराने समय में लोगों को बिजली के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लगभग 600 ईसा पूर्व यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थेल्स ने एक प्रयोग किया
1: जी
0: और उन्होंने एम्बर, यानी एक प्रकार का ये पीला पत्थर होता है, उसको ऊन से रगड़ा और रगड़ने के बाद एम्बर में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों और सूखी घास को उसने अपनी ओर खींचने की शक्ति आ गई। ये स्थैतिक बिजली का पहला ज्ञात अवलोकन था। उसके बाद 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक प्रसिद्ध पतंग वाला प्रयोग किया। उन्होंने तूफान के समय पतंग उड़ाकर ये सिद्ध किया कि आसमान में चमकने वाली बिजली और प्रयोगशाला में उत्पन्न बिजली एक ही प्रकार की शक्ति है।
1: जी, इसके बाद अलेसांद्रो वोल्टा ने दुनिया की पहली विद्युत बैटरी बनाई, जिसे वोल्टाइक पाइल कहा गया। इसी कारण बिजली के वोल्टेज की इकाई का नाम वोल्ट रखा गया।
0: और बच्चों आपको बताएं, बाद में 1871 में जो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज की, आज अधिकांश बिजली घर में इसी सिद्धांत पर काम होते हैं। और उसके बाद थॉमस एल्वा ने तो कमाल

0: ही कर दिया। लंबे समय तक जलने वाला विद्युत बल्ब बनाकर बिजली को लोगों के घर घर तक पहुंचाया और बिजली वितरण प्रणाली को आगे बढ़ाया। इसके बाद घरों और सड़कों पर रोशनी ही रोशनी हो गई और लोगों का जीवन एकदम बदल गया। तो सच में बिजली जो है मानव बुद्धि, विज्ञान और निरंतर खोज का अद्भुत उपहार है।
1: बिल्कुल उपहार है, बिजली के बिना तो अब ऐसा लगता है जीवन ही संभव नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि सारे काम बिजली से ही हो रहे हैं। हमारा कंप्यूटर भी बिजली चल रहा है और ये रेडियो जो चल रहा है, जो आप सुन रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं बिजली से ही चल रहा है। सारे उपकरण यहाँ बिजली से ही संचालित होते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और प्यारे बाल साथियों, जिस चॉकलेट को आप बड़े शौक से खाते हैं या फिर
1: दीदी मुंह में पानी आ गया चॉकलेट के नाम से,
0: वैसे हम आज चॉकलेट लाए हैं,
1: जरूर खाएंगे अभी, प्रोग्राम के बाद खाएंगे
0: जी। या फिर यूं कहें, बच्चे जब रोते हैं या जिद करते हैं तो उन्हें चॉकलेट देकर खुश कर दिया जाता है।
1: हमें भी खुश करिएगा चॉकलेट देकर।
0: और बच्चे ही क्या, बड़ों को भी चॉकलेट खाने को मिल जाए तो वो भी पीछे नहीं रहते,
1: बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं।
0: जैसे कि अभी भैया कह रहे थे, अरे भाई जब चॉकलेट की बात चली है शीशपाल भैया, तो थोड़ा इसके इतिहास में पीछे चलते हैं और जानते हैं किससे और कैसे बनती है चॉकलेट।
1: जरूर बताइए
0: बच्चों। चॉकलेट का इतिहास बहुत पुराना है। इसका मुख्य स्रोत कोको है, जो कोको के पेड़ पर लगने वाली फलियों से प्राप्त होता है। माना जाता है कि सबसे पहले मध्य और दक्षिण अमेरिका की प्राचीन सभ्यताओं ने कोको का उपयोग किया और ये कई रूपों में तैयार होने लगी। समय के साथ चॉकलेट का रूप लेकर पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गई है
1: जी। और आजकल देखें तो आज ये अनेक स्वादों और रूपों में उपलब्ध है,
0: जैसे
1: डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट और विभिन्न प्रकार के फ्लेवर वाली चॉकलेट। बहुत तरीके की चॉकलेट्स आ रही हैं दीदी आजकल।
0: भाई वाह, मजा आ गया। और चॉकलेट केवल स्वादिष्ट ही नहीं होती बल्कि अच्छी गुणवत्ता वाली डार्क चॉकलेट में तो कुछ ऐसे तत्व भी पाए जाते हैं शीशपाल भैया, जो सीमित मात्रा में खाने पर लाभकारी हो सकते हैं। इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर की कोशिकाओं की रक्षा करने में मदद करते हैं। हालांकि अधिक मात्रा में चॉकलेट खाने से दांतों की समस्या, वजन बढ़ना और अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, बच्चों इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए चॉकलेट का आनंद हमेशा संतुलित मात्रा में ही लेना चाहिए।
1: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही दीदी। एक चॉकलेट ही नहीं, किसी भी चीज का जो है हमें उपयोग संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। अति जो है किसी भी चीज की खराब होती है। प्यारे बाल साथियों, अब जान लेते हैं कि ये बनती कैसे है। पहले कोको की फलियों को तोड़कर सुखाया जाता है, उसके बाद उसे भूनकर और फिर पीसकर एक पेस्ट तैयार किया जाता है। इसमें दूध, चीनी और अन्य सामग्री मिलाकर टेस्टी चॉकलेट बनाई जाती है।
0: तो बच्चों ये सब जानकारी हमने इसलिए बताई क्योंकि परसों यानी 7 जुलाई को है विश्व चॉकलेट दिवस। हमारा प्रोग्राम आज पड़ गया तो हमने सोचा अपने प्यारे बाल साथियों को आज ही जानकारी दे दें। तो विश्व चॉकलेट दिवस हमें चॉकलेट खाने की ही नहीं बल्कि हमारे व्यवहार में, हमारी भाषा में, हमारे रिश्तों में भी मिठास होनी चाहिए, है ना भैया?
1: बहुत जरूरी है ये,
0: क्योंकि
1: तो।
0: चॉकलेट की मिठास तो पल भर की होती है लेकिन अच्छे व्यवहार की मिठास
1: जीवन भर याद रहती है।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा। और एक गाना और सुन लिया जाए तो कैसा रहेगा?
1: बहुत अच्छा रहेगा।

0: शीशपाल भैया, बहुत प्यारा सा गाना आपने ये
1: बहुत
0: सुनवाया।
1: सुंदर गीत, मजा आ गया सुनकर।
0: और बाल दोस्तों, अब बारी आ गई है आज के 5 सवालों की। तो आज के पहले सवाल में हम आपसे बच्चों एक पहेली बूझ रहे हैं, और पहेली है, एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। और शीशपाल भैया, अगला सवाल
1: अगला सवाल
0: बताइए।
1: हम बच्चों से पूछ लेते हैं। बच्चों ये बताइएगा, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? और एक और तीसरा सवाल जो है वो है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है?
0: और अगला सवाल है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? और पांचवा और आखिरी सवाल है, आरंभ का विलोम क्या होगा? और पिछले संडे को आपसे जो 5 सवाल पूछे थे, उनके जवाब देने की बारी आ गई है। हमने पहला सवाल पूछा था, ध्रुव तारा किस दिशा में होता है? बच्चों, इसका उत्तर है उत्तर दिशा में। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, ये हमने पूछा था, तो बच्चों इसका उत्तर है कोणार्क। तीसरा प्रश्न था, चंबल की नदी किस प्रदेश में है? तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश में। और चौथा प्रश्न था, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बच्चों, घेंघा रोग। और पांचवा और आखिरी सवाल था, सौर मंडल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका उत्तर है कॉपरनिकस। और अब देखते हैं कहाँ कहाँ से सही जवाब हम तक आ पहुंचे हैं।
1: ये पत्र हम तक पहुंचा गंज डंडवारा से मुनव्वर लल्ला भाई का। इनके सारे जवाब जो हैं बिल्कुल ठीक हैं।
0: और ये हमारे पास आया है बदायूं सोता मोहल्ले से, लिखने वाले हैं अयास खान, निहत परवीन, महजवी और रिजवान। इनके भी 5 में से 5 सवालों के जवाब बिल्कुल सही हैं। और दूसरा पत्र हमारे पास है ब्रह्मपुरा बरेली से, लिखने वाली हैं फबिया, आफरीन और सिमरन। इनके भी 5 में से 5 सवालों के जवाब बिल्कुल सही हैं। और देखिए भैया, के घड़ी जो है टिक टिक इशारा कर रही है, और
1: बिल्कुल
0: समय हमें अब बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे रहा है। अगले संडे और बहुत सी जानकारियों के साथ फिर से
1: फिर से
0: मिलेंगे।
1: मिलेंगे।
0: आज्ञा लेते हैं, नमस्कार।
1: नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अंकुर 100.4 FM पर। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। आइए अब आपको जोड़ते हैं विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में। लीजिए अब सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में यारियां फिल्म का गाना। इरशाद कामिल हैं गीतकार और संगीतकार हैं प्रीतम।

अभी आप सुन रहे थे बैंगिस्तान फिल्म का गाना। लीजिए सुनिए लव ब्रेकअप्स जिंदगी, इस फिल्म का गाना बेनी दयाल और श्रद्धा पंडित की आवाजों में। गीतकार हैं जावेद अख्तर और तर्ज बनाई है सलीम सुलेमान ने।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए सुनिधि चौहान की आवाज में पुष्पा फिल्म का गाना। रकीब आलम ने लिखा इसे और संगीत से संवारा है देवी श्री प्रसाद ने।

0: लगता है ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए सूरज पे मंगल भारी, इस फिल्म का गाना, आवाजें हैं मोहसिन शेख, ज्योतिका टांगरी मेलोडी और ऐश्वर्या भंडारी की। दानिश साबरी ने लिखा इसे और संगीतकार हैं जावेद मोहसिन।

तो दोस्तों, आज के चित्रलोक प्रोग्राम की आखिरी पेशकश चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म से आवाजें हैं विशाल ददलानी, हंसिका अय्यर की, और इस गाने का तमिल रैप का अंश गाया है श्रीचरण कस्तूरी रंगन ने। बोल हैं अमिताभ भट्टाचार्य और निरंजन अयंगर के, संगीत विशाल शेखर का। तो मैं कहता हूँ आपसे, लेट्स गो ना ऑन द डांस फ्लोर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने पोते प्याली में।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: आज के फनकार।

फिल्म शहनाई का ये गाना सुनकर आपने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया होगा कि आज के फनकार कार्यक्रम आज किस प्रतिभा पर केंद्रित है। लेकिन दरअसल इस गाने के जरिए अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो शायद आपका अंदाजा बहुत गलत होगा, क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम आज जिस हस्ती पर केंद्रित है उसका ताल्लुक इस गाने को लिखने वाले गीतकार से है, जो निर्देशक भी रहे, यानी कि पीएल संतोषी। लेकिन आज हम पीएल संतोषी की बात नहीं कर रहे, बल्कि उनके सुपुत्र राजकुमार संतोषी की बातें आज के फनकार कार्यक्रम में।

निर्माता, निर्देशक और गीतकार पीएल संतोषी के बेटे होने के बावजूद राजकुमार संतोषी का फिल्मों में सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने बहुत बुनियादी शुरुआत की गोविंद निहलानी की फिल्म अर्धसत्य के साथ। ये फिल्म सन 1982 में आई थी और राजकुमार संतोषी इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। जरा सोचिए कि बतौर स्वतंत्र निर्देशक अपना करियर शुरू करने में राजकुमार संतोषी को पूरे 8 साल लग गए। सन 1990 फिल्म आई घायल। सनी देओल की मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म एक गुस्सैल नौजवान की कहानी है जो व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करता है। राजकुमार संतोषी ने इस संवेदनशील कहानी का ताना बाना काफी चतुराई से बुना और उन्हें अपनी इस पहली ही निर्देशित फिल्म में काफी प्रशंसा मिली। सन 1990 में राजकुमार संतोषी को फिल्म घायल के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार।

फिल्म घायल बेहद कामयाब रही। राजकुमार संतोषी के लिए बड़ा आसान था कि वो अपनी दूसरी फिल्म में इसी तरह के किसी विषय को दोहराएं, लेकिन एक अच्छे निर्देशक की पहचान ये होती है कि वो अलग अलग विषयों में अपनी परीक्षा लेता है, अपने आप को आजमाता है। राजकुमार संतोषी ने अपनी दूसरी फिल्म घायल से बिल्कुल अलग विषय पर बनाई। ये फिल्म थी सन 1993 में आई दामिनी।

दामिनी के बाद राजकुमार संतोषी अगले ही बरस एक चौंका देने वाली फिल्म लेकर आए, क्योंकि उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो इस बार बनाएंगे एक कॉमेडी फिल्म। ये फिल्म थी अंदाज अपना अपना। ये वो दुर्लभ मौका था जबकि सलमान खान और आमिर खान एक साथ रजत पट पर नजर आए। अंदाज अपना अपना को आज भी एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म माना जाता है। इसके बाद राजकुमार संतोषी ने बनाई फिल्म बरसात। इस फिल्म को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन फिल्म बरसात के जरिए

0: बॉबी देओल ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला पहला कदम रखा।
1: हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है।
0: साल 1996 में घायल से मिलते जुलते विषय को लेकर उन्होंने बनाई फिल्म घातक। साल 1998

राजकुमार संतोषी की खासियत ये है कि वो हर बार एक अलग विषय लेकर आते हैं। एक निर्देशक के तौर पर वो हर बार अपनी परीक्षा लेते हैं, अपने आप को आजमाते हैं और अक्सर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब साबित होते हैं। साल 2000 में उनकी फिल्म पुकार को चारों तरफ बड़ी प्रशंसा मिली।

फिल्म पुकार के बाद साल 2001 में वो लेकर आए महिलाओं से जुड़े विषय पर एक बड़ी ही प्रखर फिल्म लज्जा।

इसके अगले ही साल राजकुमार संतोषी ने अपने करियर की एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बनाई। इसका नाम था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अजय देवगन इस फिल्म में शीर्ष भूमिका

फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए राजकुमार संतोषी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद साल 2004 में उन्होंने बनाई फिल्म खाकी।

ये वो पहला मौका था जब अमिताभ बच्चन राजकुमार संतोषी के निर्देशन में पर्दे पर नजर आए। इसके बाद तो अमिताभ बच्चन को उन्होंने दोहराया अपनी अगली फिल्म फैमिली में। ये फिल्म साल 2006 में आई। साल 2008 में अजय देवगन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म आई हल्ला बोल।

साल 2009 में एक बार फिर से राजकुमार संतोषी ने एक नई धारा शुरू की। एक बिल्कुल अलग किस्म की कॉमेडी रोमांटिक फिल्म वो लेकर आए जिसका नाम था अजब प्रेम की गजब कहानी। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के अभिनय वाली ये फिल्म इस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में गिनी गई। संगीतकार थे प्रीतम।

0: आज के मंगल कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्देशक राजकुमार संतोषी पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 10 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम आपकी पसंद।

श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, ये कार्यक्रम है जिसमें हम आपकी पसंद के गीतों को शामिल करते हैं और जो आपने भेजे हैं हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट पर। कार्यक्रम का पहला गीत हमारे आप सभी श्रोताओं के लिए, आप हैं ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं से सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र, अनंत, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता और सूरजश्री यादव। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना। आप हैं उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। कस्बा उगहती से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार गुप्ता, पंकज बजाज, प्रिंस कुमार, प्रशांत गुप्ता, कार्तिक गुप्ता और निर्भय गुप्ता। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम। पंचकुला सेक्टर नंबर 9 से आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे, भाविक ढींगरा। आप हैं होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन, अमन, दीपांशु। नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, महजबी निसार, नुजत फातिमा, अबरार अहमद, इसरार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद, तस्लीम रजा और पप्पू भाई अंसारी। बरकत जमाली बलोच जफराब्द बलूचिस्तान से हमारे श्रोता। सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोड़ाना। असल गांव बाजार जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से राजू माठे, संतोष एस काले, गजानन सालोकर, सुरेश भिसे पाटिल, देवेंद्र भटकर जी। कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, कमल कुमार और मोहम्मद अफजल मलिक। नई मस्जिद करेली से इंतजार भाई अंसारी, हिब्जा नूरी, नथू नन्हे, शाकिर जाहिर अंसारी, हिना। और आप हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। सब्जी मंडी कस्बा उसामा वार्ड नंबर 1 जिला बदायूं से धर्मवीर कश्यप, उषा कश्यप, ध्यानपाल, संजय, अनमोल, अंश, कुमारी करिश्मा, मुस्कान कश्यप। आप हैं नई दिल्ली टैगोर गार्डन से रविंद्र सिंह छावड़ा। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश निवान, सौरभ शर्मा, शाइना और मैंडी शर्मा। दीवाना रेडियो श्रोता क्लब बहलोल नगर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से प्रेम सिंह बड़वाल, सुखवीर, काजल बड़वाल, लखवीर, रानू, कृष्णा और छिंदो, प्रवीण, शीतल, नवीन, निशान, अनमोल और चटकू मटकू। ग्राम पंचायत बाकरगंज तहसील फरीदपुर पानी की टंकी के पास से सुनील बाबू, शिवम सिंह, अभयमीत, भगवान देवी, स्वाति सिंह, तानिया गौतम और आपके सभी मित्रगण। बेडी मध्य प्रदेश से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर। उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से हमारे श्रोता उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बन्नी, आरुष, शौर्य, दिनेश। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग, पुनाराम और कृष्णा देवांगन। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत और मयंक भाटिया। आप हैं ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल, दिव्यांशी विश्वकर्मा। बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, काफिर भाई, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा। आप हैं गांव नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्डा और अलका मिड्डा। अडार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी भूपेश और दीपेश वर्मा। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हेना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, टिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। ये हमारे श्रोता हैं दयानंद भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से, विष्णु मस्कीन, रितिका वाणी, आरव चंद्रकला, काशीनाथ, गणेश, संगीता, आरोही और प्रियांशी। कस्बा मीरगंज बिजली घर से

आदर्श दिवाकर, लव दिवाकर, जय दिवाकर, उमेंद्रपुरी गोस्वामी और भाई कल्लू मिस्त्री, जिला मुरादाबाद, ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, आप सभी श्रोताओं के लिए सुनवाते हैं फिल्म साजन का ये गीत, जिसको गाया है अनुराधा पौडवाल ने। गीत के बोल समीर के हैं, संगीत निर्देशन नदीम श्रवण का।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और कार्यक्रम आपकी पसंद में अगला गीत आप सभी श्रोताओं के लिए। भोला कॉलोनी घरौंडा जिला करनाल हरियाणा से विजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी, गुंजन साहिल, वाणी जयजान आप हैं। चमनपुरा उदयपुर से नजीब खान, सबिहा खानम, जब्बार मोहम्मद, फरीदा शबनम, अशरफ खान, रईसा खातून और मंजू निम्मी। सुरेंद्र खुराना न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से हमारे श्रोता। आप हैं नसीब रेडियो श्रोता संघ नागचन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार टावर, खुश नसीब, अब्दुल हक टावर, जियाउल हक टावर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सुहन जोशी, जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबिहा, नसौर रेहान। आप हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी दुबे, नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी और प्रांजल राय।

दुबई नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक रोशनी और प्रांजल राय। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान और पूजा परिहार। आप हैं मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर उमंग, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। धनवंतरी नगर जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, अंकिता सिंह और गुड़िया वेदा सिंह, रितु सिंह। आप हैं संगीता सलूजा, प्रदीप सलूजा, प्रथम सलूजा, जनकपुरी नई दिल्ली से। रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर। पोटिया कलादुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा साहू। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति और प्रहलाद राजेंद्र वर्मा। टोडरपुर भूड़ बिसौली बदायूं उत्तर प्रदेश से पी एस यादव, अजनबी, अजयपाल सिंह यादव, पवन कुमार, प्रभात कुमार, मयंक, मुन्नी देवी, नीतू सिंह, प्रतिभा सिंह, प्रतिज्ञा सिंह और कंचन यादव। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन और अंकुश अरोड़ा। आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड से। ग्राम दलपुरा से हैं पाती राम दिवाकर, सूरजमुखी, खुशबू, प्रियांशी, मानसी, सुशांत, अक्षर दिवाकर। ग्राम कुष्टा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागोणे, योगिता कुमारी प्रियाली, पार्थ और हागोणे परिवार के सभी सदस्य। धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप और अमूल्य बाठे। गिरगांव महाराष्ट्र से गजानन नादरे, मरोतराव पांचाल। मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायडे, वसंतराव और पी एस नावकर। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर। दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से हमारे श्रोता मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज और बेबी चाहत। उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से भैरूलाल वाक्तरिया धाकड़, भोला वाक्तरिया, प्रवीण रियांश और प्रतीक वाक्तरिया। आप हैं मालवा रेडियो श्रोता संघ गुलबालोद, तहसील आलोट, जिला रतलाम मध्य प्रदेश से विक्रम मालवीय, रचना मालवीय, कमलाबाई, वंदेवी, आकाश माहेश्वरी, विनायक और समस्त परिवार के सदस्य। उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल और भारती बघेल। आप हैं लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नावकर, निर्मला नावकर, विशाल मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान और आशीष मुर्रेकर। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्मी मल्होत्रा, लाडो, कोयल, नानकचंद। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल, डुग्गू, भाविक सिक्का। गंगा सिंह रावत रामपुर रोड हल्द्वानी उत्तराखंड से। आप हैं मंसूरी क्लब ग्राम एचोरा, तहसील मिलक रामपुर से सकावत हुसैन मंसूरी, तालिब हुसैन मंसूरी, तौफीक मंसूरी, लहीक, राहुल रस्तोगी, सुनील और आपके सभी मित्रगण। गांव जाखोद राजस्थान से शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक। आप हैं पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, केसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यमानंद। बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत। बठिंडा रोड मंडी डब्बाली से हमारे श्रोता राजेंद्र नारंग, अंजु नारंग, मोहित और तनिया नारंग। आप हैं डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद कुमार, गौरव मंदुरकर, आरव और अर्पिता। पद्मा टॉकीज नेपाल नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। आकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, विजय, शुभम बेंडे, पवन जरिए, के संजीव डाबे राव। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन, अल्ताफ हुसैन, मुन्ना भाई और आशिक हुसैन अंसारी। आप सभी श्रोताओं के लिए सुनवाते हैं फिल्म मोहरा का ये गीत, जिसको अपनी आवाज़ देती हैं अलका याग्निक और उदित नारायण ने।

0: खो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: कार्यक्रम का ये गीत आप सभी श्रोताओं के लिए। गली सिगलापुर बरेली मौर्य मंदिर से रतनमाला मौर्य, मुकेश, प्रिंस, प्रियांशी, पुष्पा, गौरव और चंद्र प्रकाश मौर्य। आप हैं सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप और अवंतिका येले। सोंगा धमधरी छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार और हिंश कुमार चंदन। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत, कौशिकी, दीपाली, युवान और आर के राजा। ये हमारे श्रोता हैं शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन मनवर, रोशनी और बेबी प्रियांशी। बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान और उत्कर्ष चौहान। कदमा जमशेदपुर से चिन्मय महतो, रेखा महतो और शिवांश मंडल। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया। नई बस्ती गंज डंडवारा से मोहम्मद यासीन, हाशमी, नाजमा बेगम, मोहम्मद तौसीफ, तैमूर और कलीम अंसारी। गांव खोखरा वाली श्रीगंगानगर से विनोद बारासा, विशाल, विकास, रोशनी और शगुन बारासा। आप हैं कुंवर कॉलोनी बड़वा, जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली। गांव बांडी वाला फजिल का पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश, योगेश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद बकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू साजदा और हिना कौसर। शनि बाजार कस्बा उगहती उत्तर प्रदेश से प्रभाकर गुप्ता, अवधेश, सचिन, देव गुप्ता, प्रियल, कायरव और समस्त गुप्ता परिवार। आप हैं पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से सैयद भाई, सुफियान अनस, आयजा अल्फिया, सरोज चौक से कमरोल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आफिया और मुस्तफा खान। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। जसपुर उत्तराखंड से हमारे श्रोता रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर। कुतुबखाना सब्जी मंडी बरेली से सुल्तान रजा, इकबाल रजा, जीशान अफजल, मोनिश सादिक और आपके मम्मी पापा। भक्कर पंजाब से रिहाना खान, हफीजुर रहमान खान। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकत पुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। अक्षय कॉलोनी गोंदर रोड धूलिया महाराष्ट्र से मनोहर मगर, यामिनी मगर, उदयन और अर्पिता। राजनगर मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, सुशांत और चुलबुल रानी। गनगोला ताथागंज जिला बदायूं से हमारे श्रोता इसरत खान, शायरा बेगम, रहूब खान, सावरीन, शहबाज, सैफ, ईशान, आजम और अरहान खान। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो। आप हैं ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। ये हमारे श्रोता गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और अदीब। गांधीनगर गुजरात से जी के परमार, ज्योत्सना परमार, हर्ष, दीपल, उर्वशी। सेक्टर नंबर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज।

निवासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी, जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल, शुभम प्रसाद, अर्णव और दुर्गेश्वरी जायसवाल, फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा यूपी से सुरेश चौरसिया, सरोज चौरसिया, सुबोध सलोनी, सुबोध सलोनी, संजू लल्ला चौरसिया, योगेंद्र नायक, बल्केश्वर कॉलोनी आगरा से सरिता चौरसिया, सुमित वीर और अबीर, नवाबगंज कानपुर से सुजाता चौरसिया, पंकज पीहू और दिया चौरसिया। आप में मौलागढ़ नई बस्ती भोजीपुरा जिला बरेली से मोहम्मद हसन अंसारी, अजरुद्दीन अंसारी, तराना अंसारी, तरन्नुम नाजेश अंसारी, तबस्सुम अंसारी, वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शेयब खान, गांव कलमंडी खुर्द जिला झालावाड़ राजस्थान से अनूप सिंह, नाथावत, धीरज सिंह सोलंकी, सागर पमार, भानु प्रताप सिंह पमार और समस्त राजपूताना परिवार, वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। आप हैं विनेश कुमार श्रीवास्तव, रागनी श्रीवास्तव, मुस्कान, बैंक सेंटर चनेटी के पास बरेली कैंट से, वरवट बकाल बुलढाणा से नारायण हागे, कमल दिव्या, जय हागे, गांव भोजपुर तगा सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, जावेद, राहत अली, जाकिर हुसैन, वकील अहमद। और आप हैं हमारे श्रोता राजकमल रेडियो श्रोता संघ आष्टी जिला जालना मराठवाड़ से सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन और राम भाऊ तांदले, धोता जोड़ा आष्टी से दशरथ सागुते और अनुष्का सागुते, मोहन सिंह रावत, ममता रावत, वान्या, इंदिरा कॉटेज, तल्लीताल, नैनीताल से। आप सभी श्रोताओं के लिए सुनवाते हैं फिल्म सूर्या का ये गीत, जिसको लिखा है संतोष आनंद ने, गीत के संगीतबद्ध किया है गीत को लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने, और इस गीत को अपनी आवाज़ दी है अलका याग्निक ने।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 FM और सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम आपकी पसंद में अगला गीत आप सभी श्रोताओं के लिए, उदयपुर राजस्थान से बाबू भाई भारती देवी, रमेश नाचानी भारती और विनीत नाचानी। सिवहारा जिला बिजनौर यूपी से आसिफ चौधरी, बेगम रेहाना, अरफात अदीब और कादिर चौधरी। गेवराई महाराष्ट्र से दिनकर सालवे, अजय राजपुरे, एकनाथ पवार और भाऊ साहेब मोटे। कस्बा क्यूलड़िया नवाबगंज जिला बरेली उत्तर प्रदेश से राजेंद्र गंगवार, प्रेमपाल धर्मवीर, सचिन अनुज, अनमोल कमलेश और आपके मम्मी पापा साथ ही हैं, राजू चंद्रपाल, उल्फर शर्मा, बबलू वेदपाल और संजीव गंगवार। ग्राम वीरपुर पोस्ट बिलसड़ तहसील अलीगंज एटा से विपिन कुमार शाक्य, सपना शाक्य, रविंद्र, राजेश, रमेश चंद्र, राजीव, प्रदीप, रंजीत, सिद्धार्थ, सुजाता, संगमित्रा, प्रज्ञा, प्रतिज्ञा और आपके सभी परिवार के सदस्य। दरबार कॉलोनी सनावत से किशोर कुमार सांवले, रेखा सांवले, हिमांशु, अनुराग, सुलोचना, चारवी और प्रणव सांवले। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, कविता, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, ईशु, बाबा, सपना, शिवी, सलोनी, अनय, अनाया और आपके सभी साथी। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता, केशु, रिधान खुराना। जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार, नरगिस खातून। आप हैं ईदगाह जनूबी जिला बक्कर पंजाब से मोहम्मद हाफिजुर रहमान, हबीब मलिक, खलील मलिक और अली रहमान। ग्राम तांगोरी जिला मोहाली पंजाब से गुरप्रीत सिंह तांगोरी, जसवीर कौर, महकप्रीत और सहजप्रीत सिंह। चक 5MD पत्रोड़ा अनूपगढ़ राजस्थान से मंगल जनागल, रोशनी जनागल, अंकुर इंदु और सुनील जनागल। बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मारकंडे, संजय और बेबी किट्टू। मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम

हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़ नायमा रंजूबाई धाकड़ युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़। आप हैं छप्पर वाली मस्जिद कासगंज से मोहम्मद जाहिद अली सैफी आवाद खान जोहान सैफी और लीवा मलिक। ततरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा पारस मणि पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा। मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार बिट्टू कुमार अर्चना कुमारी कल्पना मुन्नी चांदनी और नंदिनी कुमारी। उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हमर श्रोता मुकेश गोस्वामी मधु गोस्वामी आशीष शिवन्या और अनु गोस्वामी। आप हैं सप्तरंग श्रोता परिवार कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले सविता अनिकेत रोहिणी ऋषिकेश और जीविका दले। पुनावले पुणे से अजय सोनवने करिश्मा अविका और विशाखा सोनवने। कटाचंदखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराने शहर बरेली से अनोखीलाल मौर्य सुंदर देवी प्रकाश रिंकी कपिल वेदराम कैलाश सुनील खुशबू आरोही और स्वाति मौर्य। आप हैं गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत संगीता कंवर तुषार सिंह रिंकी शेखावत। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव ज्योति और ओजस्वी यादव। ग्राम खकल विकासखंड नदी गांव तहसील कोंच जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुर्जर सत्यम सिंह अंशराज सिंह और आपका समस्त परिवार। ज्योति नगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर कैलाश मिश्री गोर्धन धरा घनश्याम भार्गव बाबू कौरी और हसन सिक्का। मछली गोदाम कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह उषा सिंह ऋषभ सिंह। आप हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी बबीता मिगलानी सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे। राजकोट से जैमिन कुमार जैन हेतल जैन कृष्णा और राकेश जैन। छत्रपति संभाजी नगर सुरेवाड़ी औरंगाबाद से सुषमा बोरगांवकर प्रकाश प्रांजलि सुहम सदानंद विराज अंशुमन और ओवी। आप हैं मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी। चनोरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनवारी लाल कुशवाहा मंजुलता राम और श्याम रवि आर्यन रंजीत कुशवाहा रामानंद कुशवाहा और आपके सभी साथी। मजनू का टीला से कमल बालूजा मधु बालूजा सागर सतना एमपी से उमंग मलिक आकांक्षा और माही मलिक। आप हैं सरलाही सोखनाहा नेपाल से अरुण कुमार शर्मा रेणु देवी राहुल कुमार शर्मा वंदना कुमारी प्रियंका कुमारी और आपके बहुत सारे साथी। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक श्याम कुमार प्रमिला चीनू आसमा दीपक अनुश्री श्याम कुमार। जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा अर्चना अनुज आयुषी रमेश चंद्र शेख मूसा राजकुमार बुढ़ाना सुरामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी रोहित ऋतु और मुकेश जगताप। वीरम गांव गुजरात से अजीत भावसार प्रमिला भावसार भावेश कुमार सनी भावसार। ग्राम ढकिया केसरपुर पीलीभीत से एसके राजपूत अनिल कुमार राजपूत भगवान दास मदन लाल रवि कुमार छुटका किरण संतोषी प्रिया और चंचल। बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव कुणाल यादव हर्ष मनीष अंशिका यूनुस खान सोफिया खान। सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ चंद्रकला रेवाड़। आप हैं स्मिता रेडियो फेसबुक लाइव शो ग्रुप। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी अर्चना जोशी हरमिंदर सिंह चावला वानी चावला लोकेश पायल जोशी बेबी बैदेही जोशी हंसिका जोशी और अंकित जोशी। अजीत कसाना माया देवी ऋतिक आदित्य कसाना कांठरोड लदावली से आप सभी के लिए सुनवाते हैं फिल्म नया दौर का ये गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीत के बोल समीर के हैं संगीत निर्देशन ओपी नैयर का।

कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं के लिए, विराटनगर नेपाल से अरुण चंद्र शर्मा, रेणुका शर्मा और आपके बहुत सारे साथी, हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रजाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, आप हैं ग्राम आनंदपुरा दुनका मीरगंज बरेली से जितेंद्र सिंह राजपूत, प्रभा राजपूत, ग्राम लसोड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी, गुजरात गांधी ग्राम से प्रवीण सोनी कलावती और जगदीश जौहरी, आप हैं मौलागढ़ नई बस्ती जिला बरेली से तरनुम अंसारी, तराना अंसारी, अजरुद्दीन मोहम्मद हसन और बहेड़ी से इश्तियाक अहमद इदरीसी। हमारे श्रोता गाड़गे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना दाई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षिता लोखंडे, मारहरा दरवाजे एटा से नवीन हसन अब्बासी।

शहबाज, नवदे हसन, सुहेल हसन, अनम रसीद और यशव अब्बासी। प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पैठण से सुरेश यादव, अनीता यादव, आरती प्रसाद यादव, सोनल बेबी सिया यादव, जालना शहर से सोमनाथ, गीता ओम, सुभाष चंदन, एकनाथ और संगीता यादव। आप हैं शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम अलीम, अजीम अदीम, अब्दुल गनी, अलमीर और जन्नत। धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित, शगुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंगेल। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बल्लू निषाद, तरुण, श्रीनिका और श्रीनिजा। पटेल नगर मलोट से रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी गंगदीप, आरजू जाजौरिया और गुड्डू। आप हैं गांव व डाकघर निम्नाबाद, जिला जींद, हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा। दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासन से एम असलम सैफी, जयपुर निशा बेगम, सद्दाम सैफी, सोनी जाहिद और आबाद खान। धनौली तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद बेबी आलिया, आयन बाबू। आप हैं मुबारकपुर ऊंची तकी, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन, फातमा सोगरा, वकार हैदर, कनीज सकीना, हसीना दिलशाद और वसीम फातमा। सेक्टर नंबर 18 जगाधरी, जिला यमुनानगर, हरियाणा से विनय मोहन खारवान, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी। रेलवे रोड गंज डंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, दबीरुल हसन बेगम, शबनम अनवार, नाजमा बेगम और सरिता गौतम। आप हैं बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता साक्षी, जयश्री मेत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय ट्यूल और पी बी कुलथे। बरेली टाउन बिशारतगंज से सितेश साहू, अभिचल गौर। ये हमारे श्रोता जिला मुरादाबाद, ग्राम दूलापुर से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, राजपाल, काजल, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। आप हैं कटरा चांद खां, पुराना शहर बरेल से जमुना प्रसाद मौर्य, किरण मौर्य, दृष्टि और मानवी मौर्य। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से नारायण भाऊ खड़ से, ललिता आशारानी खड़ से, संजना परी, गणेश कार्तिक, रक्षती देविका चौधरी, लड्डू चौधरी, प्रज्ञा। ये हमारे श्रोता गांव भटनी, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश से ईश्वरलाल मेहर, सुमित्रा मेहर, रेहांश, सृष्टि और आपका पूरा परिवार। आप सभी के लिए सुनवाते हैं फिल्म मर्यादा का ये गीत, जिसको गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम आपकी पसंद में कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सभी श्रोताओं के लिए ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बेबीता रानी, सत्यम और सुंदरम गुप्ता, राजनगर गांधी चौक मधुबनी से अरुण गुप्ता, मौसम और शिवम गुप्ता, वार्ड नंबर 16 गरीब निवास कॉलोनी इंदौर से रेखा रघुवंशी, शोभा नंदिनी रघुवंशी, पूजा बबीता, कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा। आप हैं अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, मयंक और तन्वी गौहर। साथ में हैं जयपाल यादव। जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंती देवी साहू, देवेंद्र प्रताप, नेहा देवी, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार, रुद्रांश प्रताप साहू। शेरवानी स्कूल गंज डंडवार से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लोबना अंसारी और आलिया अंसारी। पटियाली रोड गंज डंडवार से आमिर हुसैन, बेगम तैयबा शेख, फौजिया आहिल अरहान और आपके परिवार के सभी सदस्य। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से। रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद वंडलकर, वीणा और वेदा वंडलकर। आप हैं पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी भानुप्रिया, योगिता नितिन और वंशिका दिवाकर। अकील अहमद शेरकोट से, बुलंदशहर से उमेश कुमार गौड़, रानी गौड़। आप हैं ग्राम सरोदी अंगदपुर टावर के पास मीरगंज बरेली से जाहिद सैफी, साजिद समीर, सोहेल और साहिल सैफी। साथ में हैं मुनेंद्र शर्मा पंडित जी। गंज डंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम, मोहम्मद अयान अंसारी और मोहम्मद उस्मान अंसारी। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोर्ड, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोर्ड। लाहौर डडा जिला बागपत से हमारे श्रोता जगमोहन सिंह, प्रजापत, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन, भुवनेश्वरी देवी। करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति और सुमन देवी। गंज डंडवार से शमशुल कुमार राही, शाहीन, फातिमा और अन्नू। नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू, ज्योति ठाकुर। ग्राम चरौदा बार नवापारा अभ्यारण्य, जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला और कुमकुम सुरलकर। आप हैं देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश कमलेश, गन्नू लाल रजक और मुरली क्षत्रिय। नागपुर महाराष्ट्र से कमल सहनी, हाजी डॉक्टर अफजाल मलिक, संदीप। रामगढ़ कैंट झारखंड से निप्पी सहनी। बहेड़ी से अंजुम भाई, खालदा बेगम। आप हैं कस्बा अग्रवाल, मंडी बागपत से आसिफ अली खान, मुस्कान आसिफ और सारिक अली खान। जिला मुरादाबाद ग्राम बीजना से रिजवान खान, आरिज रजा खान, फैजा और नाजिया खान। पुरन शहर से रानी गौड़, उमेश गौड़। राजधानी रायपुर से नीलू, मेघ, नीलम, वंदना कुमार और बिट्टू कुमार। चंदौसी रोड चमनपुरा उत्तर प्रदेश से मुकेश गौतम, सुनील, अमन गौतम। बुद्धनगर खंडवा से नदीम भाई, बैजोई से राजू जी। और बीड शहर महाराष्ट्र से पोपट राव कुलथे, हनुमंत कुलथे, प्रथमेश कुलथे और आपके सभी साथी। राम सिंहपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से अशोक बब्बर, पवन राजेश, अजय राहुल और मनु। पूजा रेडियो श्रोता संघ पलेरा हाल टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से राजेश कुमार अकेला, यशोदा यादव, राजीव और संजीव यादव। गुरमीत सिंह मीता साउथ दिल्ली से। तेलंगाना निजामाबाद से हमारे श्रोता शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीमुन्ना, दानिश आसिफ शेख। आप हैं कासम कॉलोनी सनावत से यूनुस खत्री, शफी खत्री, इद्रीश, नूरू मीना, इरफान मीना और कासिफ मीना। जिला बरेली ग्राम करेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, माहिनूर, नसरीन और समा अंसारी। मदरसा गेट भाऊपुर मड़ियाहू जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान नवेद, अजरा तबस्सुम। रायपुर अनई जिला बनारस से अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन और आफिया परवीन।

मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरो निशा, शविस्ता मोहम्मद, नसीब पलक, लुबना और यश मंसूरी। आप हैं राजमाता नगर बुल्ढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति आकांक्षा और आकाश कुमार। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला, विशाल और निशा। रियाज भट्टी लाहौर पाकिस्तान से। चर डोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से। दुर्गाम साहू, अजय कुमार, जय किशन साहू, श्रीमती कुमार साहू, श्रीमती इंद्राणी, माया साहू। आप हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण वर्मा, प्रवीण, मुनीश, राहुल शर्मा। और रामपुर रोड किला छावनी बरेली से प्रदीप कुमार पाल, नमन, पिंकी, रिंकी, पिरको, प्रिया, रोही, अलका, संगीता, गरीब भाई और श्री राम राठौर। आप सभी के लिए सुनवाते हैं फिल्म सबक का ये गीत, जिसको गाया है मुकेश ने।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बजने को हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम आपका पत्र मिला। प्रस्तुति है गौरव सक्सेना की और प्रस्तुति सहयोग गजेंद्र यादव का।
1: नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है आज के आपका पत्र मिला कार्यक्रम में और स्टूडियो में स्वागत है गौरव सक्सेना जी आपका। आपको भी नमस्कार।
2: नमस्कार गजेंद्र जी, और नमस्कार हमारे आपका पत्र मिला कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को। तो श्रोताओं, आपका ये इंतज़ार ख़त्म हुआ, फिर सप्ताह एक पूरा हुआ और हम फिर हाजिर हैं आपके लिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपका पत्र मिला लेकर, और आपके साथ बहुत सारी बातें करने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं।
1: बिल्कुल ठीक कहा गौरव जी आपने। कहते हैं ना कि जोश और स्फूर्ति अगर बनी हुई हो तो वो कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता।
2: हाँ बिल्कुल,
1: और इसी जोश और स्फूर्ति के साथ श्रोताओं हम दोनों लोग आपकी सेवा में हाजिर हैं, और इस जोश के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। गौरव जी, हम अपने श्रोताओं को बता दें,
2: बिल्कुल
1: हमारे आकाशवाणी से बस चंद कदम की दूरी पर है बरेली कैंटोनमेंट एरिया।
2: बिल्कुल, वहाँ के लिए एक बहुत ही खास खबर है जो आजकल नेशनल न्यूज बनी हुई है
1: जी,
2: तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं अगर चाहे तो।
1: बिल्कुल, हम तो रोज उधर से गुजरते हैं और आप भी आते हैं।
2: बिल्कुल,
1: पूरे शहर के जाम शोर के बाद, जो धूल और प्रदूषण है उसके बाद जब कैंट एरिया में आते हैं तो कितनी शांति और सुकून मिलता है।
2: और कई बार तो ये लगता भी नहीं कि

0: बरेली शहर में ही हैं।
1: जी अच्छा, सबसे बड़ी खास बात क्या है कि अगर हम उधर जो सर्किट हाउस, वहां से जैसे ही निकलेंगे बस दोनों तरफ रोड के सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे, और घने पेड़।
0: घने पेड़। और एक और चीज़ है कि साफ सुथरा काफ़ी है। बाकी
1: बिल्कुल
0: अगर आप देखेंगे
1: जी
0: कई जगह में गंदगी दिखती है, लेकिन आप पूरे कैंट में आप कहीं भी घूम लेंगे आपको इस तरह की गंदगी नहीं मिलती है। बड़ा देखने वाली बात है और सोचने वाली भी है कि आखिर हम क्यों नहीं अपने आसपास ऐसा कर सकते हैं, इस तरह की
1: जो रिकॉर्ड
0: व्यवस्था।
1: मेंटेन किया है कैंटोनमेंट बोर्ड ने, बरेली कैंट ने, और जो उपलब्धि हासिल की है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे शहर से, बीच से लोग सिर्फ ताजी सांस लेने के लिए कैंट आया करेंगे।
0: कई बार लगता है कि कई नागरिक भी यहाँ पर आएं और यहाँ से प्रेरित होकर वापस जाएं, और जो अपने आसपास का माहौल है उसे भी इसी तरह का करने की कोशिश करें।
1: जरूरी है कि हमारे घर के आगे अगर जगह बची हुई है, हम पहले तो रोड के किनारे अपनी कुछ जगह छोड़कर मकान बनाएं, और जो जगह छूटी हुई है उसमें पेड़ लगाएं। और जब सब ऐसा करने लगेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा बरेली शहर भी, बल्कि बरेली शहर के अलावा जहां जहां लोग हमें सुन रहे हैं, वो सभी इस रिकॉर्ड को बनाएंगे।
0: बिल्कुल, एक बहुत अच्छी पहल है और बहुत बड़ा एक अचीवमेंट भी है इस क्षेत्र के लिए। और हम सभी नागरिकों के भी प्रयास हैं, मैनेजमेंट का तो होता है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान ये होता है कि हमारे नागरिक इसमें कितना कॉपरेट कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा योगदान है।
1: जी
0: तो अच्छा लगता है कि यहाँ के जो वासी हैं, जो रहने वाले लोग हैं, उन्होंने जो भी हमारा प्रबंधन है उसको बहुत ही उन्होंने सपोर्ट किया है, और उसका फलता आज ये कार्बन निगेटिव की जो न्यूज़ आई है कि कैंट एरिया जो बरेली का है
1: जी
0: घोषित किया गया है, तो बड़ा गर्व का विषय है और हर्ष का भी विषय है। और ये ऐसी चीज़ है जिससे हम लोग लगातार प्रेरित हो सकते हैं और लगातार आगे इसको और बढ़ाया जा सकता है और क्षेत्रों को भी
1: बिल्कुल। तो
0: शामिल।
1: श्रोताओं, आज के आपका पत्र मिला कार्यक्रम में ये जो बात आपके साथ साझा करने का सीधा सा उद्देश्य यही है कि आप जहां भी हमें सुन रहे हैं, और ये आवश्यकता है हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कि हम अपने पर्यावरण को संतुलित और प्रदूषण मुक्त बनाएं।
0: और इसके लिए बहुत छोटे छोटे कदम की ज़रूरत होती है, जैसे प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करें,
1: जी
0: कूड़ा सड़कों पे मत फेंकें और पेड़ लगाएं। सबसे बड़ी बात यह है पानी बचाएं। इसी छोटे छोटे कदमों से हम बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं।
1: तो गौरव जी, अब ढेर सारे ईमेल्स मिले हैं और कुछ दोस्तों के पत्र भी आए हैं आज तो।
0: तो आज शुरू किया जाएगा जी।
1: बिल्कुल, तो शुरुआत पुरानी खालिश उसी विधा से जिसे पत्र कहते हैं, और
0: बिल्कुल, अच्छा लगता है कि आज भी लोग पत्र लिख रहे हैं और हम तक पहुंच भी रहे हैं।
1: अच्छा, पत्र लिखने वाले बेकरार बहुत होते हैं, उनको ये अंदाजा नहीं होता है कि हमारा पत्र मिला है कि नहीं मिला है, तो इसी सोच में वो गुम रहते हैं और प्रोग्राम का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, असल में थोड़ा चीजें सापेक्षिक होती हैं। जैसे कि पहले गति होती, सबके पत्र उतने ही दिनों में पहुंचते थे।
1: जी
0: अब कुछ लोग तीव्रगामी हैं, चूंकि ईमेल का यूज करते हैं, कमेंट्स का यूज करते हैं, वो तत्काल तत्क्षण हम तक पहुंच जाते हैं।
1: जी
0: और जो पत्र वाले हैं 2 दिन लिखते हैं सो सांस के,
1: जी
0: उसके बाद होता है कि वो पोस्ट करते हैं और फिर उसके बाद एक प्रोसेस के थ्रू हम तक पहुंचता है, तो उसमें कई बार वक्त लग जाता है। तो आज शुरुआत यहीं से करते हैं।
1: बिल्कुल। तो हमारे ये जो दोस्त हैं वो छावनी अशरफ खां पानी की टंकी के पास होली चौक बरेली से हैं, राम प्रसाद शर्मा जी।
0: जी
1: बहुत बेकरार हैं अपने पत्र का जवाब सुनने के लिए। अब ऐसे कैसे पता चला हमें, क्योंकि रेडियो पर कान लगाकर सुन रहे हैं ये कार्यक्रम। अभी
0: अच्छा।
1: लिखते हैं कि सेवा में गौरव जी को हमारी ओर से नमस्कार। 17 तारीख को इन्होंने आकाशवाणी का जन्म दिवस मनाया, इन्हें बहुत अच्छा लगा, मन खुश हो गया। जो इंतजाम किए गए थे बहुत ही पसंद आए, योगा पर जो कार्यक्रम हुए थे वो भी इनको बहुत अच्छे लगे। श्रोताओं की संख्या भी कम थी लेकिन कम लोगों में जोश बहुत था। सर जी, मेरी आपसे विनती है, जो जो भी अपनी ड्यूटी पर बैठे वो स्वयं अपना नाम पहले प्रकट करें, इससे रोचकता और खुशी हो जाती है जब हम नाम सुनते हैं। और साथ ही नमस्ते यंग बरेली में गाने तो ठीक बजते हैं, बाकी और सब कार्यक्रम ठीक चल रहे हैं। योग के
0: पत्र
1: बारे में कह रहे हैं कि योग दिवस मनाया गया और योग करें, निरोग रहें। और आगे लिखते हैं कि 15 तारीख को इन्होंने देवेंद्र राव जी का कार्यक्रम सुना, उनकी प्रस्तुति में इनको बहुत अच्छा लगा। 16 तारीख को बधाई के पात्र हैं, अनुरोध गीत इनको पसंद लगा, शीशपाल जी ने जो पेश किया था नमस्ते और बरेली कार्यक्रम था वो भी अच्छा लगा, अनुरोध गीत अच्छा लगा। मुनव्वर जहां ने आपकी बात आकाशवाणी के साथ जो कार्यक्रम पेश किया था, विषय था आप रेडियो से कब से जुड़े हैं, तो ये इनको बहुत अच्छा लगा और गाने भी बहुत अच्छे लगे। 5-5 से भजन संध्या मुनव्वर जहां जी ने पेश की, बहुत अच्छी लगी। 17 तारीख को इन्होंने रोचना मिश्रा से नमस्ते बरेली कार्यक्रम सुना, अनुरोध गीत कार्यक्रम इन्होंने सुना, इनको अच्छा लगा। 18 के लिए इन्होंने शिप्रा जी की पेशकश में रसरंग, इनको अच्छा लगा। और परवेश जी ने आपकी बात की जो पेशकश है, आप झूठ का सहारा कब लेते हैं, ये पसंद आया। गाने भी।

0: अच्छे थे। 19 तारीख को इनको फिल्मी फ्राइडे पसंद आया। सुपरस्टार बनने जो तिलक राज अरोड़ा जी थे, उन्होंने पूरा पश्चिम फिल्म की जो आरती सुनी वो बहुत अच्छी लगी। आपके सभी कार्यक्रम, काफी कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं। लिखने में कोई गलती हो तो क्षमा करें, ये राम प्रसाद शर्मा जी हैं।
1: और एक लाइन आपने छोड़ दी है इसमें
0: क्या
1: वो लिख रहे हैं कि पत्र जरूर पढ़ दिया करें, मन खुश हो
0: तो इसे कहने की जरूरत इसलिए नहीं थी कि हमने पढ़ दिया पूरा।
1: जाता है नहीं वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे श्रोता अभी भी संशय की दृष्टि से देखते हैं हम लोगों को कि शायद हमने लिखा और वो पढ़ेंगे
0: अच्छा, कभी ऐसा हुआ है गौरव जी कि
1: नहीं
0: हमने किसी भी श्रोता का कोई भी ईमेल या पत्र जैसा उन्होंने लिखा है वैसा पढ़ा नहीं
1: बिल्कुल
0: हूं?
1: कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक भी श्रोता का जिसने मेल कमेंट्स या फिर पत्र हमें भेजा है
0: जी
1: हमने किसी को भी अनदेखा नहीं किया। हमेशा यही कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा और सभी श्रोताओं को शामिल किया जाए। ये जरूर हुआ है कि कई बार ज्यादा हो जाते हैं हमारे पत्र एक सीमा से ज्यादा तो उन्हें अगले एपिसोड के लिए बचा कर रखना पड़ता है, लेकिन हम लोग किसी भी श्रोता को छोड़ते नहीं हैं। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद राम प्रसाद शर्मा जी इतने लंबे चौड़े और सुंदर से पत्र के लिए। और गजेंद्र जी लग रहा है ये भी कुछ चंद श्रोताओं में से थे जो हमारे यहाँ जो इवेंट क्रिएट किया गया
0: जी
1: था उसके माध्यम से यहाँ पर आकाशवाणी का जो कार्यक्रम था उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पहुँचे थे।
0: जी
1: और ये अच्छा लगा क्योंकि हमारे श्रोता इतना स्नेह हमसे रखते हैं और जुड़ाव महसूस करते हैं कि वो बिना किसी आमंत्रण के, पिछली बार ये कहा गया था शायद कुछ श्रोताओं ने ये भी कहा था कि हमें आमंत्रित नहीं किया गया था, तो आमंत्रित तो किसी को भी नहीं किया गया था, एक हम लोगों ने
0: बिल्कुल
1: एक सूचना दी थी और जिन श्रोताओं को सुविधा हुई जिन्हें भी लगा कि हमें पहुंचना चाहिए उन्होंने अपनी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज कराई थी। और यही उम्मीद करते हैं कि अगर आगे भी इस तरह के आयोजन होते हैं तो हमारे श्रोता यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर हिस्सेदार बनेंगे हमारे कार्यक्रमों में।
0: बिल्कुल
1: और इसी तरह से जिस तरह से आपने लिखा है हमारे कार्यक्रम आप जिस प्रेम के साथ सुनते हैं उन्हें सुनते रहिए और इसी तरह से हमें लिखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: गौरव जी, अब पत्र तो एक ही था और अब आगे ईमेल्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारे ढेर सारे दोस्तों के ईमेल मिले हैं, कुछ शिकायतों के हैं, कुछ तारीफों के हैं। तो जिनमें तारीफों के पुल बंधे हैं वो बाद में देखेंगे, पहले शिकायतों का दौर शुरू हो जाए,
1: हम बिल्कुल बिल्कुल
0: है ना?
1: शुरुआत करते
0: तो
1: हैं।
0: आज का जो पहला ईमेल है वो ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन और इनके सभी साथियों का मिला है। कार्यक्रम पेश करने वाले श्री गौरव जी और साथी को हमारी तरफ से प्यार भरा आदाब। हमें बरेली केंद्र से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, सभी कार्यक्रमों को सुनते भी हैं, मगर अंकुर कार्यक्रम की जो रंगत है वो कुछ फीकी सी लगने लगी है। आजकल इस कार्यक्रम में गीत ज्यादा सुनाए जा रहे हैं, जानकारी कम प्रसारित की जा रही है। गीतों की जगह अगर आप बाल कहानियां या बाल नाटिकाएं प्रसारित करें तो बेहतर रहेगा। सिर्फ गीत बजाकर कार्यक्रम की पूर्ति ना करें, यही हाल है नारी संसार कार्यक्रम का भी। शुरू करने के बाद तुरंत गीत शुरू कर दिया जाता है। बहुत से अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं पर, कुछ लोग नशा करके घर में मारपीट कलेशबाजी करते हैं। वार्ताओं के माध्यम से, नाटिकाओं के द्वारा, इन कार्यक्रम के जरिए जागरूक करें तो और भी अच्छा कार्यक्रम होगा, और सिर्फ गीतों को बजाकर ही समय पूरा ना किया जाए। आजकल एक कार्यक्रम है जो आकाशवाणी बरेली पर धूम मचा रहा है, वो है आपकी बात आकाशवाणी के साथ। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है जो रोज नए नए विषयों के साथ प्रसारित किया जाता है। जानकारी और मनोरंजन दोनों एक साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बाकी के भी आपके कार्यक्रम सभी ठीक ही हैं।
1: ठीक ही है। बहुत बहुत धन्यवाद लाल मोहम्मद जी और उनके साथियों को इस ईमेल के लिए। तो गजेंद्र जी इसमें काफ़ी सारी शिकायतें, शब्द जितने कम हैं शिकायतें उतनी ज़्यादा हैं। खैर हम लोग बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा है कि अंकुर कार्यक्रम की रंगत फीकी सी लगने लगती है। उसके कारण उन्होंने बताया है कि गीत ज़्यादा सुनाए जा रहे हैं, जानकारी कम प्रसारित की जा रही है। तीसरी बात उन्होंने कहा है कि बाल कहानियां या बाल नाटिकाएं प्रसारित करें तो बेहतर होगा,
0: जी
1: सिर्फ गीत बजाकर कार्यक्रम की पूर्ति ना करें। तो सबसे पहले तो हम यही बताना चाहेंगे कि हर जो भी स्पोकन कार्यक्रम होता है तो उसमें एक या दो गीत बजाना अनिवार्य होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो इस वजह से अगर आपको ये लगता है कि हम लोग जानबूझकर कार्यक्रम की गुणवत्ता खराब करने के लिए अगर बजा रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं
0: बिल्कुल
1: है।
0: नहीं।
1: और दूसरी चीज़, जैसे आपने एक सुझाव दिया है कि बाल नाटिकाएं और बाल कहानियां प्रसारित करें। तो अगर आपने पिछला कार्यक्रम हमारा सुना होगा तो आपको पता होगा कि उसमें हम लोगों ने एक एपिसोड जिसमें था बाल कविताएं थी
0: जी
1: उसे प्रसारित किया गया था, और मुझे लगता है वो भी साहित्य का एक स्वरूप होता है।

और तीसरी बात आपने कहा है कि इसमें जो रस कम हो रहा है, मन कम लग रहा है इस कार्यक्रम में, तो उसके बारे में हम लोग ये बताना चाहेंगे कि हम लोग भी कुछ परिवर्तन चाहते हैं अंकुर कार्यक्रम को, कि और बेहतर बनाया जा सके, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और यही आपसे अनुरोध करते हैं कि आप कार्यक्रम को लगातार सुनते रहें। आपको निश्चित तौर पर कुछ पहले से बेहतर और कुछ बदले हुए जो चीज़ें हैं, कई नई चीज़ें आपके सामने आएंगी और आपको निश्चित तौर पर हमारा ये कार्यक्रम पसंद आएगा। दूसरी चीज़, आपने ये नारी संसार कार्यक्रम के संबंध में भी वही बात कही है कि जो हमारे यहाँ जो नारियाँ हैं, जो दुनिया की आधी आबादी है, उस पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके संदर्भ में हमें ज़्यादा जागरूक किया जाए। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि समस्या सिर्फ एक नहीं है, समस्या बहुत सारी हैं और ये कार्यक्रम होता है, ना केवल नारी हिंसा की बात हो रही है बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे विषय हैं जो नारियों से संबंधित हैं, उनके वेलफेयर से।

0: चीज़ें हैं, कई नई चीज़ें आपके सामने आएंगी और आपको निश्चित तौर पर हमारा ये कार्यक्रम पसंद आएगा। दूसरी चीज़, आपने ये नारी संसार कार्यक्रम के संबंध में भी वही बात कही है कि जो हमारे यहाँ जो नारियाँ हैं, जो दुनिया की आधी आबादी है, उस पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके संदर्भ में हमें ज़्यादा जागरूक किया जाए। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि समस्या सिर्फ एक नहीं है,
1: जी
0: समस्या बहुत सारी हैं। और ये कार्यक्रम होता है ना केवल नारी हिंसा की बात हो रही है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे विषय हैं जो नारियों से संबंधित हैं, उनके वेलफेयर से संबंधित
1: जी
0: हैं। तो हमें उसके साथ साथ इस संतुलन को बनाए रखना है कि जो अच्छी बातें हैं वो भी बताई जाए,
1: जी
0: और जो अत्याचार के साथ साथ जो बाकी उनके वेलफेयर की चीजें हैं जो हमारे या महिलाओं के विकास को एक नई दिशा दे सकते हैं, उन्हें भी शामिल किया जाए। और हमारे पास इसमें जितना समय रहता है, हम लोग कोशिश यही करते हैं कि कम से कम समय में अधिकतम जो भी अच्छी चीजें हैं आपको बता पाएं। एक
1: जी
0: आपने और सुझाव दिया है कि इसमें भी नाटिकाएं और वार्ताएं शामिल की जाएं। तो अगर आप लगातार कार्यक्रम ये सुनते हैं तो आपको पता होगा कि लगभग प्रत्येक कार्यक्रम में एक वार्ता इसमें जाती है।
1: जी
0: और अगर ये बात है कि हर कार्यक्रम में आपको नाटिका सुननी है, तो वो कार्यक्रम दरअसल केवल नाटिका का ही रह जाएगा, क्योंकि कोई भी जो नाटिका होती, कम से कम आपको 10 से 15 मिनट देने पड़ेंगे। और
1: बिल्कुल
0: जब हर कार्यक्रम में आप में नाटिका सुनेंगे, तो अगला सवाल और शिकायत आपकी ही होगी कि हमें तो हर कार्यक्रम में नाटिका ही सुनने को मिल रही है।
1: जी
0: तो ये भी एक बड़ी समस्या फिर आएगी। खैर, आपने जो अपने सुझाव थे हम तक पहुंचाए, और अगर हम लोगों को लगता है कि इसमें कुछ और बेहतर करने की गुंजाइश है, तो हम लोग उसे आगे करने की कोशिश करेंगे। आपसे यही अनुरोध है कि आप हमें इसी तरह से लिखते रहिए और हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: गौरव जी, अब खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा जी का एक ईमेल हमें मिला है। लिखते हैं, सप्रेम नमस्ते जी, 19 जून का फिल्मी फ्राइडे इन्होंने सुना और कार्यक्रम सुनकर दिल खुशी से झूम उठा। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। कार्यक्रम में हमें सुपरस्टार बनाया गया और पसंद का गाना भी सुनवाया गया। सच मानिए, बहुत ही ज्यादा खुशी प्राप्त हुई। इतनी खुशी तो शायद राजेश खन्ना जी और अमिताभ बच्चन जी को भी सुपरस्टार बनने पर नहीं हुई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। 21 जून का कार्यक्रम आपका पत्र मिला सुना गौरव जी और साथियों की आवाजों में अच्छा लगा। कार्यक्रम में पत्र प्यार पूर्वक शामिल किए गए, उत्तर बड़े सम्मान के साथ दिए गए। आकाशवाणी बरेली से प्रस्तुतकर्ता प्रदीप मिश्रा जी की मधुर आवाज सुनाई नहीं दे रही है, क्या वो छुट्टी पर चल रहे हैं? कार्यक्रम नमस्ते बरेली, आपकी पसंद लोकगीत, सब रंग झुमका गिरारे, रस रंग अनुरोध गीत, आपकी बात, भक्ति गीत और बहुत से कार्यक्रम ब्रजेश तिवारी जी, रोचना जी, अमृता सिंह और शिप्रा मिश्रा जी, परवे जी, देवेंद्र रावत जी, संजय कुमार जी, नाजमा जी, शीशपाल जी, श्रृंगार शेखर पाठक जी, नीतू त्रिपाठी जी, इन सब की आवाजों में हरीश मौर्य जी की शानदार आवाजों के साथ सुने ये कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे और आप सभी प्रस्तुतकर्ताओं का दिल से आभार प्रकट करते हैं।
0: आभार हम भी प्रकट करते हैं तिलक राज जी का, कि जितने प्रेम से, जितने स्नेह से ये हमें लगातार लगभग प्रत्येक सप्ताह हमें अपना ईमेल भेजते हैं और अपने विचारों से, अपने सुझावों से हमें अवगत कराते रहते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है तिलक राज जी का। और जैसा कि इन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि प्रदीप मिश्रा जी की मधुर आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, क्या वो छुट्टी पर चल रहे हैं? तो बिल्कुल, वो कुछ निजी कारणों के चलते अभी अवकाश पर हैं, और हम सभी उम्मीद करते हैं कि शीघ्र से शीघ्र वो आएंगे ऑफिस में और अपने जो भी उनका कार्यभार उसे ग्रहण करेंगे, और आपकी आपको शीघ्र ही उनकी आवाज़ सुनाई देगी। बाकी आपने जिस तरह से आप हमारे कार्यक्रमों को सुन रहे हैं, सुनते रहिए और हमें लिखते रहिए।
1: गौरव जी,
0: जी
1: निर्धारित गति सीमा के भीतर ही वाहन चलाएं, तेज गति दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण होती है।
0: बिल्कुल, बात तो सही है।
1: सही है, और ये सही बात कही है बरेली जंक्शन से गरीब भाई ने।
0: अब वो होता है ना कि परिस्थितियों से अनुभव डेवलप होते हैं, तो मुझे लगता है कि जिस जगह से हैं ये, तो
1: जी
0: वहाँ इस तरह की चीज़ें बहुत होती होंगी ना।
1: बिल्कुल
0: ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है जंक्शन के आसपास या रोडवेज के आसपास,
1: जी
0: और दुर्घटनाएं भी मुझे लगता है तेज़ गति से या हेलमेट ना पहनने से या कई और कारणों से होती रहती होंगी, तो आदमी के मन में ये बैठ जाता है।
1: अच्छा, बिना हेलमेट वालों का चालान भी ये सबसे ज्यादा देखते होंगे, क्योंकि ऐसे
0: बिल्कुल
1: स्थान जहां रोडवेज, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन होते हैं, वहां पर सर्चिंग और चेकिंग बहुत ज्यादा होती
0: बिल्कुल,
1: है।
0: यातायात पुलिस बहुत सतर्क रहती है वहां पे,
1: जी
0: तो इनका अनुभव शायद
1: सही है।
0: बिल्कुल
1: तो मुझे लगता है कि जो भी दोस्त हमें सुन रहे हैं, न सिर्फ चालान से बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए हेलमेट लगाइए।
0: बिल्कुल
1: तो लिखते हैं आगे, ये प्रस्तुतकर्ताओं को हमारा नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: 19 जून को इन्होंने फिल्मी फ्राइडे सुना, लेकिन इस कार्यक्रम का जो समापन था वो आरती के साथ किया गया, बहुत अच्छा लगा। आपकी पसंद अनुरोध गीत में भी प्रस्तुति इनको पसंद आई और 20 जून को सुबह के प्रसारण की

0: प्रस्तुति बहुत देर से शुरू हुई, इसका क्या कारण था? नमस्ते बरेली अनुरोध गीत और हेलो बरेली में रोचना जी की प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। 21 जून को अंकुर में नाजमा जी के साथ मुनव्वर जी की जो प्रस्तुति थी अच्छी तो थी, पर प्रोग्राम में वो क्वालिटी नहीं मिल पाई जो नाजमा जी और नेमचंद भैया मिलके करते हैं। नेमचंद भैया की छुट्टी कब समाप्त हो रही है बताइएगा। और मनभावन रसरंग में शीशपाल जी की प्रस्तुति अच्छी लगी। 22 जून को अनुरोध गीत में रोचना जी की प्रस्तुति पसंद आई। आपकी बात आकाशवाणी के साथ। मैं माता पिता को बच्चों का दोस्त होना चाहिए या शिक्षक, इस विषय पर श्रृंगार शेखर पाठक जी की जो प्रस्तुति थी वो शानदार रही। 23 जून को झुमका गिरारे में डोरी लाल जी ने जो बातचीत की, नीतू जी की प्रस्तुति जो थी वो काबिले तारीफ थी। और आपकी बात आकाशवाणी के साथ में श्रृंगार शेखर जी की जो प्रस्तुति थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, इस विषय पर प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी। 24 जून को यंग बरेली में रोचना मिश्रा जी द्वारा अन्या सिंह से जो बातचीत की गई वो पसंद आई। अनुरोध गीत की प्रस्तुति भी अच्छी रही। आपकी बात आकाशवाणी के साथ में जो विषय था, परवेज जी ने रखा कि गर्मियों के मौसम में पशु पक्षियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी, ये विषय पर जो विचार दिए वो अच्छे विचार थे। 25 जून को इन्होंने झुमका गिरारे में झुमका चौराहे से नीतू जी ने जो बातचीत की प्रस्तुति थी वास्तव में दिल को भा गई। आपकी बात आकाशवाणी के साथ में ब्रजेश तिवारी जी की प्रस्तुति में अंत भला तो सब भला विषय पर लोगों के विचार अच्छे थे और सभी प्रस्तुतकर्ताओं को दिल से बधाई भी देते हैं। ये
1: बहुत बहुत शुक्रिया गरीब भाई आपका कि आपने इतना सुंदर ईमेल हम तक पहुँचाया। और जैसा आपने बताया है कि 20 जून को सुबह के प्रसारण की प्रस्तुति बहुत देर से शुरू हुई, इसका क्या कारण था? तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इसके बारे में आप अगर कुछ विस्तृत रूप से लिखते तो कुछ स्पष्ट हो पाता, क्योंकि इससे ना तो ये पता लग रहा है कि कोई कार्यक्रम देर से शुरू हुआ है या ओपनिंग ही देर से हुई है। ऐसा तो कुछ होता नहीं कि ओपनिंग तो हमेशा जब भी होती है हमारी एक निश्चित समय पर ही होती है। अगर किसी कार्यक्रम के संदर्भ में आपकी ये शिकायत है तो हम चाहेंगे कि अगली बार अगर आप जब भी लिखना चाहें तो कार्यक्रम का नाम सहित बताया करें, क्योंकि हम लोगों को भी उसके बारे में जानकर सुधार करने में थोड़ा सहूलियत रहती है। दूसरी चीज, आपने ये बताया कि अंकुर कार्यक्रम में प्रोग्राम की क्वालिटी नहीं मिल रही है जो पहले हुआ करती थी। तो क्वालिटी से कई बार होता है कि आदत भी एक चीज होती है। क्वालिटी और आदत में हमें अंतर समझना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है हम आदत बना लेते हैं फिर उसको कहते हैं क्वालिटी
0: जी,
1: ये चीज रहती है। तो होता क्या है कि कार्यक्रम चलते आ रहे हैं, क्योंकि होता है कि लोग बदलते रहते हैं, नए लोग आते हैं, पुराने लोग जाते हैं, और इस तरह से एक क्रम चलता रहता है। बेहतर यही होता है कि जिस कार्यक्रम को हम लोग सुन रहे हैं कि उसके स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे। और हम लोग भी ये काम कर रहे हैं कि अंकुर कार्यक्रम है, ना केवल अंकुर कार्यक्रम, बाकी सभी कार्यक्रमों में भी कुछ गुणात्मक सुधार हम लोग लाएं, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए हमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए और उम्मीद करते हैं कि जो भी हम लोग परिवर्तन ला रहे हैं, जो भी हम लोग बेहतर करने की, बेहतर आप लोगों को प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सभी लोगों का जो सहयोग हमें मिलता रहेगा और जो आपका प्यार जो अभी तक बना है वो बना रहेगा। और जिस तरह से आप हमारे कार्यक्रमों को सुन रहे हैं, अपने विचार हम तक पहुंचा रहे हैं, इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहिए और हमें लिखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद
0: गौरव जी। अगला जो ईमेल है वो हमें भेजा है विष्णु मिस्किन, रितिका मिस्किन, वाणी आरब, चंद्रकला, गणेश काशीनाथ, संगीता मिस्किन, प्रियांशी और सोनी ने। ये दयानंद कॉलेज सोलापुर महाराष्ट्र से हमारे साथी हैं, तो विष्णु मिस्किन वगैरह उनके पूरे परिवारीजन हैं
1: जी।
0: आप लिखते हैं कि आकाशवाणी का मैं नियमित श्रोता हूं। 2 जुलाई 26 को आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम में 4:27 पर मेरा फोन कॉल जुड़ा। उस दौरान सही होने और सही लगने में क्या फर्क है, इस विषय पर अपने विचार भी साझा करने का अवसर मिला। अपनी आवाज रेडियो पर सुनकर और अपनी पसंद का गीत सुन के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। लगभग 3 महीने बाद मेरा कॉल कार्यक्रम में लगा, इसलिए ये अनुभव मेरे लिए और भी विशेष रहा। 30 जून 2026 को प्रसारित किसान वाणी कार्यक्रम भी बहुत उपयोगी लगा। धान की फसल में पहला खाद कब और कितना डालें, इस विषय पर जो जानकारी दी गई थी किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक जानकारी थी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम किसानों को जागरूक बनाने का सराहनीय कार्य कर रहा है। इसी दिन 5:30 पर इनसे मिलिए कार्यक्रम में डॉक्टर

0: आशीष सक्सेना जी से मन के भावों को व्यक्त करना कितना जरूरी है, इस विषय पर चर्चा हुई। ये चर्चा प्रेरणादायक लगी। उनके विचारों ने श्रोताओं को सकारात्मक संदेश दिया। आकाशवाणी बरेली के यंग बरेली कार्यक्रम में यंग अचीवर के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी पर चयनित तथा 145वीं रैंक प्राप्त करने वाले श्री उमेश कुमार जी की सफलता की कहानी सुनकर बहुत प्रेरणा मिली। ऐसे कार्यक्रम युवाओं में आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की प्रेरणा जगाते हैं। मैं प्रतिदिन सुबह 10 बजे से 11 बजे तक आपकी पसंद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। इस कार्यक्रम में प्रसारित मधुर गीत दिन की शुरुआत को आनंदमय बना देते हैं। आपका पत्र मिला कार्यक्रम भी मुझे बहुत पसंद है। मैं पत्र लिखने का प्रयास करता हूं, लेकिन समयाभाव के कारण अक्सर संदेशों के माध्यम से अपनी सहभागिता दर्ज कराता हूं। आकाशवाणी के सभी प्रस्तुतकर्ताओं, तकनीकी टीम और कार्यक्रम निर्माताओं को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी श्रोताओं तक ज्ञान, मनोरंजन और प्रेरणा पहुंचाने का उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। भविष्य में भी ऐसे ही उत्कृष्ट कार्यक्रम प्रसारित होते रहें, यही मेरी कामना है।
1: नमस्कार विष्णु जी, और बहुत बहुत धन्यवाद इस अच्छे से ईमेल के लिए। अगर गजेंद्र जी, आज अगर आप देखेंगे ना, तो सबसे अच्छा ईमेल इनका है।
0: बिल्कुल,
1: बहुत व्यवस्थित तरीके से एक एक कार्यक्रम के बारे में जो भी उन्होंने फील किया है जब भी सुनते हैं, और बहुत ही विस्तृत तरीके से उन्होंने हम तक अपनी बात पहुंचाई, और बहुत स्पष्ट रूप से 3 महीने बाद मेरा कार्यक्रम में कॉल लगा, इसलिए यह अनुभव मेरे लिए और भी विशेष रहा। खैर, ना केवल श्रोताओं के लिए, हमें भी अच्छा लगता है कि अगर हमारे श्रोता हमसे जुड़ते हैं। और देखने में आता है कि कई बार हमारे श्रोता ये शिकायत करते हैं कि हमारा जो आपके जो भी फरमाइशी कार्यक्रम है वहाँ कॉल नहीं लगता, मेरे कमेंट्स नहीं पढ़े जाते, या इस तरह की कुछ मिली जुली शिकायतें रहती हैं। तो हम सभी श्रोताओं से यही कहना चाहते हैं कि कई बार कुछ समय लग जाता है, लेकिन धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि होता है कि हमारे पास समय सीमित होता है। उस सीमित समय में बहुत सारे श्रोता अपने अपना जो कहते हैं ना भाग्य आजमा रहे हैं, उसमें नहीं पता होता है कि हम लोगों को भी नहीं पता होता है कि हम लोग किसकी कॉल अगली आने वाली है, किसकी कॉल उठा रहे हैं। तो हमारे पास ये थोड़ी सी समय की जो एक बाध्यता है, उस वजह से हम सभी कॉल एक साथ में नहीं उठा सकते। आप लोग भी इस समस्या को समझते ही होंगे, लेकिन जैसा कि विष्णु जी ने लिखा है तो मुझे अच्छा लगा। ये बाकी श्रोताओं के लिए भी एक तरह से ना कि थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, सीख भी है कि थोड़ा सा आपका ये नंबर जरूर आएगा। और अगली चीज, जैसे उन्होंने एक और लिखी है कि मैं लिखने का पत्र लिखने का प्रयास करता हूं, लेकिन समय अभाव के कारण मैं अक्सर संदेशों के माध्यम से अपनी सहभागिता दर्ज कराता हूं। तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी श्रोताओं के लिए तीनों माध्यम खुले हुए हैं, ईमेल भी है, फेसबुक पे आप कमेंट्स के माध्यम से भी कर सकते हैं, और अगर आप लिखना चाहते हैं तो हमें पत्रों के माध्यम से भी अपने विचार लिखकर भेज सकते हैं। तो जिसमें हमारे श्रोताओं को अच्छा लगे, सहूलियत हो, जिसमें उन्हें लगे कि मतलब मेरे फेवरेबल है मेरे हिसाब से, तो आप उसमें हमसे जुड़ सकते हैं। और विष्णु जी, बाकी आपने जिस तरह से लिखा है और हमारे कार्यक्रमों से जो आप स्नेह हमें लोगों पर लुटा रहे हैं, इसी तरह से अपना स्नेह बनाए रखिए और हमें लिखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद
0: गौरव जी। अब जो अगला ईमेल है हमारे, वही है अनोखे श्रोता अनोखे लाल मौर्य जी। तो कहते हैं ये कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम पेश करने वाले को हमारी ओर से प्यार भरा नमस्कार। हमेशा इनके ईमेल की जो शुरुआत है वो शुक्रवार से ही होती है, तो शुक्रवार को दोपहर इन्होंने 1 बजे से अनुरोध गीत कार्यक्रम सुना। गाने बहुत अच्छे सुनवाए गए थे इसमें, और ये गाने भी इनको पसंद आए। श्रोताओं के पत्र भी बहुत शामिल किए गए थे। इसी दिन शाम 5:30 पर लकी 3 कार्यक्रम इन्होंने सुना मोहम्मद परवेज जी के साथ, ये भी इनको बेहद पसंद आया। इसमें श्रोताओं की पसंद पर जो गाने सुनवाए गए थे वो अच्छे थे। और शनिवार को शाम 5:30 पर इन्होंने हमारा फोन इन कार्यक्रम सुना जिसका नाम हेलो बरेली है। कहते हैं कि शीशपाल जी के साथ ये कार्यक्रम हमने सुना, गाने अच्छे थे, श्रोताओं से बहुत बेहतरीन बातें की गई। सुबह को रविवार 8:15 पर अंकुर कार्यक्रम इन्होंने सुना नाजमा जी और मुनव्वर जहां जी के साथ, जो गाने सुनवाए गए थे वो तो अच्छे लगे और बातचीत भी बहुत अच्छी थी। इसी दिन शाम 5:30 पर मन भवन कार्यक्रम सुना और हमारी शब्दावली पर गाने अच्छे सुनवाए गए उस दिन, और बहुत अच्छी बातें की गई कार्यक्रम में। 10 बजे सोमवार को आपकी पसंद इन्होंने कार्यक्रम सुना और श्रोताओं के कमेंट बहुत शामिल हुए, और जो गाने सुनवाए गए वो भी इनको अच्छे लगे। मंगलवार को भी इन्होंने नमस्ते बरेली कार्यक्रम सुना, जानकारी इनको पसंद आई उस दिन की और बरेली शहर के बारे में जो बातें थी। इसी दिन 11:15 पर इन्होंने झुमका गिरारे कार्यक्रम सुना और कह रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम था ये नीतू जी ने पेश किया था, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। इसी दिन शाम 6 बजे युवाणी कार्यक्रम इन्होंने सुना, श्रोताओं की जानकारी जो दी गई अच्छी थी, गाने अच्छे थे, बाकी आकाशवाणी बरेली के सभी कार्यक्रम अच्छे चल रहे हैं। अनोखे लाल मौर्य, कटरा चांदखा, पुराना शहर, बरेली से।
1: एक बात तो माननी पड़ेगी गजेंद्र जी, कि दिन कोई हो, समय

0: कोई अनोखे लाल जी लगातार हमें सुनते हैं और लगातार लिखते रहते हैं, भले ही वो थोड़ा सा सहज महसूस नहीं कर पा रहे हैं तकनीक के साथ, लेकिन फिर भी उनकी कोशिश रहती है कि अपनी भावनाएं हम तक पहुंचाएं।
1: बिल्कुल।
0: और शायद ही कोई सप्ताह होता होगा जिस बार हम लोगों को उनका मेल नहीं मिलता होगा, किसी भी रूप में मिले, हिंदी में लिख के, इंग्लिश में लिख के, लेकिन आता जरूर है। तो ऐसे जो श्रोता है सब हमारी पूंजी है, और उनका जो प्यार है वही हम लोगों को कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। तो बस श्रोताओं से यही हम लोग अनुरोध करते हैं कि आप लोग हम लोगों को लगातार प्रेरित करते रहिए और हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहिए। और जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं, स्नेह भेजना चाहते हैं या शिकायतें भेजना चाहते हैं, थोड़ा सा मेहनत कीजिए और भेजिए हम तक, क्योंकि कई बार हो रहा है अब धीरे धीरे मेल्स और पत्र और कमेंट्स की संख्या जैसे ना थोड़ा सा श्रोता थक गए हो उस रूप में थोड़ा सा कम कर दिया है। तो यही हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि थोड़ा सा संख्याओं को बढ़ाइए, मेल्स की संख्या, पत्रों की संख्या और कमेंट्स की संख्या को। कार्यक्रम में भी एक रोचकता आएगी, जब बहुत सारे पत्र होंगे, बहुत सारे विचार होंगे, तो बात करने में भी और मजा आएगा।
1: बिल्कुल ठीक है गौरव जी आपने। और अगर आप कार्यक्रमों में प्रतिभाग नहीं करेंगे तो फिर हमारा व्यर्थ है कार्यक्रम करना।
0: बिल्कुल, और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा जब तक अगर बहुत सारे लोग नहीं होंगे, बहुत सारे लोग चिट्ठियां नहीं भेजेंगे, तो होगा क्या, कार्यक्रम में एक एक तरह से वो स्टैग्नेशन आ जाता है, फिर उतना जो रोचकता होती है, जैसे होता है कि जितने विचार होते हैं उतनी ही रोचकता होती है, और हर सदस्य बाकी दूसरे से कहीं ना कहीं बेहतर होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो जब इस तरह की बहुत सारी बातें हमारे साथ एक साथ जुड़ती हैं, तो जीवन में भी रोचकता बनी रहती है और कार्यक्रम में भी।
1: तो हम अपने श्रोताओं से पुनः यही निवेदन करेंगे कि अगली बार ढेर सारे ईमेल्स, कमेंट्स और पोस्ट तो डाली जा चुकी है।
0: हाँ,
1: और इसके अलावा पत्र भी लिख सकते हैं, तो चलें क्या?
0: हाँ बिल्कुल चलना है, क्योंकि समय तो बता रहा है कि चलना पड़ेगा।
1: लेकिन हम भूल रहे हैं,
0: क्या
1: पता बताना?
0: अरे तो बताइए फिर।
1: हाँ चलिए, तो श्रोताओं नोट कर लीजिए, कार्यक्रम में पत्र भेजने के लिए पता है, कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, पिन कोड 243001। और जो सबसे ज्यादा आज हमने पढ़े यानी ईमेल भी कर सकते हैं आप हमें,
0: और वो है आपका पत्र मिला bareli@gmail.com।
1: इसके अलावा जो आज नहीं पढ़े वो है कमेंट, और वो कमेंट मिलेंगे अगले हफ्ते। तो आप आकाशवाणी बरेली के पेज पर आइए और आपका पत्र मिला कार्यक्रम से संबंधित पिन पोस्ट में कमेंट कर दीजिए।
0: हाँ बिल्कुल।
1: हमें अच्छा एक चीज और भी है, हम अपने श्रोताओं को बता दें, अब तक हमारे श्रोता हमारे आसपास के जो दोस्त हैं वो सुनते हैं फ्रीक्वेंसी पे 100.4 FM पे, और इसके अलावा न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी सुनते हैं। अब हमें और भी एक जगह सुना जा सकता है, वो है वेब्स OTT।
0: बिल्कुल, सभी श्रोताओं के लिए और नए श्रोताओं के लिए। हाँ। भी जो आज की जो जनरेशन आ रही है, यंग जनरेशन
1: जी,
0: तो जो कि बहुत वो है फैमिलियर है डिजिटल चीजों से, तो उसके लिए एक नया ऑप्शन मिल गया है,
1: वेब्स OTT पर। हाँ। आइए, और वहाँ आपको ढेर सारा मनोरंजन मिलेगा, आप रेडियो सुन सकते हैं,
0: बहुत सारा मनोरंजन है, बहुत सारा ज्ञान है, और जो कुछ आप पसंद करते हैं वो सब
1: वहाँ मिलेगा।
0: तो
1: देखते हैं हमारे कितने दोस्त इस समय अपने फोन में वेब्स OTT को इंस्टॉल करते हैं।
0: बिल्कुल करेंगे हमारे श्रोता है।
1: श्रोताओं आप सब खुश रहें, ये दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं। आज के आपका पत्र मिला कार्यक्रम से गजेंद्र
0: और गौरव को दीजिए
1: अनुमति, कीजिए स्वीकार, सब प्रेम,
0: नमस्कार।
2: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपका पत्र मिला 100.4 FM पर, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। आइए अब आपको जोड़ते हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे FM रेनबो के कार्यक्रम।

0: जो भारत का है वो सभी को मालूम है। हम बात कर रहे थे इससे पहले भी, हम कहते थे कि अफगानिस्तान में कुछ लोग हैं वो, या फिर जो बलूचिस्तान में है वो भारत आना चाहते हैं, उनके लिए पेरिस भारत है और कुछ नहीं है, वो फॉरेन नहीं जाना चाहते। तो कहीं ना कहीं जो ये हमारा इमेज है एज अ स्टेबलाइजर, वासुदेव कुटुंबकम, वैसे मेरे स्कूल का मोटो था ये, तो कहीं ना कहीं ये जो मोटो है कि पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है, भारत ने तो कब से बुद्धिज्म के टाइम से ये फॉलो करता आ रहा है, भारत हिंदुइज्म या वैदिक लिटरेचर है उसके अंदर भी ये चीजें की मेंशन होती है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी मजबूत रहती है, और हम सहायता यमन में आपने देखा
1: जी,
0: सबसे पहले भारत पहुंचा था पाकिस्तानी सोल्जर्स को। अरे मेरे को आपको एक अच्छी कहानी सुनानी है इसके अंदर, क्योंकि इतनी सारी टेक्निकल बातें हो गई, एक कहानी रह गई
1: जी।
0: ये है 2005 की, कांगो के अंदर यूएन पीस कीपिंग स्टेबलाइजेशन मिशन चल रहा था, वहां पे पाकिस्तानी भी थे, बांग्लादेशी भी थे और भारतीय भी थे। वैसे मैं एक चीज आपको बताऊं, सबसे ज्यादा जो यूएन पीस कीपर्स होते हैं वो इन्हीं तीन देशों से आते हैं।

0: इस
1: जी
0: समय सबसे ज्यादा 5,600 जो हैं बांग्लादेश से हैं, 5,200 से 500 भारत के हैं, और 2,600 के करीब हैं पाकिस्तान के। उस समय 5 बांग्लादेशी को मार दिया गया, उधर के जो मिलिशिया थी उन्होंने मार दिया था कॉन्गो के अंदर। तो इस इतिहास करके एक जगह थी जहां मारा उनको।
1: जी
0: उस समय पाकिस्तान के सोल्जर्स को भेजा गया था कॉर्डन एंड सर्च करने के लिए गांव के अंदर। वो बेचारे फंस गए, चारों तरफ से गोलियां चल रही थी, तब उन्होंने भारत से मदद मांगी थी। और भारत के जो MI-25/35 अटैक हेलीकॉप्टर है वो
1: जी
0: गए, उन्होंने सप्रेशन किया, 50 के करीब मिलिशिया के लोगों को मारा, फिर हमारे MI-17 गए और उन्हीं पाकिस्तानी सोल्जर्स की कैजुअल इवैक्यूटीज या जिनको वहां से इवैक्यूएट करना था उनको लेके आए ताकि उनको बचा सके। ये है भारत, हम ये नहीं देखते कि हमारा दुश्मन कौन है। मदद
1: जी
0: में जब भी कोई पुकार करता है सबसे पहले भारतीय और भारतीय वायुसेना के जहाज वहां लैंड कर रहे होते हैं, भारतीय सेना वहां पे कर रही होती है ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस, और भारतीय नेवी के जो जहाज हैं वो
1: जी
0: लार्ज स्केल इवैक्यूएशन कर रहे होते हैं।
1: जी बहुत अच्छी बात आपने बताई, और यही वजह है शायद कि माननीय प्रधानमंत्री जी हर देशवासी से ये उम्मीद करते हैं कि वो अपनी अपनी भूमिका निभाता रहे। और कहा भी है प्रधानमंत्री जी ने कि हम जो है देश के लिए मरने का मौका सबको नहीं मिलता, लेकिन देश के लिए जीने का जो अवसर मिलता है उसमें हम अपने देश पर गर्व करते हुए जिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी कमांडर बिक्रमजीत सिंह, भारतीय नौसेना को तो बिल्डर्स नेवी कहा जाता है और बहुत सारी उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं, ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम जब इसकी कमर्शियल एक्टिविटीज की बात करते हैं या हम बात करते हैं अपनी मर्चेंट नेवी की, क्या उसमें भी स्वदेशीकरण के कुछ लाभ हो सकते हैं? क्योंकि सीधे तौर पर इसे हम दो बिजनेस से जोड़कर देखते हैं, क्या उसमें भी लाभ होता है स्वदेशीकरण से?
2: बिल्कुल सही नीलम जी। देखिए, हम जैसे मैंने आपको पहले हिस्ट्री बताई थी, तो 60s, 70s और थोड़ा अर्ली 80s तक हम एक बायर्स नेवी थे, जो मैं अभी इंडियन नेवी की बात कर रहा हूँ, और फिर हमारा ट्रांजिशन हुआ टू बिल्डर्स नेवी जैसे आपने बताया, और इतना पूरा एक तरह से एक इकोसिस्टम क्रिएट हुआ शिप बिल्डिंग को लेके।
1: जी
2: क्योंकि शिप बिल्डिंग का एक अलग इकोसिस्टम रहता है, एक अलग टाइप के MSME सपोर्ट रहते हैं, एक अलग टाइप का क्लस्टर रहता है। आपने देखा होगा अभी जो हमारे कुछ मैरिटाइम क्लस्टर्स बन रहे हैं, डेफिनेटली कोस्टल स्टेट्स में, महाराष्ट्र में, अगर आप वेस्ट में देखें महाराष्ट्र में, गुजरात में, नीचे आइए आप तो फिर ईस्ट में तमिलनाडु, विशाखापट्टनम, ओडिशा,
1: जी
2: तो इन स्टेट्स में हमारे क्लस्टर्स बन रहे हैं जहाँ पे इंडिजनाइजेशन और शिप बिल्डिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन जो हमारे जो मेनली अभी हमारी जो वॉरशिप बिल्डिंग हो रही है वो हो रही है हमारे DPS यूज में,
1: जी
2: यानी कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग शिपयार्ड्स में, और एक ऑफकोर्स हमारा PSU शिपयार्ड जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है केरला में। तो 4 DPSU, 1 PSU है, तो ये अपना एक अलग इकोसिस्टम बना के चल रहे हैं। इस इकोसिस्टम को और इसका महत्व समझते हुए हमारी गवर्नमेंट ने और प्रधानमंत्री जी ने जो एक क्लैरियन कॉल दिया था कि कमर्शियल शिपिंग में भी
1: जी
2: अब हमारा आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। आपको डेफिनेटली याद होगा कि उन्होंने दो यू नो एक MIV दिया, एक विजन दिया है 2030 के लिए, यानी कि
1: जी
2: 2030 तक इंडिया को कमर्शियल शिपिंग में कहाँ पहुंचना है दुनिया में। आज हम बिल्कुल ही जिसको कहते हैं ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हमारी प्रेजेंस है, 2030 तक हम चाह रहे थे कि हम Top 10 Nations में आ जाएं।
1: जी
2: तो ये उन्होंने एक लक्ष्य दिया था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज जिसको जो स्टीयर कर रही है, और 2047 जो हमारा अमृतकाल विजन दिया था उन्होंने, 100 साल हमारे इंडिपेंडेंस के, कि हम
1: जी
2: Top 5 Nations में आ जाएं। तो ये कहना बहुत ही सरल है और करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सारी एजेंसीज को इस तरह से मोटिवेट किया और इस तरह से चैनलाइज किया, कोऑर्डिनेट किया कि हम उस तरफ अभी हमें वो होता हुआ धीरे धीरे नजर आ रहा है।
1: जी
2: तो इसके लिए सरकार ने बहुत सारे प्रोत्साहन भी दिए हैं, उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स दी हैं, फाइनेंशियल एड्स दिए हैं, जो कि आपको अगर आप शिप बिल्डिंग इंडिया में करवाते हैं तो आपको कुछ डायरेक्ट एड्स मिलती हैं, डायरेक्ट कॉम्पेंसेशन मिलता है, और जो शिपयार्ड हैं जिनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, चाहे ब्राउन फील्ड हो, ग्रीन फील्ड हो, उनके लिए भी अलग जिसको मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड है, तो काफी पैसा सरकार ने ईयर मार्क किया और इसके ऊपर भी बहुत सारा थ्रस्ट है।
1: जी
2: किसी भी शिप बिल्डिंग एक्टिविटी में कई ऐसी चीजें होती हैं जो आप क्रॉस यूटिलाइज कर सकते हैं। एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे इंटरनेट था वो बेसिकली पहले US मिलिट्री के यूज के लिए बनाया गया, और उसके बाद वो इंटरनेट अब देखिए अब किस स्तर पे पहुंच गया जब उसको पब्लिक के लिए ओपन किया गया और कहां वो पहुंच गया। सेम चीज मोबाइल के साथ हुई। तो इसी तरह से जब ये कमर्शियल शिप बिल्डिंग और नेवल शिप बिल्डिंग, वॉरशिप बिल्डिंग है, इसमें जब समन्वय होगा, थोड़ी कोऑर्डिनेशन होगी, तो कई इक्विपमेंट ऐसे हैं जो कि हमारे क्रॉस यूटिलाइज हो जाएंगे और हमारी कॉस्ट ऑफ शिप बिल्डिंग जो है वो ग्लोबली कंपेटेटिव हो जाएगी। तो वो एक क्लैरियन कॉल दिया है अभी प्राइम

0: मिनिस्टर ने और भारत सरकार ने। और आपने देखा होगा अभी रिसेंटली जो ईरान कॉन्फ्लिक्ट में जो कि हमारे जो मर्चेंट मरीनर्स थे जो चुपचाप अपना काम करते रहते थे,
1: जी
0: महीनों महीनों घर से दूर रहते थे, किस कंडीशंस में उन्होंने शिप्स को लेके जाते थे, इतनी हाई सीज, रफ सीज, तो उनको कोई मतलब सब भूल गए थे जब तक कि ये हुआ। ये एक बात है। आज की डेट में करीब इंडिया में करीब 0.1% ग्लोबली शिपिंग हमारी इंडिया की है, इंडियन ओन्ड। तो इसको अब हमने बोला था टॉप 5 और टॉप 10 में लेके जाने के लिए, मतलब बहुत ही ये कठिन कार्य है, लेकिन ये तभी संभव है जबकि हम सारी शिप्स ओन करने लग पड़े।
1: जी
0: और सारी ये जो पॉलिसीज हैं, ये इंसेंटिव्स हैं, ये इसी की तरफ हैं कि इंडियन बिल्ट, इंडियन फ्लैग्ड एंड इंडियन ओन्ड वेसल्स को बढ़ाने के लिए। इसका भी एक टारगेट दिया हुआ है कि इतने मिलियन टन जो है वो हमारी मतलब शिपिंग हमारी हो जानी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया
1: जी
0: 2030 तक और 2047 तक। एंड जो हमारे मेन इक्विपमेंट होते हैं नीलम जी, मैं ये एक लास्ट चीज कहना चाहूंगा, जैसे इंजन, तो इंजन जो हवाई जहाज के भी बहुत ही स्पेशलाइज इक्विपमेंट है, सिमिलरली जो इंजन जहाज के होते हैं वो भी स्पेशलाइज इक्विपमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आप सारी चीजों को इंडिजनाइज कर पाए क्योंकि उसका
1: जी
0: आपको कॉस्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपके उतने नंबर्स नहीं है। तो दुनिया में कई लोग ही हैं जो बनाते हैं, किंतु अगर हम ये चीजें कमर्शियल शिप में भी लगती हैं और कई ऐसी चीजें वॉरशिप्स में भी लगती हैं, तो ऐसे इक्विपमेंट हमें लेके मान के चलना पड़ेगा कि ये तो कई चीजें हमें बाहर से मंगानी पड़ेंगी। इसमें एक ही एडवांटेज है, जब आप बाहर के जो OEMs हैं आप इंडिया में उनको ला सकें, जो कि अभी हम बोल रहे हैं कि आप यहां आके बनाइए,
1: जी
0: मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, तो उससे जो हम बोलते हैं स्पिन ऑफ इफेक्ट्स, यानी कि जो मल्टीप्लायर इफेक्ट्स इकोनॉमी को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, उसका फायदा हमें हो सकता है।
1: जी बहुत अच्छा आपने बताया। और जैसा कि आपने कहा कि मरीनर्स आराम से काम करते रहते थे शांति से, ज्यादा लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं था, इसी तरह से हमारी पनडुब्बियां भी कितने कितने महीने पानी के अंदर ही काम कर रही हैं लगातार, लेकिन इन्हीं प्रयासों से हम सुरक्षित भी हैं। और हिंद महासागर में भारत की जो बढ़ती उपस्थिति है और दमदार होती उपस्थिति जो है, वो भी हमारी नौसेना के बलबूते ही है। सर, मैं आपसे अब आपकी पसंद का कोई गाना जानना चाहूंगी जो आप श्रोताओं को सुनवाएंगे।
2: फौजी में इमोशंस बहुत होते हैं,
1: जी
2: तो गाना है संदेशे आते हैं, और इसका
1: जी
2: कारण यह है, ये बॉर्डर पिक्चर का है, और मेरे दोनों छोटे जो बेटे थे उस समय
1: जी
2: वो स्कूल में थे, लेकिन ये मूवी देख के उनको बहुत मोटिवेशन हुआ और आज वो भारतीय सेना में दोनों ऑफिसर हैं।
1: बहुत अच्छी ये बात आपने हमें बताई, हमारे श्रोता जरूर प्रेरित होंगे इस बात को सुनकर। और ये प्यारा सा गाना हम सुनवा रहे हैं अपनी ऑडियंस को।

0: तो जोश लगाते इस गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। हमारे तीन विशेषज्ञ इस समय स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हम बात कर रहे हैं रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की, स्वदेशीकरण की हम बात कर रहे हैं, और अपने विशेषज्ञों के बहाने आज हम अपनी सेनाओं को और नजदीक से जान रहे हैं। जो हमारे मन में आदर भाव है, सम्मान है, वो और बढ़ता जा रहा है ये जानकर कि किस तरह से हमारी सेनाएं लगातार देश की सेवा में लगी रहती हैं और किस तरह से हम जिसे अपना विकास कहते हैं उसमें मील का पत्थर होते हैं हमारे फौजी, हमारी सेनाएं। सर, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, संजय मेस्टन जी, जब हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं तो मेक इन इंडिया को अगर बढ़ावा मिलेगा, जिसमें कि हम अपने त्योहारों में इस्तेमाल होने वाले दिए और मोमबत्ती से लेकर अब हम अपने फाइटर जेट्स तक की बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया की, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये कहीं हमारे शिक्षा जो है उसे भी प्रभावित करेगा, हमारी शिक्षा के क्षेत्र में भी थोड़ा विस्तार होगा इस बहाने?
1: बिल्कुल, शिक्षा में तो बहुत विस्तार होगा। देखिए, पहली बात, ये जो भी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चल रहा है
0: जी,
1: हर चीज में, ओवरऑल नेशन बिल्डिंग में
0: जी,
1: हर भारतीय को फख्र होगा कि मैं भारत देश को बिलोंग करता हूं। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा, हम चार लोग यहाँ बैठे हैं और हम चारों बाहर जा रहे हैं, कई देशों में जाते हैं, हमें बहुत फख्र होता है कि सब बोलते हैं आप इंडिया के हैं। इंडिया का जो आज एक ग्लोबल रीच बढ़ गई है
0: जी,
1: जो उसके भी कई कारण है। देखिए, सबसे बड़ा कारण है, तीन फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लीडरशिप, इकोनॉमिक ताकत और मिलिट्री ताकत। ये तीन चीजें कॉम्बिनेशन है, ये देश की एक नेशनल पावर को डिफाइन करता है
0: जी।
1: जब ये सब पावर मिलती है एक देश को, अपने आप दिखती है। और आपने देखा है G20 समिट में जिस प्रकार भारत ने लीडरशिप लेके अफ्रीकन यूनियन को शामिल करवाया, वो एक मास्टर स्ट्रोक था। उसी G20 समिट में IMEC कॉरिडोर जो हमने अनाउंस करवाया, जिसमें प्रेसिडेंट बाइडेन थे, और जिसमें आप देखिए मल्टीलेटरल कंट्रीज हैं, यूरोप, इजराइल, पूरा गल्फ कंट्रीज और भारत। तो आप ये देखिए कि ये मास्टर स्ट्रोक्स है। अब जब ये सब होता है तो भारत का जब एक आइडेंटिटी पूरे विश्व में बढ़ती है और आज सारा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, एक राइजिंग पावर है। मैं तो बोलूंगा जो ग्लोबल साउथ के हम कैपिटल हैं इंडिया, अगर ये हो रहा है तो जाहिर है कि एजुकेशन का विस्तार बहुत होगा, उस पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। एक कर्तव्य, एक प्राइड कि मैं भारतीय हूँ। कुछ साल पहले हमारे कई बच्चे बाहर जाना चाहते थे, अब वो चेंज हो रहा है, क्योंकि जब एक सेल्फ रिलायंट इंडिया है, आज हमारी रोड्स देखिए फर्क पड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्क पड़ा है, और आज की तारीख में टेक्नोक्रेट्स को ज्यादा वजूद दिया जा रहा है हमारे सिस्टम में। अगर वो दिया जा रहा है तो ऑब्वियसली जो यंगस्टर्स हैं, और जो प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया हमने
0: जी,
1: तो यंगस्टर्स आज उनको समझ में आ रहा है। आपका स्टार्टिंग पॉइंट था ये प्रोग्राम में कि लोगों को पता होना चाहिए भारतीय सेना क्या है
0: जी,
1: और अब कैसे पता चल रहा है, भारतीय सेना जब ये सारी प्राइवेटाइज हो गई है ये आत्मनिर्भर भारत में, तो कितनी सारी MSMEs आ चुकी है, उसमें काम करने वाले कौन है, यूथ, हाईली टैलेंटेड यूथ, AI एक्सपर्ट्स, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स, उनको एक्सपोजर मिल रहा है, तो वो जब देखेंगे तो फिर वे बाहर क्यों जाएंगे। और जब इंडिया में हम इतना प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, चाहे AI हो, चाहे मिसाइल्स हो, चाहे ड्रोन्स हो, चाहे सब कुछ हो, चाहे एयरक्राफ्ट इंजन्स हो, सब कुछ अगर हम जब इंडिया में कर रहे हैं, तो जहां पर जॉब्स हैं और जहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं और जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और जहां सैलरीज अच्छी हैं, तो ऑब्वियसली लोग को फिर और बढ़ावा मिलेगा एडुकेशन की तरफ ध्यान देने को। जो हमारा पहले ब्रेन ड्रेन होता था ना, बाहर जाते थे, अब मेरे को लग रहा है अगले 10 साल के अंदर या 2047 तक मैं बोलूंगा, इंडियंस विल रिमेन इन इंडिया, और आप देखिएगा हमारा विस्तार बहुत होगा, तो एडुकेशन से इस पे प्रभाव पड़ेगा।
0: यानी जब हम स्वदेशीकरण की बात करते हैं तो ऐसा दिखता है कि सेनाएं मजबूत हो रही हैं, लेकिन इससे अपने आप रोजगार भी मिल रहा है लोगों को और शिक्षा के क्षेत्र का भी विस्तार हो रहा है। और जैसा कि हमें बताया डॉक्टर अश्मिंदर ने

0: कि जब सुरक्षित देश है तो मजबूत देश भी है, जरूरत पड़ने पर हम अपने जो पड़ोसी देश है उनकी मदद भी कर सकते हैं। ऐसे में अब मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगी, आप अपने अनुभव से बताएं, आपने इतने सारे देशों में देखा है, उनको काम करते हुए देखा है, कई यात्राएं आपने इस दौरान की हैं, जो भारतीय सेना है बेहद सम्मान के साथ देखा जाता है भारतीय सेना को, और हमारे बहुत सारे इस तरह की एक्सरसाइज होती हैं जिसमें अन्य देशों की सेनाएं सब मिलकर काम करते हैं, वो एक्सरसाइज में भाग लेते हैं। ऐसे में भारतीय सेना जो है उसकी स्थिति दुनिया में क्या मानी जाती है, और जो अगर मजबूती है तो क्यों मानी जाती है वो?
1: मैं बहुत घमंड के साथ बोल सकता हूँ नीलम, भारतीय सेना की जो छवि है वो विश्व में नंबर वन है।
0: जी
1: मैं कई कंट्रीज में गया हूँ, 23 कंट्रीज ऑफिशियली गया था ऑन ड्यूटी।
0: जी
1: टॉप कंट्रीज हैं, अमेरिका है, इजराइल है, टर्की है, जापान है, फ्रांस है, मलेशिया है, मतलब चाइना है। चाइना में मैं खुद एज अ इंडियन डेलीगेशन लीडर गया था, जो चाइना में फर्स्ट SCO पीस कीपिंग एक्सरसाइज हुई थी 2005 में, मैं उसको विटनेस करने गया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सारा तजुर्बा देखते हुए और हर कंट्रीज में, आज विश्व की सारी सेनाएं चाहती हैं कि भारत के साथ बाइलेटरल, मल्टीलेटरल, ट्राइलेटरल एक्सरसाइजेस करना चाहती हैं, क्योंकि जो हमारी एक एक्सपीरियंस है काउंटर इंसर्जेंसी में डील करने की,
0: जी
1: काउंटर इन्फिल्ट्रेशन में डील करने के लिए, टेररिज्म को डील करने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह देने में, रिस्पांस सिस्टम में, हमारी जो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन है, जो एक एक्सपर्टीज है। और भारतीय सेना एक वो सेना है जो ऐसी जगह डिप्लॉयड है, सियाचिन ग्लेशियर से लेके नागालैंड तक, से लेके डेजर्ट तक, और नेवी के साथ भी हमने इतनी फंक्शनिंग करते हैं, एयरफोर्स के साथ भी। तो कहने का मतलब है जो हमारी काबिलियत है, हमारी कैपेबिलिटीज है, वो कैपेबिलिटीज को देख के पूरा विश्व, मैं बोल सकता हूँ वी आर नंबर वन। पूरा विश्व आज चाहता है कि भारत सेना के साथ ट्रेनिंग करें। और मैं क्योंकि अफगानिस्तान में था तकरीबन 3 साल, वहां 53 कंट्रीज मैंने देखी थी अमेरिका द्वारा लेड किए हुए। मेरे को वो हर मीटिंग में बुलाते थे, चाहे वो नेटो सेक्रेटरी जनरल आता था, चाहे इनके आर्मी चीफ आते थे हर कंट्री के साथ। तो मेरे को तब इतना फख्र होता था कि इंडियन व्यू पॉइंट वो सुनना चाहते हैं, और इंडिया की जो छवि है इंडियन आर्म फोर्सेस की
0: जी
1: बहुत ही सॉलिड है। और एक और चीज मैं इसमें बोल रहा हूँ, रेजिमेंटेशन, जितने फॉरेन चीफ्स आते थे इंडिया में वो बताऊं क्या बोलते थे, आपकी जो एक रेजिमेंटेशन स्पिरिट है
0: जी।
1: आज अगर मैं जाट रेजिमेंट का हूँ तो मेरे जो जाट रेजिमेंट वाले वो जवान है वो बिल्कुल मतलब अपनी रेजिमेंट के नाम पे मर जाएंगे। मैं वैसे महार रेजिमेंट का हूँ, तो महार रेजिमेंट वाले जो मेरे जवान है उनका एक अलग जज्बा होगा, डोगरा का अलग होगा, मराठा का अलग होगा
0: जी।
1: तो ये रेजिमेंटेशन है, ये सिर्फ इंडियन आर्मी में है, ये यूनिकनेस है। मैंने अमेरिकन फॉरेन चीफ जो यहाँ पर आए थे आर्मी चीफ, उनसे खुद सुना था कि दिस इज द मोस्ट यूनिक थिंग अबाउट द इंडियन आर्मी। तो ये हमारी जो कामरेडरी है, भाईचारा है, आपसी संबंध है, जवान और ऑफिसर के जो रिश्ते हैं
0: जी।
1: तो ये सारी चीजें ये विश्व वाले देखते हैं, इंक्लूडिंग चीनी, ये भी चाहते हैं हमारे साथ एक्सरसाइज करने के लिए, और हमने किए हैं चीन के साथ भी, SCO के साथ एक्सरसाइज। तो मैं घमंड के साथ बोल सकता हूँ, मेरे को इस पे कोई वो नहीं है, एज अ फौजी वी आर नंबर वन एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड आर्म फोर्सेस, नॉट आर्मी, आर्म फोर्सेस, इंक्लूडिंग नेवी, इंक्लूडिंग एयरफोर्स। नेवी के साथ जो वाइजैक में शायद आपने भी कवरेज किया था उस एक्सरसाइज को,
0: इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू,
1: उसमें ईरानियन शिप भी थी और यूनाइटेड स्टेट्स की शिप भी थी।
0: ऐसे में बताएं, बहुत रोचक बात आप बता रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि नो फर्स्ट यूज हमारी पॉलिसी रही है, तो जब हम अपने डिफेंस बजट को बढ़ाते हैं तो कुछ लोग क्रिटिसिज्म भी करते हैं, और कुछ हमारे पड़ोसी देश हैं जो थोड़े नाराज भी हो जाते हैं, और बार बार ये बात लेकर आते हैं कि डिफेंस बजट क्यों बढ़ाया जा रहा है, और अब तो हम स्वदेशीकरण की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता की, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे?
1: मेरे ख्याल डिफेंस बजट तो और बढ़ना चाहिए
0: जी,
1: क्योंकि देखिए सिक्योरिटी जो इकोनॉमिक्स है, और देखिए अगर डिफेंस सॉलिड है तो इकोनॉमिक आपकी सॉलिड बढ़ेगी
0: जी,
1: ये बहुत कोरिलेटेड है। और चीन एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, 2050 का उसका विजन था कि हम कोई लड़ाई वड़ाई के पंगे नहीं फंसेंगे, हम मिलिट्री कंसोलिडेशन, इकोनॉमिक कंसोलिडेशन। आज भारत भी वही कर रहा है, क्योंकि मेरा तो इसमें विचार है डिफेंस बजट और बढ़ना चाहिए, गवर्नमेंट दे रही है, और कैपिटल एक्विजिशन पे भी हमें थोड़ा ज्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि खासकर एयरफोर्स और नेवी के लिए ये जरूरी है। कैपिटल एक्विजिशन मतलब ये नहीं कि हमने बाहर से खरीदना है, उसको हम इंडिजनाइज भी कर सकते हैं।
0: तो डॉक्टर अश्विंदर आपसे मैं जानना चाहूंगी, जैसे दूसरे देशों से सीखने की बात करें तो जापान में तो SDF अभी तक रहे, सेल्फ डिफेंस फोर्सेस रही, सिर्फ आत्मरक्षक बल थे, कहते हैं कि हमें कहीं आक्रमण नहीं करना तो सेनाओं की हम क्या जरूरत है उतना बजट देने की। आपसे जानना चाहूंगी मैं कि ये जो पॉलिसी होती है कि हमें क्योंकि लड़ाई नहीं लड़नी है इसलिए हम

0: सेनाओं को मजबूत नहीं रखेंगे, आप इस बारे में क्या कहेंगे?
1: देखिए, डिटरेंस का मतलब ही ये होता है कि आपकी आर्म फोर्सेस इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी देश विश्व का सोच नहीं सकता आपके ऊपर हमला करना। अगर हम एक ऐसी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं
0: जी
1: जिसमें पूरी इकोनॉमी फ्लावर करती है हमारे देश की, तो वो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट देती है हमारी आर्म फोर्सेस, तीनों आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। हम कह रहे थे ना कि हम दूसरों से क्या सीखते हैं।
0: जी
1: अभी आपने सेल्फ डिफेंस फोर्सेस की बात करी, आपको पता है कि उनका डिफेंस बजट मल्टीफोल्ड हो गया जापान का। अब उन्होंने रियलाइज कर लिया है कि
0: जी
1: उनको अमेरिका की अम्ब्रेला नहीं मिलने वाली, और वो अपनी जो उनकी इंजिन्स की कैपेबिलिटी है, जो उनके जहाजों को बनाने की कैपेबिलिटी है,
0: जी
1: आपको ये भी मालूम होगा कि 6th जनरेशन ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम में इटली और यूके के साथ मिलकर अहम रोल प्रोवाइड कर रहे हैं। और
0: जी
1: अगर शिप्स में देखें, वो कमांडर साहब ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन उसमें भी और जो इंजन्स है उसके अंदर तो उन्होंने बहुत अच्छी माहिरता प्राप्त कर ली है। दूसरी चीज आ जाती है, अगर हम अपना एनवायरमेंट देखें आसपास का, हम लोग प्रेडेटरी नहीं है, हमें दूसरों की टेरिटरी नहीं चाहिए, हमें
0: जी
1: दूसरों की जमीन नहीं चाहिए, लेकिन अपने आप को और आसपास के एरिया को अगर प्रोटेक्ट करना है, इंडियन ओशन को प्रोटेक्ट करना है, तो बहुत जरूरी है कि हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग हो। अभी भी हमारी आर्मी 50,000 से ऊपर 3,488 किलोमीटर बॉर्डर पे डिप्लॉयड है,
0: जी
1: लद्दाख में है, दूसरी जगहों पे है, अरुणाचल प्रदेश। कितनी मुश्किल कंडीशंस में वो पूरे पूरे साल रहते हैं, जहां पे टेम्परेचर -20 -30 तक पहुंच जाते हैं, और फिर जब गर्मी आती है तो फिर कहां, आपको पता है रेत में कहां पे इनके टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर। तो उसी तरीके से हमारी तीनों सेनाएं जो डिप्लॉयड है हर जगह, ये इसलिए डिप्लॉयड है ताकि दूसरा आंख उठाकर भी हमारी धरती पे ना देख सके।
0: जी
1: और अब आप देखिए यूक्रेन का हाल, उनकी सेनाएं उतनी स्ट्रांग नहीं थी, उनकी इतनी बर्बादी हो चुकी है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी आर्म फोर्सेस स्ट्रांग होगी तब आप हर लड़ाई जीत लोगे,
0: जी
1: ऐसा भी नहीं है। क्योंकि आपने अमेरिका के साथ देखा, उन्होंने उसके भी तोड़ देख लिए, वो सरवाइव कर रहे हैं अटैक्स के अंदर उन सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए जिससे कॉस्ट इफेक्टिव रहे, चाहे वो
0: जी
1: ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, या उनका ज्योग्राफिकल जो उनका पूरा का पूरा टेरिटरी है डिफेंस की ओरिएंटेड की तरफ, ओरिएंटेशन की तरफ। तो कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी होता है कि हमें तो नहीं किसी की टेरिटरी चाहिए, हमने कई
0: जी
1: बार बहुत क्लियरली किया, हाँ हमें सिर्फ अपना जो जेन्युइन लीगल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो वापस चाहिए, आज नहीं तो वो खुद अपने आप। हमने तो कोई लड़ाई नहीं की अभी, हम तो अपने भेज नहीं रहे लोगों को, इसका
0: जी
1: मतलब है हमारी ऑफेंसिव इंटेंशन नहीं है, लेकिन डिफेंसिव होने के लिए भी आपकी क्षमता इतनी स्ट्रांग हो कि दूसरा देश 10 बार सोचे कि वो आप पे हमला करे कि नहीं करे। एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूं, अगर आप
0: जी
1: परमिट करें, एक चीज कहते हैं हम सिविल मिलिट्री फ्यूजन, हम जो सीख सकते हैं दूसरों से, तो हम चीन से ये चीज सीख सकते हैं। उन्होंने क्या किया, आप बात कर रहे थे ना एजुकेशन की, तो उनका एक है 7 सन्स ऑफ नेशनल डिफेंस, जैसे बेजिंग की यूनिवर्सिटी या बेजिंग की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई, या दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज हैं जो बेजिंग के अंदर, कुछ ऐसी हैं जिनको वो फंड भी करते हैं
0: जी
1: ताकि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के ऊपर वो फोकस कर सकें। तो ये चीज हमने शुरू कर दी है। अब ये जो बुलेट प्रूफ वेस्ट हैं जो आर्मी यूज करती है हाई ऑल्टीट्यूड्स में, उसमें कहीं ना कहीं रोल रिसर्च का यूनिवर्सिटीज का भी रहा है, और ये इनोवेशन सेल्स जो बन रहे हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर। लेकिन जिस संख्या में अगर हम इसको थोड़ा और तेज गति लेके आए, एक सिविल मिलिट्री फ्यूजन हो, तो हमारा देश और भी स्ट्रांग बनेगा।
0: जी यही कामना सभी की। और मैं कमांडर विक्रमजीत सिंह, चलते चलते क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका मैं जानना चाहूंगी।
2: बिल्कुल सही, अगर आप एक स्ट्रांग मिलिट्री पावर नहीं है तो ऑब्वियसली आपका अस्तित्व हमेशा खतरे में है। ये अभी बहुत क्लियरली विश्व में वापस लोगों को समझ में आने लगा है, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और कोल्ड वॉर के बाद बिल्कुल जिन्होंने बोला था नहीं हमें नहीं लड़ाई लड़नी, हमें नहीं करना, हमें न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चाहिए।
0: जी
2: अब आपने देखा सब लोग धीरे धीरे यू टर्न मार रहे हैं। जापान सबसे पहले उन्होंने अपनी एक नई फ्रिगेट लॉन्च कर दी है कि भाई ये प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं।
0: जी
2: फ्रांस बोल रहा है मैं न्यूक्लियर वेपन अपना फिर से प्रोग्राम शुरू कर दूंगा। तो जैसे जैसे जियोपॉलिटिक्स चेंज होता जा रहा है, लोगों ने अपने अपने जो उनके डिसीजंस हैं विद रिस्पेक्ट टू सोवरेनिटी एंड डिफेंस ऑफ द नेशन, तो वो उन्होंने बदले हैं बिल्कुल इसमें। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम बात करते आ रहे हैं अभी तक, कि जब तक आपका स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नहीं होगा नीलम जी, आप एक स्ट्रांग मिलिट्री भी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आत्मनिर्भरता का

0: मतलब है आपका खुद का स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होना।
1: जी
0: आज तक इंडिया ने पूरे विश्व में अपना झंडा गाड़ा था सॉफ्ट सर्विसेज में, यानी कि सर्विसेज में,
1: जी
0: सॉफ्टवेयर में हम नंबर वन है, चिप डिजाइन में आप देखें अमेरिका में तो इंडियंस हैं उसमें,
1: जी
0: और एआई में भी ऑब्वियसली फिर इंडियंस हैं और बहुत आगे आगे हैं और बहुत वेल पेड हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में कहीं ना कहीं जो हम थोड़ा पिछड़ गए थे, जिसकी इम्पोर्टेंस देश ने समझी है और इसके
1: जी
0: ऊपर भी एक प्रधानमंत्री जी ने अलग से क्लैरियन कॉल दिया है कि हम अपने ब्लू कॉलर वर्कफोर्स को कैसे और स्ट्रेंथन करें, हमारे मैन्युफैक्चरिंग कैसे स्ट्रेंथन हो, ये सारे कॉरिडोर्स वगैरह उसी की ओर एक कदम थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये भी हो जाता है तो हम वाकई कह पाएंगे जी हाँ हम सेल्फ रिलायंट हैं, आत्मनिर्भर हैं। क्योंकि पीछे अगर आपको याद हो हमने देखा था कि कई ऐसी कंट्रीज हैं कि पहले बात हो रही थी कोविड के बाद ये बात शुरू हो गई थी कि चाइना को आप सप्लाई चेन से हटा दीजिए, फिर आपने देखा होगा कि वो चाइना प्लस वन पॉलिसी आ गई वर्ल्ड में। चाइना को हटाना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो हर एक की मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन में है। तो प्लस वन, तो
1: जी
0: प्लस वन में आज की डेट में अगर आप विश्व में देखें स्टेबिलिटी वाइज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाइज, इंडिया इज द लीडिंग कंटेंडर। तो उससे क्या फायदा होगा, विश्व का भी फायदा है और भारत का भी फायदा है। आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एंड मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड।
1: फॉर द वर्ल्ड, बहुत अच्छी बात आपने बोली। और हम ट्रेड बास्केट की बात जो कर रहे थे कि हमारे आत्मनिर्भर होने से उसमें भी संतुलन बना रहेगा। तो ये है भारत, समुद्र से आकाश तक, सुरक्षित भी, आत्मनिर्भर भी। और जिनकी वजह से सुरक्षित है उनके लिए ये दो पंक्तियां, देश की मिट्टी माथे से लगा लेता हूँ मैं हर त्योहार, कुछ इस तरह मना लेता हूँ। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हमने बात की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की, स्वदेशीकरण की। और हमारे विशेषज्ञ इसके लिए थे कार्यक्रम में मेजर जनरल संजय मेस्टन, भारतीय थल सेना से आप हमारे बीच आए, हमारा मार्गदर्शन किया, बहुत रोचक जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। हमारे साथ रहे एयर कमोडोर डॉक्टर अश्विंदर सिंह बहल, वायुसेना से आप, आपने बहुत रोचक बातें हमें बताई। कमांडर विक्रमजीत सिंह नौसेना से आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों विशेषज्ञों का। और मैं यही कहना चाहूंगी अपने श्रोताओं से कि INS विक्रांत हो, तेजस हो, प्रचंड हो, अर्जुन टैंक हो, पिनाका रॉकेट या ब्रह्मोस, ये सिर्फ नाम नहीं, ये भारत का गर्व है। और इस गर्व को और बढ़ाने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात करके। आज पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में हमारे तीनों विशेषज्ञों ने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर
0: थैंक
1: आपका।
0: यू जी, थैंक
1: स्टूडियो
0: यू
1: में
0: सो
1: आने
0: मच,
1: के लिए बहुत
0: थैंक यू
1: बहुत
0: सो मच
1: धन्यवाद।
0: एंड जय हिंद।
1: इस कार्यक्रम के संयोजक थे प्रमोद कुमार वत्स, और कार्यक्रम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान और तुषार पराशर के साथ मैं नीलम मलकानिया इस कार्यक्रम से अब आप सभी से लेती हूँ अनुमति। नमस्कार, जय हिंद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुप्रसिद्ध पनवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तीजन बाई ने महाभारत की कहानियों को अपनी सशक्त आवाज, रौबदार व्यक्तित्व तथा अद्भुत शैली की प्रस्तुति के साथ मंच पर जीवंत बनाया। राष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने अपनी असाधारण प्रतिभा, समर्पण और वर्षों के कठिन अभ्यास के जरिए छत्तीसगढ़ की समृद्ध पंडवानी परंपरा को भारत तथा विदेश में प्रतिष्ठा दिलाई। उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने शानदार प्रदर्शनों के जरिए तीजन बाई ने छत्तीसगढ़ की एक लोक कला शैली के लिए वैश्विक पहचान अर्जित की। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। जीएसटी राजस्व संग्रह में उत्तर प्रदेश ने जून 2026 में 19 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज करते हुए 9,165 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया है। इस प्रदर्शन के साथ यूपी ने पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। आंकड़ों के अनुसार पंजाब में 14% वृद्धि, केरल में 11% और कर्नाटक में 10% वृद्धि हुई है। वहीं तमिलनाडु में 2% की गिरावट दर्ज की गई है।

उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने सार्वजनिक महत्व की भूमि से जुड़े मामलों के निस्तारण के लिए नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत अब आरक्षित श्रेणी की भूमि शासकीय भूमि ग्राम सभा नजूल निष्क्रांत संपत्ति तथा शत्रु संपत्ति से भी संबंधित सभी वादों की सुनवाई 3 सदस्यीय विशेष पीठ द्वारा की जाएगी। राजस्व परिषद की अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि राजस्व परिषद ने लखनऊ और प्रयागराज दोनों न्यायालयों के लिए अलग अलग 3 सदस्यीय विशेष पीठों का गठन किया है। इन विशेष पीठों द्वारा प्रत्येक बुधवार को नियमित रूप से इन मामलों की सुनवाई की जाएगी। 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का आज समापन हो गया। प्रदर्शनी का समापन और पुरस्कार वितरण समारोह शाम 4 बजे से आयोजित किया जाएगा। इस समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक तथा उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी शामिल होंगे। समापन कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शनी की विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी विजेताओं को अतिथियों द्वारा पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित होगा।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर, शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
1: है जगह,
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
2: ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz, FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं 300 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी चरक हॉस्पिटल दुबग्गा लखनऊ।
4: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
5: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
3: गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब। आकाशवाणी लखनऊ FM रेनबो 100.7 के साप्ताहिक कार्यक्रम हेल्थ एंड फिटनेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समरीन और अगले एक घंटे तक हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो आज भी दुनिया के लाखों लोगों को प्रभावित करती है, लेकिन सही समय पर पहचान और पूरा इलाज मिलने पर पूरी तरह से ठीक भी हो जाती है। आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं, ट्यूबरक्लोसिस सिम्टम्स डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन, यानी कि टीबी के लक्षण, जांच और बचाव। और इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राहुल कुमार राठौर, चेस्ट स्पेशलिस्ट चरक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर लखनऊ। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे स्टूडियो में।
6: थैंक यू मैम।
3: सबसे पहला सवाल तो यही है कि टीबी कैसे होती है, किन कारणों से होती है और क्या होती है?
6: तो बेसिकली जो टीबी है वो एक संक्रामक बीमारी है, मींस इन्फेक्शियस डिजीज है, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया के द्वारा होती है। तो कोई भी व्यक्ति जिसको फेफड़े की टीबी है और एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट अगर कॉफ करता है या स्नीज करता है, तो जो बैक्टीरिया है वो श्वास के थ्रू बाहर आ रहा है, और उस सराउंडिंग में अगर कोई दूसरा पर्सन उस बैक्टीरिया को इनहेल कर लेता है, तो उस पेशेंट की बॉडी के लंग्स के अंदर जो बैक्टीरिया है वो पहुंच रहा है और वो डिसीज को डेवलप कर सकता है। तो इस चीज का जानना बहुत जरूरी है कि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है और ये ट्रांसमिशन जो है एयर के थ्रू होती है, तो आपको कोई भी पेशेंट के कॉन्टैक्ट से बचना है।
3: तो आपने जो भी कहा कि एक्टिव हो सकता है, वो क्या सिचुएशंस होती हैं, क्या सिनेरियो होता है जिसमें ये एक्टिव हो सकता है?

0: सकता है?
1: सो बेसिकली देखिए, एक्टिव टबाकलोसिस डायग्नोज करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा एक्सरे चेस्ट और बलगम की जांच। अगर बलगम की जांच में हमें कीटाणु दिख जाता है, देन इट इज अ कन्फर्मेटरी टेस्ट कि ये टीबी पॉजिटिव पेशेंट है। और ऐसा पेशेंट 1 से 1.5 महीने तक अपने बैक्टीरिया को ट्रांसमिट कर सकता है अगर वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है। ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद 4 हफ्ते के बाद हम पेशेंट को यूजली निगेटिव एज्यूम करना शुरू कर देते हैं कि बैक्टीरिया का लोड इतना कम हो जाता है कि पेशेंट की जो इन्फेक्टिविटी है, जो डिसीज फैलने की जो क्षमता है, वो कम हो जाती है।
2: जी डॉक्टर साहब, इस पे और भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं हमारे श्रोताओं को, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं या जो हमारे पुराने श्रोता हैं, उनको भी मैं बताना चाहूंगी कि वो हमें कॉल कर सकते हैं 0522-2982377 पर। आज के विषय से जुड़ी हुई कोई भी समस्या उनको है, उनके अपनों को है, उनके आस पड़ोस में है, तो या वो खुद इससे ग्रसित हैं, तो वो अपने सवाल हमसे ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगी वो ये है कि क्या टीबी केवल फेफड़ों तक सीमित रहती है या अन्य अंगों में भी हो सकती है?
1: हाँ, टीबी के बारे में जो सबसे बड़ी बात है कि ये हमारी बॉडी के किसी भी ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकती है।
2: अच्छा।
1: जो सबसे कॉमन जो इन्फेक्शन का पॉइंट है वो लंग्स है, क्योंकि एयर के थ्रू ट्रांसमिट होती है, तो सबसे पहले ये लंग को प्रभावित करती है। तो लंग जो टीबी है वो सबसे कॉमन डिजीज होती है, लेकिन इसके अलावा ये लिम्फ नोड की टीबी हो सकती है, हमारे शरीर में जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनकी टीबी हो सकती है। उसके अलावा ये टीबी बोन की टीबी हो सकती है, रीढ़ की हड्डी की टीबी हो सकती है, ये ब्रेन की टीबी हो सकती है। इसके अलावा जेनाइटो यूरिनरी ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकती है। तो इट ऑल डिपेंड, सिम्टम्स भी उसी हिसाब से डिपेंड करते हैं। जो टीबी के कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जो कि 2 या 2 हफ्ते से ज्यादा लंबे टाइम से खांसी आना, बुखार का बने रहना, वजन कम होना, भूख न लगना, अगर लंग्स की टीबी है तो कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स भी हो जाते हैं कि सपोज उसमें खांसी आएगा, खांसी में खून आ सकता है, बलगम आ सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, या सांस की दिक्कतें भी हो सकती हैं। और बाकी सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि वो बीमारी किस जगह को इन्वॉल्व कर रहा है, बॉडी सिस्टम के किस ऑर्गन को इन्वॉल्व कर रहा है। अगर हम लिम्फ नोड टीबी की बात करें कि तो जो लिम्फ नोड्स हैं, तो आपके जो नेक के एरियाज में लिम्फ नोड जो है वो साइज बढ़ जाएंगे। अगर पेनलेस स्वेलिंग डेवलप हो रही है, देन ये लिम्फ नोड ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। ऐसे अगर मैं रीढ़ की हड्डी टीबी की बात करूं, तो वहां पे पेशेंट को लंबे टाइम से बैकएक की समस्या रहेगी, पीठ में दर्द रहेगा, और उसे हम एमआरआई से डायग्नोस करते हैं। एमआरआई कराने पे हमें वहां पे जो टीबी रिलेटेड चेंजेस हैं वो स्पाइन में दिखाई पड़ जाते हैं।
2: यानी कि अगर आपकी कमर में दर्द लंबे समय तक असहनीय पीड़ा है, तो वो टीबी हो सकती है।
1: देन डेफिनेटली आपको जो आप स्पाइन स्पेशलिस्ट है उसको दिखाने की जरूरत है, एमआरआई कराने की जरूरत है, ताकि टीबी का कंफर्मेशन किया सके।
2: और कितना वक्फे की बात है, क्योंकि अक्सर हम फीमेल्स के साथ तो प्रेगनेंसी में पेन शुरू हो गया या जनरली भी पेन रहता है बैक में।
1: देखिए, मेडिकल साइंस में कोई भी सिम्टम जो है एक्सक्लूसिव नहीं होता है
2: जी।
1: कोई भी सिम्टम के मल्टीपल कारण हो सकते हैं, इसीलिए एक स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है कि जो पेट में दर्द है, लंबे टाइम से दर्द बना हुआ है, उसका क्या कारण है। महिलाओं में खासकर कैल्शियम की कमी, ऑस्टियोपोरोसिस, ये कॉमन सिम्टम होता है जिसकी वजह से बैकएक की समस्या बनी रहती
2: exactly,
1: है। लेकिन अगर एक पिन पॉइंट पे पेन लंबे टाइम से बना हुआ है, साथ में अगर लो ग्रेड फीवर आ रहा है, हल्का बुखार बना रह रहा है, भूख में कमी, वजन में कमी, कॉन्स्टिट्यूटिव सिम्टम्स जिन्हें हम बोलते हैं, अगर वो भी पेशेंट को साथ में रह रहे हैं, तो ये थोड़ा सा टीबी की तरफ को दर्शाता है। और जो फर्दर इनिशिएशन है कि आपने एमआरआई स्पाइन कराया या एक्सरे स्पाइन का कराया, वहां से एक क्लू मिल जाता है कि ये स्पाइन का ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, और फर्दर टेस्ट अवेलेबल है हमारे पास जिसके द्वारा हम टीबी को कंफर्म करके और पूरी तरह से ट्रीट कर सकते हैं।
2: डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं
1: जी।
2: हेलो
3: हेलो, गुड आफ्टरनून मैडम, संजय बोल रहे हैं
2: जी। संजय बताइए,
3: नमस्कार
1: जी। नमस्कार
3: डॉक्टर साहब, हमको ये पूछना है कि टीबी जो बताते हैं कि बीमारी जो है वो क्यों होती है, और क्या ये स्मोकिंग से भी टीबी हो जाती है क्या?
1: देखिए, स्मोकिंग से टीबी डायरेक्टली नहीं होती है, लेकिन जो पेशेंट स्मोकिंग करते हैं उनका जो इम्यून सिस्टम है, क्योंकि जो हमारा स्मोक है, बेसिकली जो सिगरेट का स्मोक है, वो हमारे लंग के अंदर जो डिफेंस सिस्टम है, जो मैक्रोफेजेस होते हैं या अदर मैकेनिज्म डिफेंस की होती हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, वीक करते हैं, तो ओवरऑल लंग की जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है। और टीबी की इन्फेक्शियस डिजीज है, संक्रामक रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। अगर ऐसा व्यक्ति जो स्मोकिंग लंबे टाइम से कर रहा है, जिसका लंग का इम्यून सिस्टम वीक है, ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे पेशेंट के कांटेक्ट में आता है जो स्पुटम पॉजिटिव है, तो वहां पे टीबी के फैलने की जो रिस्क है वो कहीं गुना बढ़ जाता है जो स्मोकर्स होते हैं।
3: खाने पीने में भी कुछ दिक्कत होता है क्या?
1: हाँ, देखिए, कुपोषण भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर पेशेंट का कुपोषित है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, और इम्यून सिस्टम वीक है तो फिर टीबी एक्वायर करने की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाएंगी। सपोज एक पेशेंट को किसी घर में किसी एक परिवार के सदस्य को टीबी हुआ है, लेकिन

0: उसके कांटेक्ट में तो पूरी फैमिली मेंबर्स हैं, लेकिन हर किसी को टीबी नहीं हो जाएगा। जिसका इम्यून सिस्टम वीक होगा, जो कमजोर होगा, उसे टीबी होने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं।
1: जी, तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, खाने पीने का ख्याल रखें, और क्या कुछ है, और कुछ ऐसे सवाल जो आपके अनसुलझे हैं, आपको नहीं पता है, हम बताएंगे। लेकिन समय एक छोटे से विराम का, विराम के बाद टीबी, उसके बचाव और लक्षण और जांच पर चर्चा जारी रहेगी।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है, और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग।

0: मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: 12:12 और 38 सेकंड आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस। मैं हूं आपके साथ समरीन और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राहुल कुमार राठौर जो कि डॉक्टर हैं और चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। बहुत बहुत एक बार फिर से आपका अपना स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि किन लोगों में टीबी होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं।
3: तो जैसा मैंने पहले कहा कि जो लोग कुपोषित हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, उसके अलावा डायबिटीज, आज की डेट में हमारा जो इंडिया है वो डायबिटिक कैपिटल बन चुका है। मतलब इतना पेशेंट है वर्ल्ड का, सबसे ज्यादा पेशेंट अगर है तो वो हमारे पास है। तो डायबिटीज भी इम्यून सिस्टम को वीक करता है जिसकी वजह से टीबी होने का खतरा बढ़ जाता है। उसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं जो बुजुर्ग हैं उनमें भी इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से टीबी एक्वायर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा जो पेशेंट ऐसी दवाइयां ले रहे हैं, सपोज कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है जिसको इम्यून सप्रेसेंट दवाइयां चल रही हैं, लंबे टाइम से स्टेरॉयड चल रहे हैं किसी भी वजह से, तो स्टेरॉयड या इम्यून सप्रेस करने वाली ऑटोइम्यून बीमारियों में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। और ऐसे व्यक्ति जिसका इम्यून सप्रेसेंट है, आप बात कर सकते हैं ट्रांसप्लांट पेशेंट की, अगर किडनी ट्रांसप्लांट किसी का हुआ है तो उसे ट्रांसप्लांट रिजेक्शन ना हो इसलिए बहुत सारी दवाइयां दी जाती हैं जो कि इम्यूनिटी को सप्रेस करती हैं ताकि ट्रांसप्लांट जो किडनी है उसका रिजेक्शन ना हो। और ऐसे व्यक्ति को टीबी के एक्वायर करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो चुका है। तो आपको अच्छी डाइट लेने की जरूरत है, अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो डायबिटीज को अच्छे से कंट्रोल रखना है, और अगर इम्यून सप्रेशन ट्रीटमेंट ले रहे हैं और इस तरह का कोई भी सिम्टम आ रहा है कि लंबे टाइम से बुखार और इस तरह की समस्याएं दिखती हैं तो इमिडिएटली एक्सरे और बलगम की जांच जो भी रिक्वायरमेंट है इमिडिएटली करना चाहिए।
2: डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमारे साथ हैं, आइए जानते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो
4: हेलो नमस्ते डॉक्टर साहब।
3: नमस्कार जी,
4: संजय कुमार बोल रहे हैं पुआ से।
3: जी बताएं।
4: हमें जानकारी चाहता है, हमारे फेफड़े में पानी भर जाता है, मतलब भूख नहीं लगती, एकदम गैस बनी रहती है, तो इसका क्या कारण है?
3: हाँ देखिए, फेफड़ों में जो पानी आना है वो टीबी का लक्षण हो सकता है, लेकिन सिर्फ अगर एक तरफ पानी आ रहा है तो ये टीबी की तरफ इंडिकेट करता है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि कोई भी सिम्टम एक्सक्लूसिव नहीं होता है, पानी आने के 50 कारण हो सकते हैं, वो आपके टीबी से रिलेटेड हो सकता है, कैंसर से रिलेटेड हो सकता है, वो हार्ट फेलोर से रिलेटेड हो सकता है, किडनी फेलोर से रिलेटेड हो सकता है, इवन सिंपल प्रोटीन की कमी की वजह से भी लंग्स में पानी आ सकता है। तो ऐसा
4: इलाज कोई और तो बता दीजिए आप।
3: जी देखिए, इलाज के लिए सबसे पहले ये है कि आपको पहले पानी को निकलवाने की जरूरत है। एक बार आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे, जब वो पानी को एस्पिरेट करेगा आपके लंग से बाहर निकालेगा, निकालने के बाद उसका इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो किसी ऑर्गन के फेल्योर की वजह से पानी इकट्ठा हो रहा है या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी कैंसर की वजह से, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि पानी को निकाला जाए, एस्पिरेट किया जाए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराया जाए ताकि हम डायग्नोसिस तक पहुंच सकें।
2: तो डॉक्टर साहब अभी हम फिर एक छोटा सा विराम लेंगे और उसके बाद इस पर चर्चा जारी रखेंगे।
5: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी,
6: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हेल्थ एंड फिटनेस में। आज हम बात कर रहे हैं टीबी के सिम्टम्स डायग्नोस और प्रिवेंशन की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर राहुल कुमार राठौर जो कि चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं और टीबी के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। लगातार आपके कॉल्स हम तक पहुंच रहे हैं, लेकिन जो लोग अभी इस प्रोग्राम में हमसे जुड़े हैं उनको मैं एक बार फिर से बता दूं, 0522-298-2377 ये वो नंबर है जिस पे आप बहुत सारे अनसुलझे सवालों के जवाब पा सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ इस वक्त हैं मौजूद। आपसे एक सवाल जो मैं जानना चाहूंगी कि टीबी कैसे फैलती है, क्या हाथ मिलाने से, साथ में बैठने से, खाना साझा करने से? आपसे स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं कि क्या क्या प्रिवेंशन रखने की जरूरत है जो टीबी के पेशेंट्स हैं उनसे।
3: ये जानना बिल्कुल जरूरी है कि किस तरह से हमारा टीबी स्प्रेड होता है। तो सबसे पहली बात, जो टीबी लंग्स की है वही स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं।
2: अच्छा।
3: अगर किसी को ब्रेन टीबी है, पेट की टीबी है, जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस है, वो यूजली ट्रांसमिट नहीं होती है, क्योंकि जो ट्रांसमिशन का मोड है वो एयर है। कि जब भी कोई ऐसा व्यक्ति जिसको एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है, पॉजिटिव ट्यूबरक्लोसिस है, वो व्यक्ति जब खांसता छींकता है तभी कीटाणु बाहर आता है,

0: और
1: अच्छा
0: उसके सराउंडिंग में जो भी व्यक्ति उस एयर को इनहेल कर रहा है उसके लंग्स में ये बैक्टीरिया पहुंच रहे हैं। फिर भी ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के लंग्स में अगर बैक्टीरिया पहुंच रहा है तो वो टीबी से पीड़ित हो ही जाएगा। इट विल ऑल डिपेंड कि बॉडी का इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है। वो अगर इतना स्ट्रांग है कि जो भी बैक्टीरिया लंग्स के अंदर गया है उसको वो किल कर सकता है, देन उसको डिजीज नहीं होगी। बट अगर पेशेंट का इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है, वीक है, देन पॉसिबिलिटी है कि पेशेंट जो है वो टीबी डेवलप कर सकता है।
1: कर सकता है सर। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो
2: जी, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
1: जी, छत्तीसगढ़ से
2: जी,
1: योगेश जी बोल रहे हैं, सवाल पूछिए अपना।
2: हम ये जानना चाहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति टीबी से पीड़ित है तो क्या उसके आसपास के व्यक्तियों को भी हो सकता है क्या?
0: हाँ बिल्कुल, संभावना है जो क्लोज कांटेक्ट में है किसी एक्टिव टबरक्लोसिस पेशेंट के उनमें टीबी की संभावना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आप क्लोज कांटेक्ट में हैं तो बैक्टीरिया बाहर आ रहा है और वो इनहेल करने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में रिकमेंडेशन ये कहती हैं कि जो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनका टेस्ट कराना मैंडेटरी होता है। इवन जिसको भी सिम्टम इस तरह के आ रहे हैं, अगर लंबे टाइम से फीवर और खांसी की शुरुआत हो रही है, तो इमिडिएटली जो है एटलीस्ट एक चेस्ट एक्सरे तो करा ही लेना चाहिए, ताकि हम बीमारी को पहले पहचान कर उसका ठीक ठाक इलाज कर सकें।
2: धन्यवाद
0: जी।
1: डॉक्टर साहब, एक चीज का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि आपके अंदर ये मान लीजिए बैक्टीरिया चला गया
0: जी,
1: और वो एक्टिव नहीं है और वो इंतजार कर रहा है कि इधर आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो और वो फिर आप पे एक्टिव हो जाए। वो का कितने लंबे अरसे तक ये बैक्टीरिया आपके जिस्म में इनएक्टिव मोड में रह सकता है?
0: मैम देखिए, ये लंबे समय तक रह सकता है। इसे हम बोलते हैं बेसिकली लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस। लेटेंट
1: अच्छा
0: ट्यूबरक्लोसिस का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में बैक्टीरिया पड़ा हुआ है बट वो इनएक्टिव फॉर्म में है, उससे आपको कोई सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं, डिसीज फुल फ्लेजेड डिसीज नहीं डेवलप हो रही है, बट आपकी बॉडी में पड़ा हुआ है और ये वेट कर रहा है कि जब भी आपका इम्यून सिस्टम डाउन होगा तो वो डिसीज के फॉर्म में फ्लेयर अप कर सकता है। तो टाइम बाउंडेशन बताना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मैंने देखा है कि किसी के फादर को कभी ट्रीटमेंट टीबी रहा हो और उसकी वजह से उसके बच्चे को 15-20 साल बाद डेवलप हो रहा है टीबी, तो ऐसे भी मैंने केसेस देखे हुए हैं। तो ये काफी लंबे टाइम तक बॉडी में पड़ा रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है और इम्यून सिस्टम वीक होने का वेट करता है, और जब भी कभी इम्यून सिस्टम वीक होता है डिजीज जो है वो फ्लेयर अप कर सकती है, एक्टिव हो सकती है।
1: जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे कनेक्ट करते हैं। हेलो,
3: गुड आफ्टरनून मैम।
1: जी गुड आफ्टरनून, आपका नाम क्या है और क्या सवाल पूछना चाहती हैं आप?
3: मेरा नाम है सुरभि सिंह और आज मैं हरदोई से बोल रही हूँ।
1: जी बताइए सुरभि जी।
3: और हमारे फ्रेंड्स हैं तो उनको खांसी की प्रॉब्लम है और उनके साथ तो क्या ये चीजें की शिकायत होती है?
1: अच्छा, सवाल ये है रुक साहब कि खांसी की समस्या है तो क्या ये टीबी हो सकती है? कितने समय से है उनको खांसी?
3: 2-3 साल से।
0: देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि टाइम फ्रेम खांसी का क्या है। खांसी जो एक सिम्टम है, देखिए लंग का जो भी सिम्टम्स होते हैं वो लंग से एसोसिएटेड बीमारी से ही डेवलप होंगे, चाहे वो टीबी हो, एलर्जिक प्रॉब्लम हो, चाहे अस्थमा हो, या सीओपीडी हो, या इंटरस्टीशियल लंग डिजीज हो, तो बहुत सारी डिजीजेस का सिम्टम जो है वो खांसी हो सकता है। लेकिन डिपेंड इस बात पे करता है कि एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या क्या हैं। अगर किसी व्यक्ति को 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आ रही है, लेकिन अगर साथ में उसको फीवर भी रह रहा है, उसकी भूख में भी कमी आ रही है, वजन में भी कमी आ रही है, तो ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं, ये इन्फेक्शियस प्रोसेस हो सकता है। लेकिन जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि 2 साल से खांसी आ रही है, तो ये कुछ अदर बीमारियां जो एलर्जिक प्रॉब्लम है, अस्थमा वगैरह को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो सबसे पहला जो बेसिक इसके लिए रिक्वायरमेंट है वो एक्सरे की जांच कराने की जरूरत है, ताकि हम एक्सरे में ये देख सकें कि किस तरह के पैचेज हैं, किस तरह का इन्फेक्टिव प्रोसेस लग रहा है, या फिर ये एलर्जिक डिजीज लग रही है। और अगर बलगम आता है तो बलगम की जांच कराना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि वो हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट रहता है कि अगर बलगम में कीटाणु दिख रहा है। और आज की डेट में तो बहुत ही एडवांस ट्रीटमेंट है, जेनेटिक लेवल पे टेस्ट अवेलेबल हैं जिन्हें हम जीन एक्सपर्ट या ट्रूनॉट के नाम से जानते हैं। उन टेस्ट से तो इवन हम टीबी के डायग्नोसिस के साथ साथ ये भी पता कर लेते हैं कि जो डिजीज है वो ड्रग रेजिस्टेंट है या ड्रग सेंसिटिव है, मीन्स हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग काम करेंगी या एमडीआर एक्सडीआर जो हम बिगड़ी हुई टीबी जिन्हें बोलते हैं उस तरह का ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है।
1: मेरा अगला सवाल आपसे डॉक्टर साहब यही था
0: जी।
1: कि एमडीआर टीबी क्या है और ये सामान्य टीबी से किस तरह से अलग है?
0: जी, एमडीआर का मतलब होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टुबाकुलोसिस। तो जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ड्रग्स हैं उसमें रिफैम्पिसिन और आइसोनियाजाइड दो ड्रग होती हैं।

0: ठीक
1: अगर
0: है।
1: इन दो ड्रग से बैक्टीरिया जो है रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया है बैक्टीरिया ने, तब हम उसे एमडीआर टुबाकुलोसिस कहते हैं।
0: और ये रेजिस्टेंट कैसे डेवलप होता है?
1: देखिए, रेजिस्टेंट डेवलप होने के दो तीन कारण हो सकते हैं। कोई व्यक्ति जिसको टीबी डायग्नोस हुआ और उसने ट्रीटमेंट जो है इररेगुलर लिया, कि बीच में
0: अच्छा।
1: ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक करने से क्या होगा कि हमारा जो एक ट्रीटमेंट ड्यूरेशन होता है, जैसे फर्स्ट लाइन टीबी की बात करें और हम मान के चलें कि अगर ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस किसी पेशेंट को हुआ तो हम उसे 6 महीने का ट्रीटमेंट देते हैं एटलीस्ट। उसमें
0: अच्छा।
1: भी जो दवाइयों का कॉम्बिनेशन होता है 4 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन रहता है। अगर उसने अप्रोप्रिएट डोजिंग नहीं ली, मीन्स वेट के हिसाब से उसने प्रॉपर डोज नहीं ली, या फिर कुछ दवाओं को उसने मिस कर दिया
0: स्किप
1: या
0: किया।
1: बीच में इंटरप्ट कर दिया ट्रीटमेंट, तो क्या होगा, बैक्टीरिया जो है उसे फिर से ग्रो करने का और रेजिस्टेंस डेवलप करने का टाइम मिल जाएगा। वो
0: गॉड।
1: सारे के सारे बैक्टीरिया एक साथ किल नहीं हो पाएंगे और रेजिस्टेंस प्रोसेस डेवलप हो जाता है और एमडीआर में पेशेंट कन्वर्ट हो सकता है। या
0: जी।
1: फिर किसी पेशेंट को ऐसे पेशेंट से एक्सपोजर हुआ है जो खुद ही पहले से एमडीआर था। सपोज फैमिली में एक मेंबर को एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोस हुआ और उसके किसी भाई बहन को या पेरेंट में किसी को टीबी हो रहा है, तो हम मान सकते हैं कि ज्यादा चांसेस हैं कि उसको भी एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस ही होगा। तो दो
0: गॉड।
1: चीजें इंपॉर्टेंट है कि ट्रीटमेंट को ब्रेक नहीं करना है,
0: हाँ।
1: और प्राइमरी सोर्स अगर पता चल सकता है कि आपको कहां से हुआ तो उसको किस तरह का टीबी है, ये भी हमें एक जस्टिफिकेशन दे सकता है कि किस तरह का टीबी की पॉसिबिलिटी है। बाकी जीन एक्सपर्ट और सीबी नॉट टेस्ट के द्वारा तो हम ये कंफर्म कर सकते हैं। इवन हमारे पास कल्चर की भी सुविधा है जिससे भी हम ये सेंसिटिविटी कर सकते हैं, कौन सी ड्रग काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, ये सारी चीजें पता करना आज की डेट में बहुत आसान है।
0: डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ कनेक्ट कर रहे
1: जी
0: हैं। हेलो।
2: हेलो प्यारी मैम को, डॉक्टर साहब जी का बहुत बहुत प्रणाम, बहुत नमस्कार
1: नमस्कार
0: जी। सवाल पूछिए अपना।
2: जी मैम, मेरा सवाल ये है मैम, जैसे कि कुछ लोगों को मतलब काफी सालों से खांसी आती रहती है और वो थोड़ा दवा करते रहते हैं, वो भी वो अपने आप पे मानते नहीं, मतलब ये बीमारी उनको है, तो एकदम अचानक पे अगर जैसे उनके रोज की क्रियाओं में एकदम से रोग लग जाती है और उनको एकदम से अचानक मतलब भागना पड़ता है, तो मैम उनको उनके लिए प्लीज थोड़ा सा बताएं और उनके लिए मतलब सतर्क हो जाएं, थोड़ी सी प्लीज बता दीजिए।
1: देखिए, अगर बहुत लंबे समय से खांसी आ रही है तो टीबी तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में एक रहता ही है कि मतलब टीबी की संभावना जरूर हो सकती है। तो आपको ऐसी कंडीशन में डॉक्टर के पास जाना है और बेसिक इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि एक्सरे है, एक्सरे से हमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर सपोज एक्सरे से हमें क्लैरिटी नहीं मिल पाती है, देन वी हैव सिटी स्कैन, हम HRCT हाई रेजोल्यूशन सिटी स्कैन कर सकते हैं, जिससे हमारा पूरा 3D व्यू मिल जाता है लंग्स का, कि कोई पैचेज हैं या नहीं है, क्या और भी चीज़ें हैं। उसके अलावा कई बार होता है कि पेशेंट को बलगम नहीं आ रहा है, तो आज की डेज में इतना एडवांसमेंट बढ़ चुका है कि हमारे पास ब्रोंकोस्कोपी की सुविधा है। अगर कोई लिम्फ नोड अंदर है जिसको हम ईबस टीवीएनए की मदद से प्रिक कर सकते हैं, वहां से सैंपल एक्वायर कर सकते हैं, तो आज की डेट में टीबी को डायग्नोस करना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं रह गई है, बहुत आसान है। पेशेंट अगर डॉक्टर के पास पहुंचता है, अपना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराना चाहता है, तो बहुत आसानी से टीबी को डायग्नोस किया सकता है और ट्रीटमेंट ऑप्शन भी धीरे धीरे बहुत सिंपल हो गए हैं। पहले मैं बात करूं, जो मैं कह रहा हूं कि ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरक्लोसिस में 6 महीने का ट्रीटमेंट होता था और जो एमडीआर एक्सडीआर ट्यूबरक्लोसिस होते थे, मीन्स जो बिगड़ी हुई टीबियां होती थी, उनका ट्रीटमेंट 1.5 से 2 साल चलता था और उसमें भी 6 महीने इंजेक्शन लगते थे पहले के टाइम में। लेकिन अभी जो एडवांसमेंट है उसमें जो नए रेजिमेन आ गए हैं उसमें ऑल ओरल रेजिमेन है, मतलब सारी दवाइयां ओरल फॉर्म में रहती हैं, इंजेक्शन नहीं लेना पड़ता है। आप समझ सकते हैं 6 महीने किसी को अगर रेगुलर मांस में इंजेक्शन लग रहा है तो कितना पेनफुल प्रोसेस रहता होगा।
0: बिल्कुल
1: तो
0: जी।
1: आज के और इवन ट्रीटमेंट ड्यूरेशन भी शॉर्ट हो चुका है, इवन एमडीआर का ट्रीटमेंट भी 6 से 9 महीने में हो सकता है।
0: हो सकता है डॉक्टर साहब, समय एक छोटे से विराम का और उसके बाद टीबी, उसकी जाँच, उसके लक्षण, इन सब पर चर्चा जारी रहेगी।
3: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी,
4: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में, @हरदोई रोड, दुबग्गा।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: 12:31 और 13 सेकंड लगातार आपसे बातचीत हो रही है टीबी पर, उसके लक्षणों पर, उसकी जांच कैसे कराएं और क्या कुछ आप उससे किस तरह से बच सकते हैं, या अगर आप हैं तो किस तरह से आप उसका इलाज कराएं, उसका ख्याल रखें अपना, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ एक कॉलर डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या समस्या है उनकी। हेलो,
3: नमस्कार सर।
4: नमस्कार जी, बताएं।
3: ये कहते हैं कि मतलब ये टीबी किसी की हुई थी ना, इलाज हो गया है
4: जी,
3: और वो नशा सा नहीं करता है, काम भी बहुत अच्छा करता है
4: जी,
3: क्या दोबारा उसके लक्षण हो सकते हैं कभी?
4: हाँ देखिए, ऐसा है, अगर एक बार किसी को टीबी हुआ और पूरा ट्रीटमेंट अगर सही से ले लिया गया है और पूरी तरह से क्योर भी डिक्लेयर कर दिया गया है, तो क्योर डिक्लेयर करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं आपसे कहूँगा, कई बार होता है कि पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर ने मुझे 6 मंथ का ट्रीटमेंट बोला था, मैंने पूरा 6 मंथ ले लिया और उसके बाद सडनली बंद कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। रियल प्रैक्टिस में एक्चुअली हमें कई बार फॉलोअप करने होते हैं, बलगम के टेस्ट करके देखने होते हैं कि जो बलगम है वो निगेटिव हो चुका है कि नहीं हो चुका है, और एक्सरे और सिटी स्कैन से भी हमें कई बार ट्रैक करना होता है कि जो रिस्पॉन्स हमें प्रॉपर मिलना चाहिए था, जो रेडियोलॉजिकल पैचेस थे, वो पूरी तरह से क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं। कई बार ऐसा होता है कि

0: 6 month के बाद भी अगर किसी को बहुत एक्सटेंसिव ट्यूबरकुलोसिस है, बहुत ज़्यादा लंग इन्वॉल्वमेंट है, बहुत ज़्यादा कैविटीज़ लंग्स में बनी हुई हैं, तो उसको कई बार लंबा टाइम भी रिक्वायर्ड होता है ट्रीटमेंट के लिए। तो 6 month के बंद करने से पहले मेरा यही सजेशन है कि आपको डॉक्टर से ज़रूर मिल लेना चाहिए, ताकि एक बार डॉक्टर ये कन्फर्म कर दे कि हाँ आपका ट्रीटमेंट जो है पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है, अब आप ट्रीटमेंट को रोक सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो आप पूछना चाह रहे हैं कि किसी व्यक्ति को अगर एक बार टीबी हुई है, क्या उसे दोबारा हो सकती है? तो हाँ बिल्कुल हो सकती है, री इन्फेक्शन दोबारा हो सकता है किसी पेशेंट को। तो उससे बचाव करने के लिए आपको जो है हेल्दी हैबिट्स करनी चाहिए कि आप स्मोकिंग ना करें, ड्रिंकिंग ना करें, आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दें, आप पौष्टिक आहार लें। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान देते हैं तो दोबारा टीबी होने के चांसेस जो हैं वो निग्लिजिबल हो जाएंगे।
1: डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि टीबी से बचाव के लिए किन किन बातों का ध्यान रखें, और स्पेशली अगर आप टीबी के मरीज का ध्यान रख रहे हैं, आपके
0: जी
1: बड़े बुजुर्ग हैं या आपके बच्चा है या घर में कोई ऐसा है, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: जी अगर देखिए परिवार में किसी व्यक्ति को टीबी डायग्नोस होता है, तो अगर लंग्स की ट्यूबरकुलोसिस है तो वो इन्फेक्टिव है वो पेशेंट हमारे लिए। तो उस केस में ध्यान ये रखना है कि पेशेंट का मास्क पहनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू केयर टेकर, क्योंकि पेशेंट जब कॉफ करेगा तभी वो बैक्टीरिया बाहर आएगा। अगर पेशेंट ने मास्क पहना है तो थोड़ा सा चांसेस कम हो जाएगा जो डिजीज के स्प्रेड होने का। अगर आइसोलेशन फॉलो कर सकते हैं देन इट इज़ अ गुड आइडिया कि थोड़ा सा आइसोलेशन एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए फॉलो करें। जिस रूम में वो पेशेंट एक्टिव पेशेंट रह रहे हैं वो एटलीस्ट वेंटिलेटेड होना चाहिए, अच्छा सनलाइट होना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया कई बार हवा में बहुत लंबे टाइम के लिए सस्पेंडेड रहता है और वो ट्रांसफर हो सकता है कि सपोज पेशेंट ने कभी कॉफिंग करी अपने रूम में और एक क्लोज चैम्बर जैसा रूम है और कोई फैमिली मेंबर 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद भी इंटर करता है, तो वहां पे बैक्टीरिया काफी लंबे टाइम तक के लिए रहता है।
1: अच्छा,
0: इसलिए
1: तकरीबन कितना लंबा समय?
0: ये मोर देन 48 डेज तक जिंदा रह सकता है
1: ओ
0: एयर में सस्पेंडेड फॉर्म में। तो इसलिए जरूरी है कि वेल वेंटिलेटेड रूम में पेशेंट रहे और थोड़ा सा आइसोलेशन प्रोटोकॉल फॉलो करे, मास्क यूज करें, और जो भी पेशेंट के फैमिली मेंबर्स हैं वो भी थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि जब वो उसका ध्यान रख रहे हैं तो एटलीस्ट वो भी मास्क पहने अगर क्लोज कांटेक्ट में जा रहे हैं। और उसके अलावा जो डाइटरी चेंजेस हैं कि आप हेल्दी डाइट लें, हाई प्रोटीन डाइट लें, क्योंकि
1: अच्छा
0: हमारी जो इंडियन डाइट सिनेरियो है उसमें कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट रहता है, तो
1: जी
0: उस
1: जी
0: चीज को चेंजेस की जरूर इंपॉर्टेंस है। अगर वेजिटेरियन है तो जो पल्सेस हैं उनकी मात्रा बढ़ा दें, आप पनीर ले सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं ताकि हाई प्रोटीन डाइट मिल सके। तो प्रोटीन हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स में आता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर सकता है। तो इसलिए जो फ्रूट्स हैं जैसे सीजनल फ्रूट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, इन सब का भी इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो पौष्टिक आहार है वो हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, उसके लिए अगर स्पेशली जरूरत है तो आप डाइटिशियन का ओपिनियन ले सकते हैं, अदरवाइज एक अच्छी डाइट आप फॉलो कर सकते हैं जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा।
1: जी डॉक्टर साहब, वैक्सीन अगर आपने करवाई है तो भी आपको क्या टीबी होने के चांसेस हैं या आप सिक्योर हैं?
0: नहीं देखिए, ऐसा है कि जो BCG वैक्सीन है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे को दिया जाता है, लेकिन उसका पर्पस जो है वो डिसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस, मतलब जो टीबी का एक्सटेंसिव फॉर्म है कि ट्यूबरकुलर मेनिनजाइटिस, मतलब जो ब्रेन की टीबी है या फिर और सीवियर फॉर्म ऑफ टीबी है, उससे बचाने के लिए है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस वैक्सीन को लगाने के बाद आपको लंग्स का ट्यूबरक्लोसिस या बॉडी में कहीं और ट्यूबरक्लोसिस नहीं हो सकता है। उसका सिर्फ पर्पस जो है वो डिसेमिनेटेड ट्यूबरक्लोसिस से बचाने का है, मतलब बहुत एक्सटेंसिव ट्यूबरक्लोसिस आपको नहीं फैलेगा, लेकिन नॉर्मल ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है,
1: होने के चांसेस
0: रहते
1: हैं।
0: तो अगर ऐसे कोई सिम्टम आए तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमने तो वैक्सीन बचपन में लगवाया था, पैदा होते ही लग गया था और मैं पूरी तरह से सिक्योर हो सका हूँ टीबी से, ऐसा नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, एक मेल आया हमारे पास विजयपाल यादव जी का, लिखते हैं, डॉक्टर साहब सादर नमस्ते, दीदी जी को मेरा प्रणाम, और मेरे कमर में अक्सर दर्द रहता है, तो क्या टीबी का लक्षण हो सकता है और क्या टीबी पारिवारिक बीमारी भी हो सकती है?
0: देखिए पारिवारिक बीमारी तो नहीं है, मतलब ये इन्फेक्शियस डिजीज है, ऐसी बीमारी नहीं है कि फैमिली मेंबर्स में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाए, जिसमें अस्थमा होता है, ये चीजें होती हैं। लेकिन दूसरे संदर्भ में अगर मैं बात करूं कि एक व्यक्ति को अगर फैमिली में ट्यूबरक्लोसिस है और वो इन चीजों का ध्यान नहीं रख रहा है कि वो इन्फेक्शन प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहा है, मास्क नहीं पहन रहा है और क्लोज कॉन्टेक्ट में है फैमिली मेंबर्स के, तो ऑब्वियसली चांसेस हैं कि आपके अदर फैमिली मेंबर्स में भी टीबी जो है स्प्रेड हो जाएगी, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग नहीं है।
1: तो अगर आपकी भी ऐसी कुछ समस्या है जिसके बारे में आप निवारण चाहते हैं, तो आप 0522-298-2377, या फिर अगर फोन कॉल जो है वो आप नहीं मिला पा रहे हैं, लाइन लगातार बिजी जा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि आप हमें मेल कर सकते हैं fmakashwadilakhnow@gmail.com पर। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ कनेक्ट है, आइए जानते हैं कि उनका क्या सवाल है। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार
0: जी। नमस्कार,
1: अपना नाम बताइए और सवाल।

0: पूछिए।
1: विनीत सीतापुर से। जी सवाल ये है कि 1.5 साल पहले मैंने इलाज करवाया था।
2: जी
1: ये मैंने इलाज चला था इसका।
2: जी
1: तो असल में अब दिक्कत ये मालूम होती है कि जैसे काम वाम करो जैसा तो फिर बैठने ऐसा लगता है और जॉइंटस में दर्द कभी जाती ही नहीं, मतलब घुटनों से।
2: जी
1: तो दिक्कत है।
2: देखिए ये डिपेंड करता है कि आपका जो लंग्स है कितना इन्वॉल्व था एट द स्टार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। देखिए अगर टाइमली डायग्नोसिस बन जाती है, टीबी का इलाज शुरू हो जाता है, तो लंग्स में आपके कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है, लंग पूरी तरह से रिकवर कर जाता है। लेकिन अगर टीबी के ट्रीटमेंट शुरू होने में देरी हुई है और कीटाणु ने जो लंग्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया है, तो ऑब्वियसली आपको बाद में आपको हमेशा प्रॉब्लम्स जरूर नज़र आएंगी। और खासकर जो प्रॉब्लम्स इसमें होती हैं कि किसी का पेशेंट का ज़्यादा लंग अगर डैमेज हो चुका है तो उसकी वजह से पेशेंट को अक्सर खांसी की समस्या बनी रहती है, सांस की समस्या बनी रहती है कि अक्सर उसके चलने वलने में सांस फूल जाती है, और इवन कई बार अगर अंदर बड़े से कैविटेटरी लीजन पड़े हुए हैं और उसमें बार बार इन्फेक्शन होता रहता है सीजनल चेंज के दौरान, तो उसमें खांसी में ब्लड आने की भी संभावना बनी रहती है। तो कई बार ऐसा होता है कि टीबी पूरी तरह से आपकी ठीक हो जाती है लेकिन एक्सटेंसिव लंग डैमेज होने की वजह से आपको कुछ जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं जिसमें सांस फूलना, खांसी आना और खांसी में खून आना, ये सिम्टम्स बने रहते हैं। बट इनका भी ट्रीटमेंट संभव है। आप अपने नियरेस्ट जो डॉक्टर हैं उनसे मिलें, आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराएं, एक्सरे वगैरह कराएं और ये इवैल्यूएशन हो कि आपका लंग कितना डैमेज है, अभी कहीं एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है, अगर एक्टिव रिएक्टिव हो रही है तो उसे फिर से ट्रीट करने की रिक्वायरमेंट है। और अगर पूरी तरह से ठीक हो चुकी है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर ब्लड आ रहा है तो उसको भी कंट्रोल करने के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन कर सकते हैं, लंग रिसेक्शन कर सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि जो भी सिम्टम्स हैं उनका ट्रीटमेंट आपको डेफिनेटली मिल जाएगा।
0: डॉक्टर साहब एक मेल हमारे पास आया है, मोनू सेठ जी लिखते हैं कि अधिक समय तक खांसी आना और जुकाम लगातार रहना, इसके कारण क्या हो सकता है?
2: देखिए अधिक समय से जुकाम और खांसी बहुत फ्रिक्वेंटली रह रहा है तो ये सबसे पहले तो एलर्जिक सिम्टम हो सकते हैं, वो नेजल एलर्जी हो सकती है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस जिसे हम एस्मा बोलते हैं, एस्मा हो सकता है। ओल्ड एज पेशेंट की बात करें, अगर लंबे समय से उन्हें खांसी आ रही है तो ये सीओपीडी का भी लक्षण हो सकता है, अगर वो पेशेंट स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर जो फीमेल पेशेंट होती हैं जो कि चूल्हा वूल्हा जलाती हैं उसकी वजह से, धुएं के एक्सपोजर की वजह से सीओपीडी का प्रॉब्लम भी होने का खतरा रहता है। ट्यूबरक्लोसिस हमेशा, क्योंकि इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस का जो बर्डन है बहुत हाई है, अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो वर्ल्ड का जो 1/4 पेशेंट है वो हमारे इंडिया में है, तो इस वजह से जो कोई भी खांसी, कोई भी लंबे समय से बुखार, उसमें सबसे पहला जो डॉक्टर के दिमाग में आता है वो ट्यूबरक्लोसिस ही आता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये सच भी होता है। तो इसलिए ट्यूबरक्लोसिस हमेशा एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस में रहेगा लंबे समय से खांसी बने होने का कारण, तो उसे इवेल्युएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
0: जी डॉक्टर साहब अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद इसके प्रिवेंशन पर, डायग्नोस पर और जो इसके सिम्टम्स हैं उस पर चर्चा जारी रहेगी। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि आप हमें कॉल कर सकते हैं 0522-298-2377 पर, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं fmakashwani@gmail.com पर। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण, जांच और बचाव।
3: बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
5: पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
0: और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम हेल्थ एंड फिटनेस पर टीबी पर बात कर रहे हैं और उसका उपचार कैसे हो सकता है, उसका बचाव क्या है, उसके डायग्नोस यानी कि जांच आप कैसे कर सकते हैं, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब पहला सवाल इस ब्रेक के बाद जो मैं आपसे करना चाहूंगी वो ये है कि टीबी को लेकर बहुत सारे राष्ट्रीय उन्मूलन पर कार्यक्रम हुए, लोगों में जागरूकता फैलाई गई, कोई एक ऐसी गलतफहमी जो आज के एपिसोड में आप दूर करना चाहें, बहुत भ्रामक है अगर, तो वो क्या होगी?
2: अभी भी काफ़ी लोगों में टीबी को लेके मिथ्स हैं, लोग टीबी की डायग्नोसिस को हाइड करना चाहते हैं। कई बार पेशेंट्स को मैं देखता हूँ कि जो इस बात को अपने फैमिली मेम्बर से ये बात शेयर नहीं करना चाहते हैं कि वो ट्यूबरक्लोसिस है और अनट्रीटेबल है टीबी, ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल देने की ज़रूरत है कि ये जो टीबी है एक इन्फेक्शन की वजह से होता है और इन्फेक्शन पर पूरी तरह से कंट्रोल पाया जा सकता है। आज से कुछ साल पहले की बात करें कि वहाँ पे थोड़ा सा ट्यूबरक्लोसिस का जो एमडीआर टीबी या एक्सडीआर टीबी जो एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होती थी वहाँ पे ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल होता था, फेल्योर रेट करीबन 50% का रहता था। लेकिन अच्छा। आज के डेट में जो मैं न्यूअर रेजिमेंट की बात कर रहा हूँ, जो है

0: पाल एम हो या बी पाल रेजिमेंट हो, उसमें कई सारी नई दवाइयां भी खोज ली गई हैं पिछले कुछ सालों से, हमारे इंडियन सिनेरियो में अवेलेबल हैं, और उन ड्रग का रिस्पांस इतना अच्छा है कि मेजोरिटी जो रिस्पांस रेट है बहुत अच्छा है, और मोस्टली हर एमडीआर एक्सडीआर पेशेंट जो है वो ट्रीट हो सकता है।
1: दूसरे कॉलर हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। हेलो, हाँ जी, नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए।
2: नेहा नाम है मेरा।
1: नेहा जी, सवाल क्या है आपका?
2: मेरे दो ट्विंस बच्चे, तो उसमें से जो एक बच्चा है 7 ईयर्स ओल्ड का, बार क्या बोलते हैं सोते समय खांसी बहुत आती है सुबह के टाइम पे,
1: अच्छा
2: 5 के बीच में बहुत ज्यादा खांसी लगता है कि मतलब सो नहीं पाता है। और मैंने डॉक्टर को, जो बच्चे के डॉक्टर को दिखाया, उसने बताया कि उनके फेफड़े में लमसम में मतलब क्या बोलते हैं फेफड़े थोड़े कमजोर है, वो जैसे 10 ईयर्स का हो जाएगा ठीक हो जाएगा।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, 7 साल बच्चे की उम्र है और खांसी आती है उसको बहुत ज़्यादा।
0: देखिए, इसमें इस कंडीशन में जैसा मैम बता रही हैं कि नाइट टाइम पे सिम्टम्स हो रहे हैं, कॉफिंग के सिम्टम हो रहे हैं, और प्रॉब्ली मुझे लगता है सांस में दिक्कत भी यहाँ पे हो रही होगी बच्चे को, सोने में अगर दिक्कत हो रही है तो ये जो सिम्टम्स हैं ये हमारे एस्मा के सिम्टम ज़्यादा लग रहे हैं एज पर। बाकी क्या है कि देखिए, जब तक एज ए डॉक्टर हम पूरा डिटेल में केस को इवेलुएट नहीं करते हैं, जब तक हम सारे सिम्टम्स को एसेस नहीं करते हैं, देन हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं कि उसमें क्या है, कंजेशन है पेशेंट को नहीं है, तब तक हम पूरी तरह से नहीं बता सकते। लेकिन इंडियन सिनेरियो होने की वजह से एक ट्यूबरक्लोसिस की डायग्नोसिस को रूल आउट करना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि बच्चे का कहीं ऐसे किसी पेशेंट से एक्सपोजर तो नहीं रहा है कि मदर को टीबी रहा है, या पेरेंट्स में या फैमिली मेंबर्स में किसी को एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस रहा है। लेकिन जिस तरह के सिम्टम मैम बता रही हैं वो ज्यादा चांसेस हैं कि वो एलर्जिक सिम्टम्स हैं, और ये ब्रोंकियल एस्मा के सिम्टम हो सकते हैं, और ऐसी कंडीशन में इनहेलर या नेबुलाइजर की आवश्यकता पड़ती है। वो यूजली डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब कर देते हैं, और एज के साथ धीरे धीरे क्या है कि जैसे बच्चा ग्रो करता है और एयरवे मैच्योर होते हैं, तो कई बार ये समस्याएं अपने आप ही ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, एक मेल आया है प्रियांशी का, लिखते हैं मैं अभी 18 साल का हूँ और मुझे आंतों की टीबी है, 2 महीने से इलाज कर रहा हूँ, इसमें इलाज कितने दिन चलेगा और परहेज क्या क्या रहता है, और ये कैसे हो जाती है, इसे बचने का तरीका क्या है, और इसमें ठीक होने में कितना समय लगता है। कई सवाल इन्होंने एक मेल में पूछे हैं।
0: देखिए, जो लंग्स की टीबी है वो तो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस है, उसके बाद जो सेकंड मोस्ट कॉमन है उसमें ये हमारा पेट का टीबी आता है, इंटेस्टाइन का टीबी आता है।
1: अच्छा,
0: जो ड्यूरेशन है वो 6 to 9 months यूजली हम लोग फॉलो करते हैं, मतलब 6 से 9 months में ये जो टीबी है ट्रीट हो जाती है। बट जैसे मैंने कहा कि वो इट ऑल डिपेंड्स ऑन रेस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, हम अल्ट्रासाउंड करा के फॉलो करते रहते हैं कि अभी जो इन्फ्लेमेशन लेवल है वो कैसा है, कितना रेस्पॉन्स किया है पेशेंट में। और अभी आपको सिर्फ 2 months हुए हैं तो सिम्टम्स अभी थोड़े से आपको परेशान कर रहे होंगे, लेकिन आपको निश्चिंत रहने की जरूरत है, अगर ये ट्यूबरक्लोसिस का केस है तो डेफिनेटली ये 6 to 9 months के ट्रीटमेंट में पूरी तरह से क्योर हो सकता है।
1: दवाओं के कोई साइड इफेक्ट होते हैं? अक्सर लोग कहते हैं उन्हें नौजिया फील हो रहा है और भारीपन है सर में, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं?
0: देखिए, सबसे जो बेसिक प्रॉब्लम है टीबी के बैक्टीरिया के साथ में, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, हम किसी भी नॉर्मल बैक्टीरिया की बात करें, कोई भी बैक्टीरिया, तो हमें एक एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है यूजुअली। लेकिन टीबी के साथ में प्रॉब्लम ये है कि जो ये बैक्टीरिया है थोड़ा सा नोटोरियस बैक्टीरिया है।
1: अच्छा।
0: और ज्यादा परेशान करता है, बड़ा साइलेंट रहता है, लेकिन लंबा टाइम लेता है किल होने में, इसलिए हमें एट अ टाइम 4 दवाइयों को साथ में यूज करना पड़ता है। अब ऑब्वियसली 4 दवाइयां एक साथ यूज हो रही हैं, 4 एंटीबायोटिक एक साथ यूज हो रही हैं, तो उनके साइड इफेक्ट डेफिनेटली होंगे। जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट की बात करें कि सबसे कॉमन है कि बॉडी में रैशेज आना।
1: अच्छा।
0: उसमें कई सारी 2 ड्रग्स हैं जो कॉमनली रैशेज क्रिएट कर सकती हैं। उसके अलावा लिवर पे 3 ड्रग्स उसमें ऐसी हैं जो लिवर पे कई बार इफेक्ट करती हैं, बहुत सारे पेशेंट में लिवर पे इफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से उनके जो एंजाइम्स हैं ओटीपीटी बढ़ जाते हैं। और सबसे कॉमन जो सिम्टम आता है वो भूख न लगना, मतलब टीबी में ऑलरेडी पेशेंट को भूख नहीं लग रही थी, और कई बार होता है कि दवाइयां शुरू करने के बाद भूख और कम हो गई और वेट गिरना शुरू हो गया। उसके अलावा नौजिया फील होना और वोमिटिंग होना, ये टिपिकल सिम्टम्स हो जाते हैं कि लिवर पे डेफिनेटली ये दवाइयां कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, साइड इफेक्ट दे रही हैं। उसके अलावा जो पैराजिनामाइड है उसकी वजह से ज्वाइंट पेन हो सकता है। तो और सबसे एक इंपॉर्टेंट ड्रग है कॉम्बिटॉल, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है, हाँ कि लाखों में एक व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, आंखों की रोशनी में चेंज हो सकता है।
1: अच्छा।
0: तो विजन चेंजेस भी हो सकते हैं। तो एज ए डॉक्टर हम जब भी किसी पेशेंट को टीबी की दवाइयां लिखते हैं तो ये कॉमन साइड इफेक्ट को हम बताते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। और सबसे बड़ा ट्रीटमेंट ब्रेक करने का रीजन यही होता है कि कॉमन साइड इफेक्ट जो है कि पेशेंट को नौजिया वोमिटिंग शुरू हो गया और पेशेंट को लगा कि ये तो हमें सूट नहीं कर रही दवाइयां, तो और हम क्यों ले रहे हैं, हमें नुकसान हो रहा है, और तो हम बंद कर देते हैं और छोड़ देते हैं। और ट्रीटमेंट ब्रेक करना सबसे बड़ा रिस्क हो जाता है कि एमडीआर एक्सडीआर ट्यूबरक्लोसिस डेवलप होने का। इसलिए अगर कोई भी कॉमन

0: साइड इफेक्ट आपको नजर आता है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, तो उसके सिम्टोमेटिक या तो इलाज दिया सकता है, या फिर अगर कभी ऐसा सिचुएशन बनता है कि नहीं ये दवाई बिल्कुल ही सूट नहीं कर रही है, इस दवाई से हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो उस दवाई को रिप्लेस किया जा सकता है। उसको पूरी तरह से बंद करके रिप्लेस करना भी इंपॉर्टेंट है। अब पेशेंट क्या गलती करते हैं कई बार कि हमने 4 दवाइयों का सेट दिया, उसमें उन्हें पर्टिकुलर एक दवाई से समझ में आया कि ये पैराजिनामाइड जब हम रात में खा रहे हैं तो इसको खाने से हमें दिक्कत हो रही है, और वो कई बार एक दवाई को
1: छोड़
0: स्किप
1: दिया।
0: करना शुरू कर
1: ओहो,
0: देते हैं, और वो 3-4 महीने बाद आ रहे हैं डॉक्टर के पास और बता रहे हैं कि हमने एक दवाई तो लंबे टाइम से छोड़ रखी
1: हाँ
0: है।
1: हाँ हाँ
0: या फिर कई बार क्या हो रहा है, गवर्नमेंट प्रोग्राम की बात करें तो वहां जो कॉम्बिनेशन यूज होता है उसमें नंबर ऑफ पिल्स होती है वेट के हिसाब से, क्योंकि जो ट्रीटमेंट चलता है वेट बैंड के हिसाब से चलता है कि 45 का है तो 3 टैबलेट, 60 kg का पेशेंट है तो 4 टैबलेट, और अगर उससे 70 है तो 5 टैबलेट्स। पेशेंट कई बार क्या करता है कि 4 टैबलेट क्यों लेना, कि 2 से ही काम चला लेते हैं, 2 ही ले रहा है। अंडर डोजिंग होना, रॉन्ग डोजेज होना, कोई भी दवा को मिस करना, ये सबसे बड़ा रीजन है कि ये एक तो आपका टीबी ठीक नहीं होगा, ऊपर से जो टीबी है वो रेजिस्टेंट फॉर्म में चला जाएगा और मुश्किल हो
1: गॉड।
0: जाएगा, और फिर आप सोसाइटी के लिए भी रिस्क है कि मतलब आप जो टीबी स्प्रेड करेंगे वो भी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी स्प्रेड करेंगे पेशेंट्स को, अदर जो पर्सन हैं। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए डॉक्टर हमारी भी है और ये फैमिली मेंबर्स की भी है कि वो अगर कोई साइड इफेक्ट आ रहा है तो उसे टाइमली इंटरवीन करके उसे मैनेज किया जाए, ताकि पेशेंट जो है वो दवाइयां ना छोड़े और रिस्क ना क्रिएट करे
1: डॉक्टर
0: एटलीस्ट
1: सर, ये जो
0: सोसाइटी के लिए।
1: आपने साइड इफेक्ट्स बताए हैं, ये टाइम बींग होते हैं, जब तक आप दवा ले रहे हैं तभी
0: जी
1: तक होता है, इलाज के बाद आप वापस सारा नॉर्मल हो जाता है?
0: इवन एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट भी ये सब नॉर्मल हो जाता है। कुछ चीजें कॉमन है कि 4 दवाइयां आपने एक साथ ली तो थोड़ा सा नॉजिया वोमिटिंग फर्स्ट वीक में फील होना बहुत नॉर्मल है। इन केस अगर लिवर पे एक्चुअल में साइड इफेक्ट आ रहा है तो कोई भी ड्रग जो कल्प्रिट ड्रग है उसे डॉक्टर धीरे धीरे हटा देता है,
1: ठीक।
0: और चेंजेस पॉसिबल हैं कि अदर ड्रग्स, हमारे पास अल्टरनेटिव ड्रग्स अवेलेबल हैं जिन्हें हम रिप्लेस कर सकते हैं और टीबी को कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट। तो ऐसा पेशेंट को साइड इफेक्ट झेलने की जरूरत नहीं है, उसे तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करने की
1: कंसल्ट
0: जरूरत
1: करने
0: है
1: की
0: ताकि
1: जरूरत है।
0: उसका एक पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल सके।
1: बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपको इस तरह के कोई भी साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो आप डॉक्टर से
0: जी
1: कंसल्ट करें। लेंगे हम एक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक और उसके बाद विषय पर चर्चा जारी रहेगी।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
1: तो देखते ही देखते 12:50, 10 मिनट हमारे पास और हैं और मुद्दा जो है, वो जो टॉपिक है वो बहुत ही गंभीर है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार ने भी कई अवेयरनेस के और इसमें मदद के तौर पर फ्री और मुफ्त इलाज या फिर सस्ता इलाज भी टीबी के लिए किया है। हमारे जो श्रोता इस वक्त आपको सुन रहे हैं, उनको अगर आप बताना चाहें कि अगर वो इकोनॉमिकली वीक हैं तो वो
0: जी
1: किस तरह से अपना इलाज करा सकते हैं?
0: तो देखिए, हमारे गवर्नमेंट का, हमारे प्रधानमंत्री जी का पूरा फोकस है कि टीबी को पूरी तरह से हम उन्मूलन कर सकें,
1: जी
0: एलिमिनेट कर सकें इंडिया से। तो उसके लिए नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम चलाया जाता है, जिसमें जो दवाइयां हैं वो पूरी तरह से मुफ्त हैं, चाहे वो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हो, चाहे वो एमडीआर एक्सडीआर का ट्रीटमेंट हो जो कि बहुत कॉस्टली है। अगर मैं ड्रग की बात करूं, जो बेडाक्विलिन है, डेलामेडिन है, जो न्यूअर ड्रग्स हैं वो बहुत ही कॉस्टली हैं। अच्छी बात यह है कि वो प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल भी नहीं है, तो वो गवर्नमेंट सेक्टर में अवेलेबल है, तो मिसयूज ऑफ ड्रग्स जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट के प्रोग्राम ऑलरेडी रन कर रहे हैं, उसमें निश्चय पोषण योजना भी है, तो गवर्नमेंट का इस चीज पे भी फोकस है कि दवाइयां तो हम दे ही रहे हैं, इवन डायग्नोसिस भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जो जीन एक्सपर्ट टेस्ट है, जो जेनेटिक टेस्ट मैंने आपको पहले बताया था, वो भी टेस्ट जो काफी अच्छी खासी कॉस्ट 2200 रुपए यूजली होता है, जो प्राइवेट सेक्टर में होता है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराती है। आप अपने नजदीकी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, जो टीबी यूनिट्स हैं, वहां पे जा सकते हैं, अपने बलगम के टेस्ट करा सकते हैं। तो जो बलगम का माइक्रोस्कोपी टेस्ट है वो भी फ्री है, जीन एक्सपर्ट जो सीबी नॉट के नाम से होता है वो भी फ्री है। उसके अलावा दवाइयां भी 100% फ्री हैं, आपको पूरा सप्लाई मिलता है और आपको रेगुलर उसको यूज करना रहता है। उसके अलावा जो सपोर्ट प्रोग्राम है, जिसे हम निश्चय पोषण योजना के नाम से जाते हैं, उसमें जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, पेशेंट का जो आधार और जो बैंक डिटेल है वो हम लिया जाता है, और जो जो 1000 रुपीज पर मंथ जो है वो पेशेंट को दिया जाता है, ताकि जो पेशेंट का न्यूट्रिशन है, जो इकोनॉमिकली वीकर है उन लोगों का जो न्यूट्रिशन है उस पर भी गवर्नमेंट का फोकस है कि उस चीज को भी हम इम्प्रूव कर सकें, ताकि हम टीबी को पूरी तरह से खत्म कर सकें।
1: खत्म कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या एक सवाल जो रह गया है मेरे जहन में, वो ये है कि प्रेग्नेंट महिला है और अगर

0: वो उसको टीबी है, तो क्या उसके बच्चे को भी टीबी हो सकता है? और बच्चों का इलाज कैसे होता है, बच्चों में क्या लक्षण होते हैं टीबी के?
1: देखिए, प्रेग्नेंट लेडी में तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जैसे ही टीबी डायग्नोस होना है तो टीबी की दवाइयाँ जो फर्स्ट लाइन दवाइयाँ हैं वो पूरी तरह से सेफ हैं,
0: अच्छा
1: तो इमिडिएटली उस ट्रीटमेंट को शुरू करने की ज़रूरत है। उसमें कोई भी डिले करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि प्रेगनेंसी है तो हम यूजली प्रेगनेंसी में दवाइयाँ जो हैं एंटीबायोटिक्स हैं हम अवॉइड करते हैं, बट जो टीबी की हमारी फर्स्ट लाइन 4 ड्रग्स हैं वो पूरी तरह से कम्प्लीटली सेफ हैं और हमें उन्हें मतलब इमिडिएटली स्टार्ट करने की ज़रूरत रहती है और वो पूरी तरह से क्योर भी हो जाता है।
0: अच्छा
1: जो प्रेग्नेंट लेडी से बच्चे में ट्रांसफर होने का सवाल है तो डेफिनेटली वो थ्रू प्लेसेंटा ट्रांसफर हो सकता है, जिसे हम कंजेनाइटल टीबी बोलते हैं।
0: अच्छा
1: हालांकि वो पीडियाट्रिशियन डील करते हैं, एक
0: हाँ
1: डिफरेंट एस्पेक्ट हो जाता है,
0: हाँ हाँ
1: लेकिन अगर पेशेंट ने टाइमली अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है तो
0: हाँ हाँ
1: बच्चे में ट्रांसफर होने का जो रिस्क है वो काफी ना के बराबर हो जाता है।
0: अच्छा,
1: जी,
0: तो कुछ लक्षण अलग होते हैं बुजुर्गों के और बच्चों के, या सेम लक्षण सेम सिम्टम्स होते हैं?
1: ऑलमोस्ट सेम सिम्टम रहते हैं, बस बच्चों में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम आती है वो बलगम की आती है, कि जो एडल्ट पेशेंट हैं वो कॉफ करके बलगम को बाहर निकाल सकते हैं। और मैंने ये बात पहले भी बोली थी कि जो कंफर्मेटरी टेस्ट है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, वो है बैक्टीरिया का कन्फर्मेशन, कि बैक्टीरिया का दिख जाना स्पुटम में। तो बच्चों में ये प्रॉब्लम रहती है कि वहां पे हमें सैंपल यूजली नहीं मिल पाता है, तो वहां पे कंफर्म करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अल्टरनेटिव मेथड्स हैं, गैस्ट्रिक एस्पिरेट, इस तरह से जो जांचें हैं वो की जाती हैं, रेडियोलॉजिकल बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। तो अदर टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं जो ये कंफर्म कर सकते हैं कि बच्चों में भी टीबी को 100% कंफर्म करके ही इलाज शुरू किया जा सकता है।
0: डॉक्टर साहब, एक मेल हमारे पास आया है राज जी का, लिखते हैं कि क्या बालों का झड़ना भी टीबी का एक सिम्टम हो सकता है, बालों का टूटना या फिर सफेद होना? और आगे ये लिखते हैं कि कितने तरह की टीबी होती है, कितने ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकती है? साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि अगर टीबी हो गई है तो क्या खाएं क्या ना खाएं, और अगर टीबी नहीं है तो क्या ऐसा खाएं कि टीबी ना हो?
1: कई मल्टीपल क्वेश्चंस हैं।
0: जी
1: तो देखिए, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स में टीबी हो सकती है। तो जैसे अगर हम टॉप टू बॉटम बात करें तो सबसे पहले ब्रेन की टीबी हो सकती है, उसके अलावा लिम्फ नोड की टीबी हो सकती है, जो गले में गांठें होती हैं जिन्हें हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं, उसकी टीबी हो सकती है, लंग्स की टीबी हो सकती है, लंग्स में भी जो चारों तरफ मेम्ब्रेन है जिसे हम प्लूरा बोलते हैं उसकी भी टीबी हो सकती है। जैसे एक सवाल आया था बीच में कि लंग्स में अगर पानी भर गया है तो वो भी एक तरह का जो है प्लूरल टीबी हम जिसे बोलते हैं वो होता है। उसके अलावा पेट की टीबी हो सकती है, इंटेस्टाइन की टीबी हो सकती है, जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, इवन किडनी का भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। जो हेयर्स हैं वो बेसिकली टीबी से बच जाते हैं, हेयर्स ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे टीबी नहीं होता है। तो जो भी सिम्टम्स आपने बताया, हेयर का ग्रे होना, वाइट होना और जो हेयर फॉल होना, वो यूजली टीबी के सिम्टम में नहीं होता है। ऑल दो क्यूटेनियस टीबी भी हो सकती है, मीन्स स्किन की भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, ऑल दो ये बहुत ही रेयर फॉर्म होता है, इवन आंखों को भी टीबी इन्वॉल्व करता है। तो मेजॉरिटी जो मोस्टली ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी में वो टीबी से इन्वॉल्व होते हैं। डाइट, एक अच्छी पौष्टिक डाइट लेना है सबके लिए मैंडेटरी है, वो सबको लेना चाहिए, और वही एक बचाव का तरीका हो सकता है। किसी पेशेंट के, ऐसे पेशेंट को आप अगर जानते हैं जिसे स्पुटम पॉजिटिव ट्यूबरक्लोसिस है, तो आप उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें, यही मैं कहना चाहूंगा।
0: जी, जाते जाते डॉक्टर साहब एक कॉमर्शियल और म्यूजिकल ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर हम प्रोग्राम को क्लोज करेंगे।
2: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
3: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
2: पाए पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
3: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
0: तो देखते ही देखते हम प्रोग्राम के अख्ताम पर आ चुके हैं। 12:56 हो चुका है और अब हेल्थ एंड फिटनेस से हम आपसे लेंगे इजाजत, लेकिन जाने से पहले डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को इन जनरल क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि इस चीज़ को जानना कि टीबी का डायग्नोसिस होता कैसे है। जो अक्सर मैं देखता हूँ, जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनमें एक कॉमन मिथ रहता है कि मेरे को 1-2 महीने से बुखार चल रहा है और मेरे को टाइफाइड हुआ है। एक जो टाइफाइड का नाम लेके आते हैं ना, बुखार को इग्नोर करते हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कई बार ऐसा भी होता है वहाँ के डॉक्टर्स इस टाइफाइड के नाम पे लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट देते रहते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर किसी भी व्यक्ति को 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आ रही है, हल्का फुल्का बुखार बना हुआ है, वेट लॉस हो रहा है, भूख में कमी आ रही है, कमजोरी लग रही है, तो इन लक्षणों को आप हमेशा याद रखिए। अगर ऐसा कुछ भी आपको नजर आता है, ये टीबी की संभावना को व्यक्त करता है। ऐसे में आपको, अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं तो

0: आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर है जहाँ पे आप जा सकते हैं, जहाँ पे ऑलमोस्ट सारी जांचें आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, टीबी की डायग्नोसिस हो जाएगी, कंप्लीट ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, आप उसको बस रेगुलरली लीजिए, बीच में ब्रेक ना करिए और पूरी तरह से आप कंप्लीटली क्योर आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। इस चीज की गारंटी मैं ले सकता हूँ। हर बीमारी में डॉक्टर गारंटी नहीं ले सकता, बट एक इन्फेक्शियस डिजीज ऐसी है जिसमें अगर प्रॉपर इलाज लिया जाए तो कंप्लीटली उसको क्योर किया जा सकता है।
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे डॉक्टर राहुल कुमार राठौर, चेस्ट स्पेशलिस्ट, जिन्होंने लक्षण जांच और बचाव के बारे में टीबी के आपको जानकारी दी और यकीनन ये जानकारियों ने आपकी जिंदगी में बदलाव किया होगा और बेहतर और लाभकारी रही होंगी। इसी के साथ कार्यक्रम हेल्थ एंड फिटनेस से मुझे और डॉक्टर साहब को दीजिए इजाजत। डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला, हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे 300 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा, लखनऊ।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोता हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अनुरोध गीत। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम अनुरोध गीत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं शुरू करते हैं आपके पत्रों का सिलसिला, और हमारे इस कार्यक्रम के पहले गीत के लिए अनुरोध किया है हमारे आप सभी श्रोताओं ने। आप हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रहीम एराज जहां, मोहल्ला तलैया उल्ला जागीर से फजुद्दीन भाई, अबरार भाई, अफजाल भाई। आप हैं पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी, गगनदीप, बेबी आरजू जाजौरिया। इंदिरा बिहार रायगढ़ से वसीम अक्रम नूरजहां, डब्लू अक्रम नूरजहां, वली अक्रम, उल्ला अक्रम। राजनांदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ, इमरान और इरफान। जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम और आदिबा। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले, राजेश राजदीप, राजेश राशि, राजेश और शीतल राजेश। आप हैं परिमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा, इल्मा, आफरीन खान। आप सभी श्रोताओं के लिए सुनवाते हैं फिल्म सिर्फ तुम का ये गीत, जिसको गाया है अलका याग्निक और साथियों ने। गीत के बोल समीर के हैं।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 FM, सुन रहे हैं अपने पत्रों पर आधारित कार्यक्रम अनुरोध गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पर उडला जागीर से अफसर खां और यामीन खां, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा विमला अनेजा, महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे, उत्तम जमदाड़े और स्वराज जमदाड़े, फूलबाग किला छावनी बरेली से शोभित श्रीवास्तव, संजीव श्रीवास्तव, राजीव, राजनितिन श्रीवास्तव, रानी शोभमती, रोहन और गरीब भाई, बरेली जंक्शन से सोनू मिश्रा, वीरेश सिंह चौहान, राजू चौहान और अंकित चौहान, मॉडल टाउन करनाल से हमारे श्रोता सुधीर नूतन, संदीप गोगलानी, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा और जगमोहन प्रजापति, आप सभी श्रोताओं ने सुनने का अनुरोध किया है फिल्म अखियों के झरोखों से का ये गीत है, जिसको गाया है हेमलता और शैलेंद्र सिंह ने। गीत के बोल और संगीत रविंद्र जैन का है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत। कार्यक्रम अनुरोध गीत का अगला गीत आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पर, आप हैं छावनी अशरफ खां पानी की टंकी के पास होली चौक बरेली से, राम प्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वंदना, मनोरमा देवी, अजय, आपके साथ हैं खेमकरण और लक्ष्मी देवी। हम दोस्त रेडियो लिसनर्स क्लब जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत रानी, तबस्सुम रुखसार और मोहम्मद आसिफ। ये पत्र हम तक पहुंचा खुर्जा उत्तर प्रदेश से, लिखने वाले हमारे श्रोता तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन और अंकुश अरोड़ा। आप हैं मसरूर खान, वार्ड नंबर 16, ककराला बदायूं से, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। जिला बदायूं, ग्राम दूनेनगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, मनोज कुमार कठेरिया, सत्येंद्र कुमार, गुड्डू, विशाल, संगम, वैभव, आदर्श, आदित्य, अमित, रेणु, कुमकुम, निव्या, सरिता और अंतिमा। आदर्श नगर मलोट से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी, सौरभ, शाइना और निवान शर्मा। आप सभी को सुनवाते हैं आप सभी के अनुरोध पर फिल्म जनता हवलदार का ये गीत, जिसको गाया है अनवर ने। गीत के बोल मजरू के हैं और संगीत निर्देशन राजेश रोशन का।

श्रोताओं कार्यक्रम के अगले गीत के लिए अनुरोध किया है हमारे आप सभी श्रोताओं ने। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति और नवनीत राय। आप हैं रंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। और आप हैं मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू, साजदा रानी और हिना कौसर। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म अस्तित्व का ये गीत जिसको गाया है सुखविंदर सिंह ने।

कार्यक्रम की अगली पेशकश आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पर कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से हमारे नियमित श्रोता अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही और स्वाति मौर्य। सरगुजा मेन पार्ट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा आदिवा थापा। बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली और कुमारी डब्लू डोम। जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा, उल्ला आसमा बेलदार। ये पत्र हम तक पहुंचा देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा, प्रकाश और देवेंद्र जी का। आप हैं जमशेदपुर से, बड़ा बांबू गांव सुपाई साई से। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनुष्का और तन्मय गजबिये। ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसामा जिला बदायूं से सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र, आनंद सनोज, अमन सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता, सूरजश्री यादव और गुनगुन यादव। आप सभी को सुनवाते हैं आपके अनुरोध पर फिल्म गुना का ये गीत है, जिसको आए रूप कुमार राठौर और साबरी ब्रदर्स ने

कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पर पंचकुला सेक्टर नंबर 9 से आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंदर, टोनी लव, राधे, भाविक ढिंगरा, रिग्नी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, सेक्टर नंबर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, जयवीर सिंह ठाकुर, अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया। ये पत्र हम तक पहुंचा अस्तुपुरा जिला मऊ यूपी से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, सादिक और साजिद का। आप हैं बहादुरगंज गाजीपुर से

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का ऐसा आलम।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पर अगला गीत कार्यक्रम का। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारनी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर। आप हैं शीशगढ़ बरेली से इलियास इदरीसी, नाजरा इदरीसी, नईम नदीम और असद बाबू। मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, विवान लखविंद्र संधु, महावीर संधु, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी। ये पत्र हम तक पहुंचा सर्वोच्च चौक अमरावती महाराष्ट्र से। कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा, सालिया, शोएब खान, मुस्तवा, रऊफ और शाहिद भाई का। गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा। आप सभी को सुनवाते हैं आप सभी के अनुरोध पर फिल्म मैंने प्यार किया का ये गीत। आवाज़ दी है इस गीत को शारदा सिन्हा ने। गीत के बोल हैं असद भोपाली के।

श्रोताओं, ये अब आपको सुनवाते हैं फिल्म रजिया सुल्तान का ये गीत, जिसको गाया है लता मंगेशकर ने, गीत के बोल जाने सार अख्तर के और संगीत निर्देशन खयाम का। इस गीत को सुनने का अनुरोध किया है हमारे आप सभी श्रोताओं ने। मोहल्ला गढ़ैया बरेली मस्जिद के पास से मोहम्मद कैसर शमसी, अजीम शमसी, सलीम शमसी, नवेद, रजिया और बेबी। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, मीका, बलविंदर, बिरक, जैतिक बिरक, मीका बिरक। आप हैं गंज डंडवारा से मुनव्वर।

लल्ला भाई, मिर्ज़ा नसरीन बेगम, अरबाज़ खान, शहबाज़ खान, सूफिया महबूबा, पप्पू, अफसाना बेगम, महजबी शेख। ये पत्र हम तक पहुंचा ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं तहसील दातागंज से। लिखने वाले हमारे श्रोता सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र, आनंद, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता, सूरश्री और गुनगुन यादव। आप हैं मोहल्ला दुर्गा प्रसाद, बीसलपुर जिला पीलीभीत से विमल वर्मा, विनय वर्मा और इनके मम्मी पापा। कस्बा शीशगढ़ मोहल्ला गौड़ी से गुड्डू इदरीसी और मोहम्मद फरहान इदरीसी। आप हैं पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, अल्तमश खत्री, रमेश कौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। आप सभी को सुनवाते हैं आपके अनुरोध पर फिल्म रजिया सुल्तान का ये गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम अनुरोध गीत यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम में आगे आप सुनेंगे हरीश मौर्य के साथ रसरंग।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे अनुरोध गीत शीशपाल राजपूत के साथ। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104.4 FM पर। अपराह्न के 2 बज चुके हैं। लीजिए अब सुनवाते हैं वो कार्यक्रम रस रंग।

शायद तुम्हें अभी आप सुन रहे थे ये कव्वाली बडाली ब्रदर्स के स्वर में, और आइए सुनवाते हैं आपको एक और कव्वाली, पंजाबी सूफी ये कव्वाली है।

0: खो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज

0: रहा है, ब्याज कितना है। लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
1: आरबीआई कहता है,
2: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
3: श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसरंग आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, और सुनवाते हैं आपको ये गजल। स्वर है गुलाम अली साहब का।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तेरे खुशबू में बसे खत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रसरंग आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, और अब आपको जोड़ रहे हैं विविध भारती प्रसारण सेवा कार्यक्रमों से जिन्हें रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
1: और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में बहू बेटी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आई मिलन की बेला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, SH बिहारी के बोल हैं, OP नैयर का संगीत, फिल्म कश्मीर की कली। सुनिए ये गीत।

0: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और अभी आपने सुना मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म से ये गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं, हसरत जयपुरी की कलम से निकला है ये शब्द और कल्याण जी आनंद जी की तर्ज इसे मिली, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। चलिए सुनते हैं जी चाहता है फिल्म से ये गीत।
1: क्या कहने माशा अल्लाह,

जी चाहता है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं।

0: जरा होशियार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। होए होए आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। हाय हाय जाने वाले।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और कार्यक्रम में अगला ये गीत आपने सुना राजकुमार फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं, और ये गीत हमने लिया है फिल्म गुमनाम से। मोहम्मद रफी की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

मोहम्मद रफी की आवाज में गुमनाम फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। इसके साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: Mancha Regi.
1: Mancha Regi.
0: Mancha Regi.
1: कार्यक्रम मंचा है गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। और कार्यक्रम में पसंद का सिलसिला शुरू किया जाए उससे पहले जान लीजिए इस कार्यक्रम के नियम।
0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्ट कार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं केवल पोस्ट कार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मंचा है गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
1: कार्यक्रम मंचा है गीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम की पहली पसंद किसकी पूरी होने वाली है ये आपको बता देते हैं। शिकार फिल्म के गीत की फरमाइश आई है अमरनाथ, सूर्यकांत, सोम और सुरेश की सुकमा छत्तीसगढ़ से, साथ ही हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने भी फरमाइश की शिकार फिल्म के इस गीत को सुनने की। तो आप सभी के पसंद पर सुनिए ये गीत जिसे लिखा है असरत जयपुरी ने, शंकर जयकिशन का संगीत और मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म शिकार।

होते चले। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और कार्यक्रम का अगला पसंदीदा गीत है आप सभी की ओर से जयपुर राजस्थान से पुष्पा दिल्लीवाल और पायल, जिला उज्जैन बोरखेड़ा से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा, आप सभी ने सुनना चाहा है बहु बेगम फिल्म का गीत। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत, साहिल उद्यानवी के बोल, रोशन का संगीत, सुनिए आपकी पसंद पर ये गीत।

0: तो अब कार्यक्रम मन चाहे गीत में किसका इंतजार हो रहा है खत्म, ये जानते हैं कौन है जिनकी फरमाइश पर अगला गीत हम सुनवाने वाले हैं। आप सभी हैं नाचणगांव जिला वर्धा महाराष्ट्र से, आरती भगत, विशाली भगत, पूर्वी भगत, लता भगत और प्रदीप भगत, साथ ही विशाल भगत, रामचंद्र भगत और चंद्रकांत भगत का नाम भी इसमें शामिल है। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां, आप सभी ने मिलकर पसंद किया है 10 नंबरी फिल्म का गीत जो हम आपको आपके पसंद पर सुनवाने वाले हैं। इस गीत में सुनिए मुकेश और साथियों की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: कहत कबीर सुनो भाई साहब।

10 नंबरी फिल्म का ये गीत आपने सुना और कार्यक्रम मनचाहे गीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। और इस कार्यक्रम में अगला गीत किनकी फरमाइश पर शामिल होने वाले ही बताएं, इससे पहले बता दें कि दो गुलाब फिल्म के गीत के लिए फरमाइश आई है और फरमाइश भेजी आप सभी ने प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से वी पूनम नायडू, साजन के मास्टर शिवांशु, ऋषु अभिषेक नायडू, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। आप सभी के पसंद पर सुनवाएंगे दो गुलाब फिल्म से गीत। लेकिन उससे पहले एक और बात कहना चाहते हैं कि ये खत छाटते छाटते हमें मिली एक ऐसा पोस्टकार्ड मिला जिसमें दक्षिण भारतीय भाषा में लिखा था कुछ, तो हमारी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपकी भाषा हिंदी से अलग है तो आप अंग्रेजी में अपना नाम लिखकर भेज सकते हैं ताकि नाम शामिल हो सकें। तो अब सुनते हैं दो गुलाब फिल्म से किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज में ये गीत, इंदिवर के बोल पप्पी लाहिड़ी का संगीत। सुनिए आप सभी की पसंद पर ये गीत।

दो गुलाब फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। और अगले गीत की फरमाइश हमें आई है पारण सावंगी से, गजानन निखार, खुशहाल सोनकुसरे और नामदेव भूते की। और आपने सुनना चाहा है आवारा फिल्म से गीत, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, मुकेश की आवाज। सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम मन चाहे गीत में अगली फरमाइश जो पूरी हो रही है सौदागर फिल्म के लिए, ये गीत की फरमाइश आई है ग्राम सरखों जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से राजेश रेखा साव, कमलेश रावी साहू, हनी हिमांशु, डिम्पी और सेजल साव के साथ ही ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायात, सरवद देशमुख, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली सानवी और कल्पना की। आप सभी के पसंद पर सौदागर फिल्म से गीत सुनिए। कविता कृष्णमूर्ति, मनहर दास की आवाजें, सुखविंदर सिंह की आवाज भी साथ ही, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: इस गीत के साथ ही आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: विविध भारती।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग। महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। हिंदी रूपांतरण किया है सीताराम चतुर्वेदी ने। रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। तो आइए सुनते हैं नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग।
2: हाँ तो महाराज, आज्ञा कीजिए।
3: देखो सुंदरी, बहुत दिनों से इसी अशोक की तरह मुझ में भी थैरी के फूल नहीं आ रहे, इसलिए आज तुम अपने स्पर्श का अमृत पिलाकर अपने इस अनन्य प्रेमी के मन की भी साथ पूरी कर दो।
4: हाँ हाँ मालविका, पूरी कर दो इनके मन की साथ।
3: कौन
5: रानी रावती?
4: अशोक में तो अभी फूल नहीं आए हैं, पर ये महाराज तो अभी से फूले जा रहे हैं। ये मालविका तो जैसे गूंगी हो गई है। मैं पूछती हूँ, तू चुप क्यों है?
3: मित्र, अब क्या किया जाए?
5: जल्दी से पांव का सहारा लिया जाए महाराज।
4: अरे बकुला वालिका, तूने ये दूती का अच्छा काम अपने ऊपर लिया है, अब कराना आर्य पुत्र के साथ पूरी।
6: देवी, आप तो व्यर्थ ही हम पर क्रोध कर रही हैं।
7: भला हम कौन होती हैं
6: महाराज के साथ पूरी करने वाली। आओ मालविका, हम चले।
7: चलो।
4: ओह, इन पुरुषों पर भूल कर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं अब तक आर्य पुत्र की चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास करती रही। ओह, मैं क्यों इनके प्रेम जाल में फंसी।
5: महाराज, अरे महाराज, कुछ तो बात बनाइए। रंगे हाथों पकड़ा गया चोर भी कह देता है। मैं चोरी करने के लिए सिर नहीं लगा रहा था, मैं तो ये देखना चाहता था कि आया मैंने दीवार फोड़ने की विद्या ठीक ठीक सीख ली है या नहीं।
3: सुंदरी, मालविका जैसी दासी से भला हमें क्या लेना देना। तुम्हारे आने में देर हो रही थी, इसलिए थोड़ा मन बहलाने के लिए हम।
4: जी हाँ, आप एकदम सच कह रहे हैं। मुझे यदि पता होता कि बेचारे आर्य पुत्र को मन बहलाने के लिए यही वस्तु मिली है, तो मैं अभागिन बीच में आती ही क्यों।
3: परंतु देवी,
4: मेरे साथ छल न कीजिए। वहाँ आड़ में खड़े होकर मैंने सब कुछ देखा भी और सुना भी।
3: ओह, मुझसे निश्चय अपराध हुआ, क्षमा कर दो। शांत हो जाओ देवी, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, अब मान भी जाओ ना।
4: ये मालविका के पैर नहीं जो आपके मन के साथ पूरी कर देंगे। आलीपुरी का हम चले यहाँ।
5: महाराज, अनर्थ हो गया महाराज।
3: क्या हुआ?
5: महारानी धारिणी ने मालविका और बकुला वलका के पैरों में बेड़ियां डलवा कर दोनों को नीचे के भंडार वाली काल कोठरी में बंद कर दिया महाराज।
3: ओह, ये सब हमारे प्रेम की बात जानकर ही किया गया होगा। हमारे किस वैरी ने देवी धारिणी को जाकर भड़काया?
5: छोटी रानी इरावती ने महाराज।
3: लगता है इरावती हमसे बहुत रुष्ट हो गई है।
5: महारानी धारिणी की पांव की चोट अभी ठीक नहीं हुई है ना महाराज, तो परिवराज का कौशिकी उनके पास बैठी थी, तभी इरावती भी कुशल मंगल पूछने के लिए वहां पहुंच गए और बातों बातों में आपका पूरा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया।
3: फिर क्या हुआ?
5: अब क्या होना था महाराज, मालविका और बकला वलका को बंदी बनाकर नाग कन्याओं के समान ऐसे पाताल में भेज दिया जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती महाराज।
3: ये तो बहुत बुरा हुआ। कहो मित्र, उन्हें छुड़ाने का कोई उपाय हो सकता है या नहीं?
5: अब उपाय क्या होगा महाराज, निचले भंडार की पहरेदार को महारानी धारिणी ने कह दिया है कि उन दोनों अभागिनों

0: वो बिना उनकी अंगूठी देखे कभी ना छोड़े। अब महारानी की वो अंगूठी कैसे हाथ लगे महाराज?
1: मित्र, कोई कोई युक्ति तो लड़ाओ।
0: युक्ति युक्ति महाराज, महारानी की अंगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है ना?
1: हाँ।
0: तो उपाय मिल गया, मिल गया महाराज, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। कोई छिपकर सुन न रहा हो, कान में सुनिए। मैं नाग को बांध करके नाग मुद्रा लेके तुम
1: ओ जियो मित्र, बहुत बढ़िया उपाय सोचा तुमने, बस अब देर न करो।
0: तो आप महारानी धारिणी के पास जाइए, वे इस समय पवन गृह में दासियों से घिरी पलंग पर बैठी परिवराजिका से कथा सुनकर मन बहला रही हैं।
1: तो हमारे लिए वहां जाने का ये अच्छा अवसर है, इस प्रतिहारी जयसेन को सब समझा दो।
0: अभी समझाए देता हूँ महाराज, आप वहां पहुंचिए। जयसेन इधर आओ।
2: कहिए आगे गौतम।
0: कान में सुनो।
3: जय हो, हरे पुत्र की जय हो। विराजिए, आपकी विजय हो देव।
1: प्रणाम भगवती। कहो देवी, पांव की पीड़ा कुछ कम हुई?
3: आज तो कुछ कम है देव।
4: अरे शियारी गौतम घबराया हुआ इधर चला रहा है, हाथ का अंगूठा इसने जनेऊ से क्यों बांध रखा है?
5: महाराज मर गया, मुझे बताइए महाराज, मुझे सांप ने काट लिया।
1: ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। प्रतिहारी भागकर वैद्य ध्रुव सिद्धि को बुला लाओ।
2: जैसी देव की आज्ञा।
1: मित्र गौतम, कहाँ घूम रहे थे तुम जो सांप ने?
0: महाराज, मैं देवी का कुशल मंगल पूछने के लिए आने लगा तो सोचा भेंट के लिए दो चार फूल ही लेता चलूं। मैं प्रमद वन चला गया, वहाँ फूल तोड़ने के लिए दाहिना हाथ बढ़ाया ही था कि कालपरी का सांप ने मुझे डस लिया। महाराज ये देखिए, ये देखिए अंगूठे पर उसके दांतों के चिन्ह।
3: हाय हाय, मेरे ही कारण बेचारे ब्राह्मण के प्राण संकट में पड़े हैं।
5: अरे काल ने मुझे दबोच लिया।
1: घबराओ मत, हो सकता है कि सांप विषैला न हो।
5: मेरा तो अन्नंगा करता जा रहा है, सारे शरीर में फैलता जा रहा है।
3: हाँ, इसकी तो दशा बिगड़ती जा रही है। अरे कोई संभालो इस दीन ब्राह्मण को।
4: अरे गौतम तनिक संभलिए, धीरज से काम लीजिए।
5: महाराज, मैं आपका पाल सका हूँ, सिनाते मेरे पास मेरी निपुती माँ की देखभाल कीजिएगा।
1: ये क्या कह रहे हो मित्र, अभी वैद्य आकर तुम्हें अच्छा कर देगा।
2: महाराज महाराज, वैद्य जी ने कहा है कि आज गौतम का उपचार उनके चिकित्सालय में ही हो सकेगा, इन्हें वहाँ ले जाना होगा। महाराज
1: तो संभाल कर इन्हें वहाँ ले जाओ।
2: देव की कैसी आज्ञा।
5: कौन जाने मैं जीव या मरूं, सेवा करते हुए मुझसे जो कुछ भूल चुक हुई हो वो क्षमा कीजिए।
3: नहीं नहीं नहीं आर्य गौतम, भगवान करे तुम बहुत दिन जियो।
2: याद आया महाराज, वैद्य जी ने कहा है कि जलघट विधान द्वारा किसी ऐसी वस्तु से इनका विष उतारा जाएगा जिसमें नाग मुद्रा जड़ी हुई हो। क्या कोई ऐसी वस्तु मिल सकती है?
3: मेरी मेरी अंगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है, ये ले जाओ, काम हो जाने पर मुझे लौटा देना।
2: देवी की जैसे आज्ञा। आइए आइए गौतम।
0: जैसे ये अंगूठी मुझे दो, कुछ देर बाद मंत्री जी का बहाना करके महाराज को बाहर बुला लाना और फिर यथाशीघ्र उन्हें गुप्त मार्ग से प्रमद वन में पहुंचा देना, समझे?

0: कौन? अरे गौतम, आज आप निचले भंडार में कैसे आए?
1: ये देखो महारानी की अंगूठी।
0: अंगूठी तो उन्हीं की है।
1: तो तुरंत मालविका और बकला वलका को अपनी उस काल कोठरी से मुक्त करो।
0: ओह,
1: यहाँ कितना अंधेरा है, काल कोठरी में तो और भी।
0: अभी मशाल जलाती हूँ और उन दोनों को बंधन मुक्त करती हूँ। परंतु मैं सोच रही हूँ, इतने सेवकों के रहते देवी ने आप ही को क्यों भेजा?
1: देवी ने क्यों भेजा? अरे तो तुम्हें नहीं मालूम, ज्योतिषियों ने कहा है कि आजकल महाराज के ग्रह कुछ बिगड़े हुए हैं।

0: इसलिए तमाम बंदियों को मुक्त कर दिया जाए। देवी ने तुरंत मुझे बुलाया और
1: ठीक है मैं उन दोनों को अभी छोड़ देती हूँ।
2: आप धन्य है आर्य गौतम, परंतु आपने खेल कैसे खेला?
0: ये मैं फिर बताऊंगा बकलवल का। इस समय तुम मालविका को गुप्त मार्ग से समुद्र ग्रह में ले जाकर प्रतीक्षा करो, मैं महाराज को ढूंढकर वहीं ला
2: जो आ गया।

0: सखी मालविका, महाराज को प्रणाम करो।
1: आपको प्रणाम।
0: अरे ये तो समुद्र गृह में लगा हुआ महाराज का चित्र है। अच्छी सखी, तुम भी मुझे बना रही हो।
1: बनाना कैसा, इस चित्र में महाराज ही तो है।
0: तो आओ हम दोनों प्रणाम करें। स्वामी की जय हो। सखी, उस दिन हड़बड़ी में मैं महाराज को अच्छी तरह देख भी नहीं पाई थी। आज इस चित्र में चीप भर कर महाराज का रूप देखकर भी मैं अखा नहीं रही हूँ। क्यों सखी, चित्र में ये कौन स्त्री है जिसकी ओर महाराज मुंह घुमाकर बड़ी प्रेम भरी चितवन से देख रहे हैं?
1: ये छोटी रानी इरावती है।
0: ओ सखी, महाराज का प्रेम सब रानियों पर एक से नहीं जान पड़ता। देखो ना, सबकी ओर से ध्यान हटाकर वे केवल देवी इरावती का ही मुख निहार रहे हैं। ये भोले चित्र के महाराज को सचमुच का महाराज समझकर दाह करने लगी है। अच्छा तो मैं भी इसे बनाती हूँ।
1: क्यों ना महाराज देवी इरावती का मुख निहारे, यही तो महाराज को सबसे अधिक प्यारी है।
0: तो फिर मैं क्यों तिल तिल अपनी देह जलाऊं?
2: हे कमल नयनी,
0: स्वामी की जय हो।
3: प्रिय, चित्र में चित्रकार द्वारा अंकित हमारी मुख मुद्रा को देखकर तुम क्यों रूठ गई? तुम्हारा ये अनन्य दास तो तुम्हारे सामने खड़ा है।
0: तो क्या मैं सचमुच चित्र में चित्रित स्वामी से रूठ गई थी? स्वामी की जय हो।
3: प्रिय,
4: अरे आप कहते कहते चुप क्यों हो गए महाराज?
3: मित्र क्या बताऊं, इन पर भरोसा नहीं हो रहा। हमारी आंखों में बसी है परंतु देखते देखते ओझल हो जाती है। हमारी
0: सखी, तुमने महाराज को बहुत झकाया है, अब कुछ ऐसा जतन करो कि ये तुम पर भरोसा करने लगे।
1: सखी, मुझे अभागी की तो महाराज से स्वप्न की कभी भेंट नहीं हुई।
0: महाराज इसका उत्तर तो आप ही दे सकते हैं।
3: उत्तर क्या दें बकला वालिका, हम तुम्हारी सखी से अपनी कोई सेवा नहीं कराना चाहते। हम तो एकांत में प्रेम की अग्नि को साक्षी बनाकर इनकी सेवा के लिए अपने को समर्पित किए दे रहे हैं।
4: अरे बकला वालिका, उधर देख उस नन्हे अशोक के पत्तों को, वो हिरण चले जा रहा है। आ, उसे भगाने
0: चल चले।
4: महाराज घबराइए नहीं, मैं इस समुद्र गृह के द्वार पर हूँ।
0: निपुणिका, ये सोचना ठीक है कि आर्य गौतम समुद्र गृह के द्वार पर अकेले सो रहे हैं?
5: मैं स्वामिनी से झूठ थोड़ी ही बोलूंगी।
0: बेचारे को सांप ने काटा था, तो चल वही चलकर हम उसका हालचाल जान लें। और
5: देवी, आप कुछ कहते कहते रुक क्यों गई?
0: उस समुद्र गृह में महाराज का एक चित्र है ना, वहाँ चलकर चित्र में अंकित महाराज को भी मना लिया जाए।
5: चित्र की बजाय आप स्वयं महाराज को ही जाकर क्यों नहीं मना लेती?
0: अरे पगली, किसी दूसरे से प्रेम करने वाले महाराज हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे उनका चित्र। मुझे दुख है कि उस दिन उन्होंने मुझे इतना मनाया पर मैं रूठी ही रही। आ चले समुद्र गृह की ओर।

0: बेचारे की कैसी दशा है, लगता है विष का विकार अभी पूरी तरह दूर नहीं हुआ।
1: पर इनके मुंह पर जो प्रसन्नता झलक रही है उससे तो ऐसा नहीं लगता।
2: हे देवी मालविका।
1: सुना स्वामिनी, यह गौतम पेट तो भरता है आपके दिए लड्डुओं से और स्वप्न में नाम रट रहा है मालविका का।
2: मालविका, तुम छोटी रानी रावती से भी ऊंचा स्थान पाओ।
3: ये कृतघ्न बामन,
1: ठहरिए, आइए हम दोनों उस खंभे की ओट में छिप जाएं। अब यहाँ से मैं इस डरपोक बामन पर ये सांप जैसी टेढ़ी लकड़ी फेंकती हूँ।
3: महाराज बताइए, महाराज बताइए, मुझ पर सांप आ गया महाराज।
4: डरो मत मित्र, मैं आ रहा हूँ।
5: महाराज रुकिए, उधर ना जाइए।
0: अच्छा तो ये बात है, समुद्र गृह में महाराज और मालविका।
2: अरे ये तो लकड़ी है, मैं समझा था कि केतकी के कांटों से सांप के दांतों के झूठ मूठ चिन्ह बनाकर मैंने सांप पर जो कलंक लगाया था उसी से मुझे दंड देने के लिए सचमुच का सांप आ गया। मैं बेकार ही डरा।
4: मैं कहाँ है सांप?
5: महाराज आगे न जाइए, वहाँ एक कुटिल सांप छिपा बैठा है।
6: महाराज रुकिए।
0: कहिए, दिन में मिलने वाले इस प्रेमी युगल के मन की साथ पूरी हो गई?
4: देवी इरावती,
6: सच्ची बकुला वलिका, ये किसान है।
0: बकुला वलिका, तुझे बधाई है, दूती के रूप में तूने इन दोनों को मिलाने का जो संकल्प किया था वो आज पूरा हो गया। परंतु मैं पूछती हूँ, तुम दोनों को बंदी गृह से छुड़ाया किसने? निपुणिका भाग कर महारानी धारिणी के पास जा और पूछ के ये सब हुआ कैसे।
1: जो आ गया।
2: ओह, तो सब गड़बड़ घोटाला हो गया। पिंजरे से छूटा हुआ कबूतर के सामने आके रहा।
4: देवी, इन दोनों को हमने ही बंदी गृह से छुड़वाया है। उत्सव के दिन अपने सेवकों को बंदी बनाना उचित नहीं है ना?
0: देवी क्या बात है निपुणिका, तू लौट आई?
1: रास्ते में मुझे निचले भंडार की पहरेदार मिल गई, उसने बताया। आइए इधर कान में सुनिए।
6: सेकी बकुला वलिका, मुझे तो बहुत डर लगता है, पता नहीं क्या होने वाला है।
0: अच्छा तो ये सब इस बामन के करतूत है? क्यों, प्रेम नीति के मंत्री महोदय?
3: यदि मैं नीति का ज्ञाता होता तो क्या मैं महाराज को ऐसे फंसने देता?
0: मैं सब समझती हूँ, मैं अभी महारानी धारिणी के पास जाती हूँ।
7: राज प्रासाद वासियों सुनो, एक आश्चर्यजनक समाचार, हर्ष समाचार। महारानी के प्रिय सुनहरे अशोक वृक्ष का हर्ष समाचार। उसका दोहद पूरा हुए 5 लाते भी नहीं दी थी कि उसमें फूल आ गए। अपने सुनहरे अशोक के फूलने पर महारानी अत्यंत प्रसन्न है। आज वे प्रमद वन में महाराज को बुलाकर सुनहरे अशोक के फूलने का उत्सव मनाएंगी।
8: वासियों सुनो सुनो, एक और हर्ष समाचार। वीर सेन के सेनापतित्व में महाराज की विजयनी सेना ने विदर्भ पर विजय पाली। विदर्भ राज के चचेरे भाई और महाराज के मित्र माधव सेन मुक्त हो गए। माधव सेन ने हे स्वरूप महाराज को बहुत से अनमोल रत्न, हाथी, घोड़े और उच्च कोटि के कलाकार सेवक भेजे।

0: विदिशापति महाराज अग्निवीर
1: प्रमगमन उत्सव में बला रहे।
0: शुंग कुलभूषण विदिशापति महाराज अग्निवीर
1: प्रमगमन उत्सव में।

0: आर्य पुत्र की जय हो।
1: देवी, सुनहले अशोक के फूलने पर आपको भी बधाई।
0: विराजिए देव, विदर्भ विजेता महाराज की जय हो।
1: प्रणाम भगवती।
0: आपके मन की साथ पूरी हो। आर्य पुत्र, फूलों से लदे इस सुनहले अशोक की शोभा निहारिए। आपके लिए अशोक का एक ऐसा प्रेम गृह बना दिया है।
1: देवी के हाथों अशोक का ऐसा आदर होना ही चाहिए, क्योंकि ये वसंत लक्ष्मी के कहने पर नहीं, देवी के प्रयत्न से फूल उठा है। और हाँ देवी, आज ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा दे दी गई है ना?
0: हाँ महाराज, जब से अपने कुमार वसुमित्र को पूज्य सेनापति जी यज्ञ के घोड़े का रक्षक बनाकर ले गए हैं, तभी से उसके कुशल क्षेम के लिए मैं बराबर 400 स्वर्ण मुद्राएं योग्य ब्राह्मणों को दक्षिणा में देती रहती हूँ।
1: हमारा पुत्र चिरजीवी हो।
2: महाराज की जय हो। विदर्भ से जो कलाकार स्त्रियाँ आई हैं, यदि आज्ञा हो तो उन्हें सेवा में उपस्थित किया जाए।
1: ले आओ।
2: जैसी देव की आज्ञा। लीजिए महाराज, प्रस्तुत हैं।
3: महाराज की जय हो, महारानी की जय हो।
1: आप लोग किस कला में निपुण हैं?
3: महाराज, हम लोगों ने संगीत सीखा है।
1: लो देवी, इनमें से जिसे चाहो अपने लिए चुन लो।
0: मालविका, आके देव, देखो इनमें से कौन संगीत में तुम्हारा साथ देने के लिए ठीक रहेगी।
3: अरे राजकुमारी, आप यहाँ? जय हो राजकुमारी की जय हो।
0: अरे अरे मालविका, राजकुमारी।
1: मालविका राजकुमारी?
3: हाँ महाराज, ये हमारी राजकुमारी है।
1: कैसे?
3: सुनिए महाराज, आपकी सेना ने विदर्भ के राजा को परास्त करके जिन कुमार माधव सेन को बंदी गृह से छुड़ाया है, ये उन्हीं की छोटी बहन मालविका जी हैं।
0: ओह, तो क्या मालविका राजकुमारी है? इसे मैंने दासी बनाया। ओह, चंदन से खड़ाऊं का काम लेकर मैंने कितना बड़ा पाप किया है।
1: भद्रे, बताइए ये इस रूप में यहाँ कैसे आई?
3: मैं निवेदन करती हूँ महाराज, कुमार माधव सेन हम सब लोगों के साथ राजकुमारी जी को लेकर विदिशा आ रहे थे। उनके मंत्री आर्य सुमति जी भी साथ में थे। रास्ते में कुमार माधव सेन को उनके चचेरे भाई विदर्भराज ने पकड़कर बंदी बना लिया। स्वामी भक्त मंत्री सुमति जी हमें पीछे छोड़ राजकुमारी जी को वहां से सुरक्षित निकाल कर ले गए।
1: फिर क्या हुआ?
3: आगे का हाल मुझे नहीं मालूम महाराज।
4: आगे का हाल मैं अभागिन बताती हूँ महाराज।
1: भगवती, आप?
3: राजकुमारी, सन्यासिनी के वेश में ये तो आर्य कौशिक की जान पड़ती है।
4: हाँ वही है।
3: प्रणाम भगवती।
4: कल्याण हो।
1: भगवती, क्या ये भी आपकी शिष्या हैं?
4: हाँ महाराज। अब मैं पूरा वृतांत सुनाती हूँ। माधव सेन के मंत्री आर्य सुमति मेरे बड़े भाई थे।
1: अच्छा, अब कुछ बात समझ में आने लगी।
4: माधव सेन ने आपसे अपनी बहन मालविका के विवाह की बात पक्की कर ली थी। जब माधव सेन बंदी बना लिए गए तो मेरे भाई सुमति ने उनका विवाह का संकल्प पूरा करने का बीड़ा उठाया। व्यापारियों का एक दल विदिशा की ओर आ रहा था। मुझे और राजकुमारी मालविका को लेकर मेरे भाई उसी दल के साथ हो लिए। चलता चलता वो दल एक ऐसे मार्ग पर पहुंचा जो जंगल से होकर जाता था।
5: मंत्री जी, ये तो बड़ा ही भयानक जंगल है, यहाँ तो दिन में जैसे रात हो गई हो।
6: डरिए नहीं राजकुमारी जी, हमारे दल के साथ सशस्त्र सैनिक हैं।
4: भैया, आप भी तो?
6: मेरे जीते जी राजकुमारी जी, रंच मात्र भी भय नहीं होना चाहिए आपको।
5: अरे क्या हुआ, क्या सब लोग एक साथ रुक क्यों गए?
7: जान प्यारी है, वो अपना सब सामान और धन चुपचाप यहाँ रख दो।
5: वही हुआ ना जिसका भाई था, ठाकुर ने लिख दिया है।
6: जाइए नहीं, सैनिकों की सहायता से मैं अभी इन डाकुओं को भगाता हूँ।
5: हमारे सहर रह गए।

0: और इस प्रकार मेरे भाई आर्य सुमति ने प्राण देकर अपने स्वामी का भार चुका दिया। उस दुख के आघात से मैं मूर्छित हो गई। जब मुझे चेतना आई तो राजकुमारी मालविका वहां नहीं थी। दुख संताप से टूटकर मैं सन्यासिनी बन गई और आपके राज्य में चली आई। बाद में ये मालविका भी यहाँ दासी के रूप में आ गई। इनसे पता चला कि इन्हें आपके सीमांत रक्षक वीर सेन ने डाकुओं के चंगुल से छुड़ाकर यहाँ महारानी के पास भेज दिया है।
1: ओह, विपत्ति आने पर मनुष्य का कितना अनादर हो जाता है। जो सती कहलाने योग्य रानी थी उससे दासी का काम लिया गया।
2: भगवती कौशिकी, मालविका ऊंचे घराने की कन्या है, ये बात छिपाकर आपने अच्छा नहीं किया।
0: ऐसा न कहिए महारानी, मैंने सोच समझकर ही इस रहस्य को इतने दिन छिपाए रखा। जब इनके पिता जीवित थे तो एक साधु महात्मा ने भविष्यवाणी की थी। उसने कहा था, इस कन्या को एक वर्ष तक दासी बनकर रहना पड़ेगा, उसके पश्चात इसका विवाह बड़े ही योग्य और प्रतापी पुरुष से होगा। जब मैंने देखा कि ये भविष्यवाणी आपके चरणों की सेवा करते हुए पूरी हो रही, तो मैं चुप्पी साधे गई।
3: महाराज की जय हो। मंत्री परिषद ने पूछा है कि जीते गए विदर्भ देश की कैसी व्यवस्था की जाए है।
1: हम चाहते हैं कि विदर्भ देश यज्ञ सेन और माधव सेन में आधा आधा बांट दिया जाए। दोनों भाई अलग अलग वैसे ही सुख से राज करें जैसे सूर्य और चंद्रमा रात और दिन को आपस में बांटकर अलग अलग चमकते हैं। जाओ मंत्री परिषद को हमारी ये इच्छा बता दो।
3: जो महाराज की इच्छा।
2: राजकुमारी, ये तो बहुत अच्छा हुआ, आपके भाई राजकुमार को महाराज ने आधे राज्य का शासक बना दिया है। उनके प्राण बच गए, यही बहुत है।
3: महाराज की जय हो। आपके पिता पूज्य सेनापति पुष्यमित्र का ये पत्र आया है।
1: पिताजी का पत्र, लाओ देखें।
2: ओह, मेरा जी भी इसे सुनने को छटपटा रहा है। मेरे बेटे वसुमित्र का भी इसमें समाचार होगा। पूज्य सेनापति जी ने उसे यज्ञ के अश्व का रक्षक बनाकर बड़ा ही संकटपूर्ण कार्य सौंप रखा है। महाराज पढ़िए ना ये पत्र।
1: पिताजी हमें लिखते हैं, अश्वमेध यज्ञ का संकल्प करके हमने जो घोड़ा 100 राजपुत्रों सहित कुमार वसुमित्र के संरक्षण में एक वर्ष की अवधि बांधकर मुक्त छोड़ा था, वो सिंधु नदी के दक्षिण तट पर पहुंचकर चल रहा था। उसे यवनों ने पकड़ लिया, फलतः हमारी और शत्रु सेना में घोर युद्ध हुआ।
2: फिर क्या हुआ?
1: फिर वीर वसुमित्र ने शत्रु सेना को परास्त करके हमारा घोड़ा छुड़ा लिया। जैसे पौत्र अंशुमान द्वारा छुड़ा कर लाए गए अश्व से राजा सगर ने यज्ञ किया था, वैसे ही अब हम अपने पौत्र द्वारा वापस लाए गए अश्व से यज्ञ कर रहे हैं। अतएव तुम प्रसन्न चित्त हो, बहुओं के साथ यज्ञ देखने के लिए तुरंत चले आओ। पिताजी की बड़ी कृपा है जो हमें बुलाया।
0: महाराज, महारानी, पुत्र की विजय के लिए आप दोनों को बधाई। देवी, आपका काम वीर पत्नियों की ही सिरमौर थी, आज से आपको वीर माता होने का भी गौरव मिला।
2: भगवती, मुझे तो प्रसन्नता है कि मेरा पुत्र पिता के समान ही पराक्रमी निकला।
1: आज हम बहुत प्रसन्न हैं। मौदगल, जाओ यज्ञ सेन के साले समेत सभी बंदियों को मुक्त कर दो।
2: जैसे रनिवास की सभी रानियों को हमारे पुत्र की विजय का समाचार दो। और हाँ, देवी इरावती से निवेदन कर देना कि अशोक के फूलने पर मालविका को मुंह मांगा पुरस्कार देने का मैंने वचन दिया था, हमें वो वचन पूरा करना चाहती हूँ। फिर कोई विघ्न न डाले।
3: देवी की जैसी आज्ञा।
2: मालविका इधर आओ, प्रस्तुत हूँ देवी। आर्य पुत्र, आपने कुमार की विजय का जो प्यारा समाचार सुनाया उसके बदले में यह प्यारा पुरस्कार स्वीकार कीजिए। अरे आप नजर से रही है, मालविका को ग्रहण कीजिए।
4: देवी, महाराज तो लोक व्यवहार दिखा रहे हैं, ऐसे अवसर पर सभी नए दूल्हे लजाई करते हैं।
5: श्रोताओ, नाट्य तरंग में अभी आप सुन रहे थे नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण था। हिंदी रूपांतरकार थे सीताराम चतुर्वेदी। रेडियो नाट्य

0: रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। लीजिए प्रस्तुत करके हम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। श्रोताओं नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं और हम लेकर हाजिर हो गए हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। तो देखते हैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में हमसे कौन जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: जी मैं नेहा बोल रही हूँ, फरीदपुर से।
0: नेहा जी, कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय मालूम है आपको?
1: जी मालूम है।
0: क्या विषय है?
1: मजाक कब बेइज्जती बन जाती है।
0: हाँ, मजाक कब बेइज्जती बन जाए, तो उसके बारे में क्या विचार है आपके?
1: जी हमें तो जैसे ज्यादा मजाक नहीं करना चाहिए, हम कम कर सकते हैं, एक दो बार चल जाता है। यदि ज्यादा मजाक करेंगे तो उसकी बेइज्जती बन जाएगी, उसको तो इरिटेशन होने लगी कि हमसे मजाक कर रहे हैं, और ज्यादा मजाक वैसे भी नहीं करना चाहिए।
0: मतलब मजाक का भी एक दायरा होना चाहिए, है ना?
1: जी जी, बस किया जाता है, ज्यादा नहीं किया जाता है।
0: हाँ, कभी कभार जब आप प्रसन्न चित मूड में हो तब आप कर सकते हैं, लेकिन उसका भी एक दायरा है, सीमा है उसकी भी, है ना?
1: जी जी।
0: तो इस कार्यक्रम में आपका फोन लग चुका है, कहिए कौन सा गीत सुनवा दें आप?
1: जी मैं सुनना चाहूंगी हिंदुस्तान की कसम मूवी का, तेरे बिन मेरे मिटना मेरा दिल नहीं लगता।
0: ठीक है नेहा जी, हम भेज रहे हैं आपकी पसंद पर एक गीत। एंजॉय।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका स्वागत है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी, हम मोहम्मद आलिफ अंसारी बोल रहे हैं।
0: तारिफ जी, आपको मालूम है हमारी और आपकी जो बातचीत है उसका विषय क्या है?
1: जी, विषय आज हमको पता है कि मजाक मजाक में बेइज्जती का महसूस होना।
0: जी, तो क्या विचार हैं आपके इस विषय पर?
1: जी, इस विषय पर मजाक और बेइज्जती के बीच हम कहना चाहते हैं कि इसमें बहुत बारीक लाइन भी होती है।
0: जी
1: और हमारे साथ में एक बातचीत हुई थी, हमारे दोस्तों के साथ में जब बैठे थे तो बातों बातों में थोड़ा सा रॉन्ग वर्ड जैसे पागल है लव यूज करने लगे, तो हमने उनको मना किया कि आप ऐसी बातें ना करो क्योंकि हमको ठेस पहुंचती है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वो नहीं माने, आखिर में उनको हम दूर होना ही पड़ा। लेकिन बातों बातों में उन्होंने मेरा मुझको पागल कहने लगे और ये चीज वो चीज, तो इस दिक्कतें होने
0: नहीं
1: लगी।
0: जी, बिल्कुल, कोई सामने वाला व्यक्ति हो तो मजाक आप ऐसी करें जो जायज हो, है ना। सामान सी कभी कभार दोस्ती में चल जाती है, पर ऐसी भी ना हो कि जो व्यक्ति जब बैठा है सामने उसको ठेस पहुंचे, है ना। तो
1: ज्यादातर ये बातों बातों में अक्सर बेइज्जती लफ्ज हो ही जाते हैं
0: हाँ, तो
1: और
0: ऐसे
1: मजाक
0: बातों से
1: करते
0: हमेशा
1: समय
0: जी
1: ध्यान वही रखना चाहिए।
0: जी जी जी तो आप सभी से गुजारिश है कि भाई जब हर चीज का एक सीमा होती, दायरा होता है, तो आप लोग ध्यान रखें इस चीज का। तो कहिए, कार्यक्रम में आपका फोन लग चुका है, और आज कौन सा गीत सुनवा दें आपको इस कार्यक्रम में?
1: गीत मूवी का सुनेंगे तो धरती पे चाहे यहाँ भी रहेगा। सर जी, हम बाराबंकी से बोल रहे हैं।
0: अच्छा, बाराबंकी से बात कर रहे हैं आप, बहुत दूर से बात कर रहे हैं, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: सुनते हैं, फेस देखा था
0: जी जी
1: तो हमने प्रोग्राम सुनना स्टार्ट किया। कॉल नहीं लगता है सर जी, इतनी मेहनत से कॉल लगाते लगाते थक गए।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है, और स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आप कार्यक्रम सुनते रहिए, हमारे केंद्र के ऐसे ही प्यार देते रहिए अपना, और आपने फोन किया है तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: गर्गम, आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार, आपको मालूम है हमारा आज का विषय क्या है बातचीत का?
1: हाँ जी, आज का विषय है आपका बड़ा अच्छा विषय है, मजाक अब बेइज्जती बन जाती है।
0: जी, क्या विचार है आपके इस विषय पर?
1: हाँ जी, हमारे यही विचार है कि जब है सीमा लांग जाती है, जब कोई आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। सर जी, हमारे विचार सर मजाक दोनों के बीच बातचीत में कही कहे, अरे भाई तू जो आज बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन यही बार बार कहने से बेइज्जती का सवाल हो जाता है। सर जी,
0: मतलब मजाक मजाक में बहुत बार देखने में आता है कि आपस में विवाद हो जाता है या लड़ाई हो जाती है, तो
1: हाँ जी,
0: इन चीजों से बचें और एक सही और सीमित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, है ना? आज कार्यक्रम में आपका फोन लगा है, तो कहिए गीत कौन सुनवा दें आपको उस कार्यक्रम में?
1: हाँ जी, मूवी का नाम रहेगा तहलका, इसमें एक सॉन्ग है दिल दीवाने का दोला मेरे यार के लिए, यही सॉन्ग सुनना चाहते हैं। और सर जी कुछ लाइनें हैं।
0: हाँ कह दीजिए।
1: कभी खुशी आशा, कभी गम की निराशा, कभी खुशियों की धूप, कभी हकीकत की छाया, कुछ खोकर कुछ पाने की आशा, शायद यही है जिंदगी का सही तमाशा।
0: जी, बहुत धन्यवाद हमें फोन करने के लिए।

0: हम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में स्वागत है।
1: नमस्ते सर
0: नमस्ते, कौन सी हमारी श्रोता बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही
1: जी।
0: हैं?
1: हम गुलक्ता सिद्दीकी बोल रहे हैं, संडीला से सर।
0: जी, कार्यक्रम में स्वागत है। और आपको हमारी आज की बात का विषय पता है क्या है?
1: जी मैम। जी सर।
0: क्या है विषय?
1: जी मजाक करना।
0: हाँ, मजाक मजाक कब बेइज्जती बन जाती है ना? तो
1: जी सर। जी सर।
0: क्या विचार है आपके इस विषय पर?
1: जी हमें मजाक उतना ही करना चाहिए जितना अच्छा हो।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने,
1: क्योंकि कुछ लोग मजाक इतना कर देते हैं कि मतलब बताते भी नहीं कि हम मजाक कर रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: लेकिन जिससे मजाक किया जाता है वो सामने वाला टेंशन में आ जाता है।
0: बिल्कुल।
1: कभी कभी इतनी गंभीर बातें मतलब मजाक में हो जाती हैं कि
0: बिल्कुल।
1: बहुत सारे वाकया हुए हैं मजाक मजाक में, ऐसे वाकया हो गए हैं कि बताना मुश्किल है, थोड़ा टाइम कम है।
0: नहीं बिल्कुल ठीक कहा आपने।
1: लेकिन मजाक हमें उतना ही करना चाहिए जितना अच्छा हो। 2 मिनट में बता भी देना चाहिए कि हम मजाक कर रहे हैं, इसमें थोड़ा हंसी मजाक चलता रहना चाहिए।
0: जी आपके अच्छे विचार हैं। आप तो कहिए इस कार्यक्रम में, अब गीत की बारी है, तो गीत कौन सा हो जाए फिर आज कार्यक्रम में?
1: जी गीत हम सुनेंगे, दिल दिया है जान तुम्हें देंगे दगा नहीं।
0: ठीक है, हम भेज रहे हैं आपकी पसंद पर एक गीत। एंजॉय कीजिए।

0: कार्यक्रम में आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका स्वागत है। कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: नमस्कार, मैं लाल मोहम्मद अंसारी, ग्राम करेली, पुरानी मस्जिद बरेली से बोल रहा हूँ।
0: जी कार्यक्रम में स्वागत है। विषय पता है आप हमारा और आपका, क्या विषय है आज बातचीत का?
1: जी विषय है आज के मजाक कब बेइज्जती कराते, इसी विषय पे कुछ बात चलेगी।
0: जी क्या विचार रहेंगे आपके आज इस विषय पर?
1: मेरा विचार तो सर ये रहेगा, देखिए हद से ज्यादा किसी से मजाक न की जाए। अगर हद से ज्यादा किसी से मजाक की जाएगी तो सामने वाला खिसिया जाएगा, बुरा मान जाएगा, तो बेइज्जती होना बिल्कुल लाजमी है। क्योंकि किसी से भी मजाक की जाए, पहली बात तो मजाक को सहने की क्षमता खुद के अंदर होना चाहिए। क्योंकि हम अगर किसी से मजाक करते हैं तो सामने वाला भी हमसे मजाक करेगा, और हो सकता है हमने जिससे मजाक किया वो हमसे मजाक करे, तो ये हमें नागवार गुजरे, या हम उसकी बेइज्जती करेंगे या वो हमारी बेइज्जती करेगा।
0: बिल्कुल ठीक बात है, बहुत अच्छे विचार आपने दिए। तो अब गीत की बारी है, तो कहिए गीत कौन सा हो जाए इस कार्यक्रम में आज?
1: जी गीत सुना दीजिए, फिल्म का नाम है धड़कन, गाना है दिल ने ये कहा है तुझसे मोहब्बत हो गई है।
0: ठीक है, तो हम भेज रहे हैं आपकी पसंद पर एक गीत, एंजॉय कीजिए।

0: कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका स्वागत है। कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी मैं परी बात कर रही हूँ, बरेली से।
0: परी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपको हमारी आज की बात विषय है वो पता है?
1: जी पता है।
0: तो क्या विचार हैं आपके इस विषय पर?
1: जी आज का टॉपिक तो बहुत अच्छा है, मैं यही कहना चाहूंगी कि इसे भी मजाक करें, बस लिमिट पर करें, क्योंकि ज्यादा मजाक अच्छा नहीं होता है। क्योंकि जब हम किसी से भी ज्यादा मजाक करते हैं फिर उसे उसके मन में लगता है कि हमारी इंसल्ट कर रहा है, मेरी इससे बेइज्जती हो रही है, इसीलिए लिमिट पर मजाक करना चाहिए किसी से भी करें।
0: बहुत अच्छे आपके विचार हैं। तो अब गीत की बारी है, कौन सा गीत सुनेंगी आप इस कार्यक्रम में?
1: जी मैं सुनना चाहूंगी बादा मूवी का सॉन्ग, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी।
0: ठीक है, तो हम भेज रहे हैं आपकी पसंद पर ये गीत, एंजॉय कीजिए।

0: कर्कियों में आपकी बात आकाशवाणी के साथ में स्वागत है आपका। कौन बात कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी हैदराबाद तेलंगाना से मोहम्मद आसिफ अंसारी बात कर रहा हूँ सर।
0: जी आसिफ मियाँ कैसे हाल चाल है आपके?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे हैं। बारिश हो रही है सर और हम आपका प्रोग्राम न्यूज ऑन AIR FM पे सुनते हैं।
0: जी बहुत स्वागत है। आज कार्यक्रम में बातचीत का विषय पता है कौन सा है?
1: हाँ कोई सामने वाले की बात आपको मजाक मजाक में बुरी कब लगती है, ये वाला टॉपिक है सर।
0: जी क्या विचार रहेंगे आपके इस विषय पर, कितनी मजाक करनी चाहिए?
1: जी कभी कभी दोस्त लोग ही हंसी मजाक में मजाक करते हैं तो दिल पे तो लगती है, कोई कोई मजाक हो। मेरा मानना है सर कि नहीं करना चाहिए ऐसा, शारीरिक तौर पे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
0: जी जी
1: जी सर आप लोग प्रोग्राम बहुत ही अच्छा करते हैं।
0: तो आपने इस विषय पर अपने विचार दिए तो अब कार्यक्रम में गीत की बारी है, कौन से सुनवा दें?
1: खुदा गवाह मूवी का है, तू ना जा मेरे बादशाह एक वादे के लिए।
0: तो हम भेज रहे हैं आपकी पसंद पर एक गीत, एंजॉय कीजिए।

0: कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में स्वागत है आपका। कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ सर, नेता है जो 25 गरीब।
0: जी, आज हमारी बातचीत का विषय है मजाक कब बेइज्जती बन जाए, तो क्या विचार हैं आपके?
1: हमारे विचार यही है कि सर मजाक तो किसी बनाना ही नहीं चाहिए, और बनाओ तो ऐसे कि जिसमें उनको भी हंसी आए या खुद को भी खुशी हो, और ऐसी मजाक नहीं बनाना चाहिए जो झगड़ा हो जाए।
0: जी बिल्कुल।

0: बिल्कुल। तो ये आपके विचार रहे, धन्यवाद, हमें फोन किया आपने। आप कहिए गीत कौन सा हो जाए इस कार्यक्रम में। अब
1: सर फिल्म के नाम है बेवफा से वफा और आया हूँ बड़ी दूर से सुनके तुम्हारी बात।
0: ठीक है, तो हम भेज रहे हैं आपकी पसंद पर एक गीत, एंजॉय कीजिए।

श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है आपकी बात आकाशवाणी के साथ, और अब बारी है कमेंट्स करके हमें शामिल कर लें। तो ये है साथी हमारे लिख रहे हैं, प्रदीप कुमार पाल किला छावनी से लिख रहे हैं कि सर जी, अक्सर मजाक में बहुत सी कहासुनी हो जाती है। कभी कभी इंसान कैसे मूड में है होता है और हम मजाक करते हैं तो ये गलत है, और हमें सामने वाले का मूड देखकर ही मजाक करना चाहिए। तो प्रदीप पाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ये कमेंट लिखा। और ये प्रवीण चौहान जी लिख रहे हैं कि खुद को सामने वाले की जगह रख कर देखो, तब समझ आएगा कि किसी से मजाक करना और किसी का मजाक बनाना क्या होता है। लिखते हैं कि मजाक ऐसा हो कि सामने वाला खुश हो ना हो, उसे दुख ना पहुंचे। हमें कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। धन्यवाद प्रवीण चौहान जी। और आप हैं गंगा सिंह रावत साहब, लिख रहे हैं कि मजाक करना बुरी बात नहीं है, पर ख्याल रहे कि आपका किया गया एक छोटा सा मजाक कहीं किसी की बेइज्जती ना कर दे। मजाक उसके साथ करिए जो आपके मजाक को सिर्फ मजाक ही समझे, यानी उसकी मजाक में ही कही गई बात आप बुरा ना माने। धन्यवाद गंगा सिंह रावत जी, आपने हमें कमेंट किया।

और आप हैं साथी हमारे नरेन नेतान और कुसुम नेतान लिख रहे हैं कि मजाक तब बेइज्जती बन जाती है जब सामने वाले व्यक्ति को हंसी ना आए और वो मानसिक या भावात्मक रूप से आहत महसूस करे। एक स्वस्थ मजाक का उद्देश्य माहौल को हल्का और खुशनुमा बनाना होता है, लेकिन जब ये सीमा पार कर जाता है तो ये गहरे अपमान का रूप लेता है। बिल्कुल सही कहा आपने, और धन्यवाद नरेंद्र साहब, आपने हमें इतना प्यारा कमेंट लिखा। ये साथी हमारे हैं लिख रहे हैं कि भेरूलाल बाकतरिया धाकड़ और उन्हेल जिला उज्जैन से लिख रहे हैं कि कभी कभी मजाक करना महंगा पड़ जाता है और अपनी खुद की बेइज्जती हो जाती है। ये हंसी ठिठोली में मजाक कर बैठते हैं, या तो ये हमारा एक छदम प्रयास सामने वाले को शारीरिक या आर्थिक नुकसान कर सकता है जिसकी भरपाई हमें खुद करनी पड़ती है। और ये कमेंट हमें कर रहे हैं हमारे साथी साधु शहर से, राजस्थान से, राम कुमार रेवाड़ साहब, और साथ में हैं चंद्रकला रेवाड़ जी। आप लिखते हैं कि आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम पेशकर्ता को साथ हर नमस्कार। नमस्कार, लिख रहे हैं कि हंसी मजाक अपने बराबर वाले से ही करनी चाहिए, आपसे बड़े और आपका आदरणीय हो उनसे मजाक बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, मजाक भी अगर किसी के साथ करनी हो तो इस तरह से करनी चाहिए कि अगर वो मजाक आप करें तो आपको बुरी लगे, ऐसी मजाक कि दूसरे के प्रति स्वयं मतलब बनाए रखें कि मतलब अगर आप उसको सह पाएं, आप जो मजाक कर रहे हैं अगर खुद पे आप सह पाएं तो आप करिए, अन्यथा मत करिए। कई बार मजाक में हम चुभती बात करते हैं जिससे सामने वाले को बुरा लग जाता है, इसलिए मजाक सिर्फ मजाकिया माहौल में ही करनी चाहिए। सही लिखा है आपने, और कोई ऐसी बात जो दोस्त हो या आपका रिश्तेदार के बीच में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे कि उसके दिल पर कोई चोट पहुंची हो, और ऐसी मजाक कई बार बहुत गंभीर महंगी पड़ जाती है। और आप लिखते हैं कि और उन्हें बहुत बुरा लगता है कि जिससे विवाद पैदा हो जाता है, तो कई बार देखा जाता है कि मजाक मजाक में एक दूसरे के प्रति दुश्मनी तो उत्पन्न हो जाती है, और इसलिए मजाक करना हो तो सोच समझ कर ही करना चाहिए। अगर हम किसी के साथ मजाक कर रहे हैं तो क्या वो हमारे साथ इस तरह की मजाक करें, तो हमें कैसा लगेगा ये सोच कर ही हमें मजाक करनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छे विचार लिखे हैं साधु शहर राजस्थान से, राम कुमार रेवाड़ साहब, और साथ में हैं चंद्रकला रेवाड़ जी। तो ये साथी हमारे हमें कमेंट कर रहे थे, तो आप साथी इस वक्त हमें सुन रहे हैं वो भी हमें हमारे फेसबुक पेज पर कमेंट कर सकते हैं और अपने विचार हम तक भेज सकते हैं। तो आप सभी ने हमें कमेंट किया इस कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सदी ये बात सही है कि कभी कभी कहते हैं ना कि कभी कभी मजाक भारी पड़ जाती है ना, उल्टी हम पे ही भारी पड़ जाती है। तो मजाक का हमेशा एक दायरा होना चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए। अगर आप बहुत मजाकिया हैं तब भी आप एक कायदे में रहें, सीमा में रहें, दायरे में रहें, जिससे आपको भी कोई नुकसान ना हो और जो सामने वाला व्यक्ति बैठा है वो भी आपकी बात का बुरा ना माने। और हाँ, अगर आप कहीं दोस्तों में बैठे हों या संबंधियों के साथ बैठे हों तो शब्दों का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ कर करें, क्योंकि शब्द ही समाज की गरिमा है, इसका ख्याल रखें। तो आप सभी ने कमेंट्स किया और जिन्होंने कॉल की, आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप ऐसे ही कार्यक्रम को प्यार देंगे, कॉल्स करते रहेंगे और कमेंट्स करते रहेंगे। अब इस कार्यक्रम में दीजिए विदा। नमस्कार।

अब आपको बता दें हमारे कार्यक्रमों के बारे में, जो आज के कार्यक्रम हैं आप तक पहुंचने वाले, और कल के कौन से कार्यक्रम होंगे जो आप सुन पाएंगे। श्रोताओं, आज शाम 7:31 पर सुनवाएंगे आपको T20 वर्ल्ड कप। जी हाँ, विश्व कप का फाइनल मैच है वो, महिलाओं का ये फाइनल मैच है लंदन में, जिसका हम प्रसारण आपको सुनवाएंगे ऑफ ट्यूब कमेंट्री के माध्यम से, रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये मैच होना है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन से। तो ये मैच का प्रसारण आप सुन सकते हैं आज शाम 7:31 पर। इसके अलावा आज शाम 5:05 पर सुनाएंगे आपको कार्यक्रम भजन संध्या, जिसमें आप भजनों का आनंद ले पाएंगे। श्रोताओं के पत्रों पर आधारित शब्दावली कार्यक्रम मन भावन हम लेकर आएंगे आज शाम 5:30 पर। श्रोताओं का कार्यक्रम श्रोता मंच, ये कार्यक्रम आज शाम 5:45 पर हम आप तक पहुंचाएंगे। प्रोग्राम युवाणी में आज शाम 6 बजे आपके साथ सुनिएगा कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। कार्यक्रम जितना आज चर्चा का विषय रहेगा वन महोत्सव और स्कूल चलो अभियान, साथ ही श्रोताओं के पत्रों पर आधारित कार्यक्रम, जी हाँ, लोक मंजरी भी आप तक पहुंचाएंगे। सेहतनामा कार्यक्रम आज शाम 7 बजे से लेकर हम आप तक हाजिर होंगे।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर।

कल सुबह 8:15 पर सुनाएंगे आपको कार्यक्रम नमस्ते बरेली, इसमें आप सुनेंगे बरेली की स्थानीय खबरें और ढेर सारा मनोरंजन रोचना मिश्रा के साथ। लोकगीतों का आप लुत्फ ले पाए उठा पाएंगे कल सुबह 8:45 पर। प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की पाठशाला लाया दीपमाला सुनेंगे आप कल सुबह 9:00 से। कल सुबह 9:30 पर कार्यक्रम से लेकर हाजिर होंगे, इसका नाम है जी हाँ जान तो जहान है आपकी पसंद। ये कार्यक्रम हम आप तक पहुंचाएंगे कल सुबह 10:00 से। सब रंग कार्यक्रम आप सुन पाएंगे कल सुबह आपको कल दिन में 11:00 से। श्रोताओं के पत्रों पर आधारित अनुरोध गीत कार्यक्रम कल अपराह्न 1:00 से सुना जा सकता है। रसरंग कार्यक्रम कल अपराह्न 2:00 से अमृता सिंह लेकर हाजिर होंगी। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी कल शाम 3:30 पर। आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम कल शाम 4:00 से आप सुन सकते हैं। इसके अलावा कार्यक्रम भजन संध्या सुन पाएंगे कल आप 5:05 पर। महिलाओं कार्यक्रम नरसिंहता कल शाम 5:30 पर हम आपको पहुंचाएंगे। कल इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा मोबाइल की लत और परिवार से बढ़ती दूरियां, साथ ही वार्ता और की संगीत भी हम आपको सुनवाएंगे। कल शाम 6:00 वर्ण कार्यक्रम में आविता लेकर आएंगे धूम धड़ाका। प्रोग्राम ग्राम जगत में कल शाम 6:30 पर चर्चा का विषय रहेगा शिक्षा का महत्व, सुनवाएंगे आपको वार्ता विषय रहेगा ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता, साथ ही लोकगीतों का आनंद भी आप ले पाएंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। अक्षय पट कार्यक्रम का समय रहेगा कल शाम 7:00 से। अनुरोध गीत कार्यक्रम कल शाम 7:31 पर आप सुन सकते हैं। तो श्रोताओं ये जानकारी थी हमारे केंद्र के आज के शेष और कल की सभा में प्रसारित वायरल होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में।

संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में मंगलवार दिनांक 7 जुलाई 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है नवजात शिशुओं और समय से पूर्व जन्म बच्चों की गंभीर बीमारियां और इलाज में वेंटिलेटर एवं अन्य मशीन की उपयोगिता। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे सोमवार यानी कल दिनांक 6 जुलाई 2026 को शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि कोई प्रश्न हो आपका तो टेलीफोन नंबर 0581251700 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप अंबार मौजूद रहेंगे।

इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे सोमवार यानी कल दिनांक 6 जुलाई 2026 को शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि कोई प्रश्न हो आपका तो टेलीफोन नंबर 0581-25-17-200 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप अंबार मौजूद रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लीजिए। विषय रहेगा नवजात शिशुओं और समय से पूर्व जन्म बच्चों की गंभीर बीमारियां और इलाज में वेंटिलेटर एवं अन्य मशीनों की भूमिका। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय, जी हाँ आपको याद दिला दें, कल सोमवार को यानी कि 6 जुलाई को रिकॉर्डिंग करेंगे शाम 4 बजे से। टेलीफोन नंबर है हमारा 2517200 और बरेली का स्टडी कोड है 0581।

यश्वर है एक बार फिर से कविता कृष्णमूर्ति का। साथ दे रहे हैं रॉबिन चटर्जी

श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इंटरनेट हेल्पलाइन में मंगलवार दिनांक 7 जुलाई 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है नवजात शिशुओं और समय से पूर्व जन्म बच्चों की गंभीर बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर एवं अन्य मशीनों की भूमिका। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे सोमवार दिनांक 6 जुलाई 2026 को, यानी कल शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि कोई प्रश्न हो आपका, तो हम टेलीफोन नंबर 0581251720 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार मौजूद रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुनिए, विषय रहेगा नवजात शिशुओं और समय से पूर्व जन्म बच्चों की गंभीर बीमारियां और इलाज में वेंटिलेटर एवं अन्य मशीनों की भूमिका। रिकॉर्डिंग तारीख कल 6 जुलाई सोमवार 2026 को शाम 4 बजे। टेलीफोन नंबर हमारा 0581251720। और इस वक्त आप सुन रहे हैं भजन, तो सुनवाते हैं आपको एक और भजन। ये स्वर है कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन के।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भजन संध्या। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से प्रसारित किया गया।

और समय हो चुका है शाम के 5:30 और 23 सेकेंड। अब वक्त है करके हम मन भावन का। श्रोताओं, ये पहला पत्र इस कार्यक्रम में हम शामिल करने जा रहे हैं। छावनी अशरफ खां पानी की टंकी के पास होली चौक परली से। साथी हैं राम प्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वंदना शर्मा, मनोरमा देवी, अजय। तो इस पत्र में लिखा हुआ है कि दोस्तों, मन कोई दिखाने की चीज़ नहीं है। कोई कहता है कि तुम्हें दिल से चाहते हैं और कोई कहता है कि हम तुम्हें मन से चाहते हैं। मतलब कहने का मतलब इन्होंने लिखा है कि दुनिया में सबसे आसान काम है शब्दों का जाल बुनना। लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि आप तो हमारे दिल में रहते हैं या हम आपको मन से मानते हैं। इसलिए ऐसा कि क्योंकि मन का या दिल कोई भौतिक चीज़ नहीं है, इसे कि आपने सीना चीरा और दिखा दिया। ये अदृश्यता लोगों को एक कवच देती है। वे भीतर चाह जो चाहते हैं वही महसूस करते हैं। ऊपर से मीठी बातें करके अपना काम निकाल लेते हैं या अपनी झूठी महानता साबित कर सकते हैं। शब्दों की इस बाजीगरी को आपकी जो भावनाएं हैं वो करती है महसूस। साथी, जब हमारा मन सचमुच किसी को चाहता है, किसी से प्रेम करता है, तो हमारी भावनाएं शब्दों में कम और हमारे व्यवहार में अधिक दिखती हैं। कोई व्यक्ति अगर आपको चाहता है और सच में आपसे जुड़ा है, तो आपको देखते ही उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आएगी। वो अपनी जो व्यस्त काम को छोड़कर आपको गले लगाएगा और आपके लिए अपनी जगह खाली करता, साथ ही आपके साथ बैठेगा और जो समय है वो बिताएगा। और जहां अहंकार है वहां प्रेम संभव नहीं है। श्रोताओं, दोस्ती में या सच्चे प्रेम में मान मर्यादा, पैसे का और कहना चाहिए कि कहीं कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो जैसे अगर हमारा कोई मित्र है और हमसे प्रेम करता है, तो जैसा भी है, जिस स्थिति में है, वही हमें मंजूर हो, वही हमें कबूल हो। धन्यवाद राम प्रसाद शर्मा जी, आपका ये खत हमें लिखने के लिए। और अब सुनवाते हैं ये गीत।

श्रोताओं, ये पत्र हमें मिला है, साथी हमारे हैं भूड़ बरेली से, साथी हैं ये रजत कुमार। आप लिख रहे हैं कि सच्चे दोस्त जिंदगी में सबसे अनमोल दौलत हैं। सही बात है, सच्चा दोस्त वह नहीं है जो आपके सिर्फ अच्छे वक्त में साथ दे, बल्कि वो है जो आपके बुरे वक्त में कभी आपका साथ ना छोड़े। ये बिल्कुल मत सच है कि जिंदगी की सबसे बड़ी और अनमोल दौलत एक सच्चा दोस्त ही है। आज के समय में पैसा, गाड़ी और बंगला कमाना फिर भी आसान हो सकता है, लेकिन एक सच्चा और वफादार दोस्त कमाना बेहद मुश्किल है। दुनिया में सच्चे मित्र बहुत ही किस्मत से मिलते हैं, तो ये विचार अपने लिखे हैं हमारे इन साथी ने, और लिखते हैं कि सच्चा दोस्त हमारी जो परेशानी है, जो हमारी दुख है, उसे देखते ही या सुनते ही हमारी भावनाओं को समझ जाता है। लिख रहे हैं कि अगर आपके जीवन में कोई सच्चा मित्र है तो उसे आप संजो के रखें, उसे खोए ना, उसे दूर ना होने दें, उसके प्रति आप ईमानदार रहें, वफादार रहें, उसे धोखा या दगा ना दें। ये बात सही है श्रोताओं की, अगर कहीं आपस में जब विश्वास हो और एक बार दगा मिल जाए या घात मिल जाए तो फिर ताउम्र उसे जोड़ना बड़ा मुश्किल रहता है। बहुत अच्छी बात लिखी है, विश्वास कायम रखें, जीवन जीने के लिए विश्वास, फेथ, ये रिश्तों में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है।

0: तो श्रोता हूँ, इस कार्यक्रम में हमने आज दो पत्र शामिल किए, एक राम प्रसाद शर्मा जी का और दूसरे थे हमारे साथी रजत कुमार भूड़ बरेली से। तो ये कार्यक्रम बस यहीं तक, कैसा लगा आपको कार्यक्रम आप हमें लिखिए अपने पत्रों के माध्यम से। पता है हमारा कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, पिन नंबर है 2430001। और अब आपका दोस्त छात्रावती, नमस्कार। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम श्रोता मंच।
1: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कार्यक्रम का नाम है श्रोता मंच, जैसा कि नाम है वैसा ही ये कार्यक्रम है। जी हाँ, आप सभी श्रोताओं के लिए ये एक मंच है जहाँ पे आप में से कोई ना कोई श्रोता आते हैं और अपने विचार व्यक्त करते हैं कि हमारे कार्यक्रम उन्हें कैसे लग रहे हैं और भी क्या सुधार हो सकता है।

0: ता है, उनसे हम लोग रूबरू होते हैं, उनके बारे में भी कुछ बातचीत करते हैं। तो आज इसी क्रम में हमने आमंत्रित किया है अपने बहुत पुराने श्रोता को, उनका नाम है इमरान अली। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका और आकाशवाणी पूरी टीम का जो मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया।
0: जी, तो आपने एक क्लब भी बना रखा है, उसके बारे में कुछ बताइए जरा।
1: बिल्कुल, मैं जरूर बताना चाहूंगा। मेरे क्लब का नाम था एकता क्लब सिंधौली मीरगंज डिस्ट्रिक्ट बरेली।
0: अच्छा, तो कब से ये क्लब चल रहा है?
1: सर ये 2007 से आकाशवाणी केंद्र से जुड़ा, और तभी से हमने एक चार मेंबर हुआ करते थे क्लब में।
0: अच्छा,
1: तो हम चारों ने एक मीटिंग रखी और उस मीटिंग में ये हुआ कि हमें आकाशवाणी केंद्र से जुड़ना चाहिए और अपने पत्र भेजना चाहिए हर एक प्रोग्राम में।
0: कौन कौन मेंबर थे आपके अलावा?
1: सर मेरा नाम था इमरान शेख और मेरे साथ में एक जाहिद इदरीसी।
0: अच्छा,
1: और एक आदिल इदरीसी और मुन्ने खान फतेहगंज से।
0: अच्छा अच्छा, आप सभी लोग क्लब में, तो अभी क्या स्थिति है?
1: अभी सर उन लोगों के सबके काम अलग अलग हो गए हैं और वो सारे लोग अलग हो गए, तो इसलिए
0: थोड़ा मशरूफ हो गए
1: जी।
0: अच्छा।
1: वो अपने काम में व्यस्त हैं, तो मैं सिर्फ आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूं और मैं हमेशा जुड़ा रहूंगा।
0: जुड़ा रहेंगे। तो इस बीच आप कौन कौन से कार्यक्रम सुन रहे हैं, या उससे पहले पहले तो आपके बारे में और जाना जाए, है ना? इस समय आप क्या करते हैं?
1: सर मेरा जो BSc एग्रीकल्चर किया है।
0: अच्छा।
1: और उसके बाद मैंने एक प्राइवेट कंपनी ज्वाइन की है।
0: अच्छा अच्छा,
1: और मैं अभी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में वहाँ काम करता हूँ।
0: प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में? अच्छा, तो किस चीज़ का प्रोक्योरमेंट करना होता है?
1: सर इसमें हम फलों का प्रोक्योर करते हैं और अच्छा, सब्जियों का प्रोक्योर करते हैं।
0: सारे फलों और सब्जियों का?
1: यस सर।
0: अच्छा, तो हमारे बहुत सारे श्रोता तो इसमें भी उत्सुक होंगे कि भाई ये काम कैसे किया जाता है।
1: जी,
0: तो कैसे करते हैं ये प्रोक्योरमेंट?
1: सर क्या होता है कि कोई भी कंपनी के टारगेट रहते हैं।
0: हाँ हाँ।
1: मान लीजिए कोई किसी कंपनी ने हमें कोई ऑर्डर दिया बड़े लेवल पे। मान लीजिए एक गाड़ी हमें आम खरीदना है।
0: अच्छा।
1: तो हम वो किसान से बात करेंगे और कंपनी के लिए पूरा उसको जो हमारे प्राइस है उस पर हम उसको खरीद के और अपनी कंपनी के लिए दे देंगे।
0: अच्छा।
1: फिर कंपनी की बहुत सारी प्रोसेस रहेंगी, वो अपनी प्रोसेस करके उसको एक्सपोर्ट करते हैं विदेश।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, किसानों से खरीद के उसको एक्सपोर्ट करना
1: जी,
0: ये चीज है। और बाकी बीच में जो रख रखाव है
1: जी,
0: वो काम आप लोगों का है।
1: बाकी जो क्वालिटी रहती है उसकी, जो ग्रेडिंग रहती है, वो सारी चीजें हम लोगों का है।
0: क्या बात है। तो ये जॉब पाने के लिए आपने फिर क्या किया? क्वालिफिकेशन BSc एग्रीकल्चर मांगा जाता है
1: जी।
0: अच्छा अच्छा, हाँ। तो बहुत सारे हमारे श्रोता होंगे जो हो सकता है अभी ग्रेजुएशन ना किए हों, 10+2 के बाद कुछ करना चाहते हों, या फिर ग्रेजुएशन कर भी लिए हों, तो उनके लिए एक ऑप्शन है अच्छा खासा BSc एग्रीकल्चर करके आप इस फील्ड में भी हाथ आजमा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: है ना, और करियर बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं कि आपकी जो रेडियो लिसनरशिप है
1: जी,
0: श्रोता के रूप में आपने कब से शुरुआत की, ये चस्का कैसा लगा?
1: सर ये मेरे बड़े भाई जीशान,
0: अच्छा,
1: बारसी करके उनका नाम आता है आकाशवाणी से।
0: हाँ हाँ बिल्कुल,
1: वो रेडियो को सुनते थे तो मुझे भी लगता था कि मुझे भी आकाशवाणी से जुड़ना चाहिए। फोन इन प्रोग्राम आता था हेलो जिंदगी करके, तो उसमें हम कॉल लगाते थे, हमारी फोन नहीं लगते थे पर उनका फोन लग जाता था।
0: अच्छा,
1: तो एक बार में एक ही श्रोता बात कर सकता था उसमें, दो के लिए इतना टाइम नहीं होता है उसमें।
0: नहीं होता था, हाँ।
1: तो मुझे भी लगा कि मुझे भी प्रोग्राम से जुड़ना चाहिए, तो फिर मेरी पहली कॉल लगी थी। उस टाइम जॉली शर्मा यहाँ पे अनाउंसर थी।
0: अच्छा अच्छा,
1: तब से मैं आकाशवाणी से जुड़ गया।
0: क्या बात है, ये कब की बात है? करीब
1: सर ये करीब सन 2012 की बात है, ये 12 में ये चलता था जी।
0: तो लेकिन आपने 2007 में ही क्लब बना लिया था
1: जी,
0: तब से सुन रहे थे,
1: लेकिन
0: और 5 साल बाद आपकी कॉल लगी
1: जी। बिल्कुल, लेकिन सर उस समय जो पुराने प्रोग्राम थे वो अनुरोध गीत प्रोग्राम आता था रात में।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: तो उसमें हम पहले पेन से हम लिखते थे, फिर उसके बाद हमने मोहर वगैरह सारी बनवाई आकाशवाणी के लिए,
0: पोस्ट कार्ड पे,
1: पोस्ट कार्ड, ताकि हमारा पोस्ट कार्ड और अच्छा लगे आकाशवाणी पर भेजें। तो सर यही सब चला और फिर हम आकाशवाणी से जुड़ गए। और
0: जुड़ गए तो इस सफर में जैसे 2007 में कौन कौन से प्रोग्राम आप सुनते थे, या फिर 2012 में आपने बताया हेलो जिंदगी से जुड़े
1: जी,
0: कौन कौन से प्रोग्राम आपको अच्छे लगते थे?
1: सर युवाणी का जो प्रोग्राम रहते थे, जो किसानवाणी प्रोग्राम था, वो तो सर आता ही था, वो तो हम सुनते ही थे। बाकी का जो फोन इन प्रोग्राम रहता था हेलो फरमाइश करके, वो विविध भारती से रिले होता था उस समय।
0: बिल्कुल, हाँ।
1: तो सर वो सुनते थे। और
0: अच्छा।
1: बाकी का जो अनुरोध गीत से हम रात में 10 बजे आता था 11 बजे तक,
0: हाँ,
1: एक
0: हाँ।
1: वो प्रोग्राम सुनते थे।
0: हाँ।
1: फिर जब 12 में चीजें बदली तो फिर प्रोग्राम भी चेंज हो गए, फिर नए प्रोग्राम्स आए सामने, तो फिर उनसे हम जुड़े। चिट्ठी आई है प्रोग्राम है, और आपका झुमका रे तो अभी भी चल रहा है, ये पहले भी आता था।
0: हाँ, फॉर्मेट थोड़ा सा पहले कुछ और हुआ करता था
1: सर, तो
0: सीमित हो गया है।
1: जी, जी
0: जी जी।
1: तो सर यही सारे प्रोग्राम हमने सुने। युवाणी के प्रोग्राम सुनते थे, युवाणी में चिट्ठी आई है प्रोग्राम आता था, जिसमें बहुत सारे लोगों के चिट्ठियां आती थी, और एक चिट्ठी को सुपरस्टार

0: बनाया जाता था जिसकी सबसे खूबसूरत चिट्ठी होती थी।
1: क्रिएटिविटी को सबसे सर्वोपरि दर्जा दिया जाता
0: यस
1: था,
0: सर,
1: तो क्या लगता है आज भी ऐसा है, क्रिएटिविटी को स्थान मिल रहा है?
0: सर अभी क्या है कि थोड़ा सोशल मीडिया का जमाना है तो लोग सोशल मीडिया से ज्यादा जुड़ गए हैं। अभी जो है चिट्ठियों का थोड़ा मुझे लगता है कि दौर थोड़ा खत्म हो रहा है, लेकिन हम जो पुराने श्रोता हैं हम सबको चाहिए कि हम उस दौर को खत्म ना होने दें, क्योंकि ये आकाशवाणी की जो सबसे पुरानी धरोहर है
1: खाती है,
0: जी,
1: विरासत है, बिल्कुल।
0: तो उसको हम बरकरार
1: और जो
0: रखें।
1: तमाम आपके भी पत्र होंगे और तमाम और भी श्रोता हैं उनके पत्र हमने सहेज के रखे हैं, ड्यूटी रूम जो जहाँ से सब कुछ कंट्रोल होता है, प्रसारण का मॉनिटरिंग होती है,
0: जी
1: वहाँ पे सारे पत्र रखे हुए हैं। आज भी अनुरोध गीत के बहुत सारे पत्र आते हैं, हालांकि पत्रों की संख्या उतनी नहीं रह गई है, और जो आपका पत्र मिला प्रोग्राम आता है उसमें भी पत्रों की संख्या कम हुई है, क्योंकि ईमेल है, सोशल मीडिया, इससे लोग जुड़ गए हैं, आसान हो गया है ना?
0: जी लेकिन सर आसान है, लेकिन जो चिट्ठी जब आकाशवाणी से कोई भी प्रोग्राम में शामिल होती थी उसका जो सर सुनने का मजा था वो एक अलग था। अभी आकाशवाणी के बहुत सारे केंद्र हैं जिनसे हम फेसबुक से जुड़ सकते हैं आसानी से, लेकिन जो चिट्ठी का मजा है सर वो एक अपने आप में अलग है।
1: अलग ही मजा है, बिल्कुल है। और जो श्रोता सुन रहे होंगे वो भी इस बात को ध्यान दें, और इमरान अली साहब की भी बात पे थोड़ा गौर करें, लेटर लिखना फिर से शुरू करें।
0: बिल्कुल सर, मैं आज इस प्रोग्राम में शामिल हुआ हूं और मैं खुद पहले मैं स्वयं ये काम करूंगा। अभी दोबारा से मैं सभी दोस्तों से भी कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चिट्ठियां भेजें जिससे कि प्रोग्राम और खूबसूरत हो जाए, क्योंकि यहां मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक खोलकर नाम शामिल हो जाते हैं, लेकिन जब एक टेबल पे हमारी चिट्ठियां रखी रहती हैं तो उसकी खूबसूरती एक अलग होती है।
1: थोड़ा एक इत्मीनान होता है, और फेसबुक इत्यादि पे है क्या, कमेंट आया डिलीट भी किया जा सकता
0: जी
1: है ना, गया खत्म। और यहाँ पोस्टकार्ड आ गया तो अब यहीं स्थिर है, रखा
0: बिल्कुल
1: हुआ है, सहेज के रखा हुआ है, ये भी चीज़ है। अच्छा, इस बीच कौन कौन से प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आजकल में आप, क्योंकि 2007 से सुन रहे हैं, 2012 में आपने हेलो जिंदगी में कॉल लगाई पहली बार, अब आज 2026 है, 14 साल बाद आज क्या देखते हैं?
0: बिल्कुल, मैं जरूर बताना चाहूंगा सर। आपके यहाँ से ग्राम जगत कार्यक्रम मैंने 3 मई का सुना, भी पिछले हफ्ते का बता रहा हूँ सर मैं, तो इसमें कुटीर उद्योग के विषय पर बातचीत हुई जो कि बहुत अच्छी लगी सर। और सर 4 मई का भी मैंने ग्राम जगत कार्यक्रम सुना, इसमें ग्रामीण शिक्षा की गुणवत्ता और मछली पालन पर विशेष जानकारी मिली जिससे बहुत सारे किसान भाई इस चीज को सुनकर लाभान्वित होंगे, वो कैसे मछली पालन कर सकते हैं और कौन सी वैरायटी ला सकते हैं जिससे उनको फायदा मिल सकता है।
1: जी।
0: एक प्रोग्राम आपके यहाँ से आता है महिलाओं के लिए नारी संसार, इस प्रोग्राम में भी बहुत अच्छी बातें आती हैं जो कि जो घरेलू महिलाएं हैं जो मतलब कम पढ़ी लिखी हैं उनको बहुत आसानी से बहुत सही जानकारी मिल
1: मिल
0: जाती है
1: जाती है।
0: रेडियो के माध्यम से। और जो किसान वाड़ी कार्यक्रम आता है ये मेरा एक फेवरेट कार्यक्रम है जो कि मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ, और हमारा भारत कृषि प्रधान देश है
1: बिल्कुल।
0: तो ऐसे प्रोग्रामों की हमें जरूरत है जो कि हमारे किसान भाई हैं उनको अच्छी जानकारी मिले, वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करें, कैसे उनको ज्यादा मुनाफा मिले, तो ये सभी जानकारी आपके यहाँ से आती रहती हैं तो ये बहुत पसंद आती हैं सर।
1: जी, और इनके अलावा कौन से प्रोग्राम आप सुनते हैं? इसे रेडियो कब आपका ऑन हो जाता है?
0: रेडियो तो सर जब मेरा कोई मनपसंद प्रोग्राम आता है तो मैं मोबाइल फोन पर अभी सुन पाता हूँ, क्योंकि
1: अच्छा
0: मैं अपने जिले से दूसरे जिले में रहता हूँ
1: अच्छा अच्छा
0: तो अभी मैं मोबाइल
1: और
0: एप्लीकेशन है
1: न्यूज़
0: उस।
1: ऑन एयर पे सुनते
0: यस
1: हैं?
0: सर, यस सर।
1: अच्छा, तो जैसे सुबह सुनते हैं या शाम में?
0: सर अभी आपके यहाँ से एक मैसेज पर आधारित प्रोग्राम आता है सुबह में
1: हाँ,
0: 10 बजे से ग्यारह बजे
1: आपकी
0: तक
1: आपकी
0: आपकी
1: पसंद।
0: पसंद,
1: हाँ
0: तो उसमें
1: हाँ
0: सर एक कमेंट्स करना होता है और नाम आ जाता
1: हाँ
0: है,
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो एक वो है। और आपका पत्र मिला प्रोग्राम
1: हाँ,
0: है जो
1: वीकली
0: कि
1: जो है।
0: वीकली आता है, मैं उससे जुड़ता हूँ। और जो अभी आपने फोन इन प्रोग्राम एक शुरू किया है जिस पर एक टॉपिक पर चर्चा हो रही है वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अभी
1: आपकी
0: आप
1: बात आकाशवाणी के साथ।
0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ, उसमें क्या रहता है कि सर आप अपनी कोई भी एक टॉपिक होता है उस पर हमसे बात की जाती है तो बहुत सारे लोगों को उससे जानकारी मिलती है, हर व्यक्ति की जो अंदर की चीजें हैं वो सभी को पता लग जाती हैं।
1: जी, बिल्कुल। और इसमें कौन से टॉपिक्स अच्छे लगे आपको इस बीच मई महीने में?
0: सर अभी एक टॉपिक था कि सड़क पर दुर्घटना से कैसे बचें, ये
1: हाँ।
0: टॉपिक बहुत अच्छा था
1: जी
0: और
1: जी
0: लोगों ने बहुत सारे फोन किए और मेरी भी कॉल उस दिन शामिल हुई तो
1: अच्छा
0: मुझे बहुत अच्छा लगा सर।
1: जी। रोड सेफ्टी वीक जो है वो
0: बिल्कुल
1: चल रहा था, तो उसमें बिल्कुल हमारी ये कोशिश होती है

0: और इसमें एक खास बात यह भी है कि आप सभी श्रोता भी इससे जुड़ सकते हैं,
1: बिल्कुल सर,
0: उसमें आप लोग भी टॉपिक बता सकते हैं। वो अगर टॉपिक जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं उस पे ठीक बैठेंगे तो उनको भी शामिल कर लिया जाएगा। कुछ टॉपिक ऐसे हमने शामिल भी किए हैं,
1: जी
0: कुछ श्रोताओं के सुझाए गए टॉपिक्स हैं, और नहीं तो ज़्यादातर तो हम ही देते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए दूसरे कार्यक्रमों की, भजन संध्या
1: जी
0: या फिर बात करें जो प्रोग्राम आते हैं, रेडियो हेल्पलाइन आता है,
1: बहुत
0: ये
1: अच्छा
0: सब।
1: प्रोग्राम सर, रेडियो हेल्पलाइन बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये। पहले सर, पहले के टाइम में 9 बजे आता था रात्रि में, लेकिन सर अभी आपने काफी
0: 7:30 बजे
1: साढ़े
0: तक।
1: सात बजे किया है, काफी बदलाव किया है। पहले क्या था कि लोग
0: सो जाते
1: गांव
0: थे।
1: के लोग सो जाते हैं सर इस टाइम तक, और अभी आपने 7:30 बजे किया है, तो उनको शामिल भी होते हैं बहुत सारे लोग फोन के माध्यम से। तो ये सर बहुत अच्छा प्रोग्राम है, अपनी समस्या है कोई, यहाँ डॉक्टर उपस्थित रहते हैं तो आप अपना सवाल भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है सर ये।
0: बिल्कुल। और जैसे आपकी बात आकाशवाणी के साथ का समय पहले 5 बजे हुआ करता था
1: जी
0: शाम के, अब 4 बजे हो गया और 1 घंटे का हो गया, ये कैसा लगता है आपको?
1: अच्छा
0: 4 बजे
1: प्रोग्राम,
0: का समय अच्छा है?
1: अच्छा प्रोग्राम है 4 बजे का। अभी हम विविध भारती से भी एक हेलो फरमाई सुनते थे, उस बीच में हम अपने केंद्र की सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर।
0: जी। और विविध
1: और
0: भारती तो आप 3 से 4 सुनते ही हैं,
1: बिल्कुल सर,
0: महिलाओं का प्रोग्राम जो आता है सखी सहेली। और इसके अलावा हमने इस बीच क्या किया पिछले कई महीनों से, हालांकि FM रेनबो भी हम सुना देते हैं, जोड़ देते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था,
1: जी
0: तो इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
1: सर, ये बहुत अच्छा है कि अगर आकाशवाणी रेनबो की तक हमें आकाशवाणी बरेली से जो प्रोग्राम है उनके हमें सुनने को मिल रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है सर ये। हम एक ही रेडियो पर तीन स्टेशन है हम सुन सकते
0: सुन
1: हैं
0: सकते हैं, बिल्कुल।
1: आसानी से, तो ये बहुत बड़ी बात है सर।
0: हाँ, विविध भारती भी सुन सकते हैं, सुबह सुबह
1: अभी
0: आकाशवाणी
1: सर
0: लखनऊ
1: बहुत
0: आता है।
1: सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो आज भी रेडियो पर प्रोग्राम सुनते हैं। तो जो जिनके पास स्मार्टफोन है वो तो एक एप्लीकेशन के माध्यम से अन्य केंद्र से जुड़ सकते हैं, लेकिन जो रेडियो पर ही सुनते हैं उनको अगर एक ही स्टेशन पे तीन रेडियो स्टेशनों की आवाज आएगी तो सर ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
0: क्या बात है। तो हमें लगता है कि काफी हमारे प्रोग्राम अच्छे चल रहे हैं, फिर भी अगर कुछ कमी लग रही हो, कुछ और सुधार की गुंजाइश आपको लग रही हो तो वो भी बताएं।
1: बिल्कुल सर, अभी तक तो सारे प्रोग्राम आपकी जो मेहनत है वो बहुत अच्छी है, आपकी पूरी टीम सर बहुत मेहनत कर रही है जो हमको अच्छी क्वालिटी में सारे प्रोग्राम पहुंचा रहे हैं, और आप भी सर बहुत अच्छे से हर एक प्रोग्राम को सजाते हैं, हम तक पहुंचाते हैं। तो मैं आपकी और आपकी पूरी टीम की बहुत तारीफ करना चाहूंगा, और सभी दोस्तों की तरफ से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी यूं ही आवाज रहे और ऐसे ही चलते रहें प्रोग्राम, और अच्छी क्वालिटी में हम तक पहुंचते रहें।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जैसा कि आपने बताया, हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी हम ऐसे ही बेहतरीन प्रोग्राम करते रहें, उनकी क्वालिटी ऐसे ही बल्कि और बेहतर करते जाएं,
1: जी
0: यही कोशिश रहेगी। और अगर प्रोग्राम के आखिर में कुछ आप तमाम श्रोताओं को कुछ संदेश देना चाहें।
1: बिल्कुल, मैं सबसे पहले एक कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी ने अभी 90 वर्ष पूरे किए हैं, तो सभी को सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आकाशवाणी टीम को और तमाम सुनने वालों को। और हमारा मुल्क एकता का प्रतीक है, हम सबको भाईचारे से रहना चाहिए, और अगर हम भाईचारे से रहेंगे तो हम यकीन मानिए कि हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं।
0: बिल्कुल। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सबकी बातें, इमरान अली साहब, तमाम श्रोताओं को पसंद आई होंगी, और आपने जो बताया हमारे कार्यक्रमों के बारे में उससे भी काफ़ी इत्तेफाक रखते होंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी अच्छी बातें की हमारे कार्यक्रमों के बारे में, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर।

आज मेहमान थे इमरान शेख, आपसे बात कर रहे थे मिथिलेश श्रीवास्तव। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी आविदा के साथ।

नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अपना खूब खूब ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त, आपकी रेडियो हम सफर आबिदा फातिमा, लेकर आ चुकी हूँ आपका और मेरा फेवरेट प्रोग्राम युवाणी, जिसमें हम करते हैं आपसे ढेर सारी गुफ्तगू और सुनवाते हैं कुछ खूबसूरत नगमे भी। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, हरियाली सिर्फ धरती की खूबसूरती नहीं बढ़ाती है, बल्कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी सबसे बड़ी पूंजी भी है। यही संदेश लेकर हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। और इस सप्ताह का जो उद्देश्य है वो सिर्फ पौधे लगाना नहीं है, बल्कि उन्हें संजोना और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना भी है। तो आइए हम सब मिलकर एक पेड़ जरूर लगाएं और अपने पर्यावरण को हरा भरा बनाने में अपना योगदान दें। वन महोत्सव सप्ताह पूरे देश में वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ मनाया जाता है। और अब इसी हरियाली भरे एहसास के साथ स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर अपने प्रोग्राम युवाणी में।

0: और दोस्तों अब वक्त हो गया है हमारे बेहद से खास सेगमेंट हेलो फ्रेंड का, जहां सितारे भी आप हैं, आपकी पसंद भी है और आपके संदेश भी हैं और आपकी फरमाइश पर बजते हैं आपके मनपसंद गीत। तो चलिए बिना किसी देर के मिलते हैं आज के पहले श्रोता से और जानते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कौन सा खूबसूरत गीत चुना है। हेलो फ्रेंड्स,
1: नमस्कार मैम, आदाब। मैं जो तहसील जिला जबलपुर शहजादपुर में रहने वाला अभी वर्तमान में
0: नमस्कार
1: बात कर रहा हूँ। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप?
0: हाँ हम बढ़िया हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ।

0: अच्छा
1: बारिश का मौसम चल रहा है और मजे ले रहे हैं और हरियाली उत्सव भी मना रहे हैं, वृक्षारोपण वगैरह
0: जी
1: करना चाहिए सभी को। जी,
0: जी तो आज
1: रेडियो से, सब लगाव है तो अच्छे हो जाते हैं, आप लोगों से बात हो जाती, खुश हो जाता है।
0: जी
1: गाना
0: जी
1: सुनवा दीजिए, साजन चले ससुराल में चलकर,
0: सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत, आपने कॉल की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हमारा भी दिल से धन्यवाद, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: तो दोस्तों शुरुआत हो चुकी है आपके अपने सेगमेंट हेलो फ्रेंड की और अब बारी है आपकी पसंद को आवाज देने की। तो चलिए मिलते हैं आज के हमारे दूसरे लिसनर्स से। हेलो फ्रेंड।
1: हेलो फ्रेंड।
0: हेलो जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं परी बात कर रही हूँ बरेली से।
0: अरे वाह, आपका तो नाम ही इतना प्यारा है, परी। क्या करती हैं आप?
1: जी मैं पढ़ाई करती हूँ।
0: किस चीज की पढ़ाई कर रही हैं?
1: जी अभी तो मैं फर्स्ट ईयर में हूँ।
0: फर्स्ट ईयर में, यानी कि 11th में हैं।
1: जी जी जी।
0: अच्छा, आप रेडियो सुनती हैं?
1: जी जी सुनती हूँ।
0: अच्छा, तो आपको कौन कौन से प्रोग्राम सबसे अच्छे लगते हैं?
1: मुझे सबसे ज्यादा युवाणी अच्छा लगता है और आपकी बात आकाशवाणी के साथ अच्छा लगता है और आपका पत्र मिला वो अच्छा लगता है। बहुत सारे कार्यक्रम मुझे अच्छे लगते हैं।
0: अच्छा चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी आपकी हेलो फ्रेंड में कॉल लगी है, कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगी?
1: मैं सुनना चाहूंगी, मूवी का नाम तो नहीं मालूम है मगर राहत फतेह अली की आवाज में तो इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे।
0: जी चलिए, हम आपको सुनवा रहे हैं आप ही की पसंद का ये गीत। आपने कॉल की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम।
0: थैंक यू।

साथियों, अगर आपके घर आंगन या मोहल्ले में अभी तक कोई पौधा नहीं लगा है तो वन महोत्सव सप्ताह चल रहा है और वन महोत्सव सप्ताह के इस अवसर पर एक पौधा जरूर लगाइए। छोटी सी शुरुआत भी बड़ा बदलाव ला सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगले श्रोता की ओर और जानते हैं कि उनकी पसंद की सूची में आज कौन सा गीत

0: क्योर और जानते हैं कि उनकी पसंद की सूची में आज कौन सा गीत शामिल है। हेलो फ्रेंड।
1: हेलो फ्रेंड
0: जी, कौन और कहां से बात कर रहे हैं?
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार,
1: हम जिला बदायूं ग्राम दूनी नगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कसेरिया बोल रहे हैं।
0: अरे, आप तो बहुत हमारे पुराने लिसनर्स हैं।
1: जी तो जी, आपका कार्यक्रम दिन सुनते हैं।
0: जी जी, और कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है सर। आज तो गर्मी से कुछ राहत मिली है, पूर्वा हवा चल रही है, बादल छाए हुए हैं।
0: जी, आप क्या करते हैं?
1: यहाँ तो वैसे खेती किसानी का ही कार्य होता है।
0: अच्छा, खेती किसानी का, तो इस टाइम क्या लगा रखा है खेत में आपने?
1: खेतों में धान लग रहे हैं, मक्का खड़ी है, खेतों में गन्ना खड़ा है।
0: चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिलहाल जब आप खेती किसानी करते हैं तो आपको तो मालूम ही होगा कि वनों का किस तरह ध्यान रखना चाहिए। वन महोत्सव सप्ताह चल रहा है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक।
1: वन महोत्सव सप्ताह चल रहा है, जिसमें वृक्ष लगाने चाहिए। हमने 3 वृक्ष लगा दी, वैसे तो हमारे बाग है
0: जी,
1: नए पौधे लगा देते हैं 10-10, 3-4 पौधे।
0: जी, चलिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज जो आप पौधे लगा रहे हैं वो कल बड़े होकर आपको और आपके जो भी आगे आने वाली पीढ़ी है उन सभी को छाया देंगे।
1: पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती, लाभ है पौधों।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने आज हेलो फ्रेंड में हमें कॉल की है, तो आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: गाना सुनना चाहते हैं वो गाना, कर्म किया या फल की इच्छा मत कर रे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा।
0: चलिए, हम आपको सुनवा रहे हैं आप ही की पसंद का ये गीत। धन्यवाद।

0: ऐसे फल देगा भगवान।
1: साथियों संगीत का सफर तो यूं ही चलता रहेगा क्योंकि आपकी फरमाइश और हमारा साथ, यही तो है हेलो फ्रेंड्स की असली पहचान। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड जी, कौन और कहां से बात कर रहे हैं?
2: जिला रामपुर से खान करेती, मैं तावाद के पास मैं सरकरा, मैं बोल रहा हूँ राम भरोसे
1: जी। तो राम भरोसे जी, नमस्ते, कैसे हैं आप?
2: हाँ जी बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? हेलो फ्रेंड परिवार में आप ठीक हैं?
1: हम सब भी बढ़िया हैं। और हमारा आकाशवाणी सुनते हैं आप?
2: हाँ जी जी सब सुनते हैं हम।
1: अच्छा, तो हमारे जो प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं?
2: हमें बहुत अच्छे लगते हैं, मैं तो फोन लगाने पे रहता हूँ, मेरा आप लोगों से मेरा इतना मन करता है बात करने के लिए, क्या ऐसी लगती है कि समझ लो कि क्या बात करते रहो समझ लो
1: जी। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, और आकाशवाणी के प्रति आपका प्रेम ये यूं ही अपना बनाए रखिएगा। आज आपने हेलो फ्रेंड में कॉल की है तो आप अपनी पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
2: हमें सुनना है वो संग्राम फिल्म का
1: गीत का नाम।
2: नदिया से पूछो उठे बादल से पूछो।
1: चलिए हम आपकी पसंद का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं और बहुत ही शानदार आपकी पसंद है। उम्मीद है ये गीत आपके साथ साथ बाकी सभी श्रोताओं के चेहरे पर भी मुस्कान ले आए। आपने कॉल की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्ते
1: नमस्ते।

0: बस उस जिंदगी की भागदौड़ में अपने लिए कुछ पल निकालिए, अपनों से बातें कीजिए और प्रकृति के साथ थोड़ा सा समय बिताइए। एक बार फिर याद दिला दें कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM और कार्यक्रम युववाणी। मैं हूं आपकी अपनी रेडियो हमसफर आबिदा फातिमा। और आइए साथियों, अब देखते हैं कि हमारी अगले जो श्रोता है कॉल पर वो कौन है। हेलो फ्रेंड।
1: हेलो फ्रेंड
0: जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: जी, मैं जासमीन खान बात कर रही हूँ बरेली से।
0: और कैसी हैं जासमीन?
1: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
0: हम भी बढ़िया हैं। क्या करती हैं आप?
1: जी मैं कुछ नहीं, मेरी पढ़ाई पूरी होगी तो इसलिए अब मैं घर पर हूँ। मेरा 12th पास हो गया है तो मुझे आगे की पढ़ाई के बारे में सोचना होगा।
0: हाँ तो बिल्कुल सोचना चाहिए, क्या करना चाहती हैं आप?
1: मुझे आगे देखना होगा कि मुझे BA करना है या फिर ग्रेजुएट करना है, तो इसी का डिसाइड करना होगा।
0: जी, तो अभी कुछ डिसाइड किया है?
1: अभी तो फिलहाल कुछ डिसाइड नहीं किया है क्योंकि फादर मेरे बाहर हैं, तो जब वो आ जाए तो उनसे डिस्कस करने के बाद ही आगे कुछ प्लान किया जाएगा।
0: चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके अलावा आप कुछ करती हैं?
1: इसके अलावा मैं घर पर रहती हूँ, मम्मा के साथ में हेल्प करती हूँ और बच्चे को ट्यूशन देती हूँ।
0: ओहो, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो पढ़ तो लेते हैं लेकिन आगे जो है फिर उसका कोई फायदा नहीं उठाते, लेकिन अगर आप कोचिंग दे रही हैं तो ये कितनी अच्छी बात है।
1: बिल्कुल रहना चाहिए।
0: बिल्कुल। और इसके साथ साथ क्या होता है कि अगर आप बच्चों को पढ़ा रही हैं तो आपका भी रिवाइज हो रहा है और बच्चों को भी कुछ नया सीखने को मिल रहा है और आप इस तरीके से ज्ञान बांट रही हैं।
1: जी जी जी, इसमें पढ़ाई बहुत जरूरी होती है क्योंकि हम कहीं पे भी जाते हैं आते हैं या फिर हमें कहीं क्रेडिट वगैरह में या फिर बैंक वगैरह में कोई भी इश्यू वगैरह हो जाते हैं तो हमारी पढ़ाई काम में आती है।
0: ये बिल्कुल सही बात है कि हमारी पढ़ाई ही तब काम आती है और तब हमें लगता है कि हाँ जो हमने पढ़ाई की है तो वो बहुत अच्छा किया है और सभी को पढ़ना चाहिए।
1: लोग समझते हैं कि पढ़ाई डिफिकल्ट है, बीच में कुछ लोग छोड़ देते हैं। मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, अपनी चलाते हैं, पढ़ते नहीं है, कहते हैं मुझे खेलना है कूदना है, लेकिन खेल कूद स्कूल में भी हो सकता है। प्लान भी जब ही करेंगे, जब हम स्कूल में पढ़ाई करेंगे तभी हम फ्यूचर में कुछ कर पाएंगे।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है आपकी। अगर हमें कुछ बनना है, अपने फ्यूचर में कुछ आगे करना है तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना?
1: जी, सोचते हैं बच्चे के हमें खेलना है, ये करना है, वो करना है, पढ़ाई नहीं करनी है, तो खेल कूद में जब वो सोचते हैं कि हम ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे, खेलने से नहीं बनेंगे, हम पढ़ाई पहले करेंगे बाद में ही, पढ़ाई के थ्रू हमें कुछ अपने फ्यूचर के लिए प्लान करना होगा, फिर उस फ्यूचर से रिलेटेड हमारा फ्यूचर सक्सेसफुल हो जाएगा और हम आगे लाइफ में कामयाब हो जाएंगे।
0: बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा मैसेज आपने सभी को दिया। हेलो फ्रेंड, में हमें कॉल की है तो आप अपनी पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: जी मैं सॉन्ग सुनना चाहूंगी, मूवी का नाम है सुपर नानी और गाने के बोल हैंगे माहेरू देसुकू कर मिली चाहत के बोल।
0: चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं आप ही की पसंद का गीत। आपने कॉल की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।

तो साथियों उम्मीद है आपकी पसंद के गीतों और हमारी छोटी छोटी बातों ने आपका दिन खुशनुमा बना दिया होगा। जाते जाते फिर याद दिला दूं वन महोत्सव सप्ताह के इस अवसर पर एक पौधा जरूर लगाइए, उसकी देखभाल कीजिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि आज का एक पौधा कल की लाखों सांसों की सुरक्षा है। इसी उम्मीद के साथ मुझे आपकी रेडियो दोस्त आबिदा फातिमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, अपना और अपने पर्यावरण का ख्याल रखिए और फिर होगी मुलाकात युववाणी के एक और नए सफर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी बरेली 100.4 FM। बाय बाय, टेक केयर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी आविदा फातिमा के साथ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। लीजिए प्रसिद्ध कार्यक्रम ग्राम जगत।

कार्यक्रम ग्राम जगत सुन रहे सभी ग्रामीण भैया और बहनों, आप सभी को आपके भैया धारा की राम राम। स्वागत करते हैं हम आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम जगत में। भैया बहनों, आज दिन है इतवार को और आज के दिन आप सभी लोगों को इंतजार रहता है कि आपके द्वारा भेजे गए पत्र और सोशल मीडिया पर किए गए कमेंट्स कार्यक्रम लोकमंजरी में फरमाइशी लोकगीतों के लिए शामिल किए जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, आज हम आपके द्वारा भेजे गए पत्रों को और सोशल मीडिया पर किए गए कमेंट्स को पूरी तरह से कार्यक्रम में शामिल करेंगे। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें आपके साथ साझा करनी है। इस समय वन महोत्सव सप्ताह चल रहा है। सबसे पहले तो ये कि वन महोत्सव क्या है, इस संबंध में हमारी और आपकी बातचीत होती है।

0: हम आपको बताना चाहेंगे कि भारतवर्ष में वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ये वन महोत्सव मनाया जा रहा है। एक राष्ट्रीय अभियान है जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक पेड़ लगाना, उनका संरक्षण करना और लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। इसे प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। अब बात बताते हैं कि वन महोत्सव की शुरुआत कब और कैसे हुई। वर्ष 1950 में भारत के तत्कालीन कृषि एवं खाद्य मंत्री के एम मुंशी ने की थी। उनका मानना था कि यदि देश का पर्यावरण संतुलित रखना है तो बहुतायत में हमें वृक्षारोपण करना पड़ेगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाने लगा। अब वन महोत्सव का महत्व क्या है, इस बारे में भी थोड़ी चर्चा कर ली जाए। पर्यावरण संरक्षण में सहायक, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव कम करने में इससे मदद मिलती है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, वर्षा चक्र को संतुलित रखने में बहुत ज्यादा योगदान मिलता है। दूसरी बात, भू संरक्षण और बाढ़ की समस्या को कम करने में पेड़ हमारे बहुत बड़े सहायक होते हैं। भूजल स्तर बढ़ाने में भी हमको मदद मिलती है। साथ ही साथ वन्य जीवों को प्राकृतिक आवास उपलब्ध होता है, ग्रामीणों को फल, चारा, ईंधन और औषधीय पौधों से लाभ मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन की जो पूर्ति हमारे लिए होती है वो वनों के माध्यम से ही होती है, हमारे आसपास लगे पेड़ों के माध्यम से ही होती है। इसीलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे और वन महोत्सव सप्ताह मनाए जाने वाले इस उद्देश्य की पूर्ति करनी होगी। सामूहिक तरीके से वृक्षारोपण अभियान चला करके, स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम करके, पर्यावरण रैली या फिर प्रभात फेरियां निकाल करके भी हम पौधारोपण के लिए जागरूक कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी ग्राम पंचायतें हैं और वहाँ स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं जो वृक्षारोपण करके पर्यावरण को संरक्षण करने में मदद करती हैं। हम किसान भाइयों का तो काम ही यही है कि अगर हम कृषि वानिकी अपनाएंगे तो पर्यावरण संरक्षण में अपनी एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। हम अपने खेतों की मेड़ों पर पेड़ लगा करके अतिरिक्त आय भी पैदा कर सकते हैं। कृषि वानिकी से लकड़ी, फल, चारा और ईंधन की प्राप्ति भी हमें भरपूर मात्रा में हो सकती है। पेड़ हमारे खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं, खेतों में नमी बनाए रखने में भी बहुत बड़े सहायक होते हैं। हमारे खेतों में जो फसलें खड़ी होती हैं, अगर खेत की मेड़ों पर पेड़ लगे हुए हैं तो तेज हवाओं से जो हमारी फसलें गिरने की संभावना होती है वो बच जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है भैया बहनों, कि इसमें हमारी आय बढ़ जाती है। इसलिए हम अधिक से अधिक पेड़ लगा करके वन महोत्सव सप्ताह को सफल बनाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो फिर प्रण लीजिए कि हम वन महोत्सव सप्ताह मना करके ही नहीं, किसी न किसी आयोजन के रूप में हमारे घर के बड़े बुजुर्गों की याद में, माता और पिता की याद में, बच्चों के जन्मदिन की याद में, अपनी शादी की सालगिरह की याद में, या कोई भी ऐसा अवसर हो उस अवसर पर आप पेड़ लगाने के बारे में सोचेंगे तो फिर आपके आसपास का वातावरण शुद्ध होगा, हरा भरा होगा और अच्छा भी लगेगा। कार्यक्रम में एक क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता भी है, आइए हम आपको सुनवाते हैं।
1: क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम पहुंचे हैं स्कूल चलो अभियान के लिए कंपोजिट विद्यालय सैदपुर हाकिंस में, और यहाँ हमको देखना है कि क्या स्थिति है स्कूल की और कैसे बच्चे ड्रेस में आते हैं और क्या सुविधाएं यहाँ पर हैं और स्कूल चलो अभियान के तहत यहाँ क्या कार्य किए जा रहे हैं। विद्यालय में काफी बच्चे एकत्र हो चुके हैं। ये बच्चे यहाँ एक पाठशाला में हैं और ड्रेस में हैं, बड़े अच्छी तरीके से अपने अध्ययन कार्य में लगे हुए हैं। प्रधानाचार्य भी यहाँ व्यवस्था में लगे हुए हैं। सवाल हमारा होगा कि आप अपना परिचय बताइएगा।
2: मेरा नाम प्रवेश कुमारी, मैं इंचार्ज अध्यापक हूँ।
1: जी जी जी तो हमारा एक मुख्य उद्देश्य है कि सरकार ने बच्चों की शिक्षा के लिए जो अभियान चलाया हुआ है।
2: स्कूल चलो अभियान का मतलब है कि एक जन आंदोलन है ये,
1: जी,
2: जिसमें बच्चों का नामांकन

0: 100% होना है
1: जी,
0: और जिससे कि बच्चा अपने शिक्षा का लाभ उठा सके।
1: स्कूल चलो अभियान, इसका मुख्य उद्देश्य तो आपने बताया कि हर बच्चे को स्कूल आने के लिए जोड़ना है, नामांकन कराना है। सरकार का जो उद्देश्य है कि हर बच्चे की शिक्षा हो, हर बच्चे को एक ड्रेस में देखा जाए और उसका स्वास्थ्य भी सही रहे, तो सरकार के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है आपके विद्यालय में, इसके तहत क्या क्या कार्य किए गए हैं स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत?
0: हमारे यहाँ एक तो ये है कि बच्चों के लिए 1200 रुपए आते हैं गार्जियंस के खाते में
1: जी,
0: वो बच्चों की ड्रेस के लिए 100 रुपए आते हैं, बुक्स कॉपियों के लिए निःशुल्क पुस्तकों का वितरण है, और यही कहा जाता है कि सभी बच्चे स्कूल आए, उसका लाभ उठाए और शिक्षित हो।
1: आपके विद्यालय में कितने बच्चे जो है नामांकन है
0: इस समय? हमारे विद्यालय में 240 बच्चे नामांकित
1: जी। ये कंपोजिट विद्यालय है, इसमें जो है वो प्राइमरी से लेकर के टियर तक के बच्चे पढ़ते हैं।
0: हाँ जी।
1: जिसमें छात्र और छात्राएं दोनों बच्चे हैं
0: जी।
1: जी, तो किस तरीके से बच्चों का अध्ययन का ध्यान रखते हैं आप?
0: बच्चों को एक टाइम टेबल दिया गया है, हम लोग टाइम टेबल बनाकर क्लास लेते हैं और सभी अपने अपने क्लास में शिक्षक जाते हैं, पढ़ाई करवाते हैं।
1: आज हम आपके साथ इस पाठशाला में है, ये कौन सी क्लास की पाठशाला है?
0: इसमें अभी तो मैंने आपके आने पर 6th और 7th दोनों क्लासों को बैठाया है
1: जी।
0: जी,
1: तो 6th और 7th दोनों क्लास को क्या पढ़ाने का कार्य अलग अलग किया जाता है?
0: हाँ,
1: या एक ही साथ में
0: सब क्लास अलग अलग लगते हैं
1: जी, जी।
0: हमारे यहाँ थोड़ा सा बिल्डिंग खराब है जूनियर की।
1: हाँ।
0: इसलिए थोड़ी सी व्यवस्था ये है कि एक क्लास में हमें दो क्लास भी लगाने पड़ जाते हैं कभी।
1: जी जी जी, सरकार का ये उद्देश्य कि कोई भी बच्चा शिक्षा से छूटे नहीं, इसके तहत स्कूल चलो अभियान में रैलियां भी निकाली जाती हैं, गोष्ठियां भी की जाती हैं और चौपाल के माध्यम से भी बताया जाता है, जो अभिभावक हैं उनको भी समझाया जाता है। आपने क्या किसी प्रकार से कोई ऐसी रैली निकाली है कि जिससे कि अभिभावकों को और बच्चों को जो है जागरूक किया जा सके?
0: हमारे यहाँ महीने में एक बैठक होती है जिसमें हम बच्चों के माता पिता को, अभिभावकों को बुलाकर बैठक करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आप बच्चों के एडमिशन कराइए, शिक्षित रखिए, और उसके बाद भी हमने रैलियां भी निकालते हैं
1: जी,
0: ये सब करते हैं।
1: सरकार के द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कि घर से आए, अगर उनको घर पर किसी प्रकार से नाश्ता नहीं मिला है या खाना नहीं मिला है तो वो स्कूल में आकर के मिड डे मील के तहत भोजन भी कर सकते हैं, नाश्ते भी कर सकते हैं, इसके लिए दूध भी है, केले भी है, कई प्रकार का ये इंतजाम किया गया है। आप क्या इसकी क्या व्यवस्था है?
0: हमारे यहाँ एनजीओ के द्वारा मिड डे मील आता है
1: जी,
0: उसमें बच्चों को मंडे के लिए फल मिलता है, वेडनेसडे को दूध मिलता है, बाकी रोजाना मध्याह्न भोजन आता है।
1: आपके विद्यालय में चूंकि छात्र भी हैं और छात्राएं भी हैं, छात्राओं के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए भी आपके यहाँ किसी प्रकार से उनको अलग से कोई सहायता दी जाती है, उनको अलग से क्या समझाया जाता है?
0: हाँ, हमारे यहाँ बालिकाएं हैं जो 6th से 8th तक की, बड़े होने लगते हैं बच्चे, तो उनके लिए सुविधाएं हैं, सरकार ने सैनिटरी पैड दिए हैं
1: जी,
0: ताकि हम उनको जानकारी भी देते रहते हैं, समय हर महीने में वितरण भी करते हैं जो सरकार द्वारा भेजे गए हैं।
1: किसी भी प्रदेश के या देश के, गांव के और हमारा जो समाज है उसके विकास के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं और आपके यहाँ इन दोनों का बखूबी से ध्यान रखा जाता है। देखिए, इस विद्यालय में बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा जाता है। जैसा कि प्रवेश महंदी ने हमको बताया था कि हम अपने विद्यालय आने वाले बच्चों का ड्रेस, स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा का पूरी तरह से ध्यान रखते हैं, और हमने भी बच्चों से बातचीत के दौरान ये जान ही लिया है। अंतिम सवाल आपसे और जानना चाहूंगा कि जो बच्चे स्कूल नहीं आ पाते हैं और अभिभावक ये सोचते हैं कि आज नहीं तो कल चले जाएंगे, हमारे काम में हाथ बटा लें, उन अभिभावकों से आज आकाशवाणी के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों की शिक्षा का विशेष ध्यान रखें और स्कूल भेजें?
0: मेरा कहना यही है कि बच्चों को स्कूल टाइम अवश्य भेजें, बाकी दिन बच्चों का, बच्चों से पहले तो यह है काम ना कराएं
1: जी।
0: 14 साल तक की उम्र का बच्चों को यह है कि पढ़ाई का पूर्ण ध्यान दें, और बस यही अपील है कि माँ बाप विद्यालय डेली भेजें, उन्हें समय से भेजें।
1: प्रवेश भाई जी, आज आपने हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: और आइए अब आपके इंतजार को समाप्त करते हैं, आपके द्वारा भेजे गए पत्रों को और कमेंट्स को कार्यक्रम में शामिल करके। ये पत्र हमें मिला है कस्बा मीरगंज बिजली घर से लिखने वाले हैं।

आदर्श दिवाकर, लव दिवाकर, जय दिवाकर, ओमेंद्र पुरी गोस्वामी और कल्लू मिस्त्री। अलकनाथ मंदिर के सामने से गंगवार बैगलाइन बरली से लिखने वाले हैं बेचेलाल गंगवार, गुड्डी देवी, प्रशांत देव, ज्ञानेंद्र देव, एला देवी गंगवार, बर्फा देवी, सुनील यादव, संजय अग्रवाल, अश्विनी कुमार मौर्य, मास्टर विनोद दीक्षित और राज महावीर कश्यप, श्री राम राठौर, रमेश चंद्र सैनी और गौतम राम ने हमें पत्र लिखा है। गंगा सिंह रावत, रामपुर रोड, हल्द्वानी, उत्तराखंड, जिला मुरादाबाद, ग्राम महसपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, बागपत से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया, अपार डिंगिया और बहुत से कमेंट्स सोशल मीडिया पर हमको मिले हैं। आप हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और डब्बू भाई, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़, डीडी महलोत्रा, रितिका, ग्राम बीरपुर पोस्ट बिलसड़, तहसील अलीगंज एटा से, विपिन कुमार साक, सपना साक, रविंद्र साक, राजेश मिस्त्री, रमेश साक, राजीव टेलर, प्रदीप साक, रंजीत साक, सिद्धार्थ साक, कुमारी सुजाता साक, कुमारी संगमित्रा साक, कुमारी प्रज्ञा साक और उनके मम्मी पापा, जिला नादेड़ एतला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभ प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, दुर्गेश्री जायसवाल, आप सभी ने ओम प्रकाश भैया के मधुर स्वर में ढोला सुनना चाहा है, तो आइए आप सभी की पसंद को पूरा करते हैं।

डलई डलवन में डार भमरिया और बलमान सुद डारी बिसराय और पिंगुल गढ़ के बीच में मारू और कैसे बलमा को चिठिया।

भैया बहनों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम लोक मंजरी, जिसमें हम आपके द्वारा भेजे गए पत्रों को और सोशल मीडिया पर आए कमेंट्स को शामिल कर रहे हैं। जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से हमें कमेंट किया है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान और मोहम्मद इरफान ने। चंदौसी रोड चमनपुरा से मुकेश गौतम, सुनील गौतम, अमन गौतम। बुधनगर खंडवा से नदीम भाई, बहजोई से राजू जी। दादा बाबू रोड गिरढ़ी झारखंड से मोहम्मद यासीन, अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, बेबी और चाहत। ग्राम लाहौर अड़ा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन, प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी। करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति और सुमन देवी। चरडोंगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी, माया साहू। सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। पूजा रेडियो श्रोता संघ पलेरा हाल टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से राजेश कुमार अकेला, यशोदा यादव, राजीव यादव, संजीव यादव। बैंक सेंटर चनेटी के पास से विनोद कुमार श्रीवास्तव, रागनी श्रीवास्तव और मुस्कान। सब्जी मंडी कस्बा उसावा वार्ड नंबर 1 जिला बदायूं से लिख रहे हैं धर्मवीर कश्यप, उषा कश्यप, ध्यानपाल कश्यप, संजय कश्यप, अनमोल कश्यप, अंश कश्यप, कुमारी करिश्मा कश्यप, मुस्कान कश्यप और उनके परिवार के सदस्य। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर जौड़ा, सीटी दीवाना। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू। नाज रेडियो क्लब करेली बरेली से निसार अहमद अंसारी, महजावी निसार अंसारी, नुजत फातिमा, अबरार अहमद अंसारी, इकरार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद अंसारी, तस्लीम रजा और पप्पू भाई ने हमें पत्र लिखा है। जिला बदायूं ग्राम दूनेनगर से लिखने वाले हैं ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, मनोज कुमार कठेरिया, सत्येंद्र कुमार कठेरिया, गुड्डू, विशाल, संगम, वैभव, आदेश, आदित्य, अमित, रेनू, कुमकुम, निव्या, सरिता और अंतिमा ने हमें पत्र लिखा है और एक मधुर लोकगीत सुनने की फरमाइश हम तक भेजी है। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनवा देते हैं आपको हरजीत कौर के मधुर स्वर में ये प्यारा सा लोकगीत।

भैया बहनों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम लोकमंजरी। बारसी क्लब सिंधौली मीरगंज से जीशान बारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करुला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया सोएब, बीजन मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान, सोफिया खान पत्र लिखा है और एक मधुर लोकगीत सुनने की फरमाइश हम तक भेजी है। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनवा देते हैं आपको ये प्यारा सा लोकगीत।

इसी मधुर लोकगीत के साथ आज का कार्यक्रम ग्राम जगत लोक मंजरी यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम से अपने भैया धारा को दीजिए अनुमति। भैया बहनों राम राम।

0: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104.4 FM पर। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम सेहतनामा। कार्यक्रम में आज मेहमान हैं डॉक्टर शरद अग्रवाल, आपसे बातचीत कर रहे हैं मिथिलेश श्रीवास्तव।
1: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं मिथिलेश योगेंद्र और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर शरद अग्रवाल, जो हमें हेपेटाइटिस यानी कि जिगर के सूजन और उससे जुड़ी तमाम जो बीमारियां होती हैं और क्या क्या कॉम्प्लेक्शन होते हैं, उसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और क्या सावधानियां हम बरत सकते हैं जिससे हम इस बीमारी से बच सकें, उसके बारे में उपयोगी जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं बरेली आकाशवाणी को बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे आपसे वार्ता करने के लिए अवसर दिया।
1: जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये हेपेटाइटिस जो बीमारी है ये क्या है और किस तरह से होती है।
2: हेपेटाइटिस का अर्थ है जिगर यानी लिवर में सूजन।
1: जी
2: ये कई कारणों से हो सकता है, जैसे

0: वायरल इन्फेक्शन, शराब का अधिक सेवन और कभी कभी कुछ दवाओं का रिएक्शन। वायरल हेपेटाइटिस मुख्यतः पांच प्रकार की होती है, ए बी सी डी और ई। हमारे देश में हेपेटाइटिस डी नहीं होती है, इसलिए हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे।
1: ठीक है सर।
0: हेपेटाइटिस ए और ई ये भोजन और पानी से फैलते हैं, और हेपेटाइटिस बी और सी इन्फेक्टेड सुइयों से इंजेक्शन लगाने, इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ाने, या हेपेटाइटिस बी और सी से पीड़ित किसी व्यक्ति के निकट शारीरिक संपर्क में आने से शरीर में फैलती हैं। यदि किसी गर्भवती महिला को हेपेटाइटिस बी या सी है
1: जी,
0: तो उसके बच्चे को भी डिलीवरी के समय यह इन्फेक्शन हो सकता है।
1: जी, अब बात करें इस सीजन की, तो बारिश का मौसम है, इस समय कौन सा हेपेटाइटिस जो है ज्यादा फैलता है और क्यों फैलता है?
0: हेपेटाइटिस ए और ई क्योंकि भोजन और पानी से फैलते हैं
1: जी, जी।
0: और बरसात के मौसम में जगह जगह जल भराव होता है, नदियां नालों और सीवर फ्लो ओवरफ्लो होता है, इसलिए पीने का पानी गंदा होने की संभावना बढ़ जाती है
1: जी।
0: अच्छा, इसी दूषित जल को लोग बाग फलों और सब्जियों पर भी छिड़कते हैं और यही भोजन में भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए बरसात में इन दोनों इन्फेक्शन के होने की संभावना बढ़ जाती है।
1: जी जी, तो इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है बारिश में, और इन्फेक्शन कहीं ना कहीं तो लीवर में ही होता है, जिगर में होता है, और आमतौर पे जो शुरुआत होती है देखा जाता है पीलिया से होती है, ज्वाइंटिस जिसको आमतौर पे बोलते हैं, तो इसके क्या लक्षण होते हैं और उसका इलाज कैसे किया जाता है? और कई बार कहते हैं लोग कि हाँ नाखून पीला है या आंखें थोड़ी सी पीली हो गई हैं तो ज्वाइंटिस है।
0: जी जी, जॉन्डिस अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये एक लक्षण है।
1: अच्छा।
0: जिसके बहुत से कारण होते हैं, सबसे मुख्य कारण तो हेपेटाइटिस ही होते हैं।
1: अच्छा।
0: तो इसमें जो आम लक्षण होते हैं, जो सब तरह की पीलिया में कॉमन होते हैं
1: जी,
0: भूख न लगना, हल्का बुखार होना, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, उल्टियां होना, कमजोरी लगना और पेशाब अत्यधिक पीला होना
1: जी,
0: इसके बाद जब जॉन्डिस बढ़ती है तो आंखें और बाकी शरीर भी पीला होने लगता है। ये हेपेटाइटिस ए और ई में जो पीलिया होता है ये पहले धीरे धीरे बढ़ता है, कुछ दिनों तक उसके बाद स्थिर रहता है और फिर धीरे धीरे कम होता है।
1: जी जी,
0: ये पूरी प्रक्रिया लगभग 2 से 8 सप्ताह तक चल सकती है
1: जी।
0: अधिकतर मामलों में ये इन्फेक्शन अपने आप ठीक हो जाता है और किसी विशेष दवा की आवश्यकता नहीं होती। शुरुआत में हमें केवल उल्टी और एसिडिटी कम करने की दवाएं देनी होती हैं ताकि मरीज को राहत मिले। इसके साथ मरीज को हल्की सुपाच्य और अधिक कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट दी जाती है, जैसे ग्लूकोज, चीनी, आलू, चावल, दलिया। जब पीलिया बढ़ रहा होता है उस समय उल्टियां होने की संभावना अधिक होती है, तो ऐसे में किसी किसी मरीज को ग्लूकोज चढ़ाने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जब पीलिया बढ़ना रुक जाता है तो मरीज की भूख लौट आती है, परेशानी कम हो जाती है, उस समय मरीज सामान्य भोजन कर सकता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो, प्रोटीन थोड़ा कम हो और चिकनाई यानी कि घी तेल वगैरह काफी कम हो। एक आम लोगों में अंधविश्वास है कि हल्दी और कोई पीली चीज ना दो, ऐसा कोई ठीक नहीं है। जितना चाहे हल्दी और पीली चीजें खा सकते हैं, उनसे कोई नुकसान नहीं है। एक दूसरा अंधविश्वास है कि गन्ने का रस पीना चाहिए। इसको हम इसलिए रिकमेंड नहीं करते क्योंकि गन्ने के रस में गंदगी हो सकती है और उससे पेट का इन्फेक्शन हो सकता है। गन्ने के रस में जो शुद्ध चीज है वो केवल चीनी है, इसलिए हम चीनी अधिक खाएं तो ज्यादा अच्छा है। जब पीलिया कम हो रहा होता है उस समय मरीज घर का बना हुआ सामान्य खाना खा सकता है और प्रोटीन की मात्रा थोड़ी बढ़ानी होती है। मांसाहार और तली हुई चीजों से बचना चाहिए। शराब का सेवन बिल्कुल निषिद्ध है।
1: इसमें कुछ लोग मूली खाने की सलाह देते हैं, ऐसा कुछ है क्या?
0: हमारे पूर्वजों को ये मालूम था
1: जी
0: कि पीलिया में कार्बोहाइड्रेट का सेवन अधिक करना चाहिए। उस समय गन्ना और मूली यही दो चीजें उपलब्ध थी।
1: अच्छा।
0: तो उनका सोचना बिल्कुल ठीक था। तो ये वैसे ठीक है, लेकिन मूली खा सकते हैं, गन्ने से बचना चाहिए क्योंकि उससे गंदगी हो सकती है। अब इसमें एक बात ये बताना जरूरी है
1: जी जी,
0: पीलिया के संबंध में, कि दुर्भाग्य से हमारे देश में आज भी बहुत से लोग झाड़फूंक के चक्कर में पड़ जाते हैं। पीलिया तो अपने आप से ठीक होता है, लेकिन पीलिया झाड़ने वाले लोग लोगों के मन में ये बैठा देते हैं कि उन्हीं की झाड़फूंक से पीलिया ठीक हुआ है। इसी तरह लिवर को ठीक करने के नाम पर बहुत सी देसी और हर्बल दवाएं बाजार में बिकती हैं, जो न किसी आधुनिक पैथी और न ही शुद्ध आयुर्वेदिक सिद्धांत पर आधारित हैं। कई डॉक्टर भी केवल मरीज को संतुष्ट करने के लिए ऐसी दवाएं लिख देते हैं। पीलिया अपने आप ठीक होता है और लोग समझते हैं कि इन दवाओं से उनका पीलिया ठीक हुआ है। इसका नतीजा ये होता है कि देश में अरबों रुपए की अनावश्यक दवाओं का कारोबार पनपता है। इन दवाओं

0: से कोई फायदा तो नहीं होता है। एक खतरा यह भी है कि बहुत सी कंपनियां घटिया गुणवत्ता वाली हर्बल दवाइयां बना रही हैं जिनसे नुकसान हो सकता है।
1: जी बिल्कुल,
0: मतलब फायदा तो कोई नहीं, नुकसान और हो सकता है,
1: नुकसान बल्कि ज्यादा हो सकता है। तो ये तो बात रही पीलिया की, और जैसा कि आपने बताया ये रोग नहीं बल्कि लक्षण है हेपेटाइटिस का ही। तो अगर किसी को पीलिया हो जाता है और बहुत दिनों तक रहता है तो फिर आगे हेपेटाइटिस होने की आशंका है।
0: हेपेटाइटिस का मतलब वही है कि लिवर में स्वेलिंग है और किसी कारण से है।
1: अगर लाइलाज रह गया ठीक से, मान लीजिए किसी ने आराम नहीं किया ज्यादा, उसी ठीक होगा नहीं, फिर वो हेपेटाइटिस बी या सी हो सकता है।
0: हाँ, ऐसा होता है कि हेपेटाइटिस बी या सी जो होता है या ए और ई, ये शुरू से ही वो इन्फेक्शन होता है।
1: अच्छा अच्छा।
0: इसमें ए और ई अपने आप ठीक होने वाले इन्फेक्शन है, बी और सी थोड़े फर्क है। पहली बात तो यह है कि उनके होने का तरीका फर्क है।
1: अच्छा,
0: जैसे ए और ई भोजन और पानी से होते हैं, उसके विपरीत जो बी और सी हैं ये ब्लड से फैलते हैं। जैसे इन्फेक्टेड सुई से इंजेक्शन लगवाया या इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा दिया या किसी बी और सी से इन्फेक्टेड व्यक्ति के निकट शारीरिक संपर्क में आए या अगर कोई इन्फेक्टेड मदर है उसका जब बच्चे का जन्म हुआ तो उस बच्चे को वो हेपेटाइटिस बी और सी हो सकते हैं।
1: तो काफी ये सीरियस माना जाता है क्योंकि ये जानलेवा भी हो सकता है।
0: हाँ, हेपेटाइटिस बी और सी थोड़े सीरियस होते हैं।
1: अच्छा अच्छा।
0: उनके इलाज का तरीका अलग है। हेपेटाइटिस बी में तो बहुत से मरीज अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन तब भी उसका नियम ये होता है कि उसमें 3 महीने के बाद अगर पीलिया ठीक नहीं हुआ तो उसमें फिर जांच करा के देखते हैं कि उसका वायरस एक्टिव है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उसमें विशेष दवाइयां देनी होती हैं। हेपेटाइटिस सी का केस थोड़ा अलग है।
1: अच्छा।
0: हेपेटाइटिस सी में कई बार क्या होता है कि हेपेटाइटिस बहुत हल्की होती है, मिस हो जाती है, या हेपेटाइटिस होती ही नहीं है और इन्फेक्शन अंदर अंदर बढ़ता रहता है और लिवर को खराब कर देता है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि कभी थोड़ा सा भी शक हो हेपेटाइटिस का तो प्रॉपर जांच करा के, जिसमें हेपेटाइटिस बी और सी की जांच जरूरी है, अगर वो निकलता है तो उसका इलाज करना चाहिए। हेपेटाइटिस सी करीब करीब पूरी तरह क्योरेबल है अगर समय से इलाज मिल जाए। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि आजकल हम लोगों की जो हेल्थ पॉलिसी है जो सरकार की,
1: जी,
0: उसमें इन दवाओं का मुफ्त इलाज भी उपलब्ध है।
1: अच्छा अच्छा। इसमें जैसा कि आपने कहा कि थोड़ा सा भी इस तरह का शक हो तो किन लक्षणों से पता करें हम कि हाँ हेपेटाइटिस सी हो सकता है तो हम जांच करवाने जाएं?
0: हेपेटाइटिस सी का अलग लक्षण कोई नहीं होता। हेपेटाइटिस की तो कॉमन लक्षण है, जैसे भूख कम लगना और ये उल्टी सी आना, पेट में दर्द होना, पेशाब पीला होना, और इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि कभी अगर हम कोई कॉमन जांच कराते हैं, किसी और कारण से जांच कराते हैं, उसमें अगर ब्लड टेस्ट में ये शक होता है कि पीलिया हो सकता है या लिवर में स्वेलिंग हो सकती है, तो उस समय हेपेटाइटिस सी की जांच भी करा लें जिससे कि वो मिस ना हो।
1: जी जी। अच्छा, इसका इलाज कितने दिनों तक चलता है, क्या करना?
0: हेपेटाइटिस सी का इलाज करीब 6 महीने तक एंटीवायरल दवाएं होती हैं विशेष वो दी जाती हैं। और हेपेटाइटिस बी का अगर इलाज करना पड़ता है, अगर वायरस मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उसमें लगभग जीवन पर्यंत दवाएं खानी पड़ सकती हैं।
1: अच्छा।
0: क्योंकि वो वायरस दवा से मरता नहीं है, केवल दवा से दब जाता है, सप्रेस हो जाता है, तो उसको लगातार लेते रहने से वायरस दबा रहता है। हम दवा छोड़ते हैं तो वायरस फिर सक्रिय हो सकता है। बहुत थोड़ी, एक दवा, एक गोली रोज की खानी होती है, जिसको लगातार खाते रहें, उसमें साइड इफेक्ट भी नहीं होता है, उसे खा सकते हैं।
1: तो उसका मतलब हेपेटाइटिस बी है ये वायरस जनित जो है और जानलेवा भी हो सकता है, सी के मुकाबले ये ज्यादा खतरनाक है।
0: सी भी खतरनाक है क्योंकि सी अगर लगातार वायरस अंदर शरीर में पड़ा रहता है तो उसके कारण लिवर की सिरोसिस और कभी कभी लिवर कैंसर भी हो सकता है।
1: अच्छा,
0: इसलिए उसको भी हल्के में नहीं लेना चाहिए।
1: अब ये बात आती है कि इसकी जो जांच है, जैसा कि आपने कहा कि जांच करानी चाहिए, तो कैसे होती है, किन के माध्यम से होती है?
0: 2-3 बहुत सामान्य सी जांच है। जब हमको हेपेटाइटिस का शक होता है तो बहुत ज्यादा जांचों की शुरू में आवश्यकता नहीं होती है। लक्षणों के आधार पर काफी कुछ पक्का होता है कि मरीज को हेपेटाइटिस है।
1: जी।
0: उसमें हम सबसे पहले सीरम बिलिरुबिन और SGPT ये 2 जांचें कराते हैं जिनसे हमें हेपेटाइटिस है ये कन्फर्म हो जाता है और वो बढ़ रही है। जैसे शुरू में हमने जांच कराई, बिलिरुबिन 4 या 5 आया, एक हफ्ते बाद जांच कराई 10 या 12 आया, तो मालूम पड़ता है कि पीलिया बढ़ रहा है। ऐसे इसके अलावा ये आवश्यक है, कि हेपेटाइटिस बी और सी की जांच भी उस समय करा लें। हेपेटाइटिस ए और ई की जांचें महंगी होती हैं और क्योंकि ये बीमारियां अपने आप ठीक होने वाली हैं इसलिए उनको शुरू में नहीं कराते हैं।
1: अच्छा।
0: किसी पेशेंट में अगर बहुत कंफ्यूजन हो तभी कराते हैं। इसके अलावा अगर किसी

0: प्रकार के पीलिया का संदेह हो,
1: जी जी
0: जैसे कुछ और इन्फेक्शन होते हैं। बरसात के मौसम में एक लेप्टोस्पायरोसिस नाम का इन्फेक्शन होता है।
1: अच्छा,
0: और भी कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं वायरल या बैक्टीरियल जिनमें लिवर में इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर शक होता हो लक्षणों के आधार पर तो उनका टेस्ट भी करा लेते हैं। और अगर ये शक होता है कि लिवर के अंदर कोई और बीमारी या कोई रुकावट या कोई कैंसर या कोई पथरी हो सकती है तो अल्ट्रासाउंड करा के उसकी जांच करा लेते हैं।
1: जी जी और जैसा कि आपने बताया कि कुछ दवाओं से और शराब के सेवन से भी हेपेटाइटिस हो सकता है, तो इस पे कुछ जानकारी।
0: शराब के अधिक सेवन से
1: जी जी
0: लिवर को नुकसान होता है, ये सब लोग जानते हैं।
1: हम्म,
0: ये नुकसान कभी कभी हल्का सा होता है, जैसे फैटी लिवर का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा।
1: जी जी जी
0: वो शराब के सेवन से बहुत होता है। लेकिन अगर उससे ज्यादा शराब का सेवन किया जाए तो उससे लिवर में सूजन यानी कि हेपेटाइटिस भी हो सकती है।
1: अच्छा,
0: और वो हेपेटाइटिस कभी कभी बहुत अधिक और जानलेवा हो सकती है। और अगर शराब का सेवन बंद ना किया जाए तो वो बिल्कुल जानलेवा हो ही जाती है। इसके अलावा कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिन दवाओं से लिवर में इन्फ्लेमेशन यानी कि स्वेलिंग हो सकती है।
1: जी।
0: सबसे कॉमन है टीबी की दवाएं।
1: अच्छा।
0: टीबी की दवाएं खाने वाले 100 में से 1 या 2 लोगों को लिवर पे असर होता है, जो शुरू के 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में ही हो जाता है। इसलिए टीबी की दवाएं खाने वाले मरीज जब भी बताते हैं कि उनको उल्टियां हो रही हैं या पेशाब ज्यादा पीला हो रहा है या उनको पेट में दर्द या भूख न लगना ऐसी परेशानी हो रही है तो उनकी जांच करा के देखते हैं। अगर उनके अंदर उस समय ऐसे लक्षण मिलते हैं तो टीबी की दवाओं को कुछ थोड़ा कम करके और बदल के देना होता है। टीबी की दवाओं को रोकते नहीं है क्योंकि उसका इलाज भी जरूरी है,
1: वरना
0: टीबी कैसे ठीक होगी। लेकिन दवाओं को कुछ मॉडिफाई करना होता है। शराब के लिए बहुत जरूरी है, अगर शराब से परेशानी हो रही है तो उसको रोकना बिल्कुल जरूरी है। अगर मरीज शराब पीना बिल्कुल बंद नहीं करता तो उसकी मृत्यु निश्चित है।
1: जी जी। और प्रोग्राम के आखिर पल आ चुके हैं और उसमें हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को अगर आप कोई संदेश देना चाहें।
0: मेरा कहना यह है कि हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है
1: जी
0: जो लापरवाही करने से जानलेवा हो सकती है और सावधानी रखने से ये बिल्कुल बचाव वाली भी है, प्रिवेंटेबल भी है और क्यूरेबल भी है।
1: जी।
0: इसलिए इसमें थोड़ी सावधानी रखना चाहिए। जो हेपेटाइटिस ए और ई हैं उनसे बचने के लिए हम बाजार में बिकने वाली खुली चीजें ना खाएं, पानी को उबाल कर पिएं। अगर बाहर कुछ खाना पड़े मजबूरी में तो तुरंत की सिकी हुई या तेज गर्म चीजें ही खाएं जिनसे इन्फेक्शन का डर ना हो।
1: जी। टैटू का भी चलन है।
0: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आजकल युवाओं में टैटू का बहुत क्रेज है और टैटू गोदने वाले लोग वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स को ठीक से स्टरलाइज नहीं करते हैं, तो उससे बचना चाहिए। इसके अलावा मेरा पर्सनल सबसे रिक्वेस्ट है
1: जी
0: कि झाड़ फूंक से बिल्कुल बचें, झाड़ फूंक से कोई फायदा नहीं होता और देसी और हर्बल दवाओं का प्रयोग पीलिया में फायदा नहीं करता है, इनको अनावश्यक रूप से ना खाएं।
1: जी जी। इसमें टीका लगवाना कारगर है?
0: हेपेटाइटिस बी का टीका आता है
1: जी जी,
0: बहुत इफेक्टिव है
1: जी जी,
0: सबको लगवाना चाहिए,
1: सबको लगवाना चाहिए।
0: हेपेटाइटिस ए का टीका भी उपलब्ध है जो बचपन में ही लगवा लेना चाहिए
1: जी जी,
0: थोड़ा महंगा है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। और हेपेटाइटिस ए की खास बात यह है कि वो बच्चों में अधिक होती है, तो बचपन में अगर टीका लगवा लें तो संभावना उसकी बहुत कम हो जाती है।
1: जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो श्रोता हमें सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब ने जो हेपेटाइटिस के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी उससे जरूर लाभान्वित होंगे और सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे और हेपेटाइटिस से बचे रहेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आकाशवाणी आए और इतनी सहज और सरल स्पष्ट भाषा में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: मेरी ओर से भी सबका बहुत धन्यवाद और नमस्कार।
2: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सेहतनामा। इस कार्यक्रम में आज मेहमान थे डॉक्टर शरद अग्रवाल, आपसे बच कर रहे थे मिथिलेश योगेंद्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से प्रसारित किया गया।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा,
4: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
3: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
5: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो,
2: कहाँ
5: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव,
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
9: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार।

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में हुए शामिल। कहा, डबल इंजन की सरकार ने बिना भेदभाव हर वर्ग को दिया योजनाओं का लाभ। लखनऊ दौरे के दूसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एनडीए के सहयोगी दलों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ की बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर की चर्चा। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ की सहायता राशि की जारी। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में जिला कारागार में 5 आरोपियों से फिर हुई पूछताछ। कल मंदिर ट्रस्ट की बैठक में महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर होगा फैसला। और प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने 8 से 10 जुलाई के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में वर्षा का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर वर्ग को बिना भेदभाव के पहुंचाया गया है और डबल इंजन सरकार विकासोन्मुखी और जन कल्याणकारी कार्य निरंतर कर रही है।
1: आज जो विकास दिखाई दे रहा है, आज जो सुरक्षा का मॉडल है, आज जो सुशासन का मॉडल है, और जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार समाज के प्रत्येक तबके के लिए, क्या वो युवा हो, क्या वह आधी आबादी बहन और बेटियों के स्वावलंबन और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, क्या वह अन्नदाता किसान हो या गरीबों तक शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाने का कार्य बिना रुके हुए, बिना डिगे हुए, बिना झुके हुए, बिना थके हुए निरंतर पहुंचाने का कार्य कर रही है।
0: इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ये खूबी है कि यहाँ जो कार्यकर्ता बूथ पर काम करता है, जो शक्ति केंद्र में काम करता है, वो पार्टी के शीर्ष स्थान पर पहुंच सकता है। श्री नवीन ने कहा कि विगत समय में जिन विषयों को लेकर पूरी दुनिया में अस्थिरता रही, फिर भी हमारा नेतृत्व सजग रूप से जनता की चिंता करता रहा।
2: पिछले समय में जिन विषयों को लेकर पूरे विश्व में विक अस्थिरता रही, फिर भी हमारा नेतृत्व सजग रूप से हमारे लोगों की चिंता करता रहा। वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भी हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता को कोई तकलीफ नहीं होने दिया। हमने ये चिंता की कि विश्व में कोई भी देश किसी भी प्रकार से काम करे, भारत की राजनीतिक और डिप्लोमेटिक राजनीति हमेशा सबको लेकर साथ चलने की रही।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लखनऊ में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पूर्व अध्यक्षों और एनडीए के सहयोगी दलों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। उन्होंने दावा किया कि 2027 में प्रचंड बहुमत से लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी। मीडिया से बात करते हुए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने सेवा और विकास के एजेंडे पर जोर दिया। सहयोगी दलों की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए अपना दल एसके उपाध्यक्ष और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने बताया कि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ गठबंधन सहयोगियों के बीच समन्वय को लेकर खास तौर पर बात की गई।
3: विशेष रूप से जो समन्वय का कार्य कैसे, उस पर चर्चा हुई है। और मैं इतना जरूर कहूंगा आपको कि एनडीए की इस जीत में अपना दल ने हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और आगे भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी।
0: केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण BBGRAMJI अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता जताई है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने कहा कि जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो, ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के सभी गाँवों को समृद्ध और विकसित बनाना है।
4: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2

0: साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच तेज हो गई है। मामले के विवेचक ने आज जिला कारागार में 8 आरोपियों में से 5 से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। पेश है एक रिपोर्ट।
2: राम मंदिर दान घोटाला मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है। मामले में सीओ अयोध्या और विवेचक आशुतोष तिवारी जिला कारागार पहुंचे, जहां उन्होंने 5 आरोपियों लोकेश मिश्रा, रामशंकर यादव और टिन्नू, मनीष यादव, करुणेश पांडे और अनुकल्प मिश्रा से विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की। वहीं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कल होने वाली अहम बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बैठक में दान घोटाला प्रकरण के साथ चंपत राय और अनिल मिश्रा के त्याग पत्र पर विचार किया जाएगा। ट्रस्ट के सदस्य राम मंदिर के व्यवस्था सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन कर आगे की रणनीति तय करेंगे। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: गन्ना किसानों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से कल से 11 जुलाई तक प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियों द्वारा विशेष सुरक्षा जागरूकता और नामांकन महाअभियान संचालित किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियां इस अभियान की मुख्य नायक के रूप में कार्य करेंगी। समितियां अब सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रचार प्रसार, जागरूकता, नामांकन तथा लाभार्थियों तक योजनाओं की पहुंच में अग्रणी भूमिका निभाएंगी। समितियां केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने वाली प्रभावी संस्थागत व्यवस्था के रूप में स्थापित होंगी। अभियान के माध्यम से किसानों और उनके परिवारों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना सहित केंद्र सरकार की विभिन्न सामाजिक योजनाओं से जोड़ते हुए आर्थिक सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और भविष्य की सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित की जाएगी। अभियान के दौरान सभी समिति परिसरों में बैंकों, इफको, चीनी मिलों और अन्य सहयोगी संस्थाओं के संयुक्त सहयोग से विशेष सहायता और नामांकन काउंटर स्थापित किए जाएंगे। ये अभियान विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को गति देने के साथ साथ किसानों के समग्र कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
1: उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में समापन हो गया। इस अवसर पर प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और यूपी के आमों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि प्रदेश का आम वर्तमान में 30 से अधिक देशों में निर्यात किया जा रहा है और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के शुरू होने से निर्यात को और बढ़ावा मिलेगा। श्री सिंह ने समापन समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया और महोत्सव में 1,501 प्रतिभागियों ने 3,032 आम के नमूने प्रदर्शित किए। विभिन्न श्रेणियों में 147 पुरस्कार प्रदान किए गए। केंद्र सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। प्रदेश में मॉनसून आने के बाद से बारिश का सिलसिला जारी है। आज राजधानी लखनऊ समेत गाजियाबाद, हापुड़, जालौन, प्रयागराज, बलिया और जौनपुर सहित 10 शहरों में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के अधिकांश हिस्सों में आगामी 8 से 10 जुलाई के बीच गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में हुए शामिल। कहा, डबल इंजन की सरकार ने बिना भेदभाव हर वर्ग को दिया योजनाओं का लाभ। लखनऊ दौरे के दूसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एनडीए के सहयोगी दलों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ की बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर की चर्चा। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ की सहायता राशि की जारी। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा

0: प्रकरण में जिला कारागार में 5 आरोपियों से फिर हुई पूछताछ। कल मंदिर ट्रस्ट की बैठक में महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर होगा फैसला। और प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने 8 से 10 जुलाई के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में वर्षा का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
2: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
3: सुगंध क्या हो रहा है?
4: बिल हो रहा है।
3: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
5: RBI कहता है अपना पिन OTP CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर, और अब आपको जोड़ रहे हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। सुनवाते हैं ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच जो खेला जा रहा है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य।

हथ गोले दागते गए। आपसी गुत्थम गुत्था में वाधवा और उनके साथियों ने कई दुश्मन सैनिकों को अपनी संगीन का भी निशाना बनाया और एक को जिंदा पकड़ लिया। अपने असलाहों का जखीरा वहीं छोड़ दुश्मन जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। अब तक इस चौकी पर वाधवा और उनके सैनिकों का कब्जा हो चुका था।

0: भारतीय सेना की इस पोस्ट पर कब्जा करने का बेइलाज सपना लिए शत्रु धीरे धीरे इसी चौकी की तरफ फिर रेंगने लगा। 10 दिसंबर की आधी रात का सन्नाटा था कि अचानक फिर वीराने में गोलियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। वाधवा ने समझ लिया कि वो शत्रु बाज क्यों कर आएगा, इनके इरादों को एक बार फिर नाकाम करने की सौगंध उठाए। कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा ने अपने लक्ष्य पर निशाना साधते हुए बेहिसाब फायरिंग के बीच अपने जख्मों की परवाह किए बिना दुश्मनों पर सिंह की तरह टूट पड़े। हैंड ग्रेनेड और ऑटोमेटिक मशीन गन्स से निकलती गोलियों को दुश्मनों पर फुर्ती से दागना शुरू किया। इधर बारूदी माइंस के फटने से और दुश्मनों की फायरिंग में कुछ भारतीय सैनिक साथियों की भी शहादत हुई।
1: है सरफरोशी की तमन्ना।

पर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं लंकार से, और भड़केगा जो शोला सा।

0: कला, होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको ना, दूर रह पाए जो हमसे कम कहां मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
1: अब तक कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा ने दुश्मन की बलोच रेजिमेंट के 9 और सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया और बाकी बचे अपने सैनिकों को हिफाजत से लेते हुए लगभग पूरी चौकी पर पुनः कब्जा कर लिया। इस बात की तसल्ली की कि अब मंजिले मकसूद को हासिल किया जा चुका है। दुश्मन राजा मोहतम चौकी से भागने की अफरा तफरी में हलाक होता रहा और कुछ बचे दुश्मनों ने मौत पक्की समझ बची चंद गोलियों को खंगाला और हमला करते रहे। वाधवा खाई के एक किनारे से दूसरे किनारे अपने साथियों के साथ वहीं डटे रहे कि कोई शत्रु अब भी मौके की ताक में शायद कहीं घात लगाकर बैठा हो। जिस्म लहूलुहान, आंखों में फतेह का तिरंगा लहराता था। मातृभूमि की माटी को तन में लपेटे इस अजीम व शान वतन को महफूज रखने की वो कसम जो एक बार फिर पूरी हुई। कुछ ऐसा ही नजारा था, कुछ ऐसा ही सपना फिर एक बार सच होता नजर आया। ये सोचते हुए एक फौजी के फर्ज पर आगे बढ़ते रहे कि तभी खाई में बिछाई गई बारूदी सुरंग में एक जोरदार धमाका हुआ और आर के वाधवा के जिस्म को लहूलुहान कर गया। मां भारती के इस शेर दिल सिपाही ने अपनी सांसों को थाम मादरे वतन की इस मिट्टी को सिजदा किया। आंखों में जीत का तिरंगा लहराता रहा, होठों पर फिर एक बार मुस्कुराहट बिखर गई। साथ ही सैनिकों ने अपने जांबाज अफसर को तुरंत सहारा दिया, उन्हें फरीदकोट दाखिल करवाया गया जहां भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जांबाज कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा ने 11 दिसंबर को आखिरी सांसें ली और मातृभूमि की रक्षा में जीत का परचम लहराते हुए देश के लिए शहीद हो गए।
2: उस

एक और ऐतिहासिक जंग भारत के नाम रही। फौजी साथियों, सन 1971 की जंग में फिरोजपुर की राजा मोहतम चौकी पर पुनः कब्जा करने, इस इलाके में फतह हासिल करने, कुशल नेतृत्व, दृढ़ संकल्प, अद्वितीय रणकौशल, अदम्य साहस और अतुलनीय बलिदान के लिए सीमा सुरक्षा बल के जांबाज अफसर असिस्टेंट कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की शौर्य गाथा की इस कड़ी में आपने सुनी महावीर चक्र से सम्मानित बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जाबाज सिपाही असिस्टेंट कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा की शौर्य गाथा। शोध आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इंद्रधनुष में साज और आवाज। इसमें आज आप सुनेंगे प्रतिज्ञा सेन और सुमित भौमिक की पियानो और वायलिन पर बजाई फिल्मी धुनें। आज की फिल्में हैं सिलसिला और मुकद्दर का सिकंदर।

आशा भोसले के गाए मुकद्दर का सिकंदर फिल्म के गाने के साथ ही साज और आवाज कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: आज के हवा महल में प्रस्तुत है हरि मेहरा की लिखी नाटिका बहादुर की शादी, निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर।
1: बहादुर, अबे ओ बहादुर के बच्चे।
2: जी साहब, गुड मॉर्निंग साहब।
1: अबे गुड मॉर्निंग के लगते अलार्म बंद कर, ये आज अलार्म क्यों लगाया है? आज इतवार है और तुझे मालूम है छुट्टी के दिन मैं इतनी जल्दी नहीं उठता।
2: वो तो मालूम है साहब, पर आज शाम को भी तो जल्दी तैयार होना है।
1: वो किस खुशी में?
2: साहब खुशी की तो बात है ही, हमने आपको कितने दिन पहले से बताया था साहब, आज लड़की वाले आपसे मिलने आएंगे।
1: लड़की वाले? किसकी लड़की? कैसी लड़की? मुझे किसी लड़की वड़की से नहीं मिलना।
2: लड़की से नहीं साहब, लड़की के बाप से।
1: किसका बाप? लगता है रात ज्यादा चढ़ा ली, जो नाप शनाप बके चला जा रहा है। चल दवा हो जाए यहाँ से और सोने दे मुझे।
2: क्या है साहब, आप भी हमारी बेइज्जती खराब करना चाहते हैं साहब? हमारी इज्जत का सवाल है साहब, वो लोग ठीक 10 बजे आ जाएंगे और अभी हमें आपको नाश्ता देकर हजामत बनवाने जाना है साहब।

0: स्नान भी करना है और तैयार भी होना है।
1: वही बक बक बक बक बक बक कर रहे हो। ओफो, किस जंगली से पाला पड़ा है। कहा ना मुझे अभी नाश्ता नहीं करना, तुम जाओ अपनी हजामत कराओ और मुझे सोने दो।
0: पर साहब आपको भी तो टाइम पर रेडी होना है साहब, और वो लोग आपको मिलने आते हैं साहब।
1: कौन लोग? मुझे कोई नहीं मिलने मिलने आ रहा।
0: साहब जी आप सब कुछ भूल गया। साहब वो लोग हमारी शादी के वास्ते आपसे बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे साहब? हमारा और कौन है साहब इधर? आप ही तो है हमारा माई बाप साहब, भाई बंधु आप ही तो है, और 10 बरस से आपके साथ हैं हम साहब।
1: ठीक है ठीक है, देखो अभी सिर्फ 7 ही बजे हैं, बहुत वक्त है। हाँ, मैं वक्त पर तैयार हो जाऊंगा। तुम दबा हो जाओ यहाँ से, जाओ बैठा।
0: साहब जी
1: हा? तुम अभी तक यही हो
0: साहब?
1: क्या है
0: साहब, वो रीता मैम साहब आज भी आएंगी।
1: हाँ, पर ये बेहुदा सवाल किस लिए?
0: नहीं साहब, आप उनको फोन कर दो साहब, आज वो थोड़ा देर से आएंगी।
1: क्यों?
0: वो साहब इसलिए कि हमने लड़की वालों को बोला है कि हमारे साहब का अभी शादी नहीं बना।
1: ठीक ही तो बोला है।
0: तो वो यही तो गड़बड़ है साहब, अगर वो लोग रीटा मेम साहब को यहाँ देखेंगे तो क्या समझेंगे? तो
1: उनके समझने ना समझने से क्या होता है?
0: सब कुछ होता है साहब, सब कुछ होता है। हम आपको कितनी बार बोला है साहब कि तुम लोग अपनी शादी बना लो, अब हमारी मुसीबत हो जाएगी साहब।
1: हमारी शादी हो या ना हो उससे तुम्हारी कैसे मुसीबत हो जाएगी?
0: वो लोग ठहरे सीधे साधे पहाड़ी आदमी साहब, वो बड़े लोगों की बात नहीं समझते। हमारे मुल्क में शादी के बिना लड़की किसी के घर में नहीं जाती। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ साहब, तुम साहब उनको मैम साहब को फोन कर दो।
1: वो बकवास बंद करो, सोने दो मुझे, गेट आउट।
0: हाँ साहब, हम तो गेट आउट होता है साहब, पर आप जरा सोने से पहले हमारी बात कुछ जरा थोड़ा गौर करो साहब।
2: बहादुर, अरे भाई बहादुर, दरवाजा खोलो यार।
1: लगता है कोई लंबी चौड़ी हजामत कराने गया है।
2: क्या मुसीबत है?
1: अरे रीटा तुम क्या बचा है?
3: डार्लिंग तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, लेकिन अचानक ये सवाल क्यों? और फिर तुम, मेरा मतलब मैं तो तुम्हें 10 बजे से पहले एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था।
3: थैंक गॉड, मैं तो डर गई थी। बहादुर ने फोन किया, शाबाश देर से उठेगा, शो मेम साहब तुम भी देर से आना। मैंने पूछा क्या बात है तो बोला साहब की तबीयत रात को जरा ठीक नहीं थी इसलिए देर से आंख लगी है। कहाँ है बहादुर? मुझे तो डरा दिया उसने।
1: क्या बजा? 9:30। अरे वो लोग 10 बजे आएंगे।
3: कौन लोग? तुम्हें मालूम था डार्लिंग, आज हमारा सारा दिन बाहर रहने का प्रोग्राम है, फिर तुमने 10 बजे का अपॉइंटमेंट किसे दे दिया?
1: भाई मैंने नहीं, बहादुर ने।
3: बहादुर ने? ये बहादुर आज को मिस्टीरियस फिगर बन रहा है। देखो अनिल डार्लिंग, अब ज्यादा परेशान ना करो, हमारा संडे सब स्पॉइल हो जाएगा। तुम जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ, मैं चाय लाती हूँ और 10 बजे से पहले ही रखो चाय।
1: नहीं नहीं, अरे अरे भाई सुनो तो, ऐसा नहीं हो सकता।
3: क्या?
1: किसी की इज्जत का सवाल है, तुम नहीं जानती।
3: मैं सब जानती हूँ, यू गेट रेडी एंड नो मोर एक्सक्यूजेस, ओके? खूब तमाशा है, देखा मैं कब से कह रही हूँ लेट्स गेट मैरिड। लेकिन जनाब को तो पहले प्रमोशन चाहिए, फिर बड़ा फ्लैट चाहिए, स्कूटी के बजाय कार चाहिए, और मेरे ख्याल से होने वाले बच्चे के लिए किसी स्कूल में जगह का बंदोबस्त भी पहले से ही हो जाना चाहिए। हुँ? क्यों?
1: अरे भाई इसमें हंसने की क्या बात है? दिस इज कॉल्ड प्री प्लानिंग। हमारी शादी और बहादुर की शादी में बहुत फर्क है। बहादुर आ गया लगता है।
3: हाँ।
1: बहादुर, बहादुर
4: आया साहब, आया साहब।
0: ओ मेम साहब आप भी आ गया।
3: वाह बहादुर, तुम तो आज बड़े टिप टॉप हो, क्या बात है?
0: हम साहब वो आज।
3: घबराने की कोई बात नहीं बहादुर, मुझे साहब ने सब कुछ बता दिया है।
0: सब कुछ बता दिया?
3: हाँ हाँ, डरो नहीं, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगी। जैसे ही वो लोग आएंगे मैं दूसरे कमरे में चली जाऊंगी, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो।
0: नहीं नहीं मेम साहब, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम इधर ही बैठना, हम सब कुछ संभाल लेगा। साहब वो लोग आ गए साहब, हम हाथ जोड़ता है साहब, आप हमारा इज्जत का ख्याल रखना साहब।
1: आइए आइए, तशरीफ लाइए।
5: सलाम साहब जी, सलाम साहब जी।
1: सलाम सलाम, बैठिए। अरे अरे नीचे नहीं,
5: नहीं साहब,
1: यहाँ यहाँ कुर्सी पर बैठिए।
5: अरे नहीं साहब, हम लोग नीचे ही ठीक है साहब।
1: ये कैसे हो सकता है, आप हमारे मेहमान हैं।
5: अच्छा लक्ष्मी, तुम इसी कुर्सी पर बैठ जाओ साहब जी, ये हमारा घर वाले।

0: साहब, हमारा लड़की की माँ है साहब, ये बहुत शर्माता है साहब, बहुत शर्माता है। अरे मैं शर्माती रहोगी हीरा साहब को सलाम भी करोगी? सलाम करो।
1: सलाम साहब। सलाम मैम साहब। बहादुर, ये तुम्हारी मालकिन है, तुम तो बोला था कि तुम्हारे साहब ने भी शादी नहीं बनाया।
2: ये ठीक ही कहा था बहादुर ने आपसे, हमारी अभी शादी नहीं हुई पर एंगेजमेंट, मेरा मतलब है सगाई हो चुकी है।
0: मैम साहब शादी से पहले ही इसी घर में रहती हैं?
1: जी नहीं, मैं हॉस्टल में रहती हूँ।
0: होटल में साहब?
1: होटल नहीं, हॉस्टल, जहाँ सिर्फ लड़कियाँ रहती हैं। शादी के बाद मैं इसी घर में रहूंगी। नहीं नहीं नहीं, इस घर में नहीं साहब, इससे भी बड़ा घर लेंगे तब।
2: ये सब बातें इनसे करने की क्या जरूरत है? ये लोग बहादुर के रिश्ते के लिए आए हैं, हमारी शादी तय करने के लिए नहीं। बहादुर भाई, इन लोगों के लिए कुछ खाने पीने के लिए तो लाओ।
3: मैं अभी लाता हूँ साहब।
1: ठहरो बहादुर, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ।
2: आप लोग ठंडा लेंगे या गरम?
0: नहीं साहब नहीं, हम बिल्कुल नहीं साहब, हम लड़की वाले हैं साहब, हम आपका पानी तो क्या उसमें नहा भी नहीं सकते साहब।
2: अरे भाई ये सब पुरानी बातें हैं, ये घर बहादुर के माँ बाप का तो है नहीं, आप यहाँ कुछ भी खा पी सकते हैं।
1: ए जी, बहादुर तो बोलता था कि साहब इसके माई बाप सब कुछ है, पर साहब तो कुछ और ही बोलते हैं।
2: नहीं नहीं नहीं, आप लोग गलत ना समझिए, मेरा मतलब था कि अभी हमारी शादी थोड़ी हुई है। रीटा।
1: हाँ, तो आप लोग ठंडा लेंगे या गरम?
0: अच्छा साहब, आप बहुत मजबूर करता है तो दोनों ले लेंगे साहब, दोनों ले लेंगे।
1: चलो आप साहब से साफ साफ बात कर लो।
2: हैं? क्या बात करना चाहते हैं आप लोग? अगर बहादुर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि लड़का नहायत शरीफ, मेहनती और अच्छे घर का है। मेरे पास पिछले 10-12 बरस से है, इसका बाप मेरे बाप के पास काम करता था और हो सकता है कि इसका दादा मेरे दादा के पास रहा हो। और कुछ जानना चाहते हैं तो पूछिए।
0: नहीं साहब नहीं, बहादुर के बारे में तो हम साहब सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, उसका बाप हमारे गांव का है साहब।
2: तो फिर रुकावट किस बात की है, फौरन शादी कर डालिए। और हाँ बाय द वे, आपकी लड़की को बहादुर ने देखा तो है ना?
1: राम राम राम राम राम राम, क्या बोलते हैं साहब, शादी से पहले हम अपनी पार्वती को गैर मर्द को कैसे दिखाएंगे?
2: लेकिन लड़के लड़के को तो एक दूसरे को देख लेना चाहिए।
1: ना, ना, ना, ना।
2: इसमें हर्ज ही क्या है, शादी तो उन दोनों को करनी है ना।
0: अरे क्या बोलता है साहब, हमने भी अपनी लक्ष्मी को शादी के बाद ही देखा था साहब।
2: वो तो नजर आ ही रहा।
0: क्या मतलब साहब?
2: नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब ये था कि अब जमाना बदल गया है।
0: कुछ अदला बदला नहीं साहब, कुछ अदला बदला नहीं, दरअसल आदमी लोग बहुत बेशरम हो गया है साहब। हमारी पार्वती बहुत सुंदर है साहब, कोई नुकश नहीं, हाँ घर का सब काम काज जानती है, खेती में काम करती है साहब, एक घर का चूल्हा चक्की।
2: खुशी की बात है ये तो। अब ये बताइए शादी कब करना चाहते हैं आप लोग?
0: शादी की बात भी हो जाएगा साहब, पहले एक बात का फैसला हो जाना चाहिए साहब।
2: हाँ हाँ, क्या बात है?
0: तुम्हारी बात का साहब।
2: भाई मुझे कोई एतराज नहीं, बहादुर को रिश्ता पसंद है तो मैं कौन होता हूँ मना करने वाला।
0: नहीं साहब नहीं, बात ये साहब के, बात ये कि
1: मैं जी तो बोलते क्यों नहीं, इसमें संकोच की क्या बात है, अजी पार्वती की जिंदगी का सवाल है, बोल दो साहब को, साफ साफ सब बात कर दो।
0: चल तू बोल दे साफ साफ।
2: देखिए अगर कुछ लेने देने की या दान दहेज की बात है तो वो आप लोग बहादुर से ही फैसला कर लीजिए।
0: नहीं साहब नहीं, दान दहेज लेने देने पर हम तो थूक दे साहब। हाँ ये फैसला तो आपको करना है साहब।
2: मुझको?
0: जी
2: बोलिए बोलिए, क्या फैसला करना चाहते हैं
1: साहब? आप शादी कब करेंगे?
2: भाई मैंने तो आपको पहले ही से कह दिया था ये सारी बातें आप बहादुर से ही करें।
0: तुम्हारी शादी का बहादुर थोड़ी फैसला करेगा साहब।
2: मेरी शादी? क्या मतलब?
0: मतलब ये साहब कि तुम अपना शादी कब करोगे, उसके माफे की हम बहादुर और पार्वती की शादी का दिन निकालेंगे।
2: देखिए आप लोग हद से बढ़ रहे हैं, मैं शादी कब करूंगा, कैसे करूंगा, कहाँ करूंगा, ये सब पूछने वाले आप कौन होते हैं?
1: चलो जी अब बस बहुत हो गया, हमने तुमको पहले ही बोला था कि बहादुर को साहब बोल दो, साहब का शादी होगा तो पार्वती की शादी करेंगे। अपनी छोकरी को ऐसे घर में कैसे छोड़ दे, अपना भी कोई धर्म है।
0: ठीक कहती है ऋतु, बिल्कुल ठीक कहती है। अच्छा साहब माफी देना साहब, हमने आपका बहुत टाइम खराब किया साहब। चल लक्ष्मी।
3: क्या बात है साहब, ये लोग इतना गुस्सा में क्यों है साहब?
2: बहादुर तुम्हें पहले से इन लोगों से सब फैसला कर लेना था और फिर मेरे पास लाना था।
1: क्या फैसला करना है, मैं भी तो सुनूं।
0: बात ये मेम साहब की, मेरा
1: तो पीछे हटो, मेम साहब से हम बात करेंगे। हाँ तो मेम साहब, शादी के बाद हमारा छोकरी बहादुर के पास नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? ठीक, फिर तुम्हें बोलो, तुम्हारा और साहब का शादी अभी नहीं बना है, साहब अकेला है। मेम साहब हम पार्वती को ऐसे कैसे इधर रहने को छोड़ देगा? हाँ
4: बिल्कुल ठीक।
2: रीटा तुम भी क्या

0: कि हाँ में हाँ मिलाती जा रही हो। सब मुख्तसर ये कि ये चाहते हैं हम दोनों शादी कर ले पहले फिर बहादुर की शादी हो।
1: ये भी ठीक।
0: अरे व्हाट नॉनसेंस, हम अभी 10 बरस शादी नहीं करेंगे तो क्या बहादुर भी कुंवारा रहेगा?
1: कभी नहीं हो सकता।
0: क्या नहीं हो सकता?
1: यही कि बहादुर कुंवारा रहे, इसीलिए ये जरूरी है कि पहले हम दोनों शादी कर ले।
0: ये कोई जबरदस्ती है?
2: चलो लक्ष्मी। सलाम मैम साहब। सलाम साहब।
0: क्या मुसीबत है? दिस इज स्टेट ब्लैकमेल। ठहरिए ठहरिए आप लोग। आप लोग बहादुर की शादी की तैयारी करें, हम भी अपनी शादी का इंतजाम करते हैं।
3: ओह डार्लिंग, दैट्स द स्पिरिट।
2: थैंक यू शाह, थैंक यू। अब हम शांति से जा सकते हैं शाह। अच्छा बहादुर, शादी जब शाह का हो जाए तो हमको खबर देना।
1: अच्छा खबर नहीं, बल्कि आप सब लोगों को हमारी शादी में आना होगा।
2: जरूर आएंगे मैम शाह, जरूर आएंगे। अच्छा सलाम शाह। सलाम मैम शाह।
1: सलाम
2: शाह।
1: सलाम
2: मैम शाह।
0: बहादुर इन लोगों को लिफ्ट तक छोड़ा।
4: हाँ शाह, जाते हैं शाह।
1: Oh darling, I'm so happy. Let's celebrate in a grand style. चलो तुम भी तैयार हो जाओ और मैं भी।
0: Good idea. मैं बस गया और आया।
4: मीम छाप जी, छाप किधर गया?
1: अंदर कमरे में तैयार होने।
4: अच्छा?
1: वाह बहादुर, तुमने तो आज कमाल कर दिया।
4: ये शब्द तो मैंने आपके लिए किया मीम छाप। हाँ, हम शाब को रोज रोज समझाता था, शाब शादी कर लो, शाब शादी कर लो, पर अपने कभी सुनता ही नहीं था शाब तो, इसलिए ये ड्रामा हमने सोचा। ठीक था मेरे साहब?
1: अरे ठीक नहीं था बहादुर। अच्छा बहादुर, तुम इन दोनों को कहाँ से पकड़ लाए?
4: ये दोनों हमारे सास ससुर है मेम साहब। हाँ, अपने मुल्क से बुलाया इनको।
1: ओ, तुम्हारे होने वाले सास ससुर?
4: ओ नहीं नहीं नहीं, नहीं मेम साहब, हमारा शादी तो बचपन में ही हो गया था।
1: हाँ,
4: हाँ हम 10 बरस का था तब। अब तो हमारा गौना होने वाला मेम साहब। तब हम अपनी पार्वती को इधर बुलाएंगे।
3: क्या बात है, वाह बहादुर वाह। मैं तो तुम्हें बिल्कुल बुद्धू समझती थी, पर तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। इसी बात पर आज तुम्हें सारे दिन की छुट्टी और ये लो इनाम, और तुम भी मौज करो। हाँ
4: थैंक यू मेम साहब।

बहादुर की शादी, हरी मेहरा की लिखी नाटिका अभी आपने सुनी। निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। विविध भारती की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहला गाना हमने लिया है फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो से। इसे गाया है अरिजीत सिंह ने, गीत अमिताभ भट्टाचार्य का है, संगीत प्रीतम का।

आइए अब सुनते हैं नीरज श्रीधर और सुजैन टमैलो की आवाज में अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म का ये गाना। गीत इशात कामिल का है, संगीत प्रीतम का।

कार्यक्रम का अगला गीत बैग बॉय फिल्म से है। इसे गाया है अरिजीत सिंह और ज्योतिका तांगरी ने। गीत सोनिया कपूर रेशमिया का, संगीत हिमेश रेशमिया का।

0: तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: चित्रलोक का शेष भाग अंतराल के उस पार

अंतराल के बाद चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म लज्जा से। इसे गाया है के ने, गीत समीर का है, संगीत अनु मलिक का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर, दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से, और टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं

0: दर्ज की गई। शहर में पेड़ गिरने की दो अलग अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गडचिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ जाने से फंसे 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड़, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
4: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
1: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय

0: बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदेईदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थयात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है।

0: युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
1: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सॉल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्तानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज के साथ। फिल्म का नाम है तुम्हारे लिए। गीत लिखा है नक्शलालपुरी ने, संगीत जयदेव का है

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में स्वीकार किया मैंने फिल्म का ये गाना। गीत निदा फाजली ने लिखा है, संगीत से सवारा है उषा खन्ना ने।

कार्यक्रम का अगला गाना लता मंगेशकर की आवाज में है, फिल्म का नाम है कालीचरण, गीत इंद्रजीत सिंह तुलसिया का है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

आशा भोसले, दिलराज कौर और साथियों की आवाजों में सुनिए सत्ते पे सत्ता फिल्म का ये गाना। गीत गुलशन बावरा ने लिखा है, संगीत आर डी बर्मन का है।

आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में अदालत फिल्म का गाना। गीत गुलशन वावरा ने लिखा है, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुनाया जाता है, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, सुनने को थे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: आज के फनकार।

फिल्म शहनाई का ये गाना सुनकर आपने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया होगा कि आज के फनकार कार्यक्रम आज किस प्रतिभा पर केंद्रित है। लेकिन दरअसल इस गाने के जरिए अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो शायद आपका अंदाजा बहुत गलत होगा, क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम आज जिस हस्ती पर केंद्रित है उसका ताल्लुक इस गाने को लिखने वाले गीतकार से है, जो निर्देशक भी रहे, यानी कि पीएल संतोषी। लेकिन आज हम पीएल संतोषी की बात नहीं कर रहे, बल्कि उनके सुपुत्र राजकुमार संतोषी की बातें आज के फनकार कार्यक्रम में।

निर्माता, निर्देशक और गीतकार पीएल संतोषी के बेटे होने के बावजूद राजकुमार संतोषी का फिल्मों में सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने बहुत बुनियादी शुरुआत की गोविंद निहलानी की फिल्म अर्धसत्य के साथ। ये फिल्म सन 1982 में आई थी और राजकुमार संतोषी इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। जरा सोचिए कि बतौर स्वतंत्र निर्देशक अपना करियर शुरू करने में राजकुमार संतोषी को पूरे 8 साल लग गए। सन 1990 फिल्म आई घायल। सनी देओल की मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म एक गुस्सैल नौजवान की कहानी है जो व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करता है। राजकुमार संतोषी ने इस संवेदनशील कहानी का ताना बाना काफी चतुराई से बुना और उन्हें अपनी इस पहली ही निर्देशित फिल्म में काफी प्रशंसा मिली। सन 1990 में राजकुमार संतोषी को फिल्म घायल के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार।

दूसरी फिल्म में इसी तरह के किसी विषय को दोहराएं, लेकिन एक अच्छे निर्देशक की पहचान ये होती है कि वो अलग अलग विषयों में अपनी परीक्षा लेता है, अपने आप को आजमाता है। राजकुमार संतोषी ने अपनी दूसरी फिल्म घायल से बिल्कुल अलग विषय पर बनाई। ये फिल्म थी सन 1993 में आई दामिनी।

0: कामिनी के बाद राजकुमार संतोषी अगले ही बरस एक चौंका देने वाली फिल्म लेकर आए, क्योंकि उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो इस बार बनाएंगे एक कॉमेडी फिल्म। ये फिल्म थी अंदाज अपना अपना। ये वो दुर्लभ मौका था जबकि सलमान खान और आमिर खान एक साथ रजत पट पर नजर आए। अंदाज अपना अपना को आज भी एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म माना जाता है। इसके बाद राजकुमार संतोषी ने बनाई फिल्म बरसात। इस फिल्म को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन फिल्म बरसात के जरिए बॉबी देओल ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा।
1: हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है।
0: साल 1996 में घायल से मिलते जुलते विषय को लेकर उन्होंने बनाई फिल्म घातक। साल 1998

0: राजकुमार संतोषी की खासियत ये है कि वो हर बार एक अलग विषय लेकर आते हैं। एक निर्देशक के तौर पर वो हर बार अपनी परीक्षा लेते हैं, अपने आप को आजमाते हैं और अक्सर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब साबित होते हैं। साल 2000 में उनकी फिल्म पुकार को चारों तरफ बड़ी प्रशंसा मिली।
1: No!

0: फिल्म पुकार के बाद साल 2001 में वो लेकर आए महिलाओं से जुड़े विषय पर एक बड़ी ही प्रखर फिल्म लज्जा।
1: तंग न

इसके अगले ही साल राजकुमार संतोषी ने अपने करियर की एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बनाई। इसका नाम था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अजय देवगन इस फिल्म में शीर्ष

0: दे।
1: फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए राजकुमार संतोषी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद साल 2004 में उन्होंने बनाई फिल्म खाकी।

ये वो पहला मौका था जब अमिताभ बच्चन राजकुमार संतोषी के निर्देशन में पर्दे पर नजर आए। इसके बाद तो अमिताभ बच्चन को उन्होंने दोहराया अपनी अगली फिल्म फैमिली में। ये फिल्म साल 2006 में आई। साल 2008 में अजय देवगन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म आई हल्ला बोल।

साल 2009 में एक बार फिर से राजकुमार संतोषी ने एक नई धारा शुरू की। एक बिल्कुल अलग किस्म की कॉमेडी रोमांटिक फिल्म वो लेकर आए जिसका नाम था अजब प्रेम की गजब कहानी। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के अभिनय वाली ये फिल्म इस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में गिनी गई। संगीतकार थे प्रीतम।

0: आज के प्रसार कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्देशक राजकुमार संतोषी पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। बारिश के साथ जैसे छा गई है उदासी की धुंद, आसमान जैसे बरस रहा है, और दुनिया के जितने उदास लोग हैं यह आसमान उनका साथ दे रहा है, यह आसमान उनकी जबान में कह रहा है अपनी बातें। ये बारिश नहीं है, ये कुदरत का दुख है।

ये दुनिया, ये खंजर वाली दुनिया, ये पीठ फेरते ही हमला करने वाली दुनिया, उफ ये दुनिया, उफ इस दुनिया के धोखे।

कभी कभी यूं लगता है जैसे हम इस दुनिया का हिस्सा नहीं हैं, जैसे अनगिनत अनजान चेहरों वाली इस भीड़ भरी दुनिया में हम एक अजनबी हैं, एक अजनबी जिसे हर कोई धक्का मार रहा है, एक अजनबी जो इस संगदिल दुनिया में तलाश रहा है अपना ठौर।

कभी कभी तेज हवाएं चलती हैं और ये तेज हवाएं अपने साथ कुछ चीजें उड़ा कर ले जाती हैं, वो चीजें जिन्हें आप दिलो जान से चाहते हैं। तेज हवाएं खतरनाक हो सकती हैं, कभी कभी तेज हवाएं चलती हैं।

कहते हैं कि इंसान का चेहरा सब कुछ बयान करता है। कितने इंच की है सामने वाले की मुस्कान, वो आईना बन जाती है उसके दिल का। मुस्कान ही नहीं, आंसू भी बयां करते हैं दिल की हालत का।

शाम के सुरमई आसमान पर तुम्हारा ख्याल जैसे डूबता हुआ सूरज, इस ख्याल को भी सूरज की तरह डूब जाना है। शाम के इस सुरमई आसमान पर आखिरकार अंधेरा छा जाना है। शाम का ये सुरमई आसमान अंधेरे में डूबा हमारा दिल है।

0: आज के छाए गीत में थे मोहम्मद रफी के चंद उदास नगमे, फिल्मों के नाम
1: आपके पहलू में आकर रो दिए, आपके
0: मीरा साया, राजा मेहंदी अली खां, मदन मोहन।

0: दो बदन, शकील बदायूनी, रवि।
1: ये आंसू मेरे दिल की जुबान है।
0: हम राही हसरत जयपुरी, शंकर जयकिशन।
1: हुई शाम का ख्याल आ गया।
0: मेरी हमदम मेरे दोस्त आनंद बख्शी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आज का छाया गीत इतना ही। इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: विविधा के समस्त सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मनीषा जैन का नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जयंत जी,
0: जी।
1: आज की विविधा का आरंभ, मेरी इच्छा है कि हम हिंदी की एक बहुत ही सुंदर रचना है, सुगम संगीत की रचना है, कंठ है गीता दत्त का और संगीत है पंडित निखिल घोष का।
0: वाह।
1: एक ऐसा गीत जो हमारी श्रोता आम तौर पर हमारे कार्यक्रमों में नहीं सुनते, आज मेरी बड़ी इच्छा हो रही है कि उस गीत से कार्यक्रम का आरंभ किया जाए, ये छोड़ दिया जाए हमारे श्रोताओं पर कि वो पहचाने इसकी गीतकार कौन है।

0: क्या बात है, गीता दत्त जी की आवाज में इतना मीठा, इतना खूबसूरत गाना पंडित निखिल घोष का स्वरबद्ध किया हुआ अपने श्रोताओं को हमने सुनवाया।
1: जी
0: और अब तक हमारे श्रोताओं ने अंदाजा तो लगा लिया होगा कि ये हिंदी के कोई मूर्धन्य कवि जिनका फिल्मों से बहुत गहरा रिश्ता है
1: जी जी
0: रहे
1: जी
0: होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है, हम बात कर रहे हैं अपने जमाने के मशहूर कवि गीतकार पंडित भरत व्यास जी की।
1: हिंदी अपने संपूर्ण वैभव और पूरे परिष्कार के साथ सामने आती है तो वो आती है हमारे इन महान कवि गीतकारों की रचनाओं के जरिए। जी हाँ श्रोताओ, हिंदी सिनेमा हमेशा उपकृत रहेगा इन सभी कवियों और गीतकारों का जिन्होंने समृद्ध किया हमारी भाषा को और हिंदी को जन जन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण दायित्व भी निभाया, क्योंकि संगीत एक ऐसी विधा है, एक ऐसी चीज है जो सीधे हृदय पर असर करती है।
0: निश्चय ही बहुत
1: और
0: उचित बात आपने कही है मनीषा जी, तत्सम शब्द होते
1: जी
0: हैं,
1: हाँ।
0: यानी भाषा जो है पूरी तरह से अलंकृत है, संस्कृतोद्भव शब्दों का उपयोग उसमें किया गया है, परंतु ऐसे शब्द जो सामान्य जन को आसानी से समझ में आ जाए।
1: जी हाँ, तो इन्हीं तत्सम शब्दों के प्रयोग को हम पाते हैं बहुतायत में हमारे कुछ कवियों की रचनाओं में। और एक बात मैं कहना चाह रही थी, एक
0: जी
1: और फिल्म है जिसके गीत पंडित भरत व्यास ने लिखे हैं और वो फिल्म कवि कालिदास
0: आहा
1: है ना। और आप सोचिए कि इस फिल्म के लिए जब एक संस्कृत के महान कवि की बात हो रही हो तो रचनाएं तो पंडित भरत व्यास ही लिखेंगे। क्या सुंदर रचना है, आषाढ़ का महीना भी है, मुझे लगता है कि आषाढ़ के पहले बादल को संबोधित करते हुए वो जो गीत है उसकी एक झलक हम सुन लें।

0: पंडित भरत व्यास के बारे में हम आपको बताएं श्रोताओं, पंडित भरत व्यास का जन्म 6 जनवरी 1918 को बीकानेर राजस्थान में हुआ था। कलकत्ता से उन्होंने बीकॉम की डिग्री हासिल की और बाकी पढ़ाई पूरी करने वो मुंबई आ गए और जुड़ गए सिने जगत से।
1: और सिने जगत को उन्होंने अमूल्य उपहार दिए अपनी सुंदर रचनाओं के जरिए। उनके किन गीतों की बात हम आपसे करें, एक से एक मोती हैं जो उन्होंने पिरोए हैं। और
0: 1943 में पहली फिल्म आई दुहाई और फिर तांता लग गया, सिलसिला शुरू हो गया एक से बढ़कर एक गीतों का। ऊंची हवेली, रानी रूपमती, तूफान और दिया, दो आंखें बारह हाथ, जय चित्तौड़, गूंज उठी शहनाई, सारंगा, नवरंग, कितने नाम गिनाए।
1: जी हाँ,
0: बूंद जो बन गई मोती इस फिल्म का एक गाना है। ये कौन चित्रकार है,
1: वो तो अमर गीत है। वैसे तो पंडित भरत व्यास के लगभग सभी गीत अमर हैं। कौन भूल सकता है ऐ मालिक तेरे बंदे हम। और एक बात हम बताना चाहेंगे कि एक फिल्म भी भरत व्यास जी ने डायरेक्ट की थी और उस फिल्म का नाम था रंगीला राजस्थान, जो 1949 में आई थी। श्रोताओ, पंडित भरत व्यास को आज हम स्मरण कर रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम में। 4 जुलाई 1982 को वे इस असार संसार को छोड़कर चले गए थे और हम

0: आज के इस कार्यक्रम में उन्हीं के स्मरण में उन्हीं की एक रिकॉर्डिंग अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
1: अवश्य।
2: मैं आज आपको अपने मन पसंद गीतों की जयमाला पहनाना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि आपको मेरे इन चुने हुए गीतों के फूलों की सुगंध खुशी भी देगी और प्रेरणा भी। पहले प्रेरणा देने वाली चंद पंक्तियाँ मैं आपको सुनाऊं। अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी मेहनत से नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कब मदद मिलती अरे भिक्षुक, अपने हर एक श्वास में विश्वास पैदा कर। चल दिया जो चीर कर अंधेर है, चल दिया जो चीर कर अंधेर है, राह में रुकता नहीं जो शेर है, जब तलक जलता रहे अंगार है, बुझ गया तो राख का एक ढेर है। तो खुद अपने पाँव को हिम्मत का बल दे, उठा अपना सर और आगे को चल दे। कहाँ पूछता फिर रहा अपनी ज्योतिष, ग्रहों का जो डर तो ग्रहों को बदल दे। ये तो हुई कविता। मेरी इच्छा है कि मैं अपना एक गीत सुनाऊं और आपके साथ अपनी एक उलझन सुलझाऊं। चंद्रमा की छाती पर आदमी ने पहला कदम रखकर हम कवियों के चंद्रमुखी वाली कवि कल्पना को तो चक्कर में डाल दिया है। आज से हमने किसी को चंद्रमुखी कह दिया तो शायद अपना सैंडल न उठा ले, क्योंकि चंद्रमा के अंदर की खुरदरी तस्वीरें अखबारों में खूब छप चुकी हैं। आदमी ने कमाल तो किया है, पर सवाल ये है कि वो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके क्या करना चाहता है। धरती वैसे ही नरक बनी हुई है, चंद्रलोक कैसे स्वर्ग बन जाएगा। फिर उस निर्माणकर्ता क्रिएटर सर्जनहार का ख्याल आता है कि क्या आदमी उसका मुकाबला कर सकेगा। क्या हजारों साल की मेहनत के बाद भी आदमी ने हजार रंगों वाली तितली का एक पंख तैयार किया। क्या भोर की किरणों के साथ नाना प्रकार के रंगों में बिखरने वाली खूबसूरतियां धरती के ऊपर पैदा की। वो सिर्फ खोज कर रहा है और करता चला जाएगा, और हमें उसकी खोज पर गर्व भी है, लेकिन वो केवल खोज ही करता रहेगा। आश्चर्य इसमें आता है कि ये कौन चित्रकार है जो नजर नहीं आता, जिसकी तूलिका नजर नहीं आती, लेकिन जिसके हजारों रंगों के फूल और हजारों रंगों से रंगी हुई ये धरती हमें नजर आ रही है।

ये उस वीरांगना के हृदय का भाव है जिसका पति महाराणा प्रताप राजस्थान की वीरता का प्रतीक, जिसने शत्रुओं के सामने घुटने नहीं टेके, बच्चों को घास की रोटी खिलाना पसंद किया। प्रताप की पत्नी विरह का गीला गीत नहीं गाती, जिसकी छाती में पति की प्रतिज्ञा का व्रत है उसको निभाना चाहती है, इसलिए पति को आदेश ने

देकर उसके घोड़े चेतक को आदेश देती है कि तुम्हारे ऊपर जो सवार है उसमें मातृभूमि की रक्षा करने की आग है, वो मेरा सुहाग है, मेरे उस सुहाग की तुम रक्षा करना, ये तुम्हारा धर्म है।

अब सुनिए उस नारी का वर्णन जो कवियों और शायरों को कभी नहीं मिली, जिसकी वे केवल कल्पना ही करते रहे। ये गीत मैंने हमारे व्यवसाय के प्रमुख श्री शांताराम जी के आदेश से लिखा था। हमारी धरती के महाकवि कालिदास के महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतल पर कलम चलाने से पहले सोचना पड़ा कि शब्द कैसे हों और भाव कैसे हों। मैंने छोटा सा प्रयास किया, शायद आपको पसंद आए। सूरज की रोशनी को धुंधला देने वाली शकुंतला की ये गति बसंत के समान सुंदर दुष्यंत गा रहा है।

वैसे हमारी संगीत की दुनिया में अधिकतर तर्ज पर बोल लिखवाए जाते हैं, लेकिन मेरे इस गीत के बोल पहले ही से लिखे हुए थे, जिसे मैंने लक्ष्मी प्यारे को एक चित्र सती सावित्री के लिए दिए, जिसकी तर्ज उन्होंने जितनी सुंदर बनाई उतने ही मधुर कंठों से लता जी और मन्ना डे ने गाई। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, तुम प्रणय के देवता हो, मैं समर्पित फूल हूँ।

0: क्षमा मैं भूल हूँ। एक ही पंक्ति में पंडित भरत व्यास ने जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा दिया। बहुत सार गर्भित पंक्ति लगती है मुझे ये इस गीत की।
1: क्या बात है मनीषा जी, फिल्म को एक कैनवास मान लिया जाए
0: जी
1: तो उसकी कहानी लिखने वाला, गीतों को रचने वाला जो है वो उस फिल्म की एक आउटलाइन बनाता है,
0: जी
1: तस्वीर
0: हाँ
1: बनाता है, और उन तस्वीरों में रंग भरते हैं संगीतकार, बाकी कलाकार,
0: जी
1: और
0: हाँ
1: इस पूरी तस्वीर के लिए जो जिम्मेदार होता है वो उसका रचयिता होता है, असल में फिल्मकार।
0: जी हाँ, बहुत सुंदर शब्दों में आपने पूरी फिल्म को बनाने की प्रक्रिया की बात
1: शायद
0: की है।
1: इसीलिए फिल्मों को पहले पिक्चर कहा जाता था।
0: जी हाँ, और एक ऐसे ही फिल्म के अमर चितेरे, उन्हीं की बात हम आज करने जा रहे हैं श्रोताओं। 6 जुलाई को जिनका स्मृति दिवस, जी हाँ, महान फिल्मकार चेतन आनंद, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर यानी निर्देशक और साथ में अभिनेता भी। एक ऐसे महान फिल्मकार चेतन आनंद जिन्होंने सरोकार का सिनेमा रचा, शायद सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति जिस सिनेमा को मिली वो चेतन आनंद जी की नीचा नगर थी।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने मनीषा जी, 1946 की बात है, कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रां प्री अवार्ड जो दिया जाता है वो नीचा नगर को मिला था।
0: जी हाँ, और नीचा नगर पहली फिल्म थी अभिनेत्री कामिनी कौशल की,
1: जी
0: और पंडित रविशंकर की भी ये पहली फिल्म थी एक संगीत निर्देशक की हैसियत से। श्रोताओं, हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सिनेमा को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने वाले चेतन आनंद जी सबसे बड़े भाई थे आनंद परिवार के। जी हाँ, देवानंद साहब और विजय आनंद जी के बड़े भाई चेतन आनंद पिशोरी लाल आनंद के सुपुत्र।
1: 3 जनवरी 1921 को लाहौर में उनका जन्म हुआ था, और बचपन से ही पुराणों और वेदों की पढ़ाई उन्होंने की थी,
0: जी
1: और अंग्रेजी में उन्होंने एमए किया। बाद में डून स्कूल में इतिहास पढ़ाया करते थे, और इसीलिए इतिहास में बहुत अधिक रुचि होने के कारण उन्होंने पहला स्क्रिप्ट जो लिखा था अपनी
0: जी
1: फिल्म के
0: जी
1: लिए वो सम्राट अशोक पर केंद्रित था।
0: और उसे उन्होंने दिखाया था अपने जमाने के मशहूर डायरेक्टर फनी मजूमदार जी को, और बाद में फनी मजूमदार जी ने ही उन्हें अपनी एक फिल्म में कास्ट किया था, और उस फिल्म का नाम था राजकुमार, जो 1944 में रिलीज हुई थी। इसके बाद चेतन आनंद जी इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा से जुड़ गए, जिसके बारे में हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। उस जमाने के लगभग सभी कलाकार इप्टा से जरूर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे।
1: जी 1949 में अपने भाई देवानंद के साथ मिलकर उन्होंने नवकेतन फिल्म इंटरनेशनल की स्थापना की।
0: बाद में चेतन आनंद जी ने हिमालया फिल्म्स की स्थापना की, और उसके बाद का जो उनका पूरा सिने संसार है उसके बारे में हम सभी जानते हैं। कमाल की फिल्में चेतन आनंद ने बनाई, और हमारे सामने ये सभी फिल्में एक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फिल्म जिसका हम नाम लेना चाहेंगे वो थी फिल्म हकीकत। और हकीकत के ही एक गीत की मुझे इस वक्त बहुत याद आ रही है,
1: वही जो लता जी के स्वर में है।
0: जी हाँ, उस गीत को सुनते हैं और फिर आगे रिकॉर्ड सुनवाएंगे हम अपने श्रोताओं को।
1: चलिए

0: हकीकत का ये गीत हमने सुना, हकीकत हीर रांझा हंसते जख्म हिंदुस्तान की कसम जैसी फिल्में बनाने वाले चेतन आनंद साहब।
1: और चेतन आनंद साहब के बारे में एक और खास बात मनीषा जी आपको बताएं, श्रोताओं जान लीजिए, मशहूर अभिनेता राजेश खन्ना साहब को इंट्रोड्यूस करने वाले पहले निर्देशक थे चेतन आनंद, और वो फिल्म थी आखिरी खत। हालांकि राजेश खन्ना साहब की पहली रिलीज्ड फिल्म थी राज।
0: अपने जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब को उन्होंने ढूंढा था एक एक्टिंग कंपटीशन के दौरान, और इस तरह से हमारे सामने अपने जमाने के मशहूर सुपरस्टार राजेश खन्ना आए। श्रोताओं, हम आपसे इतनी बात कर रहे हैं चेतन आनंद साहब की, हमारे पास उनकी रिकॉर्डिंग है, और यकीन मानिए उस आवाज को सुनकर हम सिहर से जाते हैं, क्योंकि इतने महान फिल्मकार की आवाज हमारे पास है। आइए हमारे साथ आप भी सुनिए चेतन आनंद जी द्वारा प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग।
2: फिल्म हकीकत की शूटिंग के दौरान में कश्मीर और लद्दाख की वादियों में कई जवानों से मुलाकात का मौका मिला। उनमें से बहुतों ने इस फिल्म के बनाने में मुझे मदद भी दी, लेकिन शूटिंग खत्म होने के बाद मुझे लद्दाख से अचानक जाना पड़ा, और जिन भाइयों ने मेरी मदद की थी उनका मैं उस वक्त शुक्रिया अदा न कर सका, और न ही उसके बाद मुझे शुक्रिया अदा करने का कोई मौका मिला। आज अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है तो मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। प्रोग्राम शुरू मैं उस गाने से करूंगा जिसे मैंने चुशूल के रास्ते में 17,000 फुट की बुलंदी पर साखाला पास से गुजरते हुए एक फौजी भाई को गुनगुनाते हुए सुना था। हमारी जीप को एक मोड़ पर अचानक दो फौजियों ने बंदूकें तान कर रोका और कहा, जब तक आप हमारे साथ चाय नहीं पियोगे आगे जाने की इजाजत नहीं मिल सकती। आप में से बहुत से भाई इस वक्त 2,000 मील तक फैली हुई हिमालय की सरहदों में बैठे हुए इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे। यकीनन बीवियों और महबूबाओं की याद अक्सर आती होगी।

हर शख्स की किस्मत में ऐसा नहीं लिखा कि उसका कोई इंतजार करता रहे। कई ऐसे हैं जिनके दिलों में उमंगे तो जागती हैं, लेकिन उनको अपनाने वाला अभी मिला नहीं। तन्हाई और इंतजार के कई रूप होते हैं, कई मूड होते हैं। एक रूप खयाम साहब ने साहिर लुधियानवी के बोल लेकर मुकेश और आशा की आवाज के जरिए फिल्म फिर सुबह होगी में यूं जाहिर किया है।

0: अंत में देश के उन बहादुरों की आवाज जिन्होंने लद्दाख और नीफा में, फिर कश्मीर और सियालकोट और लाहौर के सेक्टरों पर देश की रक्षा के लिए अपनी जानें कुर्बान की।
1: कर चले हम फिदा जान तन।

0: जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
1: इसके बाद कुछ भी कहना मुनासिब नहीं, इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद।
2: जयंत जी,
3: जी
2: आप जब राजेश खन्ना साहब की बात कर रहे थे और फिल्म आखिरी खत की बात कर रहे थे, तब एक चीज मेरे दिमाग में घूम रही थी।

0: और वो ये कि जब हम भारतीय सिनेमा के नक्षत्र इस श्रृंखला को बना रहे थे उस वक्त एक एपिसोड हमने चेतनानंद साहब पर बनाया था
1: वाह,
0: और हमारी टीम को एक मौका मिला था कि हम उनके बंगले पर जाएं और वहां हम पहुंचे, उस जगह को देखा जहां हिंदुस्तान की कसम का एक गीत शूट हुआ था। वहां उनके बेटे केतनानंद साहब से हमने बहुत सारी बातें की थी। तब उन्होंने एक जिक्र किया था फिल्म आखिरी खत का।
1: अच्छा
0: उस फिल्म के बारे में सभी जानते हैं कि एक छोटे से बच्चे पर ये फिल्म बनी है जो अकेला सड़कों पर घूम रहा है, उसकी माँ नहीं है इस दुनिया में और वो अपनी माँ को तलाशते हुए घूम रहा है। बहुत ही हृदय स्पर्शी वो फिल्म है। किस तरह से उस फिल्म को बनाते वक्त चेतन आनंद साहब ने टेक्निक का इस्तेमाल किया था, कैमरा किस तरह से रखा था, क्या
1: जी
0: किया था,
1: जी
0: क्योंकि बच्चे को शूट करना बहुत मुश्किल होता है, तो उस बारे में बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने बताई थी, वो भी हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
2: आखिरी खत एक्चुअली मैं कहूँगा कि ये एक फिल्म मेकर की फिल्म है। ये स्टूडेंट्स को स्टडी करना चाहिए कि ऐसी फिल्में कैसी बन सकती हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी इम्पॉसिबल फिल्म। एक छोटे से 15 महीने के बच्चे को आप सड़क पर छोड़ दो, और वो भी बॉम्बे शहर जैसे सड़क पर छोड़ देते थे इसको, और छुपा छुपी वो कैंडिड कैमरा लेके उसको फॉलो करते थे। ये ऐसे शूट की है पिक्चर उन्होंने, और कैमरा को कलम बना दिया उन्होंने। यू नो, कोई रिटन स्क्रीन प्ले नहीं था कि बच्चा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगा, उसको छोड़ देते थे। वो कभी कभी यूं करके देखता था कि बलून वाला आया आगे, तो धड़ धड़ धड़ रोड क्रॉस कर देता था, पुलिस वाला ट्रैफिक रोक देता था उसके लिए। तो ये सब चीजें हैं जो अपने आप स्पॉन्टेनियसली हुई। एक दिन वो ऐसे करते करते एक मंदिर में घुस गया, वो शॉर्ट है फिल्म में। फिर उन्होंने
3: ट्रैक पर भी गया,
2: नहीं वो तो वो प्लान था, छोटी छोटी चीजें प्लान थी। वो ट्रैक पर ले जाना, वो जहाँ सो जाता है, फिर वो एक कपल लड़ाई कर रहा है, वो स्लीपिंग टैबलेट जो आ जाती है, उसको भूख लगी है, ये प्लान है, छोटी छोटी चीजें प्लान है। बट अ लॉट ऑफ स्पॉन्टेनियस शूटिंग, जो वो बैम्बूज के खंभों में जो चल रहा है, रो रहा है, और सड़कों पर चल रहा है, गोले वाले के पीछे चला गया है, दूध की बोतल उठा के पीना चाहता है, ये सब स्पॉन्टेनियसली चीजें उसने, बच्चे ने खुद किया था ये सब। तो वो कहानी लिटरली जैसे जैसे दिन जाते थे वैसे वैसे बनी है। स्पॉन्टेनियस सिनेमा था वो।

0: इस रिकॉर्डिंग को सुनकर के बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है मनीषा जी,
1: जी
0: और इसी अनुभूति को हम आगे बढ़ाएंगे और एक और कलाकार की बात करेंगे।
1: बहुत लोकप्रिय गायक, जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अजीज साहब के।
0: सैयद मोहम्मद अजीजुन नबी
1: जी
0: इनका पूरा नाम था, प्यार से सभी इन्हें मुन्ना भाई कह के बुलाते। और मोहम्मद अजीज साहब का जन्म 2 जुलाई 1954 को गुमा 24 परगना जिला पश्चिम बंगाल में हुआ था, और चूंकि मूलतः वहीं के थे तो बहुत से बंगाली और उड़िया गीतों में भी उनकी आवाज सुनने को मिलती है।
1: श्रोताओ, आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि सर्वाधिक गीत मोहम्मद अजीज साहब ने जो गाए हैं वो उड़िया भाषा में गाए हैं, और भी देश की लगभग 17 भाषाओं में उन्होंने गीत गाए हैं। कमाल
0: जी
1: की बात।

0: मोहम्मद अजीज साहब के बारे में और कुछ बातें अपने श्रोताओं को बताएं। मनीषा जी, बचपन से ही वे रफी साहब के बहुत बड़े दीवाने थे, बहुत बड़े फैन थे। और शुरुआत तो ऐसे हुई कि कलकत्ता में एक रेस्टोरेंट में वो गाया करते थे, और उन्हें सबसे पहला मौका जो मिला वो अनु मलिक साहब के संगीत निर्देशन में फिल्म मर्द का गाना गाने के लिए।
1: मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन के लिए आवाज देना, और वो भी पहले ही ब्रेक में,
0: जी,
1: ये बहुत किस्मत वालों की बात होती है।
0: हमारे श्रोता अच्छी तरह जानते होंगे मर्द टांगे वाला वो जो गाना था,
1: जी
0: बहुत ही हिट था उन दिनों। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के वो बहुत करीब थे,
1: जी हाँ
0: और उनकी आवाज के बारे में कहा जाता है कि वो रेंज बहुत ज्यादा थी, बहुत ऊंचे सुर तक वो गा सकते थे, और बहुत ही उम्दा कलाकार। और कोई कलाकार बहुत अच्छा तभी होता है जब वो एक बहुत अच्छा इंसान होता है।
1: बहुत सहज, बहुत नम्र और बहुत सरल स्वभाव के मुन्ना अजीज, यानी हमारे और आपके अजीज मोहम्मद अजीज साहब की एक रिकॉर्डिंग हमारे पास है श्रोताओं। जब वे विविध भारती के स्टूडियो में आए थे तो बिल्कुल उसी सहजता और सरलता से उन्होंने बात की थी, जिस सरलता से वो ऐसे ऐसे गीत गा गए कि आज भी हमारी यादों में बसे हैं। उनसे बातचीत की थी ममता सिंह ने, तो उस रिकॉर्डिंग को आज हम सुनवाते हैं और याद करते हैं बहुत लोकप्रिय गायक मोहम्मद अजीज को।

0: मोहम्मद अजीज साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे याद करने का, मुझे बुलाने का।
0: आपको कैसा लग रहा है विविध भारती में आकर?
1: विविध भारती के साथ तो बचपन जुड़ा है हमारा, बचपन से इतने प्रोग्राम, जब तो रेडियो ही थे, विविध भारती ही था। मैं फख्र महसूस करता हूँ कि किसी जमाने में रेडियो सुनता था और आज विविध भारती में बैठा हूँ इंटरव्यू देने के लिए।
0: आपका बचपन कैसा था?
1: मैं कलकत्ते का ही हूँ, वहीं पैदा हुआ, पला बढ़ा, और बड़ा ही मजहबी किस्म का खानदान है हमारा, रिलीजियस टाइप, सादा लोग बिल्कुल, और ये ग्लैमर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं।
0: जी,
1: और सबका इरादा था कि मैं पढ़ाई लिखाई करूं, कोई अच्छा बड़ा ऑफिसर बनूं या कुछ भी, लेकिन मेरा रुझान था कि गायक बनूं, क्योंकि अक्सर जब भी मैं कभी भी किसी

0: स्कूल फंक्शन में या कहीं भी गाता था तो मुझे अप्रिसिएशन बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह मिलता था,
1: जी
0: क्योंकि मुझे म्यूजिकल सेंस बचपन से बहुत रहा। जो आम तौर से लोग बहुत ज्यादा सीख कर गाते हैं, उस
1: जी
0: तरह मुझे एक गॉड गिफ्ट था कि मुझे इतनी समझ थी कि कहाँ कैसे गाने को शुरू करना है, कैसे खत्म करना है,
1: जी
0: उसकी हरकत क्या होनी चाहिए, क्या होना। इस तरह बचपन से मुझे काफी सेंस, और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैं एक ना एक दिन कुछ कर पाऊंगा
1: कामयाब होंगे।
0: जी। तो पढ़ाई लिखाई में मेरा दिल नहीं था, बड़ी मुश्किल से मैंने फर्स्ट ईयर बीकॉम तक पढ़ाई की, खींचातानी करके।
1: अच्छा
0: हाँ, घर वाले बहुत परेशान थे, लेकिन जब मैं इधर उधर गाता था और उनको, मेरे वालदेन को जब पता चलता था कि अरे उसने फलां जगह गाया है, कमाल हो गया है, हो गया, तो जाहिर है उनको तो खुशी होती है, लेकिन वो करियर कुछ नजर नहीं आता ना। और वैसे भी बॉम्बे आने से पहले तक तो किसी भी दूसरे शहर में कोई स्कोप तो होता नहीं। तो मैंने फिर भी काफी साल तक स्टेज प्रोग्राम किए, बाकायदा अपना ग्रुप भी बनाया। बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ रही है हमारी शुरू से, एक मिडिल क्लास फैमिली, बहुत सारे भाई बहन और वालदेन की जिम्मेदारी, ये सब थी। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब कुछ भी हो, वक्त बर्बाद नहीं करना है,
1: मुंबई चले आना।
0: हाँ। बॉम्बे आने के बाद फिर 2 साल स्ट्रगल रहा, और 84 में मुझे कुछ छोटी मोटी फिल्मों के गाने मिलने लगे, कुछ 8-10 गाने गाए होंगे कि फिर अचानक एक ब्लास्ट हुआ। यानी मुझे अचानक सुबह सुबह किसी ने आके कहा, अब भी चलो तुमको अन्नू मलिक के यहाँ जाना।
1: किसने कहा था?
0: एक लड़का है, आज भी मेरी दोस्ती है उससे, पप्पू कश्मीरी है, उनका म्यूजिशियन था वो, तो मुझे सुबह सुबह उठा के ले गया।
1: अच्छा।
0: रिहर्सल करवाने के लिए कि 3 बजे से आपकी रिकॉर्डिंग है फिल्म मर्द के लिए, अमिताभ बच्चन।
1: अच्छा।
0: तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि अरे ये तो कमाल ही हो गया। हाँ, मुझे कहा गया कि भाई आप को इस तरह गाना है कि बस गाना रह जाए, नहीं तो ये गाना डब हो जाएगा। खूब रिहर्सल वर्सल करके मैंने 3 बजे से गाना गाया, तो रिस्पांस इतना अच्छा था, क्योंकि उन दिनों लाइव रिकॉर्डिंग होती थी। लाइव रिकॉर्डिंग में एक बात अच्छी थी कि वही म्यूजिशियंस दूसरी जगह जाते थे और जाकर
1: जिक्र करते,
0: हाँ, कि अरे फलां एक नया लड़का है, उसने कमाल गाया। तो अभी जैसे अन्नू मलिक जी के यहाँ से बजा के यही म्यूजिशियन गए लक्ष्मी जी के यहाँ, पंचम दा के यहाँ, कल्याण जी भाई के यहाँ, तो इस तरह बात फैल गई। यानी ये फिल्म, ये गाने रिलीज होने से पहले ही मैं बहुत बिजी हो गया, फिर लाइन से सब जगह गाने लगा।
1: अच्छा, मोहम्मद रफी साहब पर एक गाना था, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया,
0: नहीं,
1: तो
0: इसका,
1: कैसे मिला
0: इसका
1: था
0: तो
1: मौका?
0: कमाल है। आपको मैं एक पहले से बताऊं एक बात, कि मैं बचपन से ही मोहम्मद रफी साहब का बेइंतहा फैन रहा हूं और हूं, और आगे भी रहूंगा,
1: रहेंगे।
0: वो मेरे रूहानी उस्ताद हैं, मतलब समझ लीजिए मैं उनको हर तरह से अपना गुरु मानता हूं। क्योंकि जाहिर है कि बचपन से जिनके गाने गाकर मुझे नाम मिला, इज्जत मिली, तो मेरे सबसे पहले गुरु वही हैं। आज भी जो भी थोड़ा बहुत नाम कमाने के बाद भी कभी कभार उनके कुछ खास गाने कभी सुनता हूँ अकेले बैठ के, तो आंसू आ जाते हैं। एक दिन एक मीटिंग हो रही थी लक्ष्मीकांत जी के घर,
1: जी जी
0: लक्ष्मी जी थे, प्यारे जी बैठे थे, प्रोड्यूसर थे अपने पप्पू वर्मा फाइट मास्टर, डायरेक्टर शशि लाल नायर, कि एक सिचुएशन निकली है कि 31 जुलाई है, मोहम्मद रफी साहब की बरसी है, और उसमें अमिताभ बच्चन पर पिक्चराइज होना है।
1: अच्छा।
0: कि रफी साहब की याद में कोई गाना गा रहे हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी बनी। अब सब लोग बात कर रहे हैं कि इस गाने को गाएगा कौन, तो ये मेरी देखिए खुशनसीबी कही है या रफी साहब की चाहत थी क्या थी, कि सबों ने एकजुट होकर कहा कि मोहम्मद रफी साहब के ऊपर गाना जो है ये मुन्ना गाएगा। मुझे मुन्ना कहते हैं ना
1: जी,
0: प्रिट नेम है, बट मोहम्मद अजीज मेरा नाम है। तो बोलते कि ये गाना वही गाएगा। तो जब मुझे बुलाया गया और मुझे गाने का मुखड़ा सुनाया गया कि न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया, मैं इतना खुश हुआ कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि देखो मेरी मोहब्बत और मेरी चाहत में कोई सच्चाई थी कि ये गाना गाने का मौका मुझे मिला। और जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ, कोई 11 बजे शुरू हुआ रात को रिकॉर्डिंग
1: जी,
0: और ये 2:30 बजे तक इसकी रिकॉर्डिंग चली है, तो जब गाना रिकॉर्ड होने के बाद ये सारे लोग रो रहे थे गाना सुनकर। इवन म्यूजिशियन जो अक्सर क्या होता है कि वो गाने सुनते भी नहीं है, पैसा लेके चले जाते हैं, क्योंकि रोज का काम है उनका।
1: जी, जी।
0: वो सारे के सारे लोग गाना सुन रहे थे और रो रहे थे, एक माहौल ही एकदम सन्नाटा छा गया। वो
2: न फनकार तुझसा

0: अमिताभ बच्चन साहब का क्या रिएक्शन होता जब आप गाते थे तो?
1: बहुत इन्वॉल्व गाना जब बनता था ना, तो जब भी वो अक्सर आते थे लक्ष्मी जी के यहाँ, सुनते थे, कुछ अपनी तरफ से भी कुछ आइडिया देते थे
0: जी। कभी कोई खास सलाह सुझाव दिया हो जो आपको पसंद आया? अच्छा
1: नहीं, अमित जी बहुत कम बात करते हैं
0: जी,
1: बस हल्की हल्की स्माइल देते हैं, बस उसी पे हम लोग फिदा रहते हैं और क्या
0: जी।
1: और हमको नमस्ते कहने नहीं देते कभी, पहले ही वो नमस्ते कहते हैं लोगों को,
0: जी
1: कभी मौका ही नहीं देते कि कोई उनको सलाम करे। बहुत सारी बातें हैं मिला के अमिताभ बच्चन है।
0: अच्छा, और किन किन कलाकारों के लिए आपने गाए हैं?
1: आपको बताऊं, मैं दिलीप साहब और अमित जी से लेकर शाहरुख खान तक सबके लिए गाना गाया मैंने, और मैंने नौशाद साहब, शंकर जी से लेकर आदेश श्रीवास्तव तक सबके लिए गाने गाए
0: जी,
1: और लता जी से लेकर सारिका कपूर तक के साथ गाया
0: जी, जी।
1: कोई जिंदगी में कोई अरमान बाकी नहीं है, सब कुछ
0: क्या
1: पूरा
0: बात
1: हो गया
0: है।
1: जी बिल्कुल।
0: अच्छा मोहम्मद अजीज साहब, नौशाद साहब से जुड़ी हुई बात है, वो ये कि किसी शो में आपने उनके सामने परफॉर्म किया था?
1: मैं एक दफा गया था बिहार, तो वहाँ पे कोई SD बर्मन मेमोरियल अवार्ड फंक्शन था
0: जी,
1: उसमें नौशाद साहब को चीफ गेस्ट बुलाया गया था। ये बात है 1976 की।
0: अच्छा,
1: तो वहाँ तो मैं नौशाद साहब को देख के एकदम खुशी से पागल हो गया कि पहली बार मैंने किसी ऐसे आदमी को देखा जिनका मैं बचपन से बहुत बड़ा फैन था। और वहाँ मैंने तू गंगा की मौज में और ये बैजू बावरा के गाने उन्हें गाए, नए लड़ जाइए, ये सब बिहार का सिचुएशन देखकर, पता नहीं उनको अच्छा लगा क्या लगा, लेकिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उनको जरूर अच्छा लगा होगा। ये कब, जब मैं उनसे 86 में यहाँ बॉम्बे में मिला, देखिए कहाँ 76 कहाँ 86, उन्होंने मुझे याद दिलाया तुमको पता है मैं तुम मुझसे मिल चुके हो।
0: अच्छा,
1: वहाँ गया मैं 76 में, मैं चौंक गया उनकी याददाश्त पर, और उनका बड़ापन भी कहिए कि मेरे जैसे अदना एक गायक को उन्होंने कैसे पहचान लिया। नौशाद साहब जैसे संगीतकार को किसी जमाने में देखना भी हमारे लिए एक सपना था। फिर एक मौका ऐसा भी आया कि जब नौशाद साहब ने मुझे गाने भी गवाए, फिल्म आवाज दे कहाँ है, और गाने के बोले रुलाने को आंसू जलाने को नाले, ये क्या दे दिया जिंदगी देने वाले।

0: अब आपके नॉन फिल्मी एल्बम्स के बारे में बताइए।
1: एक बहुत साल पहले वेनस से निकला था मेरा कशिश गजलों का, सरदार मलिक साहब अनु मलिक के पिताजी, उनकी कंपोजिशन में गजलों का एल्बम निकला था। वो बहुत पॉपुलर हुआ था उन दिनों। एक टी सीरीज ने निकाला था बेवफा तेरा मासूम चेहरा, और भी बहुत सारे एक एल्बम निकला था खुशबू, फिर एक टी सीरीज से निकली जब से देखा चेहरा तुम्हारा। इस तरह बहुत सारे एल्बम्स निकले हैं। एल्बम 60-70 हैं कवालियों के,
0: जी जी
1: नात मनकबत जो होते हैं ना उसके। मैंने इतने टाइप के गाने गाए आपको मैं क्या बताऊं। मैंने गुरबानी का एल्बम किया
0: जी
1: और लोगों ने बहुत पसंद किया। जय हनुमान में जितनी मेल वॉइस है, जय हनुमान एक सीरियल आई थी
0: जी हाँ
1: संजय खान साहब की, उसमें जितनी भी मेल वॉइस है वो सब मेरी है।
0: अच्छा
1: वो सारे हनुमान चालीसा, सारा टाइटल भी आपने सुना होगा,
0: हाँ
1: मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, है
0: जी
1: ना, वो सब मेरे गाए हुए हैं। इतने मुश्किल पूरा चौपाइयां दोहे जो जो थे वो सारे वो सब मैंने गाया। मैं इसके लिए रविंद्र जैन साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जय हनुमान और महाभारत और रामायण ये सब में उन्होंने मुझे गवाया। राज कपूर साहब की फिल्म हेना में भी मुझे गवाया।
0: आपके गानों की लंबी फेहरिस्त है, इतने ढेर सारे गाने हैं कि कौन कौन से गाने सुनवाए कौन कौन से नहीं।
1: उस जमाने में यानी 80s में 600 फिल्मों का लिस्ट मेरे पास है और एक एक फिल्म में तीन तीन चार चार गाने गाए हैं।
0: अच्छा
1: आज जैसे एक फिल्म में 15 सिंगर्स होते हैं,
0: जी
1: अभी जैसे 10 बहाने करके ले गया दिल तो उसमें 4 सिंगर है। तो उस जमाने में ऐसा नहीं होता था, एक हीरो के लिए एक ही सिंगर गाता था, तो मैं चार चार पांच पांच गाने एक फिल्म में गाता था।
0: जी
1: तो आप सोचिए फिल्मों का गाना में तो मेरा 2,500 है और 4,000 के करीब मेरे ओडिया गाने हैं, सिर्फ ओडिया गाने,
0: जी जी
1: और दूसरे अलग 17-18 लैंग्वेज में मिला के 10,000 के ऊपर गाने हैं मेरे,
0: कुल कितनी भाषाओं में आपने गाने गाए हैं?
1: 17 या 18।
0: चलते चलते कौन सा गाना नजर करें श्रोताओं के लिए आपकी ओर से इस वक्त?
1: खुदा गवाह का गाना सुनाइए।

0: मैं वापस आऊंगा। खुदा गवाह फिल्म का ये गीत अजीज साहब के रिकॉर्डिंग में हमने सुना।
1: अफसोस कि कोई वापस नहीं आता इस दुनिया को छोड़कर जब चला जाता है। क्या करें श्रोताओं, ऐसे ऐसे कलाकारों को हम याद करते हैं और आपके साथ उतने ही जज्बाती भी हो जाते
0: मगर मनीषा जी,
1: हैं।
0: अगले हफ्ते हम जरूर वापस
1: वापस
0: आएंगे विविधा का अगला
1: आएंगे।
0: अंक लेकर के।
1: जी हाँ, तो इस वक्त हम अपने श्रोताओं से लेते हैं इजाजत। आपको छोड़ के जाते हैं हम यादों के गलियारे में, और हम जा रहे हैं अगली विविधा की तैयारी में। तो

0: दीजिए इजाजत आप सभी को, आपकी मित्र मनीषा जैन,
1: और जयंत पात्रीकर का नमस्कार।
0: नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें,

जमाने को दिखाना है। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले, मोहम्मद रफी और पद्मिनी कोल्हापुरी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: तेरी कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अमित कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का,
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।